मीडियम वेव 314.47 मीटर अर्थात 954 किलो हर्ट्स पर हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। आज रविवार है, शक संवत 1948 के ज्येष्ठ माह की 10वीं तिथि तदनुसार 31 मई सन 2026 प्रातः के 5:58 और 40 सेकंड हो रहे हैं। हमारी प्रथम सभा के प्रसारण अब आरंभ होते हैं।

0: ये आकाशवाणी का नजीबाबाद केंद्र है। मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 954 किलो हर्ट्ज पर सुबह के 6 बजने को है। कुछ ही पलों में आप हिंदी में समाचार सुनेंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार।

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सवेरे 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ विचार साझा करेंगे। मासिक रेडियो कार्यक्रम की ये 134वीं कड़ी होगी। कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क, आकाशवाणी समाचार वेबसाइट और न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर प्रसारित किया जाएगा। इसका सीधा प्रसारण आकाशवाणी समाचार, दूरदर्शन समाचार, प्रधानमंत्री कार्यालय तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय के YouTube चैनलों पर भी किया जाएगा। हिंदी प्रसारण के तुरंत बाद आकाशवाणी से प्रादेशिक भाषाओं में भी कार्यक्रम प्रसारित किया जाएगा। कर्नाटक में वरिष्ठ कांग्रेस नेता DK शिवकुमार को कल सर्वसम्मति से कांग्रेस विधायक दल का नेता चुना गया। इस संबंध में सिद्धरमैया और डॉक्टर जी परमेश्वरन ने प्रस्ताव पेश किया। DK शिवकुमार बुधवार को मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। सरकार ने 1 जून से 31 अक्टूबर तक कपास आयात पर सीमा शुल्क से अस्थायी छूट देने का फैसला किया है। वस्त्र मंत्रालय के अनुसार ये फैसला कपास किसानों और समूची कपास मूल्य श्रृंखला के हित में किया गया है। कपास के ऑफ सीजन के दौरान इस उपाय से वस्त्र उद्योग के लिए पर्याप्त मात्रा में कपास उपलब्ध होगा। इससे सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों को सहायता मिलेगी, लागत कम होगी और भारतीय वस्त्र बाजार की स्पर्धा मजबूत होगी। वस्त्र मंत्रालय ने कहा है कि इस उपाय से किसानों के हितों की सुरक्षा होगी और बाजार स्थिरता सुनिश्चित होगी। निर्वाचन आयोग ने अपने कानूनी ढांचे को और मजबूत करने के लिए कल नई दिल्ली में अपने वकीलों के साथ बैठक की। बैठक का उद्घाटन करते हुए मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने कहा कि निष्पक्ष मतदाता सूचियों से ही निष्पक्ष चुनाव होते हैं। उन्होंने मतदाता सूचियों के प्रबंधन में बूथ स्तर के अधिकारियों और एजेंटों तथा देश की अदालतों में निर्वाचन आयोग का प्रतिनिधित्व करने के लिए वकीलों की सराहना की। कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने कल नई दिल्ली में CP ग्रैम्स के लिए AI सक्षम वॉयस चैटबॉट समाधान दीदी का शुभारंभ किया। ये चैटबॉट लोगों को संवादात्मक इंटरफेस के माध्यम से लोक शिकायतें दर्ज कराने में सक्षम बनाता है। डॉक्टर सिंह ने समाधान दीदी को सरकार की शिकायत निवारण प्रणाली की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बताया।
1: सन 2014 से पहले केवल यहाँ पर 2 लाख शिकायतें दर्ज होती थी प्रति वर्ष, आज उसकी बढ़कर के संख्या 25 से 30 लाख होगी। कारण ये कि वी हैव बीन प्रॉम्प्ट, वी हैव बीन फॉलोइंग टाइमलाइंस, वी हैव बीन रिस्पॉन्सिव, और ये इसलिए संभव हुआ कि टेक्नोलॉजी का भरपूर और पर्याप्त उपयोग किया गया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का किया गया।
0: केंद्रीय नागर विमानन मंत्री राम मोहन नायडू ने नई दिल्ली में इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर स्काई कास्ट सिस्टम के शुरू होने की प्रशंसा की है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री नायडू ने कहा कि स्काई कास्ट जैसी उन्नत मौसम निगरानी प्रणालियों से कोहरे और विक्षोभ जैसे अन्य व्यवधानों के दौरान उड़ानों के संचालन में महत्वपूर्ण सुधार हो सकता है। दिल्ली पुलिस की विशेष शाखा ने पाकिस्तान की ISI और मुंबई अंडरवर्ल्ड नेटवर्क के लिए काम करने वाले 8 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। विशेष पुलिस आयुक्त अनिल शुक्ला ने बताया कि इन आरोपियों को दिल्ली में महत्वपूर्ण ठिकानों और सुरक्षा कर्मियों पर हमले का काम सौंपा गया था। म्यांमा के राष्ट्रपति ऊ मिन आउं लाइन 5 दिन की भारत यात्रा पर कल शाम नई दिल्ली पहुंचे। इससे पहले राष्ट्रपति ने बिहार में गया के महाबोधि मंदिर में पूजा अर्चना की। उनके साथ कई मंत्रियों, वरिष्ठ अधिकारियों और उद्योग जगत का उच्च स्तरीय प्रतिनिधि मंडल भी आया है। म्यांमा के राष्ट्रपति की ये भारत की पहली यात्रा है। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने कल शाम श्री लाइन से मुलाकात की। राष्ट्रपति मंगलवार को मुंबई जाएंगे। IPL क्रिकेट के फाइनल में आज वर्तमान चैंपियन रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का सामना गुजरात टाइटन से होगा। अहमदाबाद में ये मैच शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। मेजबान इंग्लैंड ने दूसरे T20 अंतर्राष्ट्रीय महिला क्रिकेट मैच में भारत को 26 रन से हरा दिया। ब्रिस्टल में कल इंग्लैंड ने निर्धारित 20 ओवर में 5 विकेट पर 168 रन बनाए। जवाब में भारत की टीम 9 विकेट पर 142 रन ही बना सकी। इंग्लैंड की फ्रिया कैंप को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। उन्होंने केवल 13 गेंद में 39 रन की शानदार पारी खेली। श्रृंखला का तीसरा और अंतिम मैच मंगलवार को टोंटन में खेला जाएगा। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: आकाशवाणी का ये नजीबाबाद केंद्र है। मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 954 किलोहर्ट्ज पर। सवेरे के 6:05 हुए हैं। प्रस्तुत है भक्तिमय कार्यक्रम।

विक्रम वंदना, प्रभात की इस मंगल बेला में जब प्रकृति नव चेतना का संदेश दे रही है, तो आइए हम भी ईश्वर का स्मरण करते हुए अपने कार्यक्रम का शुभारंभ करते हैं। ईश्वर की कृपा, शांति और आशीर्वाद हमारे जीवन को सदैव आलोकित करता है। सबसे पहले इन्हीं मंगल भावनाओं के साथ स्तुति करते हैं ज्ञान, कला, संगीत और वाणी की देवी माँ सरस्वती का, जिनका स्मरण हमारे जीवन को नई दिशा प्रदान करता है।

सच्ची भक्ति त्याग समर्पण और निस्वार्थ प्रेम की भावना ईश्वर की भक्ति को जन्म देती है। जब मनुष्य अपने स्वार्थ से ऊपर उठकर ईश्वर को अपना सर्वस्व मान लेता है तभी भक्ति का वास्तविक स्वरूप प्रकट होता है और यही ईश्वर की सच्ची भक्ति होती है।

गुरुवाणी केवल शब्द नहीं बल्कि जीवन को सही मार्ग दिखाने वाला उज्जवल प्रकाश है। यह हमें सत्य, सेवा और मानवता का संदेश देता है और मन को असीम शांति।

जब दिल में उसकी मोहब्बत हो, ज़बां पर उसका नाम हो और रूह में यकीन हो, तो दुआएं असर करने लगती है और यही कैफियत दिलों में एक ख़ास सुकून पैदा करती है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में पेश हर कलाम मोहब्बत और इंसानियत का पैगाम देता है। इंसानियत का पैगाम ही उस मालिक की सच्ची इबादत है।

सत्य है उससे बड़ा इस संसार में कोई नहीं है। हर रचना उसी की अद्भुत देन है और उसमें है एक सूर्यदेव जो समस्त सृष्टि के लिए प्रकाश, ऊर्जा और जीवन का स्रोत है। उनकी किरणें आशा, उत्साह और नव चेतना का संदेश हमारे जीवन में प्रतिदिन भर देती हैं। इस पावन प्रभात में अब हम आइए कार्यक्रम के अंत में सूर्य देव को नमन करते हुए उनकी महिमा का गुणगान करते हैं।

भक्ति श्रद्धा आस्था के साथ आरंभ हुई आज की ये सुरमई यात्रा अपने अंतिम पड़ाव पर पहुंच गई है। भक्ति के इन मधुर स्वरों ने हृदय को शांति, मन को प्रसन्नता और आत्मा को नवीन ऊर्जा प्राप्त की है। ईश्वर करे यह प्रकाश, यह प्रेम और यह सद्भाव हम सब के जीवन में सदैव बना रहे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आज का वंदना कार्यक्रम अब यहीं पर संपन्न होता है। अभी आप सुन रहे थे भक्तिमय कार्यक्रम वंदना। प्रातः के 6:30 हुए हैं। अब सुनिएगा श्री रामचरितमानस गान से आज का प्रसंग। स्वर है महेंद्र कपूर का और

श्री राम, लक्ष्मण तथा सीता के गंगा तट पर स्थित श्रृंगवेरपुर के निकट पहुंचने का समाचार सुनकर निषाद राजगुहू के हर्ष की सीमा न रही। अपने प्रियजनों तथा भाई बंधुओं को एकत्रित कर भेंट देने के लिए फल मूल आदि बहंगियों में भर भर कर वो सदल बल श्री राम से मिलने चला। राम ने उसे आत्मीय की भांति पास बिठाकर उसकी कुशलक्षेम पूछी। निषाद राज गदगद होकर बोला, हे नाथ, आपके चरण कमलों के दर्शन से ही कुशल है। आज मैं भाग्यवान पुरुषों की गिनती में आ गया। यहां की धरती, धन संपत्ति और घर सभी आपके हैं। मैं तो परिवार के साथ आपका सेवक मात्र हूं। अब कृपा कर हमारे पूर्वे में पधारिए और इस दास की प्रतिष्ठा बढ़ाइए। श्री राम ने उत्तर दिया, हे सुजान सखा, तुमने जो कहा वो तुम्हारे स्नेह का द्योतक है, किंतु पिता ने मुझे कुछ और ही आज्ञा दी है। मुझे 14 वर्षों तक मुनिवेश और व्रत धारण करके उन्हीं सरीखा भोजन करते हुए वन में ही निवास करना है। एक तापस का गांव में रहना उचित नहीं है। श्री राम, लक्ष्मण तथा सीता का तापस वेश देखकर गांव के स्त्री पुरुष प्रेम विह्वल हो रहे हैं। वो उन माता पिता की कठोरता से क्षुब्ध हैं जिन्होंने ऐसे सुकुमारों को वनवास दिया है।

0: मान से आज का प्रसंग। आवाज थी महेंद्र कपूर की और संगीत निर्देशन किया था सतीश भाटिया ने। आकाशवाणी का ये नजीबाबाद केंद्र है। सवेरे के 6:40 हुए हैं। समय हो चला है आज के चिंतन का, तो लीजिए सुनिएगा आज का चिंतन।
1: प्रार्थना दिल से, भाव से, विचार से, समर्पण से होनी चाहिए। प्रार्थना का अर्थ है वर्तमान में रहना। जब आप प्रार्थना करते हो तो आपका मन विचार ठीक होकर सूक्ष्म हो जाता है और आप वर्तमान में होते हैं। हम लोग अपने आप को संसारी कहकर साधना करने से बचाते हैं। जीवन में सिद्धांत होना बहुत जरूरी है। भक्त के लिए सानिध्य जरूरी होता है कि प्रभु मेरे हैं, मौजूदगी महसूस करें। जब हम मौजूदगी महसूस करते हैं तो प्रभु वही हैं। खुद की मौजूदगी महसूस करें कि हम हैं। आप अपने आप को महसूस करें, प्रभु को महसूस करें। जीवन में सफल होने के लिए दो चीजें चाहिए, वो है भक्ति और मुक्ति। जब दोनों हैं तो जीवन सफल है। हम अपने जीवन को ध्यान ज्ञान में परिवर्तन करेंगे, ऐसा संकल्प करें। जिस जीवन में ध्यान ज्ञान नहीं, वो जीवन कूड़ा करकट के समान है। जिस पेड़ पर फल लगते हैं वो पेड़ झुक जाता है। ज्ञानी अपने आप सभी के सामने झुकते हैं, अज्ञानी अकड़ कर चलता है। तो तुम कौन हो, खुद देखो। चेतना सबकी एक ही है, अलग नहीं है। हमारे अंदर भी वही, आपके अंदर भी वही, सभी के अंदर वही चेतना काम कर रही है। हम सब चैतन्य स्वरूप हैं, आत्म स्वरूप हैं। व्यक्ति के शरीर से नहीं बल्कि उसकी चेतना से संबंध बनाओ। ये संबंध सानिध्य का होगा। सभी को परमात्मा का स्वरूप मानो। हम सब एक ही हैं, एक ही चेतना सभी में है। हम जिसको चाहते हैं उसकी याद बराबर आती रहती है। कभी कभी हम सोचते हैं कि क्यों याद आ रही है। प्रभु को चाहो, प्रभु याद आने लगेंगे। हम सपने को पकड़कर नहीं बैठते हैं, इसी तरह हम संसार की चीजों को लेकर नहीं बैठेंगे। जब जान जाते हैं कि ये सब सपना है तो हम कभी आसक्त नहीं होते हैं, क्योंकि सभी सपना है। किस किस को पकड़ोगे? तुम पकड़ना भी चाहोगे तो पकड़ नहीं पाओगे। संसार एक सपना है, जैसे नींद से आया सपना जागने के बाद नहीं रहता। उसी प्रकार हम जान जाते हैं कि किस तरह सपने आते हैं जाते हैं, उसी प्रकार व्यक्ति वस्तु संसार में आते हैं और जाते हैं। सेवा करो, सेवा से मन शांत हो जाता है। जब सेवा करते हो तो उसके बदले में कुछ नहीं चाहो, अन्यथा ये सेवा व्यापार हो जाती है। सांस को देखो, समझने की कोशिश करो, यही जीवन है और जीवन जीने की कला। जब हम समझने लगते हैं कि हम पहुंचने वाले हैं, अब पास में हैं, तो हम थकते नहीं। कोई बच्चा कहीं जाते वक्त थक जाता है तो हम कहते हैं देखो वो दिख रहा है। इसी प्रकार समीप समीप कहकर हम अपने लक्ष्य पर पहुंच जाते हैं। हम काल और स्थान के समुचित व्यवहार नहीं करते। काल और स्थल के हिसाब से चलें और महसूस करें। हम जिसको पाना चाहते हैं उसको नजदीक समझें, जल्द ही उसको पा लेंगे।
0: आज का चिंतन, ये कार्यक्रम अभी आपने सुना। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि आज सुबह 7:05 पर प्रसारित होने वाला कार्यक्रम स्वास्थ्य चर्चा में आपको जानकारी दी जाएगी तंबाकू के सेवन से कैसे बचे विषय पर। साथ ही 7:10 पर खेती की बातें कार्यक्रम में जानकारी लीजिएगा ग्रीष्मकालीन जुताई के महत्व विषय पर। प्रातः 7:31 पर हमारे दैनिक कार्यक्रम सूरज के साथ साथ में आज चर्चा होगी से नो टू तंबाकू विश्व धूम्रपान निषेध दिवस पर, चिलचिलाती धूप और गर्मी में आंखों की देखभाल, और साथ ही बात करेंगे फिल्मी सफर की, और ये कलाकार होंगे पार्श्व गायक के। प्रातः के 6:45 हो रहे हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम काव्यधारा। कार्यक्रम में आज आप सुनेंगे श्री सुल्तान सिंह सुल्तान का पूर्व प्रसाद।

में क्यों है, सड़कों पर स्टंट करते बालकों को रोकिए। बच्चों की नहीं बड़ों की भी जिम्मेदारी बनती है, सुनिएगा। सड़कों पर

आपका भी फर्ज है कुछ, आप इतना सोचिए, आपका भी फर्ज है कुछ।

है और दो मुक्तक आखिर में, तस्वीरों को देख देख कर दिल बहलाए फिरते हैं, तस्वीरों को देख देख कर।

0: कार्यक्रम काव्यधारा में अभी आप सुन रहे थे सुल्तान सिंह सुल्तान का पूर्व प्रसारित पाठ। आकाशवाणी का ये नजीबाबाद केंद्र है। प्रातः के 6:55 होने को है। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे समाचार।
1: ईएम आकाशवाणी संप्रति वार्ताः श्रूयन्ताम् प्रवाचकः पुनीत त्रिपाठी।

0: का प्रसारण किया जाएगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि भारतीय नौसेना ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तानी नौसेना को उसके बंदरगाहों तक ही सीमित रहने के लिए विवश कर दिया था। लखनऊ में नौसेना शौर्य वाटिका के उद्घाटन समारोह में रक्षा मंत्री ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान पर दबाव बनाने में नौसेना ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। शौर्य वाटिका खुले में बनाया गया नौसेना संग्रहालय है। नौसेना प्रमुख एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारतीय नौसेना ने युद्ध के लिए तत्परता, सैन्य संचालन तथा प्रतिरोधी क्षमताओं का प्रदर्शन किया। कर्नाटक में वरिष्ठ कांग्रेस नेता डीके शिवकुमार को कल सर्वसम्मति से कांग्रेस विधायक दल का नेता चुना गया। इस संबंध में सिद्धरमैया और डॉ जी परमेश्वर ने प्रस्ताव पेश किया था। डीके शिवकुमार बुधवार को मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। सरकार ने पहली जून से 31 अक्टूबर तक कपास आयात पर सीमा शुल्क से अस्थायी छूट देने का फैसला किया है। वस्त्र मंत्रालय के अनुसार यह फैसला कपास किसानों और समूची कपास मूल्य श्रृंखला के हित में किया गया है। कपास के ऑफ सीजन के दौरान इस उपाय से वस्त्र उद्योग के लिए पर्याप्त मात्रा में कपास उपलब्ध होगा। इससे सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों को सहायता मिलेगी, लागत कम होगी और भारतीय वस्त्र बाजार की स्पर्धा मजबूत होगी। वस्त्र मंत्रालय ने कहा है कि इस उपाय से किसानों के हितों की सुरक्षा होगी और बाजार स्थिरता सुनिश्चित होगी। निर्वाचन आयोग ने अपने कानूनी ढांचे को और मजबूत करने के लिए कल नई दिल्ली में अपने वकीलों के साथ बैठक की। बैठक का उद्घाटन करते हुए मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने कहा कि निष्पक्ष मतदाता सूचियों से ही निष्पक्ष चुनाव होते हैं। उन्होंने मतदाता सूचियों के प्रबंधन में बूथ स्तर के अधिकारियों और एजेंटों तथा देशों की अदालत में निर्वाचन आयोग का प्रतिनिधित्व करने के लिए वकीलों की सराहना की। कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने कल नई दिल्ली में सीपी ग्राम्स के लिए एआई सक्षम वॉयस चैटबॉट समाधान दीदी का शुभारंभ किया। ये चैटबॉट लोगों को संवादात्मक इंटरफेस के माध्यम से लोक शिकायतें दर्ज कराने में सक्षम बनाता है। केंद्रीय नागर विमानन मंत्री राममोहन नायडू ने नई दिल्ली में इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर स्काईकास्ट सिस्टम के शुरू होने की प्रशंसा की है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री नायडू ने कहा कि स्काईकास्ट जैसी उन्नत मौसम निगरानी प्रणालियों से कोहरे और विक्षोभ जैसे अन्य व्यवधानों के दौरान उड़ानों के संचालन में महत्वपूर्ण सुधार हो सकता है। म्यांमा के राष्ट्रपति ऊ मिन आउ लाइन 5 दिन की भारत यात्रा पर कल शाम नई दिल्ली पहुंचे। इससे पहले राष्ट्रपति ने बिहार में गया के महाबोधि मंदिर में पूजा अर्चना की। उनके साथ कई मंत्रियों, वरिष्ठ अधिकारियों और उद्योग जगत का उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल भी आया है। म्यांमा के राष्ट्रपति की ये भारत की पहली यात्रा है। विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर ने कल शाम श्री लाइन से मुलाकात की। डॉ जयशंकर ने दीर्घकालिक द्विपक्षीय सहयोग और प्रगाढ़ करने के लिए म्यांमा के राष्ट्रपति के सकारात्मक दृष्टिकोण की सराहना की। म्यांमा के राष्ट्रपति कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ दोनों देशों के ऐतिहासिक और सभ्यागत संबंधों को मजबूत करने पर चर्चा करेंगे। वे व्यापारिक मंच में भी भाग लेंगे। राष्ट्रपति मंगलवार को मुंबई जाएंगे। आईपीएल क्रिकेट के फाइनल में आज वर्तमान चैंपियन रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का सामना गुजरात टाइटंस से होगा। अहमदाबाद में यह मैच शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। मेजबान इंग्लैंड ने दूसरे T20 अंतर्राष्ट्रीय महिला क्रिकेट मैच में भारत को 26 रन से हरा दिया है। श्रृंखला का तीसरा और अंतिम मैच मंगलवार को टॉन्टन में खेला जाएगा। पहला मैच भारत ने जीता था। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 954 किलो हर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का नजीबाबाद केंद्र है। समय 7:05 प्रस्तुत है कार्यक्रम स्वास्थ्य चर्चा, जिसमें आज की जानकारी का विषय है तंबाकू के सेवन से कैसे बचे।
2: ये तंबाकू का सेवन एक आदत के तहत है, भोजन का हिस्सा तो नहीं कहेंगे लेकिन आदत का हिस्सा जरूर है। और दुर्भाग्य की बात यह है कि इसके सेवन में पिछले 3 दशकों में कोई खास एप्रिशिएबल गिरावट दिखाई नहीं दे रही है। स्मोकिंग में जरूर थोड़ी सी कमी आई है पिछले कुछ सालों में, लेकिन बाकी जो तंबाकू सेवन के तरीके हैं उसमें कहीं कोई गिरावट नहीं आई है। यही वजह है कि गले के कैंसर और इससे मिले हुए कैंसर जो है वो

0: का अनुपात अभी भी उतना ही है जितना पहले था। तंबाकू के अंदर कुछ पदार्थ हैं निकोटीन, और इसके अंदर जो कुछ जो प्रोसेस होती है तंबाकू को प्रोसेस करने के लिए, उससे कुछ हाइड्रोकार्बन्स हैं जो कि कैंसर प्रोड्यूस करते हैं, जो कैंसर जीन है उस पर सीधे जाकर अटैक करते हैं, तो यही कारण है। तीसरी चीज, इसके अंदर कुछ अलग प्रकार के तेजाबों का इस्तेमाल किया जाता है इसके प्रोसेस में, जिसके लगातार कांटेक्ट में आने से उन जगहों के कैंसर होने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। जो सिगरेट से रिलेटेड हैं उनका लंग कैंसर की जो संख्या है वो बहुत ज्यादा है, और लगभग जो लोग सिगरेट स्मोक करते हैं उनको कैंसर होने की संभावनाएं लगभग 20 से 30 गुना बढ़ जाती हैं। साथ ही फेनी रखने की मुंह में आदत, तंबाकू को गाल के नीचे दबाने की आदत, और तंबाकू का सेवन करने से गले का कैंसर, होठों का कैंसर, बकल कैविटी का कैंसर, ईसोफेगस का कैंसर, ये कैंसरों की नंबर्स बढ़ते चले जाते हैं। और सबसे ज्यादा यानी कि बकल कैविटी के कैंसर जो हैं वो मुंह से लेने वाली तंबाकुओं से ज्यादा बढ़ जाते हैं। ये और ध्यान देने की बात है कि इससे ना केवल मुंह के और फेफड़े के कैंसर बल्कि शरीर के हर हिस्से में कैंसर बढ़ने के चांसेस होते हैं, क्योंकि ये एक सिस्टेमिक डिजीज है, सिस्टेमिक इन्वॉल्वमेंट है इस ड्रग का, इसलिए बाकी जगहों पे भी कैंसर पाए जाते हैं। एक्टिव स्मोकिंग और पैसिव स्मोकिंग का जो कॉन्सेप्ट है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। जो पब्लिक प्लेसेस हैं, जो लोग सिगरेट स्वयं सेवन करते हैं, तो वो कुछ अंश धुएं का अपने अंदर लेते हैं, उसको कहते हैं हम एक्टिव स्मोकिंग। और जो अंश वो बाहर निकालते हैं और जिनके आसपास बैठे हुए लोग हैं वो उस धुएं को इनहेल करते हैं, अंदर लेते हैं, और उसको कहते हैं पैसिव स्मोकिंग। ना, दुर्भाग्य की बात है कि हर उम्र के बच्चे, चाहे जवान हो चाहे महिला हो, सभी उस धुएं को इनहेल करते हैं, और हर एक व्यक्ति में कैंसर प्रोड्यूस करने की क्षमताएं अलग अलग हो, तो बचपन से ही जो लोग एक्सपोज्ड हैं तो उनमें कैंसर होने की संभावनाएं बढ़ जाती है। न केवल कैंसर बल्कि अन्य फेफड़े की बीमारी जैसे कि ब्रोंकाइटिस, एम्फाइसिमा, क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीजेस, ये बीमारियां बढ़ जाती हैं। और इस दिशा में सरकार ने बड़े महत्वपूर्ण कदम भी उठाए हैं, उन्होंने नो स्मोकिंग जोन्स बनाए हैं, और अगर किसी को ऐसी परेशानी महसूस होती है धुएं से, उसका ये फर्ज है पीने वाले को मना करे कि उनसे कहे कि आप अलग जाके पिए, ये एक कानूनी अधिकार के रूप में सामने आने वाला है। ये पहले जो गर्भवती महिलाओं में जो स्मोकिंग है, ये बहुत पहले से इसका ध्यान दिया गया, और इसमें पाया गया कि बच्चे की ग्रोथ के ऊपर इसका काफी महत्वपूर्ण असर है। बच्चे के अंग बनने की जो स्थिति होती है गर्भावस्था में, उस पर असर पड़ता है, और शारीरिक विकास पर को प्रभाव पड़ते हैं। गर्भवती महिलाओं के लिए बहुत अहम चीज है कि वो एक्टिव या पैसिव स्मोकिंग दोनों से बचाव रखें। सबसे पहले तो स्वयं की भूमिका है, क्या हम वास्तव में इसको छोड़ना चाहते हैं, और अगर हम वास्तव में छोड़ना चाहते हैं, जब इच्छा ये जाग जाती है, तो सिर्फ सिगरेट को फेंक देना ही सबसे आसान विकल्प है। आप सच माने ये बहुत मुश्किल नहीं है, बहुतों ने किया है और बहुत लोग ऐसा शुरुआती दौर में ऐसे करते हैं। इसके मेडिकल रूप में भी कई उपचार हैं, इसको छुड़ाने के कई सारे तरीके हैं, दवाइयां हैं, इसके पैचेस हैं, च्युइंगम्स हैं, जिसमें निकोटीन की मात्रा काफी कम होती है और उसके जो कुप्रभाव हैं वो बचाए जा सकते हैं। तो चाहे ओपीडी बेसिस पर, चाहे रिहैबिलिटेशन सेंटर की बेसिस की सहायता से इसका निदान किया जा सकता है।
1: अभी आपने स्वास्थ्य चर्चा कार्यक्रम में तंबाकू के सेवन से बचने के विषय में जानकारी ली। आकाशवाणी का ये नजीबाबाद केंद्र है। मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 954 किलो हर्ट्स पर। प्रातः के 7:10 हुए हैं। किसान भाई, अब आप सुनेंगे अपना दैनिक कार्यक्रम खेती की बातें, जिसमें आज आपको ग्रीष्मकालीन जुताई के महत्व के विषय पर जानकारी दी जाएगी।
2: किसान भाइयों नमस्कार, खेती की बातें कार्यक्रम में आपका स्वागत है, और आज खेती की बातें कार्यक्रम में विषय है ग्रीष्मकालीन जुताई का महत्व। किसान भाइयों, भारत एक कृषि प्रधान देश है और यहाँ की अधिकांश जनसंख्या खेती पर निर्भर करती है। खेती की सफलता काफी हद तक मिट्टी की गुणवत्ता, जल संरक्षण, खरपतवार नियंत्रण तथा फसल प्रबंधन पर निर्भर करती है। किसान भाई यदि सही समय पर सही कृषि कार्य करें तो कम लागत में अधिक उत्पादन प्राप्त कर सकते हैं। इन्हीं महत्वपूर्ण कृषि कार्यों में से एक है ग्रीष्मकालीन जुताई। किसान भाइयों, ग्रीष्म ऋतु में खेत की गहरी जुताई करना किसानों के लिए

0: अत्यंत लाभकारी माना जाता है। यह केवल मिट्टी को पलटने का कार्य नहीं है, बल्कि मिट्टी की उर्वरता बढ़ाने, कीट एवं रोग नियंत्रण करने, खरपतवार नष्ट करने और अगली फसल के लिए खेत को तैयार करने की वैज्ञानिक प्रक्रिया है। किसान भाइयों, ग्रीष्मकालीन जुताई का महत्व है कि रबी फसल की कटाई के बाद जब हमारे खेत मई जून में खाली होते हैं तो इस समय खेत की गहरी जुताई करना होता है, क्योंकि इस समय तापमान अधिक होता है और सूर्य की तेज किरणें मिट्टी की ऊपरी सतह को गर्म कर देती हैं। जब किसान भाई खेत की मिट्टी को पलटते हैं तब मिट्टी के अंदर छिपे कीट, रोगजनक जीव और खरपतवार के बीज तेज धूप के संपर्क में आने से नष्ट हो जाते हैं। यही कारण है कि कृषि वैज्ञानिक ग्रीष्मकालीन जुताई को खेती का एक आवश्यक अंग मानते हैं। किसान भाइयों, ग्रीष्मकालीन जुताई करने से मिट्टी भुरभुरी बनती है। जब खेत की मिट्टी कठोर हो जाती है तो उसमें वायु संचार कम हो जाता है, पौधों की जड़ों को उचित मात्रा में ऑक्सीजन नहीं मिल पाती है, जिससे उनकी वृद्धि प्रभावित होती है। भाइयों, गहरी जुताई से मिट्टी में वायु का आवागमन बढ़ता है और पौधों की जड़ें गहराई तक फैलती हैं। इससे पौधे अधिक पोषक तत्व और पानी ग्रहण कर पाते हैं, परिणाम स्वरूप फसल का विकास अच्छे से हो पाता है और उत्पादन भी बढ़ जाता है। किसान भाइयों, ग्रीष्मकालीन जुताई का सबसे बड़ा लाभ यह है कि इससे खेत में छिपे हानिकारक कीट नष्ट हो जाते हैं। कई कीट अपने अंडे, प्यूपा या लार्वा मिट्टी के अंदर छिपाकर रखते हैं। जब गर्मी में गहरी जुताई की जाती है तो ये कीट ऊपर आ जाते हैं और सूरज की गर्मी तथा पक्षियों द्वारा खाकर नष्ट कर दिए जाते हैं। इससे अगली फसल में कीटों का प्रकोप कम होता है। उदाहरण के लिए दीमक, सफेद गिंडार, तना छेदक तथा अन्य भूमिगत कीट ग्रीष्मकालीन जुताई से काफी हद तक नियंत्रित हो जाते हैं। इससे किसानों को कीटनाशकों पर कम खर्च करना पड़ता है। भाइयों, रोग नियंत्रण की दृष्टि से भी ग्रीष्मकालीन जुताई अत्यंत महत्वपूर्ण है। कई प्रकार के फफूंद, जीवाणु और विषाणु मिट्टी में लंबे समय तक जीवित रहते हैं। जब मिट्टी पलटकर धूप में खुली छोड़ दी जाती है तब तेज तापमान के कारण ये रोगजनक नष्ट हो जाते हैं। इससे अगली फसल में रोगों की संभावना कम हो जाती है, विशेषकर जड़ गलन, उकटा तथा अन्य मिट्टी जनित रोगों के नियंत्रण में ग्रीष्मकालीन जुताई लाभकारी सिद्ध होती है। किसान भाइयों, ग्रीष्मकालीन जुताई वर्षा जल संरक्षण में भी सहायक होती है। जब खेत की मिट्टी भुरभुरी रहती है तो वर्षा का पानी आसानी से मिट्टी में समा जाता है। इससे जल का बहाव कम होता है और मिट्टी का कटाव रुकता है। यदि खेत में जुताई ना की जाए तो मिट्टी कठोर बनी रहती है और वर्षा का पानी बहकर बाहर निकल जाता है। इससे खेत में नमी की कमी होती है, इसलिए ग्रीष्मकालीन जुताई से खेत की जल धारण क्षमता बढ़ती है, जिससे खरीफ फसलों को पर्याप्त नमी मिलती है। किसान भाइयों, मिट्टी की उर्वरता बढ़ाने में भी ग्रीष्मकालीन जुताई का विशेष योगदान है। जब खेत की मिट्टी पलटी जाती है तो उसमें उपस्थित जैविक पदार्थ अच्छी तरह मिल जाते हैं। इससे सूक्ष्म जीव सक्रिय होते हैं और पोषक तत्वों का विघटन तेजी से होता है। परिणाम स्वरूप मिट्टी में नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाश जैसे तत्वों की उपलब्धता बढ़ती है। साथ ही खेत में डाली गई गोबर की खाद या जैविक खाद भी मिट्टी में अच्छी तरह मिल जाती है। इससे मिट्टी की गुणवत्ता सुधरती है। तो किसान भाइयों, ये तो थी आज की खेती की बातें। अब हमें कल तक के लिए अनुमति दें। किसान भाइयों, नमस्कार।
1: खेती की बातें, ये कार्यक्रम आप सुन रहे थे आकाशवाणी की नजीबाबाद केंद्र से, और आज की जानकारी का विषय था ग्रीष्मकालीन जुताई का महत्व। मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 954 किलो हर्ट्ज पर, ये आकाशवाणी का नजीबाबाद केंद्र है। सुबह के 7:15 हुए हैं। आइए अब आपको हमारे केंद्र से प्रसारित होने वाले आज के कुछ मुख्य कार्यक्रमों की जानकारी दे देते हैं। अखिल भारतीय रविवासरीय संगीत सभा का आनंद लीजिए का रात 10:00। अनुगूंज कार्यक्रम का प्रसारण समय रहेगा रात 9:30 पर। वहीं मन की बात माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा भारत की जनता को संबोधित कार्यक्रम का 134वां संस्करण आप सुनेंगे सुबह 10:55 पर। आपकी जानकारी के लिए बता दें, ये तीनों ही कार्यक्रम हमारे दिल्ली केंद्र से प्रसारित होंगे। अदबी दुनिया में शाम 7:50 पर आज के कलाम शायर होंगे एजाज धामपुरी। सुगम संगीत कार्यक्रम में हेमंत पाठक के स्वर में कुछ गीतों का आनंद लीजिएगा शाम 7:32 पर। विविधा कार्यक्रम में कहानीकार सविता मिश्रा की पूर्व प्रसारित कहानी संजीवनी बूटी सुनिएगा शाम 6:45 पर। युवाणी युवा साथियों का लोकप्रिय कार्यक्रम आप सुनेंगे अपने निर्धारित समय 5:15 पर। कार्यक्रम में आज की सौगातें होंगी, कुछ खास है आज, क्विज, रहस्य सीरीज और साथ ही आनंद लीजिएगा फिल्म संगीत का। शाम 5:00 आकाशवाणी के 90 वर्षों के उपलक्ष में आकाशवाणी नजीबाबाद से जुड़े श्रोताओं के अनुभव पर आधारित कार्यक्रम ये रिश्ता है खास आप सुन सकेंगे। दोपहर 1:15 पर बालवाटिका कार्यक्रम में क्रम रहेगा बालमुख से आओ जाने क्रम में महान विभूति क्रम का, साथ ही विश्व तंबाकू निषेध दिवस की जानकारी के साथ चर्चा होगी गर्मियों के मौसम और विश्व विशेष स्वास्थ्य देखभाल और जीवन में अनुशासन के महत्व पर। साप्ताहिक कार्यक्रम फिल्मी संडे में आज की हमारी फिल्म होगी 100 डेज, समय वही 12:30 पर। कृषि जगत कार्यक्रम में ब्लॉक कोतवाली के सहायक विकास अधिकारी आदित्य कुमार गौतम से प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का लाभ कैसे लें विषय पर भेंटवार्ता सुनेंगे शाम 6:05 पर। तो श्रोताओं, ये तो थी कुछ जानकारी हमारे केंद्र से प्रसारित होने वाले आज के कुछ मुख्य कार्यक्रमों की। सवेरे के 7:18 होने को है, कुछ ही समय में आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार।

0: मन का धर्म है मनन करना, मनन में ही उसे आनंद है, मनन में बाधा प्राप्त होने से उसे पीड़ा होती है। रविन्द्रनाथ ठाकुर।
1: अपने ज्ञान पर जरूरत से ज्यादा यकीन करना मूर्खता है। सबसे मजबूत कमजोर हो सकता है और सबसे बुद्धिमान गलती कर सकता है। एपीजे अब्दुल कलाम।
0: जैसे सूर्य सबको एक सा प्रकाश देता है, बरसात सबके लिए बरसती है, उसी तरह विद्या वृष्टि सब पर बरकरार होनी चाहिए। महात्मा गांधी।
1: आकाश की तरफ देखिए, हम अकेले नहीं हैं, सारा ब्रह्मांड हमारे लिए अनुकूल है। और जो सपने देखते हैं, मेहनत करते हैं, उन्हें प्रतिफल देने की साजिश करता है। एपीजे अब्दुल कलाम। निरंतर विकास जीवन का नियम है, और जो व्यक्ति खुद को सही दिखाने के लिए हमेशा अपनी रूढ़िवादिता को बरकरार रखने की कोशिश करता है, वह खुद को गलत स्थिति में पहुंचा देता है। महात्मा गांधी।
0: मानव का दानव होना उसकी हार है, मानव का महामानव होना उसका चमत्कार है, और मनुष्य का मानव होना उसकी जीत है। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन।
1: कोई त्रुटि तर्क वितर्क करने से सत्य नहीं बन सकती, और ना ही कोई सत्य इसलिए त्रुटि बन सकता है क्योंकि कोई उसे नहीं देख रहा है। महात्मा गांधी।

आकाशवाणी गोरखपुर से प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचार बुलेटिन के साथ मैं वैष्णवी त्रिपाठी। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ साझा करेंगे अपने विचार। आकाशवाणी और दूरदर्शन के संपूर्ण नेटवर्क पर प्रसारित होगा कार्यक्रम। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने लखनऊ में किया नौसेना शौर्य वाटिका का लोकार्पण। रक्षा मंत्री ने कहा, डिफेंस कॉरिडोर के जरिए रक्षा क्षेत्र को आत्मनिर्भर बन रहा है प्रदेश। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने ग्रेटर नोएडा में स्टार्टअप लोहम का किया दौरा, कहा लीड

0: पोटेशियम आयन बैटरी और अन्य महत्वपूर्ण खनिजों तथा उन्नत सामग्रियों का उत्पादन कर रहा लोहम। और प्रदेश भर में आज आयोजित होगी उत्तर प्रदेश संयुक्त बीएड प्रवेश परीक्षा, हाईटेक कमांड कंट्रोल रूम के जरिए होगी परीक्षा केंद्रों की निगरानी। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। यह इस मासिक रेडियो कार्यक्रम की 134वीं कड़ी होगी। आकाशवाणी और दूरदर्शन के समस्त नेटवर्क, आकाशवाणी समाचार की वेबसाइट और न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर यह कार्यक्रम सीधे प्रसारित होगा। हिंदी प्रसारण के तुरंत बाद आकाशवाणी क्षेत्रीय भाषाओं में कार्यक्रम प्रसारित करेगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कल लखनऊ के CG सिटी में 9 करोड़ रुपए की लागत से 2 एकड़ से अधिक क्षेत्र में निर्मित नौसेना शौर्य वाटिका का लोकार्पण किया। लोकार्पण समारोह को संबोधित करते हुए रक्षा मंत्री ने कहा कि लखनऊ राष्ट्रभक्ति और सैन्य गौरव का प्रतीक बन रहा है। श्री सिंह ने कहा कि नौसेना शौर्य वाटिका केवल बनावट का नमूना भर नहीं है, ये सबको सेनाओं के संघर्ष और योगदान को स्मरण कराएगी। रक्षा मंत्री ने कहा कि भारत का रक्षा क्षेत्र आत्मनिर्भर होने की ओर तेजी से बढ़ रहा है, इसमें उत्तर प्रदेश के डिफेंस कॉरिडोर की अहम भूमिका है।
1: हमने यहाँ पर लखनऊ में DRDO की प्रयोगशालाएं भी प्रारंभ की हैं। डिफेंस कॉरिडोर के माध्यम से उत्तर प्रदेश भारत के रक्षा क्षेत्र को आत्मनिर्भर बना रहा है और यहाँ लखनऊ में ब्रह्मोस का भी निर्माण हो रहा है और भी कई तरह से उत्तर प्रदेश डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग को मजबूत कर रहा है।
0: इस अवसर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि भारतीय सैनिकों की वजह से 140 करोड़ भारतवासी चैन की नींद सोते हैं। उन्होंने कहा कि सुरक्षा के बेहतर माहौल में ही जन कल्याण एवं विकास योजनाएं प्रभावी ढंग से आगे बढ़ सकती हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पंच प्रण के संकल्प से जुड़कर विकसित भारत की संकल्पना साकार हो सकती है।
2: देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने देशवासियों के सामने विकसित भारत की जिस संकल्पना को हमारे सामने रखा है, उसमें उन्होंने हर भारतवासी से कहा कि विकसित भारत के लिए हर नागरिक को पंच प्रण के साथ जुड़ना पड़ेगा। वे जो पंच प्रण है उनमें से जो सबसे महत्वपूर्ण है, अपनी सेना के प्रति और यूनिफॉर्म धारी फोर्स के प्रति सम्मान का भाव हमारे मन में हो।
0: भारतीय नौसेना और उत्तर प्रदेश पर्यटन विभाग के संयुक्त तत्वाधान में विकसित ये परियोजना अत्याधुनिक ओपन एयर म्यूजियम और इंटरप्रिटेशन सेंटर के रूप में तैयार की गई है। नौसेना शौर्य वाटिका में भारतीय नौसेना से सेवानिवृत्त युद्धपोत INS गोमती को स्थापित किया गया है। उर्वरकों के संतुलित और उचित उपयोग को बढ़ावा देने के लिए 1 महीने का खेत बचाओ अभियान कल से शुरू होगा। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि खेतों, किसानों और गांवों को जोड़ते हुए इस अभियान को राष्ट्रीय अभियान बनाया जाना चाहिए। नई दिल्ली में एक उच्च स्तरीय बैठक में उन्होंने कहा कि अभियान का मुख्य ध्यान उर्वरकों का संतुलित और उचित प्रयोग, मौसम की चुनौतियों के मद्देनजर किसानों को समय पर परामर्श, पंचायत स्तर पर किसानों की भागीदारी तथा गांवों को सीधे योजनाओं के लाभ पर केंद्रित होना चाहिए। केंद्रीय कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने कल नई दिल्ली में CP ग्राम्स के लिए AI सक्षम वॉइस चैटबॉट समाधान दीदी का शुभारंभ किया। ये चैटबॉट लोगों को संवादात्मक इंटरफेस के माध्यम से लोक शिकायतें दर्ज कराने में सक्षम बनाता है। डॉक्टर सिंह ने समाधान दीदी को सरकार की शिकायत निवारण प्रणाली की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बताया। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन हमारे YouTube चैनल AIR न्यूज गोरखपुर और X हैंडल AIR News_GKP पर भी उपलब्ध है। केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कल उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा के सूरजपुर में स्टार्टअप लोहम का दौरा किया। श्री वैष्णव ने कहा कि लोहम लिथियम आयन बैटरी और अन्य महत्वपूर्ण खनिजों तथा उन्नत सामग्रियों का उत्पादन कर रहा है।
3: एक यंग स्टार्टअप लोहम, इन्होंने कंप्लीट टेक्नोलॉजी को डेवलप किया है और टेक्नोलॉजी को डेवलप करने के बाद में वहाँ से प्रोडक्शन का लेवल लेके आए। प्लांट को देखने का मौका मिला। लिथियम कार्बोनेट बनाने की मशीनें जो कि आगे सीधा बैटरी बनाने में काम में आए और परमानेंट मैग्नेट बनाने की मशीनें जो कि बहुत ही एक अच्छे बहुत ही कॉम्प्लेक्स टेक्नोलॉजी को अच्छे तरीके से डेवलप किया।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र की NDA सरकार के 12 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर उत्तर प्रदेश में 5 जून से 21 जून तक विकास, सेवा, सुशासन और जनकल्याण की उपलब्धियों को समर्पित व्यापक जनसंपर्क अभियान चलाया जाएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल बैठक कर अभियान की तैयारियों की समीक्षा की और आवश्यक दिशा निर्देश दिए। एक रिपोर्ट।
4: अभियान के तहत 5 जून से 21 जून के बीच प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में लगभग 10 किलोमीटर की प्रगति पथ यात्रा आयोजित की जाएगी। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर एक पेड़ माँ के नाम अभियान के अंतर्गत वृक्षारोपण और 8 जून से 14 जून तक जनसंपर्क अभियान, संवाद कार्यक्रम और पैदल मार्च आयोजित किए जाएंगे। 11 से 14 जून तक मीडिया संवाद कार्यक्रम होंगे। 14 से 16 जून के बीच जन कल्याण मेलों का आयोजन होगा। वहीं 16 और 17 जून को जिला स्तर पर विकसित भारत संकल्प सम्मेलन आयोजित किए जाएंगे। 18 और 19 जून को केंद्र सरकार की 12 वर्षों की विकास यात्रा तथा विकसित भारत के संकल्प को प्रदर्शित करने के लिए विशेष प्रदर्शनियां लगाई जाएंगी। 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर योग कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। समाचार कक्ष से राघवेंद्र त्रिपाठी।
0: केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने कहा है कि उसका पोस्ट रिजल्ट इक्विटी पोर्टल कल 1 जून से सक्रिय हो जाएगा। आवेदन करने के इच्छुक विद्यार्थियों की उत्तर पुस्तिकाओं के सत्यापन और पुनर्मूल्यांकन की पारदर्शी प्रक्रिया सुनिश्चित करने के लिए यह पोर्टल शुरू किया जा रहा है। अयोध्या स्थित डोगरा रेजिमेंटल सेंटर में कल अग्निवीर योजना के तहत 7वें बैच के 835 अग्निवीर जवानों ने सफलतापूर्वक अपना सैन्य प्रशिक्षण पूरा कर लिया। डोगरा रेजिमेंटल सेंटर के कमांडेंट ब्रिगेडियर जितेंद्र शर्मा ने बताया कि सभी जवान सेना में विभिन्न मोर्चों पर तैनात कर दिए जाएंगे।
5: 835 अग्निवीर जो है वो पासिंग आउट होके अपनी अपनी यूनिटों में वो ज्वाइन करेंगे। जाति के साथ ही अग्निवीर इनको वो जो अपना कार्य है वो करना पड़ेगा और उसके लिए यहाँ पर हमने इन्हें ट्रेन करा है और मुझे विश्वास है कि अपना ये कार्य अच्छे ढंग से ये पूरा करेंगे।
0: उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड ने जून महीने में बिजली बिल पर 10% का अतिरिक्त फ्यूल एवं पावर परचेज एडजस्टमेंट सरचार्ज लागू करने का निर्णय लिया है। अगले महीने उपभोक्ताओं को अपने बिजली बिल में 10% अधिक भुगतान करना होगा। प्रदेश भर में आज उत्तर प्रदेश संयुक्त बीएड प्रवेश परीक्षा 2026 का आयोजन किया जा रहा है। इस परीक्षा में 72 जिलों में स्थापित 1011 परीक्षा केंद्रों पर कुल 4,44,958 अभ्यर्थी प्रतिभाग करेंगे। परीक्षा 2 पालियों में संपन्न होगी। निगरानी के लिए एक हाईटेक कमांड कंट्रोल रूम बनाया गया है। परीक्षा को लेकर प्रशासन ने कड़े सुरक्षा इंतजाम किए हैं। परीक्षा केंद्रों की CCTV से निगरानी की जाएगी। प्रदेश के अधिकांश जिलों में तेज हवा चलने और वर्षा होने से तापमान में गिरावट दर्ज की गई है और लोगों को गर्मी से राहत मिली है। मुरादाबाद, फरुखाबाद और अमरोहा में कल रात आंधी के साथ गरज चमक के बीच बारिश होने की खबर है। मौसम विभाग ने अगले 2 दिन तक प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में गरज चमक के साथ वर्षा का अनुमान जताया है, जबकि कई जगहों पर तेज हवा के साथ बिजली कड़कने की भी आशंका जताई गई है। अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ साझा करेंगे अपने विचार। आकाशवाणी और दूरदर्शन के संपूर्ण नेटवर्क पर प्रसारित होगा कार्यक्रम। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने लखनऊ में किया नौसेना शौर्य वाटिका का लोकार्पण। रक्षा मंत्री ने कहा, डिफेंस कॉरिडोर के जरिए रक्षा क्षेत्र को आत्मनिर्भर बना रहा है प्रदेश। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने ग्रेटर नोएडा में स्टार्टअप लोहम का किया दौरा। कहा, लिथियम आयन बैटरी और अन्य महत्वपूर्ण खनिजों तथा उन्नत सामग्रियों का उत्पादन कर रहा लोहम। और प्रदेश भर में आज आयोजित होगी उत्तर प्रदेश संयुक्त बीएड प्रवेश परीक्षा। हाईटेक कमांड कंट्रोल रूम के जरिए होगी परीक्षा केंद्रों की निगरानी। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला समाचार अब से थोड़ी देर बाद सुबह 8 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।
6: असली शिक्षा एक इंसान की गरिमा को बढ़ाती है, उसके स्वाभिमान में वृद्धि करती है।

0: उसे तो कभी भी किसी वस्तु से संतोष नहीं होता, फलस्वरूप उसका जीवन असफल होना स्वाभाविक है। स्वामी विवेकानंद।
1: आकाशवाणी का ये नजीब आबाद केंद्र है, मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 954 किलोहर्ट्ज पर। सुबह के 7:31 हुए हैं। प्रस्तुत है जानकारी, मनोरंजन और रोचकता का संगम कार्यक्रम सूरज के साथ साथ।

0: साथ साथ।
1: सुप्रभात श्रोताओं। श्रोताओं, कुदरत हर दिन हमें जीने के लिए एक नई सुबह देती है, नए सपने सजाने के लिए एक नया दिन देती है, लेकिन हम में से कुछ लोग इस खूबसूरत जिंदगी की कद्र नहीं करते हैं, बल्कि अपनी बुरी आदत से इस अनमोल जिंदगी को धीरे धीरे छोटा कर लेते हैं। श्रोताओं, आज विश्व धूम्रपान निषेध दिवस पर चर्चा करते हुए हम आपसे ये कहना चाहते हैं कि आज ई सिगरेट, निकोटिन पाउच और तंबाकू के कई उत्पादों का फैशन और स्टाइल युवाओं के बीच दिन रात बढ़ता जा रहा है। इनकी रंग बिरंगी पैकिंग, अलग अलग फ्लेवर, सोशल मीडिया का आकर्षण धीरे धीरे हमारी इस नई पीढ़ी के भविष्य को खोखला कर रहा है, क्योंकि तंबाकू केवल आपके शरीर को नुकसान नहीं पहुंचाता, बल्कि आपके सपनों, खुशियों और परिवार की मुस्कान को भी छीन लेता है। इसी खतरे को पहचानते हुए विश्व स्वास्थ्य संगठन ने विश्व तंबाकू निषेध दिवस 2026 के लिए एक सार्थक थीम दी है। इसके आकर्षण का पर्दाफाश, निकोटिन और तंबाकू की लत से मुकाबला। आइए हम संकल्प लें और तंबाकू की लत से मुकाबला करें कि इसके धुएं में अपनी जिंदगी को और अपने आने वाले भविष्य को नहीं गवाएंगे, क्योंकि दो पल के धुएं की इस मस्ती का नाम बुरा है। दो पल के धुएं की इस मस्ती का नाम बुरा है, जो छीन ले किसी की मुस्कान, वो हर जाम बुरा है। सुबह बुरा है, शाम बुरा है, सुबह बुरा है, शाम बुरा है, नशे का तो अंजाम बुरा है।

0: नमस्कार, ये आकाशवाणी है। 9 दशक यानी 90 साल जब टीवी का पर्दा कोरा था और इंटरनेट एक सपना, तब धुन की इस लहर ने भारत के हर घर में अपनी जगह बनाई। क्रिकेट के रोमांचक आंखों देखे हाल से लेकर मन की बात के संवाद तक,
1: आसमान में सिर उठाकर, घने बादलों को चीरकर, रोशनी का संकल्प ले, अभी तो सूरज उगा है।
0: आकाशवाणी सिर्फ एक रेडियो स्टेशन नहीं, हर भारतीय के संघर्ष और सफलता का साक्षी है। सूचना, शिक्षा और मनोरंजन का सबसे भरोसेमंद साथी। आज भी पहाड़ों की चोटी से लेकर सुदूर गांव तक हमारी आवाज ही आपकी पहचान है।

0: आकाशवाणी के 90 गौरवशाली वर्ष अटूट विश्वास अनवरत साथ।
1: आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सूरज के साथ साथ आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से। श्रोताओं, आज मई का आखिरी दिन यानी 31 मई है और जून का महीना हमारी जिंदगी में दस्तक देने को तैयार है और इसके साथ साथ सूरज की तपिश भी तेज होने पर है। ऐसे में सिर्फ शरीर ही नहीं, हमारी आंखों को भी खास देखभाल की जरूरत होती है। तेज धूप, धूल, गर्म हवाएं आंखों में जलन, खुजली और कई समस्याएं बढ़ा देती हैं। इसलिए घर से बाहर जब भी निकलें तो धूप का चश्मा लगाएं, ठंडे पानी से आंखों को धोएं, मोबाइल और स्क्रीन का इस्तेमाल करते वक्त भी आंखों को बीच बीच में आराम देते रहें। भोजन में हरी सब्जियां, फल और विटामिन ए युक्त चीजें शामिल करें। पानी भी पर्याप्त मात्रा में पीते रहें। अगर हम इन छोटी छोटी जरूरी बातों का ध्यान रखेंगे तो इस चिलचिलाती धूप और गर्मी में अपनी आंखों की सुरक्षा कर सकते हैं। याद रखिए, दुनिया की हर खूबसूरती को देखने के लिए आंखों का स्वस्थ रहना बेहद जरूरी है और आज की ये चर्चा बताती है कि आंखें ही हैं जो जिंदगी का हर नज़ारा दिखाती हैं।

0: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।
1: अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए लीजिए आकाशवाणी का सहयोग और दीजिए उसे बुलंदियों के पंख।
2: आपका बिजनेस लोकल है या राष्ट्रीय, आकाशवाणी देती है उपभोक्ताओं तक पहुंचने का हर विकल्प।
1: और अब तो आप घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे कर सकते हैं आकाशवाणी के किसी भी केंद्र के लिए विज्ञापनों की बुकिंग।
2: आकाशवाणी के विभिन्न चैनलों पर विज्ञापन देना सुलभ और सस्ता।
1: बुकिंग है तो संपर्क करें 8700001-4242 पर।
2: 8700001-4242।
3: नशे का शौक कहीं आपकी आदत तो नहीं बन गया?
4: याद रखिए, शौक, सोबत या फैशन के तौर पर अपनाया नशा आपकी आदत और स्वभाव का अंग बन जाएगा।
3: पार्टियों में नशा नहीं, खुशियां बांटिए।
4: नशा नहीं, जिंदगी अपनाइए।
3: आज अभी नशा छोड़ने का संकल्प दोहराइए।
4: ये सूचना मध्य निषेध विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।
5: अपने व्यापार को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाना चाहते हैं?
6: तो इंतजार किस बात का,
5: अभी बुक कराइए अपना विज्ञापन आकाशवाणी नजीबाबाद के संग।
6: विज्ञापन बुकिंग कराने के लिए आज ही संपर्क करें।
5: हमारा मोबाइल नंबर है 8865845809।
6: नंबर एक बार फिर सुन लीजिए 8865845809।
5: और हमारा ईमेल आईडी है
6: akashwaninajibabad@gmail.com।
5: तो देर किस बात की, उठाइए अपना फोन और बुक कराइए अपना विज्ञापन आकाशवाणी नजीबाबाद के संग।
7: श्रोताओं, वक्त कह रहा है कि हम कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और अपने तिथि सेगमेंट में चलते हैं।

श्रोताओं, वक्त हर दिन आगे बढ़ता जाता है और हर तारीख धीरे धीरे इतिहास के पन्नों पर अपनी खास छाप छोड़ देती है। 31 मई के नाम भी ऐसी कई यादें हैं जो बनाती हैं आज की तारीख को बेहद खास। साल 1911 में आज ही के दिन दुनिया का सबसे विशाल यात्री जहाज RMS टाइटैनिक पूरी तरह बनकर तैयार हुआ था। हालांकि साल 1912 में अपनी पहली यात्रा के दौरान ही उत्तरी अटलांटिक महासागर में एक हिमखंड से टकराकर ये जहाज टूट गया था। टाइटैनिक जहाज की इस घटना को दुनिया के समुद्री इतिहास में सबसे दुखद घटना माना जाता है। 31 मई 1911 को ही भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो ने RST-1 उपग्रह का सफल प्रक्षेपण किया। यह उपग्रह सफलतापूर्वक 9 दिनों तक अंतरिक्ष की कक्षा में रहा, जो भारत के अंतरिक्ष सफर की अहम उपलब्धि माना जाता है। खेल जगत के इतिहास में 31 मई का दिन बेहद खास माना जाता है। साल 2008 में जमैका के महान धावक उसेन बोल्ट ने 100 मीटर दौड़ महज 9.72 सेकंड में पूरी कर सारी दुनिया को अपनी रफ्तार का दीवाना बना दिया था। आज ही की तिथि को साल 1974 को भारत में एक ऐसी व्यवस्था की नींव रखी गई जो देश में संचार प्रणाली की रीढ़ बनी। श्रोताओं, ये वही तारीख है जब वॉरेन हेस्टिंग ने कलकत्ता में पहले डाकघर की स्थापना की। ये एक ऐसी व्यवस्था की शुरुआत थी जिसने देश के कोने कोने को एक सूत्र में जोड़ने में अहम भूमिका निभाई थी। श्रोताओं, बात कर लेते हैं आज के दिन जन्मी महान हस्तियों की। मुगल सम्राट जहांगीर की पत्नी नूरजहां इतिहास में सबसे प्रभावशाली मुगल साम्राज्य थी। उनका असली नाम मेहरुन्निसा था। उनका जन्म आज ही की तिथि को साल 1577 में हुआ था। वो अपनी सुंदरता, बुद्धिमत्ता, कला प्रेम और प्रशासनिक क्षमता के लिए याद की जाती हैं। 31 मई 1725 को मालवा की प्रसिद्ध शासिका महारानी अहिल्याबाई होलकर का भी जन्म हुआ था। न्याय, जनकल्याण और सेवा का प्रतीक अहिल्याबाई का जीवन नारी शक्ति की अद्भुत मिसाल रहा है। मशहूर संगीतकार जोड़ी आनंद मिलिंद को कौन नहीं जानता। इनमें से मिलिंद श्रीवास्तव आज अपना 67वां जन्मदिन मना रहे हैं। आप दोनों ही भाई मशहूर संगीतकार चित्रगुप्त के सुपुत्र हैं। साल 1988 में आई फिल्म कयामत से कयामत तक में आपने संगीत में पहला फिल्म पुरस्कार जीता था। CID वो कौन थी, मेरा साया, दोस्ताना जैसी यादगार फिल्मों के निर्देशक राज खोसला का जन्म भी 31 मई 1925 को हुआ था। आपने रहस्य सस्पेंस भरी फिल्मों के साथ साथ महिला प्रधान फिल्मों का भी निर्देशन किया गया और इन्हीं के निर्देशन करने के कारण आपको एक उत्कृष्ट पहचान मिली थी। अब बात कर लेते हैं आज ही के दिन दुनिया को अलविदा कहने वाली कुछ महान हस्तियों की। प्रख्यात लेखिका कमला दास का निधन 31 मई 2009 को केरल में हुआ था। आपने अपनी लेखनी से भारतीय साहित्य को एक नई पहचान दी। अंग्रेजी और मलयालम साहित्य में आपका योगदान सराहनीय है। भारतीय फिल्म जगत में अनिल कृष्ण विश्वास का नाम भी बड़ी श्रद्धा से लिया जाता है। आपको हिंदी फिल्म संगीत का पथ प्रदर्शक भी माना जाता है क्योंकि आपने ऑर्केस्ट्रा और मधुर संगीत को एक नई अलग पहचान दी। रोटी, तराना, किस्मत, अनोखा प्यार जैसी फिल्में

आज भी आपके हुनर की खूबसूरत मिसाल पेश करती हैं। 31 मई 2003 को आज ही की तिथि को आप फिल्म जगत को सूना कर गए थे। श्रोताओं, आज ही के दिन एक और कलाकार हैं जो हमारा साथ छोड़ गए थे। हम बात कर रहे हैं प्लेबैक सिंगर के की। संगीत की दुनिया में सच में कुछ नाम ऐसे होते हैं जो वक्त के साथ साथ और भी खास बन जाते हैं और हमारी यादों में बसे रहते हैं। ऐसा ही एक नाम है कृष्ण कुमार कुन्नाथ यानी के का, जिनकी आवाज़ हर एहसास को बुनकर एक समा बना देती है। 23 अगस्त 1968 को दिल्ली में जन्मे के ने जिंगल्स गाकर अपने करियर की शुरुआत की थी और 1996 में माचिस के गीत से फिल्मी दुनिया में कदम रखा। 1999 में आई उनकी एल्बम पल जिंदगी के खूबसूरत पलों का टर्निंग पॉइंट बन गई। तड़प तड़प क्या मुझे प्यार है, तू ही मेरी शब है, आंखों में तेरी, खुदा जाने जैसे गीतों में आपने हर दिल को छू लिया। फिर आया 31 मई 2022 का वो दिन जब कोलकाता में अपने लाइव कॉन्सर्ट के बाद ये आवाज़ हमेशा हमेशा के लिए खामोश हो गई, लेकिन के आज भी हमारे बीच हैं अपने सुरीले गीतों के जरिए। तो आइए सुनते हैं उनका ये एक खूबसूरत गीत।

जान लेते हैं कि हिंदुस्तान अखबार क्या कहता है। श्रोताओं, इस खबर को हर अखबार ने प्रमुखता से प्रकाशित किया है। बिजली सरचार्ज 10% बढ़ा, जून में ज्यादा आएगा बिल। गर्मी में बिजली संकट झेल रहे उपभोक्ताओं को जून में आने वाला बिल बड़ा झटका देगा। इस बिल में 10% सरचार्ज जुड़कर आएगा। अगर किसी का बिजली का बिल 1,000 रुपए हुआ तो उसे 1,100 रुपए देने होंगे। आगे हिंदुस्तान लिखता है, सिंदूर 2.0 के लिए सेना तैयार। भारतीय सेना जरूरत पड़ने पर ऑपरेशन सिंदूर के लिए पूरी तरह तैयार है। सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने शनिवार को पुणे में नेशनल डिफेंस एकेडमी के 150वें कोर्स के पासिंग आउट परेड के दौरान मीडिया से बात करते हुए ये बात कही। आगे हिंदुस्तान लिखता है, 10 वर्षों में लाखों लोगों ने छोड़ी तंबाकू की लत। तंबाकू की लत पर भारत का कड़ा प्रहार देखने को मिल रहा है। पिछले 10 वर्षों में भारत का राष्ट्रीय तंबाकू छोड़ने वाली सेवा ने बड़ी उपलब्धि हासिल की है। इस हेल्पलाइन को पिछले एक दशक में लगभग 1 करोड़ कॉल प्राप्त करते हुए, जिसकी मदद से 2.32 लाख से अधिक लोगों ने तंबाकू की जानलेवा लत को हमेशा हमेशा के लिए छोड़ दिया है। अब बात कर लेते हैं दैनिक जागरण की। आईपीएल को आज मिलेगा चैंपियन। आईपीएल 2026 का फाइनल मुकाबला रविवार को अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में गत चैंपियन आरसीबी और गुजरात टाइटंस के बीच खेला जाएगा। दैनिक जागरण आगे लिखता है, बीएड प्रवेश परीक्षा आज, 1,011 केंद्रों पर बैठेंगे 4.45 लाख अभ्यर्थी। खराब मौसम के बारे में चेताएगी यूपी 112 की टीम, ये खबर भी दैनिक जागरण से है। राज्य में खराब मौसम को लेकर नागरिकों की जानमान की रक्षा के लिए राहत आयुक्त कार्यालय अब आपातकालीन सेवा यूपी 112 की मदद लेगा। अब खबर अमर उजाला से, एनटीए को फिर खेद है। नीट और सीबीएसई की 12वीं की परीक्षा को लेकर जारी विवाद के बीच एक और परीक्षा ने व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए। देश भर के विश्वविद्यालयों में प्रवेश के लिए होने वाली सीयूईटी यूजी शनिवार को तकनीकी खामी के कारण घंटों बाधित रही। उत्तर भारत में आंधी बारिश, राजस्थान में बवंडर, पहाड़ों में हिमपात। मौसम के बदले मिजाज से शनिवार को दिल्ली एनसीआर समेत देश के कई हिस्सों में आंधी के साथ झमाझम बारिश हुई। और ये खबर भी अमर उजाला से ही है। शीर्ष पर रहते हुए सबालेंका की 100वीं जीत। महिला टेनिस खिलाड़ी आर्याना सबालेंका ने फ्रेंच ओपन में शानदार प्रदर्शन जारी करते हुए 100वीं जीत हासिल की। और इसी के साथ आज का सूरज के साथ साथ कार्यक्रम का कारवां अब यहीं पर संपन्न होता है।

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम सूरज के साथ साथ। रात के 8 बजने को है, कुछ ही पलों में सुनेंगे समाचार।
1: सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के बारे में सुना है?
2: भारत सरकार का लक्ष्य सोलर पावर से बिजली बिल जीरो करने का भी है।
1: इससे आपका घर सूर्य घर बन जाता है, माने बिजली बिल जीरो, और अतिरिक्त बिजली पैदा हुई तो बिजली ग्रिड को बेचकर पैसे भी कमा सकते हैं। तो बैठे क्यों हो, अभी रजिस्टर करो PM सूर्य घर.gov.in पर।
3: हर घर सूर्य घर।
4: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं लवलीन निगम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारतीय नौसेना ने पाकिस्तानी नौसेना को बंदरगाहों में दुबके रहने को किया था मजबूर। म्यांमार के राष्ट्रपति ओ मिन आउलाइन 5 दिन की भारत यात्रा पर नई दिल्ली पहुंचे। कल बिहार के गया में महाबोधि मंदिर में की थी पूजा अर्चना। सरकार ने पेट्रोल डीजल और विमान ईंधन पर निर्यात शुल्क संशोधित किया, नया शुल्क कल से लागू। मौसम विभाग का बुधवार तक केरलम, माहे, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकाल में मूसलाधार बारिश का अनुमान। और IPL क्रिकेट के फाइनल में आशा।

0: अहमदाबाद में गुजरात टाइटंस का सामना मौजूदा चैंपियन रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से होगा। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों से विचार साझा करेंगे। मासिक रेडियो कार्यक्रम की ये 134वीं कड़ी होगी। कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क, आकाशवाणी समाचार वेबसाइट और न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर किया जाएगा। इसका सीधा प्रसारण आकाशवाणी समाचार, दूरदर्शन समाचार, प्रधानमंत्री कार्यालय तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय के यूट्यूब चैनलों पर भी किया जाएगा। हिंदी प्रसारण के तुरंत बाद आकाशवाणी से प्रादेशिक भाषाओं में इसका प्रसारण किया जाएगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि भारतीय नौसेना ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तानी नौसेना को उसके बंदरगाहों तक सीमित रहने के लिए विवश कर दिया था। लखनऊ में नौसेना शौर्य वाटिका के उद्घाटन समारोह में रक्षा मंत्री ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान पर दबाव बनाने में नौसेना ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।
1: हमारी सेनाओं ने सटीक हमले करके पाकिस्तान में स्थित आतंकी ढांचे को पूरी तरह से तबाह कर दिया। हमारी आर्मी और एयरफोर्स ने तो अपनी भूमिका निभाई ही, लेकिन जो भूमिका हमारी नेवी ने निभाई वो भी बहुत ही महत्वपूर्ण थी। हमारी नेवी पूरी ताकत के साथ अरब सागर में उस समय मौजूद, जिसने दुश्मन के मन में लगातार भय बनाए रखा और इसी का नतीजा ये हुआ कि पाकिस्तान की पूरी नौसेना डरकर अपने बंदरगाहों में दुबक कर बैठ गई।
0: शौर्य वाटिका खुले में बनाया गया नौसेना संग्रहालय है। नौसेना प्रमुख एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारतीय नौसेना ने युद्ध के लिए तत्परता, सैन्य संचालन तथा प्रतिरोधी क्षमताओं का प्रदर्शन किया। म्यांमार के राष्ट्रपति ऊ मिन आउन लाइन 5 दिन की भारत यात्रा पर कल शाम नई दिल्ली पहुंचे। इससे पहले राष्ट्रपति ने बिहार में गया के महाबोधि मंदिर में पूजा अर्चना की। उनके साथ कई मंत्रियों, वरिष्ठ अधिकारियों और उद्योग जगत का उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल भी आया है। म्यांमार के राष्ट्रपति की ये भारत की पहली यात्रा है। विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर ने कल शाम श्री लाइन से मुलाकात की। डॉ जयशंकर ने दीर्घकालिक द्विपक्षीय सहयोग और प्रगाढ़ करने के लिए म्यांमार के राष्ट्रपति के सकारात्मक दृष्टिकोण की सराहना की। म्यांमार के राष्ट्रपति कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ दोनों देशों के ऐतिहासिक और सभ्यागत संबंधों को मजबूत करने पर चर्चा करेंगे। वे व्यापारिक मंच में भी भाग लेंगे। राष्ट्रपति मंगलवार को मुंबई जाएंगे। कर्नाटक में वरिष्ठ कांग्रेस नेता डीके शिवकुमार को कल सर्वसम्मति से कांग्रेस विधायक दल का नेता चुना गया। इस संबंध में सिद्धरमैया और डॉ जी परमेश्वरन ने प्रस्ताव पेश किया था। डॉ डीके शिवकुमार बुधवार को मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। निर्वाचन आयोग ने अपने कानूनी ढांचे को और मजबूत करने के लिए कल नई दिल्ली में अपने वकीलों के साथ बैठक की। बैठक का उद्घाटन करते हुए मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने कहा कि निष्पक्ष मतदाता सूचियों से ही निष्पक्ष चुनाव होते हैं। उन्होंने मतदाता सूचियों के प्रबंधन में बूथ स्तर के अधिकारियों और एजेंटों तथा देश की अदालतों में निर्वाचन आयोग का प्रतिनिधित्व करने के लिए वकीलों की सराहना की। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। केंद्र सरकार ने कल से शुरू हो रहे पखवाड़े के लिए पेट्रोल, डीजल और विमान ईंधन के निर्यात शुल्क में संशोधन किया है। ये कदम पश्चिम एशिया संकट से उत्पन्न अनिश्चितताओं के बीच घरेलू स्तर पर पेट्रोलियम उत्पादों की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से उठाया गया है। एक रिपोर्ट।
2: सरकार ने पेट्रोलियम उत्पादों के निर्यात शुल्क में संशोधन किया है। वित्त मंत्रालय की अधिसूचना के अनुसार पेट्रोल के निर्यात पर अब 1.50 रुपए प्रति लीटर और डीजल के निर्यात पर 13.50 रुपए प्रति लीटर का शुल्क लगाया जाएगा। वहीं विमान ईंधन पर निर्यात शुल्क 9.50 रुपए प्रति लीटर निर्धारित किया गया है। अतिरिक्त उत्पाद शुल्क और सड़क तथा अवसंरचना उपकर सहित निर्यात शुल्क 27 मार्च से लागू किए गए थे। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल, पेट्रोल, डीजल और विमान ईंधन की औसत कीमतों के आधार पर प्रत्येक पखवाड़े इनकी समीक्षा की जाती है। घरेलू उपभोक्ताओं के लिए पेट्रोल और डीजल पर मौजूदा उत्पाद शुल्क दरों में कोई बदलाव नहीं किया गया है। संशोधित निर्यात शुल्क कल से लागू होंगे और 15 जून तक लागू रहेंगे। विष्णु PS की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार बल।
0: केंद्रीय नागर विमानन मंत्री राम मोहन नायडू ने नई दिल्ली में इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर स्काईकास्ट

0: कार्यक्रम के शुरू होने की प्रशंसा की है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री नायडू ने कहा कि स्काई कास्ट जैसी उन्नत मौसम निगरानी प्रणालियों से कोहरे और विक्षोभ जैसे अन्य व्यवधानों के दौरान उड़ानों के संचालन में महत्वपूर्ण सुधार हो सकता है। सरकार ने पहली जून से 31 अक्टूबर तक कपास आयात पर सीमा शुल्क में अस्थायी छूट देने का फैसला किया है। वस्त्र मंत्रालय के अनुसार ये फैसला कपास किसानों और समूची कपास मूल्य श्रृंखला के हित में किया गया है। कपास के ऑफ सीजन के दौरान इस उपाय से वस्त्र उद्योग के लिए पर्याप्त मात्रा में कपास उपलब्ध होगा। इससे सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यमों को सहायता मिलेगी, लागत कम होगी और भारतीय वस्त्र बाजार की स्पर्धा मजबूत होगी। वस्त्र मंत्रालय ने कहा है कि इस उपाय से किसानों के हितों की सुरक्षा होगी और बाजार स्थिरता सुनिश्चित होगी। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन एक दिवसीय दौरे पर आज केरलम पहुंचेंगे। वे कोट्टयम में मलयालम दैनिक दीपिका के 140वें स्थापना दिवस समारोह का उद्घाटन समारोह में शामिल होंगे। दिल्ली पुलिस की विशेष शाखा ने पाकिस्तान की आईएसआई और मुंबई अंडरवर्ल्ड नेटवर्क के लिए काम कर रहे 8 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। विशेष शाखा के विशेष पुलिस आयुक्त अनिल शुक्ल ने बताया कि इन आरोपियों को दिल्ली में महत्वपूर्ण ठिकानों और सुरक्षा कर्मियों पर हमले का काम सौंपा गया था।
1: कुछ जगहें थी मुंबई में, कुछ रेलवे स्टेशन की इन्होंने सर्वे किया था, रेकी की थी। कुछ मुंबई के पार्क्स थे, पब्लिक पार्क, उसके अलावा कुछ ब्रिजेस थे जिसकी वीडियोस और फोटो इन्होंने ली हुई हैं, जो इन्होंने शेयर की हैं ऑन दी अदर साइड। उसके अलावा दिल्ली में कुछ सरकारी भवन, कुछ गैर सरकारी और कुछ पब्लिक प्लेसेस, हाई फुटफॉल एरियाज और सिक्योरिटी पर्सन को हिट करने के लिए, ऐसा उनका प्रिलिमिनरी इंटरोगेशन से पता चला।
0: कोलंबिया में आज राष्ट्रपति चुनाव के पहले चरण के लिए मतदान होना है। कुल 14 उम्मीदवार मैदान में हैं। उम्मीदवार को पहले ही चरण में जीतने के लिए 50% से अधिक वोट हासिल करने होंगे। यदि कोई उम्मीदवार ये आंकड़ा नहीं छू पाता है तो सबसे अधिक वोट पाने वाले दो उम्मीदवारों के बीच 21 जून को दूसरे चरण का चुनाव कराया जाएगा। विश्व स्वास्थ्य संगठन के महानिदेशक टेड्रोस अदनोम गेब्रेयेसस ने कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य युगांडा में इबोला के प्रकोप के कारण यात्रा प्रतिबंध लगाने तथा सीमाएं सील करने वाले देशों से अपने इन फैसलों पर दोबारा विचार करने का आग्रह किया है। उनका मानना है कि इस तरह के कदमों से प्रभावित क्षेत्रों में राहत और बचाव कार्यों में रुकावट आ सकती है। आज विश्व तंबाकू निषेध दिवस मनाया जा रहा है। ये दिन तंबाकू के उपयोग को पूरी तरह समाप्त करने के उद्देश्य से विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा शुरू की गई महत्वपूर्ण वैश्विक पहल का हिस्सा है। इस वर्ष का विषय है अपील का अनावरण, निकोटीन और तंबाकू की लत से निपटना। महाराष्ट्र के पुणे में जहरीली शराब से मृतकों की संख्या 21 हो गई है। इनमें से 7 लोग पुणे और 14 लोग पिंपरी, चिंचवाड़ा तथा उरुली कांचर क्षेत्रों के थे। इस मामले में अब तक 10 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। प्रशासन ने लापरवाही के आरोप में 22 अधिकारियों को निलंबित कर दिया है। इनमें 9 पुलिसकर्मी और राज्य आबकारी विभाग के 13 अधिकारी शामिल हैं। और अब खेल जगत की हलचल के साथ हैं आनंद पाठक।
2: खेलों में आज की सबसे बड़ी खबर आईपीएल 2026 के फाइनल से जुड़ी है। अहमदाबाद में गुजरात टाइटंस और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु खिताबी मुकाबले में आमने सामने होंगे। ये मुकाबला शाम 7:30 बजे से शुरू होगा। इस सीजन में गुजरात टाइटंस ने इसी मैदान पर आरसीबी को मात दी थी, लेकिन बेंगलुरु की टीम भी आत्मविश्वास से लबरेज है। पिछले वर्ष इसी मैदान पर अपना पहला आईपीएल खिताब जीतने वाली आरसीबी ने इस बार भी शानदार प्रदर्शन करते हुए फाइनल में जगह पक्की की है। विराट कोहली के नेतृत्व में टीम का बल्लेबाजी आक्रमण बेहद प्रभावशाली रहा है। भुवनेश्वर कुमार और जॉश हेजलवुड की तेज गेंदबाजी ने विपक्षी टीमों के लिए मुश्किलें खड़ी की हैं। दूसरी ओर शुभमन गिल की कप्तानी वाली गुजरात टाइटंस ने लीग चरण में शीर्ष 2 में स्थान बनाया और पहले क्वालिफायर में मिली हार के बाद शानदार वापसी करते हुए फाइनल का टिकट हासिल किया। अब ये देखना बेहद दिलचस्प होगा कि आईपीएल 2026 की ट्रॉफी आखिर किस टीम के हाथों में जाएगी। और अब बात महिला क्रिकेट की। ब्रिस्टल में खेले गए दूसरे T20 मुकाबले में इंग्लैंड ने भारत को 26 रन से हराकर 3 मैचों की श्रृंखला में बराबरी कर ली है। और अब बैडमिंटन से एक अच्छी खबर है। सिंगापुर ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप के पुरुष डबल्स फाइनल में आज भारत की स्टार जोड़ी सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी का मुकाबला इंडोनेशिया के मोहम्मद शोहिबुल फिक्री और फजर आल्फियान की जोड़ी से होगा।
0: केरलम माहे तमिलनाडु पुदुचेरी और कराईकाल में बुधवार तक तेज बारिश का अनुमान है। मौसम विभाग ने ओडिशा, कर्नाटक, मध्य प्रदेश और देश के उत्तर पूर्वी हिस्सों में भी कल तक तेज वर्षा की आशंका जताई है। पूर्वी राजस्थान, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और विदर्भ में कुछ स्थानों पर आज बारिश के साथ बिजली गिरने और ओलावृष्टि की संभावना है।

0: दिल्ली, हरियाणा और चंडीगढ़ में कल तक कुछ स्थानों पर बिजली गिरने और आंधी चलने की आशंका है। कोंकण और गोवा में आज गर्म और उमस भरे मौसम का अनुमान है। अगले दो दिन में राजस्थान में कुछ स्थानों पर आंधी आ सकती है। उधर केरलम में आज 6 जिलों में वर्षा का येलो अलर्ट जारी किया गया है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newzoneair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मुकेश कुमार।
1: धन्यवाद लवलीन। डीके शिवकुमार को कर्नाटक में विधायक दल का नेता चुने जाने की खबरें सभी अखबारों में हैं। दैनिक जागरण की सुर्खी है, निवर्तमान मुख्यमंत्री सिद्धरमैया ने उनके नाम का प्रस्ताव किया। पत्र लिखता है कि वे 3 जून को मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। अमेरिका के रक्षा मंत्री पीट हेगसेथ का ये कहना कि भारत शक्तिशाली, अपनी सेना का आधुनिकीकरण कर रहा है, जनसत्ता सहित सभी अखबारों में है। पत्र ने उनके हवाले से लिखा है कि अमेरिका ने भारत की क्षमता को आगे बढ़ाने के लिए सह उत्पादन की प्रतिबद्धता जताई है। उत्तर भारत में आंधी बारिश, राजस्थान में बवंडर, अमर उजाला ने इसे सचित्र देते हुए लिखा है, राजस्थान में 70 से 80 किलोमीटर की रफ्तार से उठा रेतीला तूफान। दैनिक भास्कर ने भीषण गर्मी और सूखे की आशंका के बीच इस चिंता को दिया है कि जलाशयों में संकट उत्पन्न हो रहा है, 22 दिन में 12% घटा पानी। पत्र के अनुसार पानी की कमी की सबसे भयावह तस्वीर दक्षिण भारत के राज्यों में है। ईरान और अमेरिका तथा इसराइल के बीच युद्ध विराम को लेकर किसी सहमति पर न पहुंचने को लेकर दैनिक जागरण ने संपादकीय में लिखा है कि ये गतिरोध विश्व अर्थव्यवस्था के लिए नासूर बन गया है। अब ये गतिरोध रुकना चाहिए क्योंकि पश्चिम एशिया संकट विश्व के करोड़ों लोगों को प्रभावित कर रहा है। लोगों के रोजी रोटी पर ही संकट नहीं है, वे गरीबी के दुष्चक्र में भी फंस रहे हैं। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी द्वारा आयोजित CUET UG में तकनीकी गड़बड़ियों के कारण परीक्षा में हुई देरी की खबरें सभी अखबारों में हैं। राजस्थान पत्रिका ने इस संबंध में एजेंसी द्वारा माफी मांगने को प्रमुखता से दिया है। IPL के फाइनल में आज रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और गुजरात टाइटंस के बीच होने वाले फाइनल पर नवभारत टाइम्स लिखता है, घर गुजरात का, दिलों पर RCB का कब्जा। बच्चों पर सोशल मीडिया के बढ़ते असर को हिंदुस्तान ने चिंताजनक बताते हुए लिखा है कि 9 से 17 वर्ष के 49% बच्चे 3 घंटे से ज्यादा समय सोशल मीडिया पर बिताते हैं, जो उन पर बुरा असर डालता है।
0: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारतीय नौसेना ने पाकिस्तानी नौसेना को बंदरगाहों में दुब के रहने के लिए किया था मजबूर। म्यांमार के राष्ट्रपति उमिन नाउलाइन 5 दिन के भारत यात्रा पर नई दिल्ली पहुंचे। कल बिहार के गया में महाबोधि मंदिर में की थी पूजा अर्चना। सरकार ने पेट्रोल, डीजल, विमान ईंधन पर निर्यात शुल्क संशोधित किया, नया शुल्क कल से लागू। और IPL क्रिकेट के फाइनल में आज शाम अहमदाबाद में गुजरात टाइटंस का सामना मौजूदा चैंपियन रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से होगा। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। गुड मॉर्निंग, आई एम शगुन चोपड़ा। द हेडलाइंस। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी टू शेयर हिज थॉट्स इन मन की बात प्रोग्राम ऑन आकाशवाणी एट 11 AM टुडे। Defense Minister Rajnath Singh says Indian Navy forced Pakistan Navy to remain confined to its ports during Operation Sindoor. Myanmar's President U Min Aung Hlaing arrives in New Delhi on a 5-day visit to India, offers prayers at Mahabodhi Temple in Gaya. Centre notifies levies on exports of petrol, diesel and aviation turbine fuel for fortnight beginning tomorrow. IMD forecasts heavy rainfall over Kerala, Mahi, Tamil Nadu, Puducherry and Karaikal till Wednesday. And in cricket, Gujarat Titans to take on defending champions Royal Challengers Bengaluru in IPL 2026 final in Ahmedabad this evening. And now the news in detail. Prime Minister Narendra Modi will share his thoughts with the people of the country and abroad in Mann Ki Baat program on Akashwani at 11 AM today. It will be the 134th episode of the monthly radio program. The program will be broadcast across entire Akashwani and Doordarshan network. the AIR news website and the news on AIR mobile app. It will also be live streamed on the YouTube channels of AIR News, DD News, the PMO and the Ministry of Information and Broadcasting. Akashvani will broadcast the program in regional languages immediately after the Hindi broadcast. Defence Minister Rajnath Singh has said that the Indian Navy forced the entire Pakistan Navy to remain confined to its ports during Operation Sindoor. Addressing the inauguration ceremony of the Nau Sena Shaurya Vatika, an open-air naval museum in Lucknow, he said the Navy played a significant role in maintaining pressure on Pakistan during Operation Sindoor. The Defence Minister said Indian Navy was deployed in the Arabian Sea with full preparedness and strength, maintaining constant pressure on the adversary. He said as a result, Pakistan's entire Navy remained confined to its ports.
3: The cowardly terrorist attack in Pahalgam last year outraged the entire nation and stirred deep emotions across the country. In response, all three branches of the Indian Armed Forces launched Operation Sindoor, targeting and neutralizing terrorist infrastructure in Pakistan. While the Indian Army and the Indian Air Force played crucial operational roles in the mission, the Indian Navy remained strategically deployed in the Arabian Sea with full combat readiness, ensuring comprehensive support and preparedness throughout the operation.
2: Navy Chief Admiral Dinesh K. Tripathi also said that Indian Navy's immediate deployment of a carrier battle group and its forward operational posture in the Northern Arabian Sea forced the Pakistan Navy to remain confined to harbour or close to the Makran coast. President of Myanmar, U Min Aung Hlaing, arrived in New Delhi last evening. Union Minister of State for External Affairs Kirti Vardhan Singh received him at the airport. External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar also called on Mr. Hlaing. Dr. Jaishankar appreciated Myanmar's president's positive sentiment towards deepening the long-standing bilateral cooperation. Earlier, President of Myanmar began his five-day visit to India yesterday by arriving at Bodh Gaya in Bihar, where he prayed at the Mahabodhi Temple. The visiting dignitary will hold discussions with Prime Minister Modi tomorrow on further strengthening the historical and civilizational ties between the two countries. The Myanmar president will then travel to Mumbai on Tuesday for business and industry interactions and site visits. Mr. Hlaing is accompanied by a high-level delegation comprising several cabinet ministers, senior officials and business leaders. This is the first visit of Mr. Hlaing to India in his current capacity. Centre has revised the export levies on petrol, diesel and aviation turbine fuel for the fortnight beginning tomorrow. The move is aimed at ensuring adequate domestic availability of petroleum products amid continuing uncertainties arising from the West Asia crisis. More from our correspondent.
4: According to a notification issued by the Ministry of Finance, exports of petrol will attract a duty of 1.5 rupees per litre, while diesel exports will be subject to a duty of 13.5 rupees per litre. The export duty on aviation turbine fuel has been fixed at 9.5 rupees per litre. The Finance Ministry noted that the export levies comprising special additional excise duty and road and infrastructure cess were introduced on March 27 this year and are reviewed every fortnight based on average international prices of crude oil, petrol, diesel and aviation turbine fuel. However, the government has clarified that there is no change in the existing excise duty rates on petrol and diesel meant for domestic consumption. The revised duties will come into effect from tomorrow and remain in force for the next fortnight. This is Vishnu P.S. for Akashwani News, Delhi.
2: The government has temporarily exempted customs duties on cotton imports from the 1st of next month to 31st of October this year. The Ministry of Textiles in a notification said that the decision has been taken keeping the interests of cotton farmers and the entire cotton value chain at the forefront. It added that the measure implemented during the cotton off-season will ensure adequate availability of cotton for the textile industry, support MSMEs, moderate input costs and strengthen the competitiveness of Indian textiles. The Election Commission has convened a National Conference of Election Commission of India Councils 2026 in New Delhi to further strengthen its legal framework. Inaugurating the conference, Chief Election Commissioner Gyanesh Kumar said that fair rolls lead to fair polls. He also hailed booth-level officers and booth-level agents at the foot soldiers of electoral roll management. He also highlighted the high level of contestation during the recent assembly.

0: कहीं शदीद बारिश और 40 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से हवाएं चलने की पेशगोई की गई है। अलबत्ता केरला में बाजाब्ता तौर पर मानसून की आमद का ऐलान नहीं किया गया है। आईपीएल क्रिकेट में आज अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में 2026 सीजन के फाइनल मैच में गुजरात टाइटंस और दिफाई चैंपियन रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के दरमियान मैच खेला जाएगा। आरसीबी ने शानदार खेल का मुजाहिरा किया है और 3 दिन के वक्फे के बाद फाइनल में दाखिल हो रही है। टूर्नामेंट की मजबूत तरीन उनकी बल्लेबाजी रही है, जिसमें विराट कोहली की कारकर्दगी नुमाया रही है, जबकि गेंदबाजी में भुवनेश्वर कुमार और जोश हेजलवुड नई गेंद के साथ टीम के अहम खिलाड़ियों में शामिल रहे हैं। दूसरी जानिब शुभमन गिल की क्यादत में गुजरात टाइटंस ने लीग मरहले में टॉप 2 में जगह हासिल की और क्वालिफायर 1 में शिकस्त के बाद वापसी करते हुए फाइनल में अपनी जगह बना ली। टीम एक बार फिर अपने अहम बल्लेबाजों गिल, साई सुदर्शन और जोस बटलर पर इंतजार करेगी, जबकि ऑलराउंडर जैसन होल्डर ने सीजन के दूसरे हिस्से में अहम विकेट्स लेकर गेंदबाजी को और मजबूत किया है। ये मैच शाम 7:30 बजे से शुरू होगा। खातीन के क्रिकेट में कल रात ब्रिस्टल में T20 बैन अल्कामी क्रिकेट सीरीज के दूसरे मैच में मेजबान इंग्लैंड ने भारत को 20 रन से हराया। 3 मैचों की सीरीज अब 1-1 मैच से बराबरी पर है। बैडमिंटन में सिंगापुर ओपन के फाइनल में आज भारत के मर्दों की डबल्स की जोड़ी सत्विक साई राज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी का मुकाबला इंडोनेशिया की जोड़ी मोहम्मद शोहिबुल फिक्री और फजर अल्फियान से होगा। फुटबॉल में पेरिस सेंट जर्मेन ने कल रात बुडापेस्ट में होने वाले फाइनल में आर्सेनल को पेनल्टी शूटआउट में 3-4 से शिकस्त देकर यूईएफए चैंपियंस लीग का खिताब हासिल कर लिया है। और अब अखबारात के आईने के साथ हैं तौहीद हक्कानी।
1: शुक्रिया शबाना। कौमी राजधानी दिल्ली से शाये होने वाले आज के उर्दू अखबारात ने अलग अलग खबरों को शह सुर्खी बनाया है। रोजनामा प्रताप ने ज़राअत और किसानों की फलाह और देही तरक्की के मरकजी वजीर शिवराज सिंह चौहान के इस बयान को सुर्खी के साथ पेश किया है कि मुल्क भर में खेत बचाओ मुहिम 1 जून से चलाई जाएगी, जबकि रोजनामा हिंदुस्तान एक्सप्रेस ने बीजेपी के कौमी सदर नितिन नवीन के इस बयान को पहले सफे पर जगह दी है कि तरक्की याफ्ता भारत 2047 मुल्क के हर शहरी का ख्वाब होना चाहिए। मगरबी एशिया के बहरान के दरमियान भारत की मईशत मजबूत मगर एहतियात जरूरी, वजारत खजाना के इस बयान के साथ रोजनामा इनकलाब ने लिखा है कि वजारत खजाना ने मुख्तलिफ माशी इशारों की बुनियाद पर भारत की मईशत के करीबी मुस्तकबिल को मजबूत करार दिया है।
0: और अब आखिर में खास खास खबरों की सुर्खियां एक बार फिर। वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज सुबह 11 बजे आकाशवाणी के प्रोग्राम मन की बात के जरिए अपने ख्याल का इजहार करेंगे। वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने कहा है कि भारतीय बहरिया ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तानी बहरिया को उनकी बंदरगाहों तक महदूद कर दिया था। म्यांमार के सदर यूमिन ओंगलियांग अपने 5 रोजा भारत दौरे पर नई दिल्ली पहुंच गए हैं। उन्होंने गया के महाबुद्धि मंदिर में पूजा की। मरकजी हुकूमत ने कल से अगले 15 दिन तक के लिए पेट्रोल, डीजल और हवाई जहाजों के ईंधन की बरामदात पर आयद होने वाले महसूलात को नोटिफाई कर दिया है। भारतीय महकमा मौसमियात ने केरला, माहे, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकाल में बुध के रोज तक शदीद बारिश की पेशगोई की है। और आईपीएल क्रिकेट 2026 के फाइनल में आज शाम अहमदाबाद में गुजरात टाइटंस का मुकाबला दिफाई चैंपियंस रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से होगा। और इसके साथ ही खबरनामा।
2: मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 956 किलोहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के नजीमाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 8:45 हुए हैं। प्रस्तुत है सदाबहार गीतों का कार्यक्रम गोल्डन हिट्स। श्रोताओं स्वागत है आप सभी का कार्यक्रम गोल्डन हिट्स में। और आज के इस कार्यक्रम की पहली पेशकश हमने ली है फिल्म हीर से, जिसको आवाज़ दी है मोहम्मद रफ़ी ने, शब्द रचना मजरू सुल्तानपुरी की और संगीत रचना अनिल विश्वास की। श्रोताओं अनिल विश्वास जिनकी आज पुण्यतिथि है, साल 2003 में हमारे बीच से जाने वाले अनिल विश्वास प्लेबैक सिंगर होने के साथ साथ भारत में भारतीय सिनेमा को एक अलग पहचान देने वाले व्यक्ति थे। भारतीय सिनेमा में ऑर्केस्ट्रल संगीत और सशक्त कोरस प्रभाव लाने का श्रेय उन्हीं को जाता है। और इसके साथ साथ ही हम आपको बता दें कि अनिल विश्वास ने न केवल फिल्मों में संगीत दिया, बल्कि आपने ऑल इंडिया रेडियो यानी

आकाशवाणी पर राष्ट्रीय ऑर्केस्ट्रा के निर्देशक के रूप में काम किया और साल 1975 तक दिल्ली में सुगम संगीत के मुख्य निर्माता रहे। तो कार्यक्रम की पहली पेशकश हम उन्हीं को समर्पित करते हैं। तो लीजिए सुनिएगा उन्हीं के संगीत से सवरा फिल्म हीर का ये गीत मोहम्मद रफी की आवाज़ में।

कलाकार फनकार दुनिया से चले जाते हैं और अपने पीछे छोड़ जाते हैं अपनी यादों की खूबसूरत विरासत। श्रोताओं, बात आज ही के जिन दिन जन्मे एक मशहूर निर्देशक की, जिनका नाम आते ही सस्पेंस फिल्मों की तस्वीरें हमारे सामने झलक उठती हैं। हम बात कर रहे हैं 31 मई 1925 को जन्मे राज खोसला की। तो कार्यक्रम की अगली पेशकश हमने उन्हीं की निर्देशित की हुई फिल्म से ली है। आपको बता दें कि उन्होंने मेरा साया, मेरा गांव, मेरा देश, मैं तुलसी, तेरे आंगन की, CID जैसी न जाने कितनी फिल्मों की लिस्ट है उनके नाम। और श्रोताओं, उनके अंदर एक खास बात थी कि वो फिल्मों को जब बनाते थे तो बस उसमें डूब जाया करते थे, और ये उनकी ये कोशिश रहती थी कि चाहे उनके निर्देशन को पुरस्कार मिले या ना मिले, लेकिन उनके चाहने वालों को उनकी कला पसंद आए। तो आइए सुनते हैं उनकी बेहद ही पसंदीदा फिल्म मेरा साया का गीत। तो चलिए चलिएगा उनकी यादों के पहलू में।

0: श्रोताओं, यादों का ये पहलू हमने लिया था फिल्म मेरा साया से। आवाज़ थी मोहम्मद रफ़ी की, संगीत रचना मदन मोहन की, धुन तैयार की, शब्द रचना थी राजा मेहंदी अली खान की और फिल्म निर्देशित की थी राज खोसला ने। तो उनकी यादों के बाद आइए चलते हैं कुछ ज़रूरी संदेशों की तरफ।
1: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।

0: घर घर तक पहुंचाएं आपका विज्ञापन, आकाशवाणी और दूरदर्शन के विभिन्न चैनल देश के किसी भी कोने में विज्ञापन देने के लिए प्रसार भारती के मार्केटिंग प्रभाग से संपर्क कीजिए।
1: नशे का शौक कहीं आपकी आदत तो नहीं बन गया?
2: याद रखिए, शौक, सोबत या फैशन के तौर पर अपनाया नशा आपकी आदत और स्वभाव का अंग बन जाएगा।
1: पार्टियों में नशा

0: जैसे कि यहाँ कैश की परंपरा नहीं है
1: तो लेन देन
0: वो हम डिजिटल पेमेंट करते हैं।
1: ओ
0: जैसे UPI से।
1: अच्छा
0: हाँ, और सुनो एक और नियम है।
1: वो क्या है मम्मी जी?
0: तुम्हारी मुंह दिखाई भी UPI से मिलेगी।
1: आम भी ना मम्मी जी।
2: भारत करता है डिजिटल भुगतान,
3: हर लेन देन अब है आसान।
4: आकाशवाणी एट 90 साल की आवाज, दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल, पुरानी यादें नया जोश है, देश का रेडियो अब भी बॉस है। आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल।

आप आनंद ले रहे हैं फिल्म संगीत का, और फिल्म संगीत का कार्यक्रम है गोल्डन हिट्स, जिसे हम आपको सुनवा रहे हैं आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से। श्रोताओं, आप रोज गीत सुनते हैं और इन गीतों को महसूस करते हैं, लेकिन आप जो हंसाने वाले, मुस्कुराने वाले गीत होते हैं वो ध्यान से सुनते हैं, दिल से सुनते हैं, लेकिन जो दर्द भरे गीत होते हैं ना, वो इंसान के दिलों को छू जाया करते हैं। तो एक ऐसा दर्द भरा गीत हम आपके लिए लाए हैं फिल्म आप आए बाहर आई से, जिसको आवाज़ दी है मोहम्मद रफ़ी, लता मंगेशकर ने आनंद बख्शी के लिखे इस गीत की धुन तैयार की है लक्ष्मीकांत प्यारे लाल ने। श्रोताओं, कभी कभी हमारा दिल एक उम्मीद के सहारे राह तकता रहता है। वो सोचता है कि एक दिन बाहर ज़रूर आएगी और उसका इंतज़ार मुकम्मल हो जाएगा, लेकिन हर बार इंतज़ार मुकम्मल हो ये ज़रूर नहीं होता। इंसान का इंतज़ार तो मुकम्मल नहीं होता, बस बदले में उसे मिल जाता है दर्द, उम्मीद का टूटा हुआ एहसास। और जब दिल का टूटा हुआ एहसास गीत बन जाता है, तो दिल यही कहता है,

मोहब्बत हर किसी के मुकद्दर में नहीं होती, किसी किसी के मुकद्दर में बस इंतज़ार ही रह जाता है। कभी कभी दिल किसी को अपना मान लेता है, लेकिन वक्त दिखा देता है कि ये सब आँखों का धोखा है। तकदीर को मंजूर नहीं होता, लेकिन फिर भी दिल को चाहत रहती है किसी को पाने की। तो आइए सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गीत, जो हमसे कुछ यही कहता है।

श्रोता, अभी आप सुन रहे थे किशोर कुमार को फिल्म दो रास्ते में। आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गीत, जिसको हमने लिया है फिल्म वो कौन थी से आवाज़ लता मंगेशकर की, राजा मेहंदी अली खान की शब्द रचना और संगीत निर्देशन है मदन मोहन का। श्रोताओं, कभी कभी किसी की कहानी सुनते सुनते ऐसा लगता है जैसे वो हमारी अपनी कहानी हो, और जब बात दर्द भरे गीतों की हो और उनके सच्चे दर्द की हो तो गीत को सुनने वाले की आंखें भी नम हो जाती हैं। शायद यही दिलों का रिश्ता है, जहां दर्द का रिश्ता एक होता है और एक सी चुभन। इसी एहसासों को समेटे हुए प्रस्तुत है कार्यक्रम का ये अगला गीत। जो दास्ता हम अपनी सुनाने लगेंगे, जो दास्ता हम अपनी सुनाने लगेंगे, तो पत्थर भी आंसू बहाने लगेंगे। भीड़ में खो गया है मेरा वजूद, भीड़ में खो गया है मेरा वजूद, जिसे ढूंढने में अब जमाने लगेंगे।

फिल्म वो कौन थी में आप सुन रहे थे लता मंगेशकर को राजा मेहंदी अली खान के लिखे गीत और संगीत रचना मदन मोहन की। श्रोताओं, आज की गीत आपकी आंखों को नम करने के लिए नहीं, बल्कि आपके दिल को छूने के लिए पेश किए गए हैं। उम्मीद है आपके दिल को इन गीतों ने छुआ होगा और इसके सुरों और अल्फाजों ने आपके दिल की धड़कन में बसे होंगे। तो इसी के साथ आज का ये कारवां यहीं पर संपन्न होता है। हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। प्रातः के 9:15 हुए हैं। कृपया हमारे अगले कार्यक्रम की प्रतीक्षा कीजिएगा।

0: करते हैं। सबसे पहले स्वागत करते हैं,
1: आकाशवाणी लखनऊ है, आइए सुनते हैं सामयिक चर्चा।
2: सामयिक चर्चा। सामयिक चर्चा में आज आप सुनेंगे केंद्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार के सेवा और सुशासन के 12 वर्ष पूरे होने पर वरिष्ठ पत्रकार वीरेंद्र सिंह रावत से खास बातचीत। वार्ताकार हैं आकाशवाणी संवाददाता सुशील चंद्र तिवारी।
3: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार लखनऊ के खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। ये विशेष परिचर्चा है केंद्र सरकार के कार्यकाल के 12 वर्ष पूरे होने पर, यानी नरेंद्र मोदी की सरकार के तीसरे कार्यकाल में 12 वर्ष अब तक पूरे हो चुके हैं, जब लगातार तीसरी बार भाजपा की केंद्र में सरकार रही है, नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री रहे। इन 12 वर्षों में भारत का कितना विकास हुआ है, सामाजिक आर्थिक स्तर में कितना परिवर्तन आया है, राजनीतिक और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के स्तर में क्या चुनौतियां हैं और इन 12 वर्षों में उन्हें कैसे हासिल करने का प्रयास किया गया, इन सब पर बात करने के लिए हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार वीरेंद्र सिंह रावत हैं। वीरेंद्र जी, आकाशवाणी समाचार लखनऊ के कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है।
4: धन्यवाद सुशील जी।
3: जो 12 वर्षों का कार्यकाल केंद्र सरकार का रहा है, लगातार तीसरा कार्यकाल है ये नरेंद्र मोदी सरकार का, तो इसको आप भारत के विकास में किस तरीके का प्रभाव छोड़ने वाला, ये 12 वर्ष किस तरीके से भारत के इतिहास में याद रखे जाएंगे?
4: नरेंद्र मोदी सरकार जब से आई है, आपने देखा दो बहुत ही माइलस्टोन चीजें हुई हैं। एक तो डोमेस्टिक इकोनॉमी से रिलेटेड है, जीएसटी जो लेकर आई

0: 2017 में, बहुत पहले से ये पेंडिंग पड़ा था, पिछली सरकारें लाना चाहती थी लेकिन किसी वजह से नहीं ले पाई। दूसरा एक वैश्विक एक कोरोना काल आपने देखा, तो जब नरेंद्र मोदी सरकार की आप बात करेंगे, उनकी उपलब्धियों की बात करेंगे, तो इन दोनों चीजों को आपको परिपेक्ष में रखना पड़ेगा कि किस तरह से जो एक जीएसटी का जो पूरा एक रिफॉर्म था, बिजनेस को और अपने डोमेस्टिक इकोनॉमी को कैसे पुश देना है, कैसे उसको मल्टीप्लायर इफेक्ट की तरह यूज करना है, जो काफी समय से पेंडिंग पड़ा था उसको लेके आना, और साथ ही साथ जो वैश्विक स्तर पर जैसे मैंने कहा COVID-19 की जो एक काल था जिसमें दुनिया के बड़े से बड़े जो विकसित देश भी हैं, यूरोप के हों चाहे यूएस हों चाहे इधर जापान को देख लें, वो भी किस तरह से स्पीका को झेला और किस तरह से वो अपने को आगे लेके चले, और भारत ने इन दोनों चीजों को कैसे बैलेंस किया, क्योंकि ये एक ऐसा इवेंट था जिसका कोई प्रेसिडेंस नहीं था। तो मैं बार बार इस पे फोकस इसलिए कर रहा हूं क्योंकि ये इस दौरान भी किस तरह से आपके जो लोकल इकोनॉमी थी, जो पूरा पॉलिटिकल इकोनॉमी थी, उसको कैसे नेविगेट करके सक्सेसफुली ले जाने का काम किया है। 12 सालों में आपने देखा कि इंटरनेशनल लेवल पे जैसे क्वाड बना है, भारत जापान और ऑस्ट्रेलिया और यूएस का जो इंडो पैसिफिक सिक्योरिटी के पूरे पैराडाइम को देखते हुए बनाया गया, खासतौर से चाइना को कैसे कंटेन करना है, उसकी जो पॉलिसीज हैं, जो एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसीज हैं, उसको कैसे लेके जाना है। भारत एक कृषि प्रधान देश है, तो एग्रीकल्चर सेक्टर हो, एग्रीकल्चर हॉर्टिकल्चर को कैसे उसमें यील्ड बढ़ा के कैसे एक्सपोर्ट से उसको मार्केट को, जिसमें फार्म टू फोर्क में जैसे एक लिंकेजेस की जो बात पहले से चली आ रही थी उसको कैसे चरितार्थ किया है। एमएसएमई सेक्टर हो, आपने देखा होगा फर्टिलाइजर को लेके, कोल को लेके, क्योंकि ये कमोडिटीज ऐसी हैं जो बाहर से हम इंपोर्ट करते हैं, उसको लेके बहुत सारी चीजें हुआ करती थी, हमेशा भारत कहीं ना कहीं टेंटर हुक्स पे रहता था, उसको लेके बहुत ही सुदृढ़ता से लेके चला है। अभी आपने देखा वेस्ट एशिया पे जिस तरीके का एक ऑल क्राइसिस चल रहा है, उस दौरान भी कैसे नेविगेट किया गया है। रशिया यूक्रेन का वॉर वैसे तो दूर पे चल रहा है लेकिन उसकी वजह से भी जो इंटरनेशनल फूड सिक्योरिटी है वो भी काफी बाधित हुई। आपने देखा इसराइल और गाजा में जो एक अभी भी चल रहा है, आपने देखा उसकी वजह से जो इंटरनेशनल जियो पॉलिटिक्स है, एनर्जी सिक्योरिटी, फूड सिक्योरिटी के जितने भी आप देखेंगे घटक को देखेंगे, इसमें कहीं ना कहीं अस्थिरता की एक स्थिति बनी हुई है। लेकिन इन सब चीजों को जब आप एक कॉन्टेक्स्ट में देखेंगे, एक केंद्र सरकार है वो उसने किस तरह से नेविगेट किया है जिससे हमारी इकोनॉमी हो, हमारी जो सिक्योरिटी को लेके जो हमारे चैलेंजेस रहे हैं, आगे जाके जिस तरह से टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट हो रहा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जिस तरह की बात है, आपने देखा होगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अब ना केवल कंप्यूटर तक सीमित रह गया है लेकिन सिक्योरिटी मिलिट्री वेयर में यूज हो रहा है। बहुत सारे युद्ध अभी जो आपने देखा ग्लोबल जो चल रहे हैं उसमें AI का किस तरह से यूज हो रहा है, उस परिपेक्ष में किस तरह से हम अपने को ना केवल सुदृढ़ रखें, अपने को सुरक्षित रखें, बल्कि एक नेक्स्ट लीप लेके जाएं, क्योंकि AI से जो है जॉब का एक पूरा लिंकेज है, जॉब जाएंगी, नई जॉब्स आएंगी, लेकिन स्किलिंग का जो पूरा एक वैल्यू चेन है उसको कैसे आगे लेके जाना है, और ना केवल डोमेस्टिक, क्योंकि अब जो वर्क फोर्स है वो केवल एक जगह सीमित नहीं रहता है, वो इंटरनेशनली अलाइंड रहता है। तो जो हमारा वर्क फोर्स निकल रहा है, चाहे उत्तर प्रदेश का हो, क्योंकि उत्तर प्रदेश की बात मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि सबसे ज्यादा पॉपुलेश स्टेट है इंडिया का और करीब 10% के आसपास का GDP कंट्रीब्यूट करता है, तो उत्तर प्रदेश हो चाहे अन्य राज्य हो, सारे जो मिलके जिस तरह से AI को कैसे एक टूल की तरह इस्तेमाल करना है जिससे ना केवल हमारी मिलिट्री और सिक्योरिटी के जो एस्पेक्ट्स हैं उसको संरक्षित किया जा सके, बल्कि उसको जॉब के साथ कैसे अलाइन करना है। तो जब आप सारी चीजों को एक होलिस्टिक व्यू देखेंगे तो देखेंगे जो केंद्र सरकार ने काफी अच्छा काम किया है।
1: जी, हम कुछ खास सेक्टर्स की चर्चा करते हैं, जैसे कि हम युवाओं के लिए 12 सालों में कितनी स्थितियां बदली हैं, रोजगार से लेकर के आपने AI की बात की, पढ़ाई को लेकर के ये क्या क्या चेंजेस हुए हैं। बहुत सारी यूनिवर्सिटीज खुली हैं, लगभग 500 के आसपास जो है नए विश्वविद्यालय अस्तित्व में आए हैं जिसमें सरकारी और गैर सरकारी दोनों विश्वविद्यालय हैं, एम्स की संख्या लगातार बढ़ रही है और कई क्षेत्रों में वहां तक दूर दराज तक जो है स्वास्थ्य सुविधाएं पहुंच सके इनके लिए काम हो रहा है। लेकिन हम सबसे पहले बात करेंगे इंफ्रास्ट्रक्चर, आधारभूत ढांचे की, किस तरीके से आधारभूत ढांचे को मजबूत करने के लिए जो काम किया गया वो एक स्पष्ट तौर पर दिखता भी है। अगर आप उत्तर प्रदेश में देखें तो एक्सप्रेसवे की एक लंबी श्रृंखला की शुरुआत हो चुकी है मुंबई में, दिल्ली मुंबई कनेक्टिविटी, खासतौर पर सीमा के क्षेत्रों में जिन चुनौतियों की आपने चर्चा की उसमें बहुत बड़ी चुनौती ये भी थी कि करगिल युद्ध के बाद पहली बार ऑपरेशन सिंदूर हुआ था, उससे पहले गलवान हुआ था, तो इस नाते सीमावर्ती क्षेत्रों में भी आधारभूत ढांचे को मजबूत करने की एक बड़ी चुनौती। 12 सालों में आप क्या महत्वपूर्ण बदलाव देखते हैं?
0: देखिए, जब इंफ्रास्ट्रक्चर की हम बात करते हैं तो इंफ्रास्ट्रक्चर एक ऐसी चीज होती है जो अपना इकोसिस्टम बनाता है, और वो इकोसिस्टम ना केवल जैसे आपने बहुत अच्छा मेंशन किया कि सिक्योरिटी को लेकर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो माउंटेनस रीजन है, जहां पे पहाड़ी क्षेत्र है, जहां पे हमारे इंटरनेशनल बॉर्डर्स लगी हुई है, वहां पे अगर कोई ऐसी कोई स्थिति उत्पन्न होती है तो कितनी जल्दी से मिलिट्री वेयर और हमारी आर्मी वहां पे जल्दी से जल्दी पहुंचे, ना केवल पहुंचे बल्कि लॉजिस्टिक्स का पूरा जो सप्लाई चेन है वो सुदृढ़ता से बना रहे, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। लेकिन जब हम इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करते हैं तो वो ना केवल मिलिट्री के लिए लेकिन हमारी इकोनॉमी के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इन्वेस्टमेंट तभी आता है। तो आपने जैसे अभी आपने कई चीजें मेंशन करी है, एक्सप्रेसवेज की बात आप कर लें, चाहे एयरपोर्ट्स की बात कर लें, चाहे ना केवल एक्सप्रेसवेज बल्कि जो टर्शियरी रोड्स हैं जो स्टेट लेवल पे भी बहुत सारी बनती है, लेकिन जब तक केंद्र सरकार लोन से लेके एक एक्सपर्ट जो एक इनपुट होता है उसको लेके, जैसे नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, जैसे आपने देखा कि लखनऊ कानपुर का जो एक्सप्रेसवे है वो NHAI बना रहा है, अभी कुछ ही दिनों में उसका उद्घाटन भी हो जाएगा। तो ये जब आप पूरा देखेंगे कि इंफ्रास्ट्रक्चर को लेके जो मोदी सरकार है वो पहले से भी काफी बुलिश रही है और उसने उस चीज को चरितार्थ किया है, और इसी का परिणाम आप देखेंगे कि भारत ने इन्वेस्टमेंट को लेके काफी नए नए आयाम गढ़े हैं। बहुत सारे आपने देखा, एप्पल का प्लांट इंडिया में आया है, सैमसंग का जो दुनिया का सबसे बड़ा प्लांट जो है आपके नोएडा में लगा हुआ है, इसी तरीके के अन्य क्षेत्रों में AI को लेके भारत की जो कंपनियां अग्रणी कंपनियां हैं विदेशी कंपनियों के साथ उनका टाई अप होता है। क्योंकि जब तक इंफ्रास्ट्रक्चर आपका नहीं होगा अच्छा, तब तक इन्वेस्टर जो है किसी भी उसको बाईपास कर देता है। तो मुझे लगता है इंफ्रास्ट्रक्चर को लेके काफी बुलिश रही है और काफी अच्छा काम हो रहा है और आने वाले दिनों में और भी अच्छा काम होगा।
1: जी, और अगर हम 12 सालों का जो एक तरीके से लेखा जोखा जब आदमी करने बैठता है, जब आप तरीके से देखते हैं कि क्या बड़ी चीजें हुई, तो हम उसमें ये भी ध्यान रखते हैं, कोरोना काल से शुरू हुई जो योजना थी वो PM गरीब कल्याण अन्न योजना थी, जिसमें 80 करोड़ से ज्यादा लोगों को भरपेट भोजन पूरे महीने नसीब हो सके, इसके लिए राशन की दुकानों से अन्न मिल रहा है। और स्वच्छता अभियान एक मिशन की तरह से शुरू हुआ, 12 करोड़ से ज्यादा टॉयलेट उसके अंदर जो है वो बन चुके हैं, हर घर जल की अगर बात करें 15 करोड़ से ज्यादा देश भर में कनेक्शन दिए जा चुके हैं। जो एक बहुत गेम चेंजर योजना थी वो PM आवास योजना भी, 4 करोड़ से ज्यादा घर उसके तहत जो है वो पात्र लोगों को दिए जा चुके हैं, मुद्रा योजना के तहत जो है 50 करोड़ से ऊपर का लोन दिया जा चुका है। तो ये सारी चीजें तो है ही, लेकिन अंत में जो मैं आखिरी सवाल आपसे करूंगा कि देश के युवा को नेशनल एजुकेशन पॉलिसी नई आई, सरकार ने शिक्षा नीति में पूरी तरीके से बदलाव करने की कोशिश की, युवाओं के लिए अगर आप देखें तो बहुत छोटे से संक्षेप में मुख्तसर सा एक जवाब चाहेंगे कि इसमें क्या 12 साल में युवाओं के लिए इस सरकार से उम्मीद रही और क्या कितना मिला?
0: देखिए, किसी भी देश का जो पूरा डेस्टिनी होती है वो युवाओं के हाथ में होती है, और इस समय इंडिया और इंडिया में उत्तर प्रदेश जो है सबसे ज्यादा यूथ वर्कफोर्स है उसको कंट्रीब्यूट करता है। तो आपने देखा होगा कि जो स्टार्टअप को लेके, क्योंकि अब धीरे धीरे जैसे मैंने कहा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहीं ना कहीं एक जो जॉब मार्केट को डिसरप्ट कर रहा है, ना केवल जॉब मार्केट सारे भी डोमेन्स को डिसरप्ट कर रहा है, खासतौर से हमारे युवा जो डिग्री लेके निकल रहा है उसको कैसे जॉब के साथ जुड़ना है, ना केवल सैलरीड जॉब बल्कि सेल्फ एम्प्लॉयमेंट और स्टार्टअप। तो स्टार्टअप के जो कल्चर को बढ़ावा देने का काम किया है, आपने देखा कि अपने मन की बात में स्टार्टअप को लेकर बहुत ही बुलिश रहते हैं, तो ये कहीं ना कहीं इंकरेज करने का है, और युवा भी इस चीज को समझ रहे हैं और पॉजिटिवली ले रहे हैं कि ना केवल वो नौकरी की तरफ जाएं बल्कि खुद स्वयं का उद्यम करें। उसको लेके बैंक से जो लोन का पूरा एक इकोसिस्टम है वो भी डेवलप किया गया, बहुत सारी स्कीम्स है MSME को लेके कि कोलैटरल लोन कैसे देना है, स्टार्टअप के लिए अलग स्कीम्स है, केंद्र सरकार की भी है, राज्य सरकार उत्तर प्रदेश की बहुत सारी स्कीम्स है जो स्टार्टअप को बढ़ावा देती है, क्योंकि महिलाएं, क्योंकि हमारा 50% पॉपुलेशन की है और युवा हमारे कल के भविष्य हैं। तो इन दोनों को जो है सुदृढ़ कैसे करना है, क्योंकि जब ये सुदृढ़ रहेंगे, ये जब स्ट्रांग रहेंगे, तभी हमारी आगे की अर्थव्यवस्था, हमारा जो आगे का पूरी डेस्टिनी है वो भी एक सही पाथ पे चलेगी।
1: जी वीरेन जी, आपने 12 साल के सरकार के कार्यकाल और उसकी उपलब्धियों पर विस्तार से चर्चा की, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: धन्यवाद।
2: सामयिक चर्चा में अभी आप सुन रहे थे केंद्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार के सेवा और सुशासन के 12 वर्ष पूरे होने पर वरिष्ठ पत्रकार वीरेंद्र सिंह रावत से खास बातचीत। वार्ताकार थे आकाशवाणी संवाददाता सुशील चंद्र तिवारी।
3: आकाशवाणी का नजीबाबाद केंद्र है, मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 954 किलो हर्ट्स पर। प्रातः के 9:25 हो रहे हैं। पेश है कार्यक्रम धरती गाती है। श्रोताओं, स्वागत है आप सभी का कार्यक्रम धरती गाती है में, और आज इस कार्यक्रम में हम आपके लिए लाए हैं माधुरी शर्मा के स्वर में कुछ रुहेलखंडी लोकगीत। रुहेलखंडी लोकगीत जिसमें किसी भी क्षेत्र की मिट्टी की महक, वहाँ की संस्कृति और जनजीवन की भावनाओं को सुरों में समेटकर हमारे सामने प्रस्तुत करती है। लोकगीतों में प्रेम अपनत्व की भावनाएं बड़ी सहजता से व्यक्त होती हैं। प्रेम की मधुर अनुभूतियों से सजा ये गीत आपके मन को एक अलग ही संसार में ले जाएगा।

गांव की गलियों, चौपालों और रिश्तों की मधुरता लोक गीतों में ही तो जीवंत हो उठती है। हास परिहास और स्नेह से भरे ये लोकगीत हम आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहे हैं, तो लीजिए कार्यक्रम की अगली पेशकश।

0: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।
1: नशे का शौक कहीं आपकी आदत तो नहीं बन गया?
2: याद रखिए, शौक, सोबत या फैशन के तौर पर अपनाया नशा आपकी आदत और स्वभाव का अंग बन जाएगा।
1: पार्टियों में नशा नहीं, खुशियाँ बांटिए।
2: नशा नहीं, जिंदगी अपनाइए।
1: आज अभी नशा छोड़ने का संकल्प दोहराइए।
2: ये सूचना मध्य निषेध विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।
3: श्रोता इस समय सुन रहे हैं लोक गीतों का कार्यक्रम धरती गाती है आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से, और हमारा ये कार्यक्रम लोक गीतों की परंपराओं को आपके सामने पेश करता है। और कार्यक्रम में आज हम आपको सुनवा रहे हैं माधुरी शर्मा के स्वर में रुहेलखंडी लोकगीत। तो लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम का अगला रुहेलखंडी लोकगीत।

श्रोताओ, समय 9:45 और पहुंच गए हैं हम कार्यक्रम के अंतिम लोकगीत की तरफ। और उत्सव, उमंग और सामूहिक आनंद लोक संस्कृति और लोक जीवन की खूबसूरत पहचान होती है। इन्हीं रंगों और उत्साह को अपने सुरों में समेटे हुए है कार्यक्रम का ये अंतिम लोकगीत।

अभी आप सुन रहे थे लोकगीतों का कार्यक्रम धरती गाती है। आकाशवाणी का ये नजीबाबाद केंद्र है। सुबह के 9:50 हुए हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम बात आसपास की। वाचन स्वर और संकलन है दिव्यम कनवाल और ईशिका कौशिक का।

0: नमस्कार, कार्यक्रम बात आसपास की में आपका स्वागत है। मैं इशिका कौशिक
1: और मैं दिव्यम कंडवाल
0: फिर उपस्थित हैं एक नए अंक के साथ। स्वास्थ्य की रक्षा जागरूकता से होती है और जागरूकता की शुरुआत जानकारी से।
1: श्रोताओं, जैसा कि आप जानते ही हैं कि बात आसपास की हमारा एक ऐसा कार्यक्रम है जिसमें हम अपने आसपास हो रही घटनाओं व गतिविधियों की जानकारी आप तक पहुंचाते हैं, साथ ही स्थानीय समस्याओं व मुद्दों पर भी आपका ध्यान केंद्रित करने का प्रयास करते हैं।
0: इसी क्रम में आज का हमारा विषय है सर्वाइकल कैंसर से बचाव हेतु HPV टीकाकरण अभियान। आपको बता दें कि सर्वाइकल कैंसर भारत में महिलाओं में होने वाला दूसरा सबसे आम कैंसर है। इसी के बचाव हेतु उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा 1 मार्च 2026 से HPV टीकाकरण अभियान की शुरुआत की गई।
1: आखिर क्या है सर्वाइकल कैंसर, क्यों इससे बचाव जरूरी है और यह कितना घातक है, साथ ही किस उम्र में महिलाएं इसका टीका लगवा सकती हैं? आइए जानते हैं मशहूर गायनेकोलॉजिस्ट डॉक्टर राखी आनंद अग्रवाल से। श्रोताओं, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा अभी हाल ही में सर्वाइकल कैंसर के जागरूकता हेतु वैक्सीनेशन मुहिम की शुरुआत की गई है। इसी संबंध में आज हम आए हैं डॉक्टर राखी आनंद अग्रवाल जी के पास। आइए उनसे जानते हैं कि आखिर सर्वाइकल कैंसर क्या है और कैसे इसकी वैक्सीनेशन हमारे लिए लाभकारी है।
2: सर्वाइकल कैंसर जो है गर्भाशय के मुंह का कैंसर है। ये एकमात्र कैंसर है जो वैक्सीन से प्रिवेंटेबल है, मतलब वैक्सीन से इसे रोका जा सकता है। ऐसा और कोई कैंसर नहीं है जिसको वैक्सीन से रोका जा सकता है। तो मुझे समझ में आता है कि जिसकी वैक्सीन है तो हम हर लड़की को 9 साल की उम्र के बाद ये वैक्सीनेशन लगनी जरूरी है, अनिवार्य होनी चाहिए। और अच्छा है कि सरकार ने इस मुहिम में कदम उठाया, क्योंकि एक ही ऐसा कैंसर है जो वैक्सीन के द्वारा रोका जा सकता है। इसमें 3 वैक्सीन लगती हैं, 3 डोजेस लगती हैं। एक डोज अगर आज लगी तो दूसरी डोज 1 महीने के बाद और तीसरी डोज 6 महीने के बाद लगती है। और ये काफ़ी महंगी आती थी, तो मुझे बहुत खुशी हो रही है जान के कि सरकार अपनी तरफ से अगर लगवाएगी तो कई ऐसी बच्चियां भी हैं जो जिनके पेरेंट्स नहीं अफोर्ड कर सकते, तो उनको भी इस वैक्सीन का लाभ मिलेगा। तो एक बहुत अच्छी मुहिम है। आप सभी को अपनी बेटियों को अपनी गायनेकोलॉजिस्ट से पता कीजिए कि कब लगाएं। 9 से लेकर 45 साल तक ये लग सकती है, बट कोशिश ये होनी चाहिए कि 9 से 30 साल या 35 साल के बीच में ये वैक्सीनेशन हो जाए।
1: मैम, एक क्वेश्चन और हम जानना चाहेंगे, सर्वाइकल कैंसर असल में भारत में कितनी बड़ी समस्या है?
2: ये काफ़ी बड़ी समस्या है। एक तो जहाँ ज़्यादा बच्चे होते हैं उन महिलाओं में ये ज़्यादा प्रेविलेंट होता है। तो हमारे देश में 3-3, 4-4 बच्चे जैसे लोग करते हैं, तो उनमें सर्वाइकल कैंसर के चांसेस ज़्यादा होते हैं, या मल्टीपल पार्टनर्स वाले लोगों के भी चांसेस ज़्यादा होते हैं उनके सर्वाइकल कैंसर होने के। तो और सबसे बड़ी प्रॉब्लम हमारे देश में ये है कि ये कई बार महिलाएं अपने आप को दिखाती नहीं है। तो ये पता लगाना कि इनको सर्वाइकल कैंसर है, जब ज़्यादा स्टेज पे चला जाता है तब पता लगता है, क्योंकि हमारे यहाँ हेल्थ सुविधाएं जो हैं वो बहुत लिमिटेड हैं। तो प्रिवेंटेबल हेल्थ के ऊपर कम लोग काम करते हैं। लोग सोचते हैं भाई बीमारी होगी तब डॉक्टर के पास जाएंगे, ये नहीं सोचते कि हमें बीमारी ना हो उसके लिए हम डॉक्टर से सलाह लें। तो ये थोड़ा कम होने के कारण आई थिंक बहुत से केसेस पकड़े नहीं जाते।
1: संदेश आप देना चाहेंगे सर्वाइकल कैंसर के जागरूकता हेतु?
2: जागरूकता रखिए, अगर सरकार द्वारा ये वैक्सीन उपलब्ध है तो ज़्यादा से ज़्यादा महिलाएं इसका फ़ायदा उठाएं। अपनी बेटियों को 9 से 11 साल की या जिनकी महावारी शुरू हो चुकी है उन्हें तुरंत से तुरंत ये डोज लगाएं। याद रखिए ये एक ही कैंसर है जो वैक्सीन से प्रिवेंटेबल है, तो इसलिए इस मौके को हाथ से ना जाने दें। और ये जागरूकता अपने ही नहीं और अपने आस पड़ोस के लोगों पर भी फैलाएं।
0: श्रोताओं, आप जानते ही हैं कि इलाज से बेहतर रोकथाम है। हमें ध्यान देना चाहिए कि किसी भी बीमारी से पहले की जागरूकता उसके बाद के इलाज से ज्यादा प्रभावी है।
1: और श्रोताओं, सर्वाइकल कैंसर तो एक ऐसी बीमारी है जिसका टीकाकरण द्वारा इलाज संभव है। इसके प्रति आम जन में जागरूकता बहुत आवश्यक है और इसे संबंधित जानकारी को प्राप्त करने के लिए हम पहुंचे प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र नजीबाबाद और वहाँ उपस्थित स्वास्थ्य कर्मियों से हमारी बातचीत हुई। आइए जानते हैं उनका क्या कहना है।
0: आपका नाम?
3: मेरा नाम कुलदीप सिंह है।
0: सर्वाइकल कैंसर क्या है?
3: सर्वाइकल कैंसर एक मेनली फीमेल में होता है, जो कि यूट्रस में मेनली होता है, और इससे यूट्रस में इचिंग, खाज, मतलब सूखापन वगैरह, ये चीज़ें, जलन वगैरह हो सकती है। से डरने की जरूरत नहीं है। ये गवर्नमेंट ने एक प्रोग्राम चला रही है, इसका नाम है HPV वैक्सीनेशन। इसके अंडर में आप वैक्सीनेशन करा सकते हो नियर बाई में गवर्नमेंट सेंटर में जाके, जैसे कि CSC, PSC या फिर अपने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में जो गांव में खोलते हैं, अपने CHO के पास जाके या फिर आशाई के पास जाके या फिर अपनी ANM से कॉन्टेक्ट करके आप इस वैक्सीन का लाभ उठा सकते हैं।
1: कुलदीप जी, सर्वाइकल कैंसर के लिए हम क्या जांच करवा सकते हैं?
3: सर्वाइकल कैंसर के लिए जांच पैप स्कैनर टेस्ट होता है, फिर HPV टेस्ट होता है। इन दोनों में पता लग जाता है मेनली कहाँ पर आपका ये इन्फेक्शन है।
1: इस वैक्सीन को लगाने जाने वाली जो महिलाएं हैं या बच्चियां हैं, उनकी उम्र क्या है और कितनी डोज इसके लगाई जाती हैं?
3: देखो, मेनली अगर बच्चियां लगवा रही हैं तो 9 से 14 साल की उम्र में उनको लगना चाहिए। इसमें 2 डोज होनी चाहिए और जो मतलब 14 से ऊपर की महिलाएं हैं उसमें 3 डोज होती हैं।
0: सर्वाइकल कैंसर ऐसी बीमारी

0: करना चाहिए।
1: सर्वाइकल कैंसर के लिए जो वैक्सीनेशन ड्राइव चलाई जा रही है, ये किस तरह से आपके लिए लाभकारी है?
2: मेरे हिसाब से ये वैक्सीनेशन महिलाओं के लिए बहुत फायदेमंद है, क्योंकि इससे सर्वाइकल कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों से बचाव हो सकता है। पहले इस बीमारी के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं होती थी, लेकिन अब सरकार और डॉक्टर इसके बारे में जागरूकता फैला रहे हैं। अगर समय पर वैक्सीनेशन लगाए गए तो भविष्य में इस बीमारी का खतरा काफी कम हो सकता है। इसलिए मुझे लगता है कि हर लड़के और महिलाओं को इस बारे में जानकारी होनी चाहिए और जरूरत पड़ने पर वैक्सीन लगवाना जरूरी है।
3: तो श्रोताओं, आज के कार्यक्रम में हमने जाना कि सर्वाइकल कैंसर क्या है, इसके लक्षण क्या हैं, कैसे आप इससे बचाव कर सकते हैं और इसके टीकाकरण और जांच आप कहां करवा सकते हैं। इसके साथ साथ विशेषज्ञों से हुई हमारी बातचीत से यह स्पष्ट है कि जागरूकता और नियमित जांच से इस कैंसर से बचाव संभव है।
4: महिलाओं का स्वास्थ्य सिर्फ उनका ही नहीं बल्कि पूरे परिवार और समाज के स्वास्थ्य से जुड़ा होता है। इसलिए आप सब भी अपने घरों में 9 से 14 वर्ष की किशोरियों को HPV टीकाकरण जरूर लगवाएं।
3: इसके लिए आप अपने नजदीकी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र या सरकारी अस्पताल से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही इसके प्रति अपने आसपास के सभी जानने वालों में जागरूकता अवश्य फैलाएं।
4: बिल्कुल, इसी के साथ मैं इशिका कौशिक
3: और मैं दिव्यम कंडवाल
4: आपसे इजाजत चाहते हैं। कल फिर मिलेंगे एक नए अंक के साथ। सुनते रहिए आकाशवाणी नजीबाबाद। नमस्कार।

आप सुन रहे थे कार्यक्रम बात आसपास की आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से। वाचन स्वर और संकलन था दिव्यम कंडवाल और ईशिका कौशिक का। श्रोताओं, इस समय सुबह के 10 बज रहे हैं। पेश है हमारा विशेष कार्यक्रम सुहाना सफर।

0: सदियों से दिलों तक जोहर पैगाम पहुंचाती रही,
1: हर घर में अपनापन और मुस्कान सजाती रही।
0: आवाज की दुनिया का एक रोशन नाम है,
1: वो है आकाशवाणी, जो भारत की पहचान कहलाती रही है।
0: श्रोताओं, आकाशवाणी के 90 साल के उपलक्ष्य में कार्यक्रम सुहाना सफर में आज हम हाजिर हैं। मैं हूं सचिन शर्मा और मेरे साथ हैं
1: मैं फरीना।
0: आप सभी श्रोताओं को हमारा प्यार भरा
1: नमस्कार। सचिन जी, कार्यक्रम का आगाज करने से पहले हम अपने श्रोताओं को बता दें कि आज हम किस साल से जुड़ी यादें ताजा करने जा रहे हैं।
0: हाँ फरीना, आज हम अपने श्रोताओं को साल 2022 की उन घटनाओं का जिक्र करेंगे जो आकाशवाणी ने अपने सफर के दौरान अपने कार्यक्रमों के माध्यम से देश की जनता से साझा की थी।
1: तो जल्दी से अपने श्रोताओं को आकाशवाणी की साल 2022 से जुड़ी सुहानी यादें बता देते हैं।
0: जी हाँ बिल्कुल, वर्ष 2022 में दुनिया की कुल आबादी 8 अरब का आंकड़ा पार कर गई थी।
1: हाँ, सच में ये पूरी दुनिया के लिए एक खास और ऐतिहासिक घटना तो थी ही, साथ ही सचिन जी हमारे लिए ये एक चिंताजनक बात भी थी।
0: बिल्कुल, इतनी बड़ी जनसंख्या बढ़ने से संसाधनों पर दबाव भी लगातार बढ़ता जा रहा है।
1: बिल्कुल सही बात है, भोजन, पानी, शिक्षा और रोजगार जैसी सुविधाओं की मांग भी तेजी से बढ़ रही थी।
0: इसलिए सभी देशों को जनसंख्या संतुलन और विकास पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है,
1: तभी दुनिया का भविष्य सुरक्षित और बेहतरीन बनाया जा सकता है। इसी संदर्भ में आकाशवाणी ने भी पूरे देश की जनता को जागरूक किया और अपने अनेक कार्यक्रमों के माध्यम से जनता को बढ़ती हुई जनसंख्या के दुष्प्रभाव से अवगत कराया था।
0: क्या तुम्हें पता है 24 फरवरी 2022 को रूस ने यूक्रेन पर आक्रमण कर दिया था?
1: हाँ, मैंने इनके बारे में आकाशवाणी के समाचारों में सुना था। इससे पूरी दुनिया में काफी उथल पुथल सी मच गई थी।
0: ये बात तो है, इस युद्ध का असर केवल इन दोनों देशों

0: तक सीमित नहीं रहा, बल्कि वैश्विक अर्थव्यवस्था भी प्रभावित हुई।
1: हाँ, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। कई देशों में महंगाई बढ़ गई और आर्थिक संकट की स्थिति तो बहुत ज्यादा हो गई थी।
0: यही कारण है कि इस घटना को आधुनिक विश्व की महत्वपूर्ण घटनाओं में गिना जाता है और आकाशवाणी ने इस घटना को और इससे जुड़े प्रभावों को लोगों तक भलीभांति पहुंचाया। फरीना, ऐसा नहीं कि दुनिया में हर नया दिन हमारे लिए केवल खुशियां लेकर आता है। कोई ना कोई दिन आपके साथ कुछ बुरी खबरें भी लेकर आता है।
1: जी हाँ सचिन जी, ये जिंदगी की हकीकत है। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि आप अचानक ऐसी बातें करने लगे? ऐसा क्या हुआ था साल 2022 में?
0: 8 सितंबर 2022 का दिन पूरी दुनिया के लिए बहुत ज्यादा दुखद रहा, क्योंकि ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ द्वितीय का 96 वर्ष की आयु में निधन हो गया।
1: और इस खबर को सुनते ही पूरे विश्व में शोक की लहर फैल गई थी और लोग काफी भावुक हो गए थे।
0: बिल्कुल, महारानी एलिजाबेथ द्वितीय ने कई दशकों तक ब्रिटेन की सेवा की और अपने शांत स्वभाव से लोगों के दिलों में खास पहचान बनाई।
1: उनके निधन की खबर के बाद से लाखों लोगों ने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की और आकाशवाणी ने अपने विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से लोगों को सूचित तो किया ही, बल्कि उनके प्रति सच्ची श्रद्धांजलि भी अर्पित की थी।
0: सही कहा फरीना, उनका जाना केवल ब्रिटेन ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक बहुत बड़ी क्षति माना गया।
1: वो हमेशा इतिहास के पन्नों में सम्मान और यादों के साथ आज भी जीवित हैं।
0: फरीना जी, आपको तो पता ही होगा, चलो अपने श्रोताओं को एक बार फिर से इस बात की याद ताजा कर देते हैं, जब एक भारतवंशी ऋषि सुनक अक्टूबर 2022 में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बने थे।
1: हाँ, ये हम सब भारतवासियों के लिए बड़े ही गर्व और सम्मान की बात थी। सचिन जी, वो इस पद तक पहुंचने वाले भारतीय मूल के पहले व्यक्ति रहे हैं।
0: हाँ, ये बात तो है और ये भारत और भारतीय समुदाय के लिए गर्व की बात मानी गई थी।
1: पूरी दुनिया में इस खबर की काफी चर्चा हुई और आकाशवाणी ने अपने समाचारों के माध्यम से पूरे देश की जनता को अवगत कराया।
0: फरीना, ऋषि सुनक की यह सफलता हमें दिखाती है कि मेहनत और प्रतिभा के बल पर कोई भी बड़ी उपलब्धि हासिल की जा सकती है।
1: जी हाँ, यही कारण है कि उनकी उपलब्धि आज भी लोगों के लिए एक प्रेरणा का स्रोत बनी हुई है। इस खबर को भी आकाशवाणी ने बड़े ही उत्साह के साथ अपने विभिन्न केंद्रों के माध्यम से लोगों तक पहुंचाया था।
0: तो ये तो बात हुई अंतर्राष्ट्रीय जगत में क्या क्या हुआ साल 2022 में और आकाशवाणी ने किस तरह से बढ़ चढ़ कर इन खबरों को अपने श्रोताओं तक समाचारों और विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से पहुंचाया था। तो फरीना, आप कार्यक्रम में अपने श्रोताओं के लिए क्यों ना कुछ मनोरंजन भी कर दिया जाए, जिसमें वर्ष 2022 की किसी फिल्म से एक प्यारा सा गीत सुनवाया जाए।
1: जी हाँ, हम साल 2022 का अपने श्रोताओं का वो नंबर वन गीत सुनवाने जा रहे हैं जिसने हर किसी को थिरकने पर मजबूर किया था।
0: ऐसा कौन सा गीत है?
1: जी हाँ, इस साल की फिल्म RRR का नाचू नाचू गीत, जो विश्व भर में काफी प्रसिद्ध हुआ।
0: तो सुनवा देते हैं अपने श्रोताओं को ये गीत।
1: जी हाँ।

में गाँव है रेला ऊंचा पाँव यू पटका है ये देसी घमेला कैसा रहा यका यकी नाचो नाचो नाचो नाचो अरे धूम धूम थिरके जा पाँव में जान जगा धुमक धुमक नाचे जा दुनिया हिला दे सारी नाचो नाचो नाचो, नाचो, नाचो।

0: इस गीत के बाद एक बार फिर से स्वागत है हमारे अपने सभी श्रोताओं का कार्यक्रम सुहाना सफर में। फरीना जी वर्ष 2022 अपने पिटारे में बहुत कुछ समेटे हुए था और आकाशवाणी ने इस पिटारे में छुपी हुई जानकारियों से देश की जनता को न केवल रूबरू कराया बल्कि जन जागरण करके जागरूक भी किया।
1: सचिन जी, आप इस तरह से पहेलियां ना बुझाइए। हमारे श्रोताओं को कैसे पता चलेगा कि आप हमारे श्रोताओं को अब क्या बताना चाह रहे हैं? जरा घुमाइए मत, साफ साफ बताइए कि आप श्रोताओं के को क्या बताने वाले हैं, क्योंकि उनके साथ साथ मुझे भी जानने की इच्छा हो रही है।
0: फरीना जी, जुलाई 2022 का वो दिन भारत के इतिहास में एक बेहद गौरवपूर्ण और यादगार पल बन गया जब डॉक्टर द्रौपदी मुर्मू देश की 15वीं राष्ट्रपति चुनी गई।
1: और उनके राष्ट्रपति चुने जाने की खबर सुनकर पूरे देश में खुशी और गर्व का माहौल बन गया था।
0: बिल्कुल, डॉक्टर द्रौपदी मुर्मू भारत की पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति बनी, जो अपने आप में एक ऐतिहासिक उपलब्धि रही।
1: बेशक उनकी सफलता ने ये साबित कर दिया कि मेहनत, संघर्ष और आत्मविश्वास के बल पर कोई भी व्यक्ति आसमां की ऊंचाइयों को छू सकता है।
0: जी हाँ, उन्होंने अपने जीवन में कई कठिन परिस्थितियों का सामना किया लेकिन कभी हार नहीं मानी,
1: और यही वजह है कि आज वो लाखों लोगों, खासकर महिलाओं और आदिवासी समाज के लिए प्रेरणा का स्रोत बन चुकी है।
0: राष्ट्रपति बनने के बाद देश भर में लोगों ने उन्हें शुभकामनाएं दी और इस उपलब्धि को भारतीय लोकतंत्र की बड़ी जीत बताया।
1: सच में ये केवल एक व्यक्तिगत सफलता नहीं थी बल्कि पूरे देश के लिए गर्व और सम्मान भरे क्षण थे।
0: डॉक्टर द्रौपदी मुर्मू की यह ऐतिहासिक उपलब्धि आने वाली पीढ़ियों को हमेशा प्रेरित करती रहेगी
1: और भारत के इतिहास में उनका नाम सदैव सम्मान और गर्व के साथ लिया जाएगा। आकाशवाणी ने इस खबर को देश की जनता के साथ पूरे विश्वास के साथ साझा किया।
0: फरीना जी, इसके साथ साथ साल 2022 में एक और महत्वपूर्ण घटना हमारे देश में घटी। जून 2022 में केंद्र सरकार द्वारा सशस्त्र बलों में युवाओं की भर्ती के लिए अग्निपथ योजना की शुरुआत की गई थी।
1: हाँ, ये योजना देश भर में चर्चा का विषय बनी हुई थी। इसके माध्यम से युवाओं को सेना में शामिल होकर देश की सेवा करने का अवसर दिया गया।
0: बिल्कुल, इस योजना के तहत थल सेना, वायु सेना और नौ सेना में युवाओं की भर्ती 4 वर्षों के लिए की जाती है।
1: आप सही कह रहे हैं, इस योजना के अंतर्गत

0: भर्ती होने वाले सैनिकों को अग्निवीर नाम दिया जाता है।
1: सरकार का कहना था कि इस योजना से सेना को अधिक युवा, आधुनिक और ऊर्जावान बनाया जा सकेगा।
0: साथ ही युवाओं में अनुशासन, आत्मविश्वास और देशभक्ति की भावना को भी मजबूत करने का प्रयास किया जाता है।
1: इस योजना में अग्निवीरों को प्रशिक्षण, वेतन और अन्य सुविधाएं भी प्रदान की जाती हैं।
0: और 4 वर्ष की सेवा पूरी होने के बाद कुछ अग्निवीरों को उनकी योग्यता के आधार पर स्थायी सेवा का अवसर भी प्रदान किया जाता है।
1: हालांकि योजना की घोषणा के बाद देश के कई हिस्सों में इसका विरोध भी देखने को मिला। आकाशवाणी ने इस समय विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से युवाओं के बीच इस योजना से जुड़ी सही जानकारी पहुंचाई और देश को इस योजना से होने वाले लाभ के विषय में भरपूर जानकारी देकर सरकार और आम युवाओं के बीच एक सेतु का कार्य किया।
0: इस योजना से कुछ युवाओं को ये चिंता थी कि केवल 4 वर्षों की सेवा के बाद उनके भविष्य पर क्या प्रभाव पड़ेगा।
1: इसके बावजूद सरकार ने इसे देश की सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने और युवाओं को नए अवसर देने की महत्वपूर्ण पहल बताया, जिस काम में आकाशवाणी ने अपना रोल बखूबी निभाया।
0: सच में सचिन जी, अग्निपथ योजना आज के समय की एक महत्वपूर्ण और चर्चित सरकारी योजनाओं में से एक मानी जाती है।
1: हाँ फरीना जी, आपको पता है साल दर साल हमारा देश तरक्की कर रहा था, जिसके सकारात्मक परिणाम धीरे धीरे सबके सामने आ रहे थे। और साल 2022 में कुछ ऐसा हुआ कि पूरी दुनिया की निगाह हमारे देश की ओर थी।
0: और हमारी निगाह आपकी तरफ है कि आपने फिर से पहेलियां बुझानी शुरू कर दी हैं। चलिए जल्दी से बताइएगा कि आप क्या बताना चाहते हैं।
1: फरीना, साल 2022 में भारत के इतिहास में आर्थिक दृष्टि से एक महत्वपूर्ण और गौरवपूर्ण वर्ष साबित हुआ, क्योंकि भारत ने ब्रिटेन को पीछे छोड़कर दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था का दर्जा हासिल कर लिया।
0: हमारे देश को गर्व महसूस कराने वाली ये खबर सुनकर देश का हर नागरिक गौरवान्वित महसूस करने लगा। ये वो पल था जब पूरी दुनिया में भारत की आर्थिक प्रगति की चर्चा होने लगी थी।
1: बिल्कुल, कभी जिस ब्रिटेन ने लगभग 200 वर्षों तक भारत पर शासन किया, उसी ब्रिटेन को आर्थिक क्षेत्र में पीछे छोड़ना अपने आप में एक ऐतिहासिक उपलब्धि मानी गई।
0: ये भारत सरकार की लगातार बढ़ती आर्थिक शक्ति, मेहनती युवाओं और विकासशील उद्योगों का परिणाम ही तो था।
1: भारत की अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने में सूचना प्रौद्योगिकी, कृषि, उद्योग, व्यापार और सेवा क्षेत्र का बहुत बड़ा योगदान रहा है।
0: साथ ही देश में बढ़ते विदेशी निवेश और तेजी से विकसित हो रही स्टार्टअप संस्कृति ने भी आर्थिक विकास को नई गति दे दी थी।
1: कोरोना महामारी के बाद भी भारत ने जिस तेजी से अपनी अर्थव्यवस्था को संभाला, वो पूरी दुनिया के लिए एक बहुत बड़ा उदाहरण बन गया था।
0: और यही कारण है कि कई अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं ने भारत को दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में शामिल कर लिया था।
1: इस उपलब्धि ने दुनिया के बड़े देशों के बीच भारत की स्थिति को और अधिक मजबूत बना दिया।
0: और आज भारत केवल जनसंख्या के आधार पर ही नहीं, बल्कि आर्थिक शक्ति के रूप में भी अपनी अलग पहचान बना रहा है।
1: विशेषज्ञों का मानना है कि आने वाले समय में भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन सकता है।
0: सच में ये उपलब्धि हमारे भारत के लिए गर्व, आत्मविश्वास और प्रेरणा का विषय रही है।
1: भारत की आर्थिक सफलता आने वाली पीढ़ियों को भी मेहनत और विकास के लिए प्रेरित करती रहेगी फरीना जी।
0: और इतिहास के पन्नों में साल 2022 को भारत की आर्थिक उन्नति के एक स्वर्णिम अध्याय के रूप में याद किया जाता रहेगा। आकाशवाणी ने हमारे देश की इस उपलब्धि को जोर शोर के साथ लोगों तक पहुंचाया था।
1: फरीना जी, साल 2022 में अभी और भी बहुत कुछ है, क्योंकि साल 2022 में उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, गोवा और मणिपुर में विधानसभा चुनाव आयोजित किए गए थे।
0: और पूरे देश की नजरें इन चुनावों पर टिकी हुई थी, क्योंकि इनके परिणाम देश की राजनीति के लिए काफी महत्वपूर्ण थे।
1: बिल्कुल सही कहा फरीना जी, अलग अलग राज्यों में राजनीतिक दलों के बीच कड़ी टक्कर देखने को मिली थी।
0: लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा सचिन जी पंजाब विधानसभा चुनाव की हुई थी, जहां आम आदमी पार्टी ने ऐतिहासिक और प्रचंड जीत हासिल कर ली थी।
1: हाँ ये बात तो सही है, पंजाब में आम आदमी

0: पार्टी ने बड़ी संख्या में सीटें जीतकर सभी को चौंका दिया था।
1: इस जीत के बाद भगवत मान पंजाब के मुख्यमंत्री बने और पार्टी ने इससे जनता के विश्वास की सबसे बड़ी जीत बताया।
0: वहीं उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने लगातार दूसरी बार सरकार बनाकर नया रिकॉर्ड कायम किया।
1: हाँ, उत्तराखंड, गोवा, मणिपुर में भी चुनाव परिणामों ने देश की राजनीति को एक नई दिशा दी थी।
0: इन चुनावों ने ये तो साबित कर दिया था कि लोकतंत्र में जनता का मत सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होता है
1: और यही लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत होती है कि जनता अपने वोट के माध्यम से सरकार का चुनाव करती है।
0: सच में साल 2022 के विधानसभा चुनाव भारतीय राजनीति के लिए बेहद महत्वपूर्ण और चर्चित घटनाओं में शामिल रहे।
1: आकाशवाणी द्वारा इन चुनावों के प्रति जागरण और चुनाव के परिणामों को आने वाले वर्षों तक राजनीति इतिहास में याद किया जाएगा।
0: तो फरीना जी, अब बहुत बातें हो गई हैं साल 2022 से जुड़ी हुई और अब कुछ ना कुछ मनोरंजन का भी इंतजाम करा जाए अपने श्रोताओं के लिए।
1: जी हाँ, हमने किया हुआ है और हम अपने श्रोताओं को अब सुनवा रहे हैं फिल्म डॉक्टर जी का ये गीत पलक मुच्छल की आवाज में।

0: फरीना जी, साल 2022 में अब बात कर लेते हैं कि खेल और विज्ञान में क्या क्या हरकतें हुई और आकाशवाणी ने उसे किस तरह से कवर किया। साल 2022 में कतर में आयोजित फीफा विश्व कप पूरी दुनिया के लिए बेहद रोमांचक, भावुक और ऐतिहासिक टूर्नामेंट साबित हुआ।
1: दुनिया भर की करोड़ों फुटबॉल प्रशंसकों की

0: नजरें इस विश्व कप पर टिकी हुई थी। हर मैच में जबरदस्त उत्साह देखने को मिला था और आकाशवाणी इन मैचों के सीधे प्रसारण से लोगों को सारी जानकारी रियल टाइम में पहुंचा रहा था।
1: बिल्कुल सही कहा फरीना जी, लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा फाइनल मुकाबले की हुई जो अर्जेंटीना और फ्रांस के बीच खेला गया था।
0: यह मुकाबला इतना रोमांचक था कि दर्शकों की धड़कनें आखिरी मिनट तक तेज बनी रही।
1: अर्जेंटीना के महान खिलाड़ी लियोनेल मेसी ने पूरे टूर्नामेंट में शानदार प्रदर्शन किया और अपनी टीम को फाइनल तक पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाई।
0: वहीं फ्रांस के स्टार खिलाड़ी किलियन एम्बापे ने भी बेहतरीन खेल प्रदर्शन किया और फाइनल में शानदार गोल कर मैच को और भी रोमांचक बना दिया।
1: निर्धारित समय तक दोनों टीमें बराबरी पर बनी रहीं, जिसके बाद अतिरिक्त समय में भी संघर्ष जारी रहा।
0: इसके बाद विजेता का फैसला पेनल्टी शूटआउट से हुआ, जहां अर्जेंटीना ने फ्रांस को हराकर विश्व कप का खिताब अपने नाम कर लिया।
1: जैसे ही अर्जेंटीना की जीत हुई, पूरा स्टेडियम खुशी और उत्साह से गूंज उठा। खिलाड़ियों और प्रशंसकों की आंखों में भावनाएं साफ दिखाई दे रही थी आंसुओं के रूप में।
0: खासकर लियोनेल मेसी के लिए ये पल बेहद खास रहा था, क्योंकि लंबे समय से उनका विश्व कप जीतने का सपना जो पूरा हुआ था।
1: हाँ, इस जीत के साथ मेसी ने अपने शानदार करियर की सबसे बड़ी उपलब्धि हासिल की और फुटबॉल इतिहास में अपना नाम और भी सुनहरे अक्षरों में दर्ज करा दिया।
0: दुनिया भर के फुटबॉल प्रेमियों ने अर्जेंटीना की इस जीत का शानदार जश्न मनाया और सोशल मीडिया पर तो बधाइयों की बाढ़ आ गई थी।
1: विशेषज्ञों और आकाशवाणी के कमेंटेटर्स ने भी इस फाइनल मुकाबले को फीफा विश्व कप इतिहास के सबसे महान और रोमांचक मैचों में से एक बताया था।
0: सच में फीफा विश्व कप 2022 केवल एक प्रतियोगिता नहीं थी, बल्कि भावनाओं, संघर्ष और सपनों के जीत की एक खूबसूरत कहानी था।
1: और अर्जेंटीना की ये ऐतिहासिक जीत हमेशा खेल इतिहास के स्वर्णिम अध्याय के रूप में याद की जाएगी।
0: साथ ही लियोनेल मेसी का ये यादगार पल करोड़ों लोगों के दिलों में हमेशा जीवित रहेगा।
1: साल 2022 में इंग्लैंड के बर्मिंघम शहर में राष्ट्रमंडल खेलों का भव्य आयोजन किया गया था, जिसमें भारत ने शानदार प्रदर्शन कर पूरी दुनिया का ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया।
0: भारतीय खिलाड़ियों ने इन खेलों में मेहनत, आत्मविश्वास और बेहतरीन खेल भावना का परिचय देते हुए देश का नाम गर्व से ऊंचा कर दिया था और आकाशवाणी ने पूरी दुनिया को हमारे खिलाड़ियों के हुनर से अपने पूरे देश के साथ साथ सारी दुनिया को अपने इस समाचारों और खबरों के माध्यम से पूरी जानकारी दी थी।
1: बिल्कुल, भारत ने राष्ट्रमंडल खेल 2022 में कुल 61 पदक जीते, जिनमें 22 स्वर्ण, 16 रजत और 23 कांस्य पदक थे।
0: बिल्कुल सही बात है कि यह उपलब्धि भारत के लिए बहुत गर्व की बात थी और पूरे देश में खुशी का माहौल बन गया था, जिसे आकाशवाणी के प्रसारों ने और खूबसूरत बना दिया था। तो कार्यक्रम को खूबसूरत बनाने के लिए यहाँ एक गीत ले लिया जाए।
1: बिल्कुल बिल्कुल फरीना जी,
0: तो हम कार्यक्रम के अंत में ले रहे हैं ये खूबसूरत गीत रक्षाबंधन फिल्म से। आवाज़ है अरिजीत सिंह और श्रेया घोषाल की।

0: सचिन जी, अब आगे कुछ कहना चाहते हैं आप?
1: बस अब तो ऐसा लग रहा है कि वक्त हमें इजाजत नहीं दे रहा कि अपने श्रोताओं से साल 2022 की और यादें शेयर की जाएं।
0: तो साल 2022 की यादों का सिलसिला कल भी जारी रहेगा, लेकिन आज दीजिएगा हमें इजाजत।
1: कर लेते हैं अपने श्रोताओं को
0: नमस्कार।

0: अभी आप सुन रहे थे भारत में रेडियो प्रसारण के 90 साल के उपलक्ष में हमारा विशेष कार्यक्रम सुहाना सफर। सवेरे के 10:30 हुए हैं। लीजिए, अब प्रस्तुत है आपके पत्रों और व्हाट्सएप मैसेजेस पर आधारित फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम गीत तुम्हारे। नमस्कार श्रोताओं, कार्यक्रम गीत तुम्हारे में आपका मैं फरीना
1: और मैं सचिन शर्मा
0: करते हैं स्वागत। और श्रोताओं, स्वागत के साथ साथ आगे बढ़ने से पहले आपको बता देते हैं कि आप हमारे इस कार्यक्रम में लाइव जुड़ सकते हैं। तरीका तो आपको पता ही है।
1: हाँ, आप हमें व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं 9457078288। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। इस पे अपने नाम और अपनी पसंद का गीत लिखकर आप हम तक सीधे भेज सकते हैं लाइव, और हम सुनवाएंगे अपने सभी श्रोताओं को आपकी पसंद के गीत आपके परिवार वालों और मित्रों के साथ।
0: लेकिन आपको मैसेज एक ही बार करना है, और साथ ही हम आपको बता दें अगर आप हमें पत्र भी लिखना चाहते हैं तो उसके लिए हमारा पता है कार्यक्रम गीत तुम्हारे द्वारा केंद्र निदेशक आकाशवाणी नजीबाबाद, पिन कोड है 2467-63। तो कार्यक्रम का ये पहला गीत जो हम आपको सुनवा रहे हैं उसे हमने लिया है फिल्म आंखें से, लता मंगेशकर की आवाज में, रवि के साज में इस गीत की रचना की है साहिर लुधियानवी ने। और इस गीत के लिए फरमाइश हमें सचिन जी भेजी है।
1: फरमाइश हमें मिली है सनावत से शेख मूसा मोहसिन की, और खैल बाजार पानीपत से नरेश मल्होत्रा, नीटू लक्ष्य मल्होत्रा, लाडो कोयल मल्होत्रा, नानक चंद मल्होत्रा, पीयूष सिक्का, कोयल सिक्का, डुग्गू और भाविक सिक्का की। सनावत से अशोक वर्मा, राजकुमार बडोना और इनके सभी साथी सुनना चाहते हैं ये गीत। टैगोर गार्डन नई दिल्ली से रविंदर सिंह छाबड़ा, इंद्रजीत कौर छाबड़ा और स्वीटी छाबड़ा, बठिंडा रोड मंडी डबवाली से गीत सुनना चाहते हैं राजेंद्र नारंग, अंजू नारंग, मोहित नारंग, लक्की नारंग, तानिया नारंग और इनके सभी साथी। तो आइए सुनवा देते हैं अपने श्रोताओं को आपकी फरमाइश पर आंखें फिल्म से लता मंगेशकर की आवाज़ में कार्यक्रम का ये पहला गीत।

0: कार्यक्रम का अगला गीत सुनने की फरमाइश हमें भेजी है मोताला महाराष्ट्र से विजय सुरलकर, रतन माला सुरलकर, आरती गौरी और ओम कुमार सुरलकर।
1: ये फरमाइश हमें भेजी है नेहरू पार्क निजामाबाद से, तेलंगाना से आप ये मैसेज कर रहे हैं। अजीज भाई, मतीन भाई, अब्दुल रहमान, सैयद खलील, मुबीन भाई, एमडी यासीन, शेख चांद, फारूक, फूल वाले मूसा करीम और उनके परिवार के सभी सदस्य।
0: जवाहर नगर उदयपुर से गीत सुनना चाहते हैं बाबू भाई और भारती देवी।
1: ये गीत सुनने के लिए हमें ये पत्र भेजा है सेक्टर 67 मोहाली चंडीगढ़ से टीडी मल्होत्रा, ऋतिक मल्होत्रा, प्रतीक मल्होत्रा, जयवीर सिंह ठाकुर, डॉक्टर अमनदीप, अनिल शर्मा कालका से उनके साथ हैं, शुभचंद्र बजाज, बिट्टा बजाज और साहिल।
0: उदयपुर से गीत सुनना चाहते हैं रमेश नाचानी, भारती नाचानी, विनीत नाचानी, मिथिल नाचानी और प्रगति नाचानी।
1: जसपुर उत्तराखंड से आप हैं रियासत हुसैन सिद्दीकी, नाजमा बेगम सिद्दीकी, रियाज रिफाकश, समरीन परवीन, मोहम्मद रिहान, माहिरा नूर।
0: कस्बा बराड़ा जिला अंबाला हरियाणा से रवि कुमार राहुल, रंजीत कौर राहुल, जयप्रकाश राहुल, प्रियंका मन्नत, गुरकीरत, गुरशब्द सिंह राहुल और इनके सभी परिवार वालों ने।
1: पाकिजा रेडियो श्रोता संघ वैष्णव कॉलोनी सनावत से आप हैं मोहम्मद सादिक, मुश्ताक अहमद, मोहम्मद शाकिर, मोहम्मद अलकमा खत्री, मोहम्मद अल्तमश खत्री, रमेश गौड़, मोहम्मद शादाब खत्री। तो आइए आप सबकी फरमाइश पर सुनते हैं मनोहर शेट्टी, अनुराधा पौडवाल, कविता कृष्णमूर्ति को फिल्म ये रास्ते प्यार के हमें, संगीत निर्देशन किया है अदनान सामी ने और गीतकार हैं आनंद बख्शी।

0: प्रसार भारती, भारत का लोक सेवा प्रसारक।
1: नशे का शौक कहीं आपकी आदत तो नहीं बन गया?
2: याद रखिए, शौक, सोबत या फैशन के तौर पर अपनाया नशा आपकी आदत और स्वभाव का अंग बन जाएगा।
1: पार्टियों में नशा नहीं, खुशियाँ बांटिए।
2: नशा नहीं, जिंदगी अपनाइए।
1: आज अभी नशा छोड़ने का संकल्प दोहराइए।
2: ये सूचना मद्य निषेध विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।
3: प्रसार भारती के पास है भारतीय संस्कृति की अनमोल धरोहर। इसमें शामिल है शास्त्रीय संगीत, नृत्य, साहित्य, नाट्य विधाएं, धारावाहिक, वृत्त चित्र और अन्य दुर्लभ रिकॉर्डिंग और अब आप आकाशवाणी और दूरदर्शन के खजाने की डीवीडीज और सीडीज हासिल कर सकते हैं भारत में अपने संग्रह के लिए। प्रसार भारती के कार्यक्रमों का खजाना अगर है आपको पाना, तो लॉग ऑन कीजिए www.prasarbhartiarchives.co.in। याद रहे www.prasarbhartiarchives.co.in।

0: श्रोताओं, एक बार फिर स्वागत है आपका आपके अपने कार्यक्रम गीत तुम्हारे में। और कार्यक्रम का अगला गीत आप ही की फरमाइश पर फिल्म हिना से, आवाज है लता मंगेशकर की, संगीत और गीत है रविंद्र जैन का। इस गीत के लिए ये फरमाइशी पत्र हमें भेजा है एयरपोर्ट रोड बंदा नगर इंदौर से, मध्य प्रदेश से आपने ये भेजा है कुमारी वंदना मराठा, कुमारी देविका चौधरी, गणेश दादा मराठा, कार्तिक भाव मराठा, परिसंजना मराठा, मालती चौधरी, स्वाति प्रयाग चौधरी और ललिता नारायण खर्चे ने।
1: मोहल्ला बारादरी महमूद खां रामपुर से गीत सुनना चाहते हैं। भाई रफत साहब, सईद भाई मंसूरी, राशिद भाई मंसूरी, असद भाई, बहन फिरोजा मुस्कान और अफसर अली, नगमा नाज मंसूरी और इनके सभी परिवार वाले।
0: लेवा खेल मोहल्ला चांदूर बिस्वा से आप हैं नारायण खर्चे, ललिता खर्चे, परी खर्चे, गणेश कार्तिक खर्चे, देविका कुमारी चौधरी, स्वाति प्रयाग चौधरी, मालती चौधरी, खुशी और वाणी।
1: मोहल्ला हलवाइयान कस्बा शेरकोट जिला बिजनौर से मोहम्मद वक्कर फरीदी, मोहम्मद इकबाल फरीदी, सितारा बेगम, नसरीन परवीन, रोजी खान, बिट्टू भैया, साजदारानी और हिना कौसर।
0: चांदूर बिस्वा तालुका नांदुरा जिला बुंडाना महाराष्ट्र से आप हैं नारायण भाऊ खट से, रक्षाताई खट से, ललिता संजना खट से, गणेश और कार्तिक खट से, मालती चौधरी, स्वाति चौधरी, कुमारी देविका चौधरी।
1: जिला मुरादाबाद ग्राम दुल्हापुर उत्तर प्रदेश से मोहम्मद फरमान, मोहम्मद सलमान, मोहम्मद इरफान, मोहम्मद इसरार और नरगिस खातून।
0: और ये मैं पत्र हमें भेजा है बक्सर बिहार से शरफुद्दीन अंसारी, फातिमा खातून अंसारी उनके साथ हैं, डुमराव बिहार से डॉक्टर डब्ल्यू अंसारी, डॉक्टर सोनम अदीबा और दानिश अंसारी, सरीरामपुर बक्सर से हैं राज एस डी अंसारी, आसमा खातून अंसारी और उन्हीं के साथ हैं जेल रोड दिल्ली से लाल बाबू दीवाना और दिव्या भारती।
1: अहमदपुर खैगांव खंडवा से गीत सुनना चाहते हैं कैलाश फूलमाली, दीपक फूलमाली, समर फूलमाली और वेदिका फूलमाली।
0: गांधी चौक रोपड़ पंजाब से हैं हरदेव मीका, बलविंदर बिरक, जयतेग बिरक और मीका बिरक।
1: करूला मुरादाबाद से अयूब खान, इरम गुड़िया, शोएब खान और जीशान वारसी।
0: तो आइए आप सब की फरमाइश पर सुनते हैं फिल्म हिना में लता मंगेशकर को।

0: सुनो ना,
1: हाँ?
0: सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों ना बढ़ा लूँ।
1: तो रोका किसने है, हाँ?
0: रोका तो किसी ने नहीं, पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगूं।
1: मुझसे।
0: तुमसे? तो अच्छा बताओ फिर।
1: आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है।
0: पर उससे मेरा क्या फायदा?
1: देखो फायदा है, जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुँच जाओ।
0: पर अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूं?
1: बहुत आसान है, मैं बताती हूँ। नंबर नोट करो, 8700014242।
0: ओ 8700014242। लो अभी फोन लगाता हूँ 8700014242 पर।
2: श्रोताओं इसी के साथ आज का कार्यक्रम गीत तुम्हारे अब यहीं पर संपन्न होता है।
0: नमस्कार।
2: अभी आप सुन रहे थे फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम गीत तुम्हारे। आकाशवाणी का ये नजीबाबाद केंद्र है। प्रातः के 10:55 होने को है। कुछ ही समय में हमारा अगला कार्यक्रम दिल्ली से प्रसारित किया जाएगा, कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

0: ये आकाशवाणी दिल्ली है, कृपया हमारे विशेष कार्यक्रम की प्रतीक्षा कीजिए। ये आकाशवाणी है।
1: श्रीमद् भगवद गीता में कहा गया है, यदि व्यक्ति की बुद्धि शुद्ध हो तो अक्सर छोटे छोटे कर्मों की नैतिक योग्यता भी बड़े बड़े कर्म कर डालने में समर्थ होती है। बुद्धि तो एक तलवार के समान है। जीवन में जो कुछ भी इंसान के सामने आता है उसकी काट छांट करना ही बुद्धि का काम है। इसके विपरीत जब बुद्धि शुद्ध ना हो तब किसी कर्म की नैतिक योग्यता का ज्ञान मनुष्य को नहीं हो सकता। इस तरह बुद्धि के अभाव में अच्छा कार्य भी बुरा बन सकता है।
2: मन की शांति और शक्ति के लिए जुड़िए भक्ति से। आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है विशेष चैनल आराधना। 24 घंटे सुनिए कई भारतीय भाषाओं में अपने मनपसंद भजन, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजनों की सजीव प्रस्तुति, महाकुंभ मेला हो या जगन्नाथ रथ यात्रा, लोक रामायण या पौराणिक प्रसंग, सुनिए सूफी संगीत और शबद कीर्तन,
3: कोई बोले राम राम।
2: आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता आकाशवाणी का आराधना चैनल, न्यूज ऑन AIR ऐप, DTH और YouTube पर भी उपलब्ध। आराधना चैनल।

0: अब टेलीलॉ के माध्यम से न सिर्फ घर बैठे मुफ्त कानूनी सलाह ले सकते हैं बल्कि अनुभवी वकीलों से कोर्ट में कानूनी सहायता भी पा सकते हैं।
1: तो डाउनलोड करें आज ही टेलीलॉ फॉर सिटीजंस मोबाइल ऐप अथवा लॉगिन करें www.tele-law.in या अपने नजदीकी CSC सेंटर से संपर्क करें। न्याय विभाग, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।

0: योजना मोदी जी का संकल्प
1: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
0: अब तक इस योजना से 8 करोड़ 85 लाख से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित 3 गारंटीड फायदों के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
2: बोल बोल के थक गया। क्या हुआ? नया किड बैग चाहिए। तो पहले कैप्टन से बोलो। नहीं सुना तो मैनेजर से।
3: करेक्ट।
2: तो ऐसे ही पहले शिकायत बैंक से करें, 30 दिनों में जवाब या समाधान ना मिलने पर CMS पोर्टल पे शिकायत करें। तो पहले बैंक फिर CMS पोर्टल, नहीं तो शिकायत होगी नामंजूर। चले ले आ गया नया किड बैग।
4: RBI कहता है
5: पहले अपना बैंक फिर RBI ओम्बुड्समैन।
6: पर्सनल लोन ऑफर
7: फिर से ब्लॉक करता हूँ।
6: फ्री ट्रिप टू दुबई
7: ये भी ब्लॉक। कितना ब्लॉक करूं यार?
8: सिर्फ फोन पे ब्लॉक करने से स्पैम खत्म नहीं होता, हर बार नया नंबर आ जाता है।
7: तो क्या करूं?
8: कॉल उठाओ फिर ट्राई DND ऐप पर रिपोर्ट करो, कैटेगरी सेलेक्ट करो बैंकिंग ट्रैवल इंश्योरेंस और सबमिट। बस कुछ सेकंड्स का काम।
7: मतलब सबका स्पैम कम होगा?
8: हाँ, रिपोर्ट्स मिलते ही एक्शन होता है। सिर्फ ब्लॉक नहीं, रिपोर्ट जरूर करें। ट्राई DND ऐप, डाउनलोड नाउ फ्रॉम प्ले स्टोर और ऐप स्टोर एंड स्टार्ट रिपोर्टिंग।
9: मन की बात आकाशवाणी के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी अपने मन की बात साझा करेंगे, तो आइए सुनते हैं प्रधानमंत्री जी से मन की बात।
10: मेरे प्यारे देशवासियों नमस्कार। मन की बात में एक बार फिर आपसे जुड़कर मुझे बेहद खुशी हो रही है। देश के अलग अलग हिस्सों में हमारे देश के लोग देश हित में, समाज हित में ऐसी अद्भुत चीजें कर रहे हैं, और जब उनके विषय में सुनते हैं तो हमें एक नई प्रेरणा मिलती है। आज कार्यक्रम की शुरुआत मैं एथलेटिक्स में देश की ऐसी ही उपलब्धि से करूंगा। कुछ दिन पहले ही झारखंड के रांची में नेशनल सीनियर एथलेटिक्स फेडरेशन कंपटीशन हुआ। इसमें करीब 800 एथलीट्स ने हिस्सा लिया, देश भर से आए थे। इस दौरान 4 अलग अलग इवेंट में 4 नेशनल रिकॉर्ड टूटे। गुरिंदर वीर सिंह, विशाल टीके, तेजस्विनी शंकर, देव मीणा और कुलदीप कुमार, इन साथियों ने अलग अलग कैटेगरी में नए रिकॉर्ड बनाए। मैं सबसे पहले तो इन सभी को बहुत बहुत बधाई देता हूं। साथियों, एक इवेंट जिसकी देश भर में बहुत चर्चा हो रही है वह है 100 मीटर रेस, 100 मीटर की दौड़। महज 2 दिनों के भीतर मेंस 100 मीटर रेस में नेशनल रिकॉर्ड 3 बार टूटा। जिन 2 एथलीट्स ने यह कमाल दिखाया है वे हैं गुरिंदर वीर सिंह और अनिमेश कुजूर। मैंने सोचा इस बार मन की बात में इन दोनों खिलाड़ियों से बात की जाए। अनिमेश जी नमस्कार, गुरिंदर वीर आपको भी नमस्कार, सत श्री अकाल।
11: नमस्कार सर। नमस्कार।
12: नमस्कार सर।
10: अच्छा भैया, आपने तो बहुत बड़ा अचीवमेंट किया है, आपकी जोड़ी ने भी बड़ा कमाल किया है। हमने संगीत में तो जुगलबंदी देखी थी, लेकिन चुनौती में भी जुगलबंदी होती है कि एक बार एक चुनौती दे फिर दूसरा उस चुनौती को उठा ले फिर तीसरी बार कर ले। बड़ा इंटरेस्टिंग विषय रहा है आपका। मैं चाहता हूं कि मन की बात के श्रोताओं को पता चले कि आप लोग के विषय में उनको जानकारी हो, आपने जो पराक्रम किया है उसका पता चले।
11: नमस्ते सर, मेरा नाम अनिमेश कुजूर है। मैं 200 मीटर और 4x100 मीटर का नेशनल रिकॉर्ड होल्डर हूँ, एंड मैं छत्तीसगढ़ से बिलोंग करता हूँ सर, एंड अभी मैं उड़ीसा से खेलता हूँ। मैं लास्ट ईयर एशियन मेडल और वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स मेडल लेके आया, एंड मैं एथलेटिक्स 2021 से चालू किया। जब मैं स्कूल से पास आउट हुआ, मैं सैनिक स्कूल अंबिकापुर से पास आउट हूँ, एंड मैं पहले फुटबॉल खेला करता था, एंड मेरे पेरेंट्स कोविड के समय मुझे थोड़ी बहुत छूट देते थे कि तू जाके बाहर दौड़ ले या खेल ले। तो जब कोविड खत्म होने लगा तो मेरे फुटबॉल के जो फ्रेंड्स थे उन्होंने मुझे बोला कि स्टेट मीट होने वाला है, जाके तू पार्टिसिपेट कर, एंड मैं पार्टिसिपेट किया एंड मुझे पता नहीं था कि वहाँ से नेशनल का सिलेक्शन

0: मैं वहाँ से नेशनल का सेलेक्ट हुआ एंड आज मैं इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ इंटरनेशनली।
1: और गुरिंदर वीर जी का क्या है?
0: नमस्ते सर, मेरा नाम गुरिंदर वीर है और मैं इंडियन नेवी में पैटी ऑफिसर हूँ और मैं इंडिया का सबसे तेज स्प्रिंटर हूँ। अभी मैंने 100 मीटर में 10.09 का नेशनल रिकॉर्ड बनाया है और मैं पहला इंडियन हूँ जो 10.1 के बैरियर के नीचे भागा है। और मैं कोशिश कर रहा हूँ मैं ट्रैक और वर्दी में भी अपने देश की सेवा करूँ। मेरे फादर और मेरे ग्रैंडफादर दोनों स्पोर्ट्स करते थे तो हमारे इंडिया का कल्चर है जब भी कोई त्यौहार होता है जैसे दिवाली जैसे नया साल तो हम अपने घर की सफाई करते हैं। तो मैं अपने फादर की ट्रॉफीज और मेडल्स की सफाई करता था तो मेरे को वो बहुत अच्छा लगता था। मैं बहुत खुश होता था तो जब मैं कोई ट्रॉफी साफ करता था तो मैं पूछता था अभी ये ट्रॉफी कहाँ जीती, ये मेडल कहाँ जीता, ये फोटो कब किया है। तो फिर मेरे को वो अपनी कहानी सुनाते थे भी मैं यहाँ खेलने गया, मैंने ये नेशनल मेडल जीता, ये मैंने अपनी टीम को इतना जिताया। तो फिर मैं भी उनको बोलता था अभी मैं भी कोई स्पोर्ट्स करनी है। वो रनिंग करने जाते थे मॉर्निंग में तो मैं उनको बोलने लगा अभी मेरे को भी लेके जाया करो आप अपने साथ। तो मेरे को लेके जाने लगे जो उन्होंने अपनी गेम स्पोर्ट्स में सीखा था तो मेरे को सिखाने लगे तो मेरा इंटरेस्ट बनने लगा। मैंने यूसेन बोल्ट का वर्ल्ड रिकॉर्ड टूटता हुआ देखा। तो एक स्टोरी ऐसे फनी, मैं अभी टीवी देख रहा था तो मम्मी ने मेरे लिए टीवी बंद कर दिया, अभी अभी बेटा पढ़ने का टाइम हो गया आप पढ़ो। तो मैं कभी ठीक है आप मेरे को टीवी नहीं देखने देते, एक दिन ऐसा आएगा आप मेरे को टीवी में ढूंढोगे भी देखो वो गुरिंदर दौड़ रहा है। तो मेरे को भी खुशी होती है जब मेरी माँ मेरे को टीवी पे दौड़ता हुआ देखती है।
1: वाह वाह वाह, बड़े शानदार बात है भी आपकी तो।
0: हाँ जी, मिडिल क्लास फैमिली है सर। फिर मेरे फादर वो भी वॉलीबॉल खेलते थे, घर की प्रॉब्लम्स की वजह से उन्होंने अपनी स्पोर्ट्स छोड़ दी। उनका जो सपना पूरा करने वाला रह गया तो उन्होंने मेरे अंदर वो सपना देखा भी मेरा बेटा वो सपना पूरा करेगा। तो मैं उनसे बातें करता था फिर सुनता था मिल्खा सिंह इतनी मेहनत करते थे, मैं उनको बोलता था मैं भी एक दिन आपका सपना पूरा करूंगा। तो बोलते सपना पूरा ऐसे नहीं होता, उसके लिए बहुत हार्ड वर्क करना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है। मिल्खा सिंह जी खून की उल्टियां करते थे, धूप में भागते थे, सारा सारा दिन ट्रेनिंग करते थे। तो वो चीजें मेरे को इंस्पायर करती थी, मेरे फादर मेरे को इंस्पायर करते थे कि मैं भागूंगा अपने देश के लिए मेडल लाऊं जीतूं। और ये भी था भी जब मैंने इवेंट चूज किया 100 मीटर, सभी मेरे को बोलते थे भी 100 मत करो, 100 इंडियंस का इवेंट नहीं है, इंडियंस की बॉडी 100 मीटर के लिए बनी ही नहीं है। तो मैं और मेरे फादर हमेशा बोलते थे भी गुरिंदर हमने ये चूज किया है, हम इससे पीछे नहीं हटेंगे, जो हमें बोलते हैं अभी हम नहीं कर सकते हम उसको करके दिखाएंगे और तू करके दिखाएगा, मुझे तेरे पे भरोसा है। तो वो भरोसा जब मेरे को मेरे फादर ने मेरे पे किया तो मैं उस भरोसे को अपनी हिम्मत बना के मैं चला और मैं आज हर इंडियन बोलता है भी इंडियन स्प्रिंट कर।
1: देखिए, आप दोनों ने बहुत बड़ा कमाल किया है और सिर्फ 2 दिनों के भीतर आप दोनों ने 3 बार नेशनल रिकॉर्ड तोड़ा है 100 मीटर रेस में दौड़ना। और जैसा गुरिंदर वीर जी ने कहा कि लोग कहते हैं कि भारत के लोगों का तो बदन इस काम के लिए है ही नहीं, इतना मुश्किल होते हुए भी आपने काम किया, तो ये दोनों से मैं जानना चाहूंगा और मन की बात के श्रोता भी सुनना चाहेंगे कि कौन सा जज्बा था, क्या जीत थी, क्या सोचा था और कैसे कर रहे थे, ये कितना मुश्किल होता है?
0: जी सर, मैं गुरिंदर, मैं जब स्टार्टिंग में सर बहुत स्ट्रगल था, बहुत बार डाउट भी आया कि मैं सही कर रहा हूँ, मैं सही चूज किया, क्योंकि हर बार आप नहीं जीते, कभी कभी आप सीखते हो। जब मैं हारता था, जब मैं सही परफॉर्मेंस नहीं आती थी, कोई इंजरी आ जाती थी तो मेरे घर वाले मेरे को सपोर्ट करते थे भी कोई नहीं, एक दिन बुरा चला गया, एक साल बुरा चला गया तो इससे जिंदगी खराब नहीं होती, सपने देखना नहीं छोड़ते। तो मेरे कोच ने भी मेरे को ये सिखाया अगर तू नहीं करेगा तो कोई और नहीं कर पाएगा। तो ऐसे जब हमारी कम्युनिटी हमारे आसपास के लोग हमें उत्साहित करते हैं तो हमारा कभी वो मोटिवेशन नहीं टूटता।
1: अनिमेश जी,
0: सर मुझे तो सारे लोग बोलते थे कि जब मैं 2021 में चालू किया एथलेटिक्स तो मुझे बोलते थे कि देख ये नया नया फील्ड है तू कर पाएगा कि नहीं। तो मैं बोला कि अब मैं इस फील्ड में घुसा हूँ तो करूंगा ही। मेरे पापा भी हमेशा मुझे बोलते थे कि तू इस फील्ड में घुसा है तो कभी पीछे मुड़ के देखना मत, क्योंकि सोचते तो सभी हैं कि ये करना है वो करना है बट करके बहुत कमी दिखाते हैं। तू बस इस फील्ड में घुसा है तो इस पे अमल रहना, इस पे आगे बढ़ना है, देखो सारी फैसिलिटीज सब चीज़ हम लोग सपोर्ट करेंगे, फैमिली सपोर्ट फाइनेंशियल सपोर्ट सब चीज़ हम लोग करेंगे, बस तू मेहनत कर और इंडिया को दिखा कि इंडियंस भी भाग सकते हैं। क्योंकि ये मुझे भी लोग बोलते थे कि इंडियंस की जीन्स ऐसे नहीं है कि वो sub-10 या sub-10.1 के अंदर भाग सकते हैं या कोई कोई स्प्रिंट कर सकता है, बट अभी हम दोनों ने ऐसे प्रूफ किया कि इंडियंस भी कर सकते हैं, ऐसा कोई हार्ड नहीं है हमारे लिए, हम भी सब कुछ कर सकते हैं। तो सर ये सारी चीजें मुझे बहुत

0: करती है, एंड जैसे जैसे हम ट्रेनिंग कर रहे हैं हम और टाइमिंग तोड़ रहे हैं अपना, एंड बाकी इंडियंस को भी ये चीज़ दिख रहा है कि इंडियंस भी कर सकते हैं, एंड हम और करेंगे सर अभी। एंड अभी हम दोनों का सिलेक्शन कॉमनवेल्थ गेम्स के लिए भी हुआ है, तो वहाँ अपकमिंग कॉम्पिटिशन में हम और अच्छा परफॉर्म करेंगे।
1: अच्छा देखिए, मेरे मन में भी एक कुतूहल है और लोगों को भी होगा। मैंने सुना है कि आप दोनों अच्छे दोस्त भी हैं। आप दोनों ने कुछ ठान रखा था क्या कि तुमने मेरा रिकॉर्ड तोड़ा तो मैं तेरा रिकॉर्ड तोड़ दूंगा? पहले एनिमेश बता दे।
0: सर जी, पहले रिकॉर्ड 10.18 का था जो कि मेरा ही था, एंड देन उसको गुरिंदर रबिया ने सेमीफाइनल में तोड़ दिया 10.17 करके, एंड मैंने फिर से उसको सेमीफाइनल 2 में 10.15 करके तोड़ दिया। तो उस समय जब मेरा सेमीफाइनल हुआ तो हम दोनों ही खुश थे कि हाँ चलो ठीक है, आज रिकॉर्ड टूटा एंड चलो हम दोनों ने तोड़ा ऐसा, क्योंकि उस समय कॉम्पिटिशन में राइवलरी रहती है। बट हम दोनों ठान के रखे थे पहले से ही कि उससे पहले हम लोग सऊदी अरेबिया भी गए थे कंपटीशन करने के लिए, तो वहाँ भी हम दोनों रूममेट थे, तो हम दोनों वहाँ भी ऐसा बात करते थे कि इंडिया के स्प्रिंटिंग को आगे लेके जाना है एंड हमारे हाथों में है वो चीज़, हम जो करेंगे वही बाकियों को मोटिवेट करेगा।
1: गुरिंदर वीर क्या कहना चाहेंगे?
0: हम दोनों ने डिसाइड किया था भी हम दोनों अच्छा भागेंगे, तो कभी भी सर एक दूसरे को जरूरत होती है तो एक दूसरे के साथ खड़े होते हैं। जैसे अभी रिकॉर्ड करने से पहले जब मैंने रिकॉर्ड किया फिर अनिमेश ने किया, तो जब हम वार्म अप कर रहे थे तो मैं अनिमेश को बता रहा था अभी अनिमेश वो ब्लॉक सही है उस पे जाके बैठ, वहां पे स्ट्राइड कर ले, हम वार्म अप यहाँ पे करेंगे, यहाँ पे वार्म अप सही होगा। तो एक दूसरे की हेल्प करते हैं, एक दूसरे की हेल्प करते हैं, जब तो दूसरा भी इम्प्रूव करता है हम भी इम्प्रूव करते हैं। तो दोस्ती भी चाहिए सर, बट जब हम ग्राउंड के बाहर हैं कॉम्पिटिशन के बाहर हैं तो हम दोस्त हैं, बट जब हम ग्राउंड में चले जाते हैं तो एक दूसरे के कॉम्पिटिटर हो जाते हैं। तो ये होता भी मैं इससे फास्ट भागूंगा, मैं इससे फास्ट भागूंगा।
1: देखिए, आप लोगों ने जो स्पर्धा की है ना, वो देश का मान बढ़ाने के लिए की है, देश को भविष्य में इस जगह पे पहुंचाने के लिए की है, और एक पॉजिटिव स्पिरिट से की है। और मैं मानता हूं कि आपका ये जो स्पोर्ट्समैन स्पिरिट है, खेलना भी है, एक दूसरे को चुनौती भी देना है, और फिर आगे निकलने के लिए प्रयास करना है, और फिर आगे जाने के लिए एक दूसरे की मदद करना है, ये अद्भुत काम किया है आप लोगों ने। मेरी तरफ से आपको बहुत बहुत बधाई, मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं, और आप देश का नाम भी रोशन करेंगे, मुझे पूरा विश्वास है। आप ऐसे ही मेहनत करते रहिए, बहुत प्रगति होगी, बहुत बहुत शुभकामनाएं मेरी।
0: शुक्रिया सर, शुक्रिया आपका,
1: बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे प्यारे देशवासियों, इस समय देश के ज्यादातर हिस्सों में बहुत गर्मी पड़ रही है, तेज धूप, गर्म हवाएं, ऐसे मौसम में अपना ध्यान रखना बहुत जरूरी है। पानी पीते रहिए, धूप में अगर निकलना ही पड़े तो थोड़ा संभल कर निकले। इस दिशा में सरकार की भिन्न भिन्न डिपार्टमेंट्स ने जो गाइडलाइंस जारी की है वो भी भूलिएगा नहीं। साथियों, हमारे यहाँ गर्मी से लड़ने का तरीका कई बार रसोई में भी मिलता है, आपने भी देखा होगा। जैसे जैसे गर्मी बढ़ती है वैसे वैसे घर की रसोई का स्वाद बदल जाता है, रसोई का प्रकार बदल जाता है, कहीं मटके का पानी निकल आता है, कहीं दही जमने लगता है, तो कहीं कच्चे आम उबलने लगते हैं, और फिर शुरू होता है देसी पेय का दौर। देसी पेय से आप भी परिचित हैं, अगर आप उत्तर भारत में जाएंगे तो काफी जगह आपको मिलेगा आम पन्ना, कच्चे आम का स्वाद और गर्मी से राहत भी। पंजाब हरियाणा जाइए तो लस्सी मिल जाएगी, बड़े गिलास वाली लस्सी, राजस्थान और गुजरात में छाछ, जैसे हर खाने की साथी बन जाती है। और बिहार, झारखंड, पूर्वी उत्तर प्रदेश में सत्तू का शरबत, उसकी तो बात ही क्या है, पेट भी भरे ताकत भी दे। कोंकण और गोवा में कोकम शरबत, सोल कढ़ी, दक्षिण भारत में पानकम, नीरमोर, संबारम, और ओडिशा में बेलपना। वो सिर्फ पेय नहीं, भारत के अलग अलग क्षेत्रों की परंपरा का हिस्सा है, और इसमें एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना की झलक भी मिलती है। और एक बात जरूर ध्यान रखिएगा, इनमें से ज्यादातर चीजें हमारी अपनी रसोई से निकली है, हमारे खेत खलिहान से निकली है, कोई बड़ी ब्रांडिंग नहीं है, लेकिन पीढ़ियों का अनुभव उनमें समाया हुआ है। आप भी गर्मी के दौरान देसी पेय

0: जलों का खूब आनंद लीजिए। साथियों, गर्मी आते ही एक और चर्चा हर घर में शुरू हो जाती है और वो है आम। आम आम चर्चा का विषय होता है। भारत में शायद ही कोई घर होगा जहां गर्मियों में आम की बात न होती हो। हर इलाके का अपना आम, अपना स्वाद, अपनी खुशबू। महाराष्ट्र और कोंकण का हापुस, अल्फांसो, गुजरात का केसर, यह तो आमरस की जान है। उत्तर प्रदेश का दशहरी और मेरी काशी का लंगड़ा। वैसे लंगड़ा आम की एक खास बात होती है, पकने के बाद भी उसका रंग कई बार हरा ही रहता है। बिहार का जरदालू, जिसकी खुशबू दूर से पहचान में आ जाए। चौसा, मालदा, हर नाम के साथ लोगों की यादें जुड़ी हुई है। दक्षिण भारत जाइए तो बंगनपल्ली, तोतापुरी, नीलम, मलगोवा, बंगाल का हिमसागर, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश का सुवर्ण रेखा, यानी जगह बदलती है। आम का रूप रंग और उसका स्वाद भी बदल जाता है। और साथियों, आम की ये यात्रा अब गांव से ग्लोबल मार्केट तक भी पहुंच रही है। आज मन की बात के माध्यम से मैं आम की पैदावार से जुड़े अपने किसान भाई बहनों की प्रशंसा करूंगा। आप देश की कृषि अर्थव्यवस्था के लिए आम किसान नहीं, बहुत विशेष हैं। ऐसे ही छाए रहिए। साथियों, गर्मी के इन दिनों में ऐसे तो स्कूलों की छुट्टियां होती हैं, लेकिन मैं एक ऐसे क्लास की बात करूंगा जिसमें आपका एडमिशन करने का मन कर जाएगा। साथियों, एक स्थिति की कल्पना कीजिए। एक ऐसा स्कूल जहां बच्चे भी आते हो, युवा भी और बुजुर्ग भी, जहां कोई फीस न हो, कोई बड़ी बिल्डिंग न हो, कोई क्लासरूम भी न हो, और सबसे रोचक बात, वहां क्लास नदी में लगती हो। साथियों, ये कोई कहानी नहीं है, ये एक सच्चा प्रयास है। केरलम के आलुवा में साजी वला शेरिल जी ऐसा ही एक स्विमिंग क्लब चला रहे हैं। अब तक 15,000 से ज्यादा लोग यहाँ तैरना सीख चुके हैं। साजी जी ने दिव्यांग बच्चों को भी स्विमिंग सिखाई है। इस प्रयास के पीछे एक पीड़ा भी छिपी है। कुछ वर्ष पहले एक नौका हादसे में कई छात्रों की मृत्यु हो गई थी। उस घटना ने साजी जी को भीतर तक झकझोर दिया। उन्होंने सोचा, अगर बच्चों को तैरना आता होता तो शायद कई जानें बच जाती। बस यहीं से शुरू हुआ उनका ये अभियान। साथियों, साजी बलाशेरिल जी का जीवन हमें एक बहुत बड़ी सीख देता है। सेवा करने के लिए बहुत बड़े साधन जरूरी नहीं होते, जरूरी होता है एक अच्छा इरादा और लगातार किया गया प्रयास। इन्हीं के दम पर हजारों लोगों के जीवन में बदलाव लाया जा सकता है। मेरे प्यारे देशवासियों, बीते दिनों मुझे यूरोप के नीदरलैंड जाने का अवसर मिला। वहां मैं कई मीटिंग में शामिल हुआ। इसी दौरान एक ऐसा क्षण आया जिसने हर भारतीय को गर्व से भर दिया। नीदरलैंड्स में आयोजित एक विशेष समारोह में चोला काल की प्राचीन ताम्र पट्टिकाएं भारत को वापस सौंपी गई। उस कार्यक्रम में नीदरलैंड्स के प्रधानमंत्री भी मौजूद थे। इन ताम्र पट्टिकाओं को लेकर मुझे देश विदेश से लगातार संदेश मिल रहे हैं। लोग खुशी जता रहे हैं, गर्व व्यक्त कर रहे हैं। दुनिया भर के तमिल समुदाय में भी इसे लेकर विशेष उत्साह है। साथियों, इन ताम्र पट्टिकाओं को लेकर लोगों में काफी जिज्ञासा भी है, इसलिए आज मैं इससे जुड़ी कुछ बातें आपसे साझा करना चाहता हूं। इनमें 21 बड़ी और 3 छोटी ताम्र पट्टिकाएं हैं। ये मुख्य रूप से राजा राजेंद्र चोला प्रथम द्वारा अपने पिता राजा राज राजा चोला के एक वचन को पूरा करने से जुड़ी है। इनमें आनाई मंगलम गांव को एक बौद्ध विहार को दान देने का उल्लेख है। इन ताम्र पट्टिकाओं में चोला वंश की उपलब्धियों का भी वर्णन मिलता है। इनसे पता चलता है कि चोला साम्राज्य की समुद्री शक्ति कितनी मजबूत थी। दक्षिण पूर्व एशिया के देशों के साथ उनके संबंधों की जानकारी भी इनमें मिलती है। चोला साम्राज्य के समृद्ध इतिहास और संस्कृति पर हम सभी को बहुत गर्व है। साथियों, हमारी सरकार भारत की ऐसी अमूल्य धरोहरों के संरक्षण के लिए लगातार प्रयास कर रही है। इसी क्रम में ज्ञान भारतम अभियान के तहत छत्तीसगढ़ के मल्हार में भी एक महत्वपूर्ण खोज हुई है। यहां 3 दुर्लभ ताम्र पट्टिकाएं मिली हैं। ये पांडुवंशी राजवंश के महर्षि बालार्जुन के शासनकाल से जुड़ी मानी जा रही है। विशेषज्ञ मानते हैं कि इंस्क्रिप्शन 6वीं-7वीं सदी के हैं, यानी 1400-1500 साल पुराने। ये ताम्र पट्टिकाएं प्राचीन ब्राह्मी लिपि और पाली भाषा में लिखी गई है। इनसे उस समय की शासन व्यवस्था, धर्म और संस्कृति के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है। साथियों, हम भारतीयों में खगोल विज्ञान यानी एस्ट्रोनॉमी को लेकर हमेशा विशेष आकर्षण रहा है। हमारे देश में आज भी सदियों पुरानी ऑब्जर्वेटरीज मौजूद है। यहां अद्भुत मैथमेटिकल डिस्कवरीज हुई हैं। नेविगेशन हो, पंचांग हो या हमारे पर्व त्योहार, इन सब का संबंध आकाश और तारों से रहा है। हमारे यहां एस्ट्रोनॉमी ने हर पीढ़ी में कौतूहल जगाया है, उसे एक्सप्लोरेशन के लिए प्रेरित किया है और आज के युवाओं में भी इसे लेकर काफी उत्साह दिखाई देता है। आजकल आप भी देखते होंगे, देश भर में एस्ट्रोनॉमी क्लब्स तेजी से लोकप्रिय हो रहे हैं। बड़े शहरों से लेकर छोटे कस्बों तक, स्कूलों से लेकर पार्कों तक इनकी गतिविधियां दिखाई देती हैं। मुझे बेंगलोर एस्ट्रोनॉमिकल सोसाइटी के बारे में जानकारी मिली। यहां ऑब्जर्वेशनल सेशंस आयोजित किए जाते हैं। इस संस्था ने ग्रामीण क्षेत्रों में एस्ट्रोनॉमी को लोकप्रिय बनाने का मिशन भी शुरू किया है। खगोल मंडल नाम की टीम ने 30 घंटे का एक बहुत इनोवेटिव कोर्स शुरू किया है। साथियों, रात में तारों को निहारना अपने आप में अद्भुत अनुभव होता है। एस्ट्रो केरला नाम की एक संस्था नाइट ऑब्जर्वेशन कैंप और वर्कशॉप आयोजित करती है। यहां युवा साथी टेलीस्कोप बनाना और स्टार मैप्स का इस्तेमाल करना सीखते हैं। राजकोट के बिग बैंग एस्ट्रोनॉमी क्लब ने गिर के जंगलों से लेकर कच्छ के रण तक अनेक एस्ट्रोनॉमी इवेंट्स आयोजित किए हैं। ज्योतिर्विद्या परिसंस्था भी एस्ट्रोनॉमी के सबसे पुराने संस्थानों में से एक है। यहां ऑब्जर्वेशनल फैसिलिटीज के साथ साथ बुक्स लाइब्रेरी और टेलीस्कोप लाइब्रेरी की सुविधा भी है। मैं आईसेक का भी जिक्र करना चाहूंगा। यह एक स्टूडेंट लेड नेशन वाइड नेटवर्क है जो एस्ट्रोनॉमी और एस्ट्रोफिजिक्स क्लब को आपस में जोड़ता है। साथियों, अपनी हॉबी के लिए समय निकालना और लगातार कुछ नया सीखते रहना बहुत जरूरी है। मैं युवाओं से आग्रह करूंगा कि वे किसी एस्ट्रोनॉमी क्लब से जरूर जुड़े और इन छुट्टियों में किसी प्लेनेटेरियम को भी जरूर देखने जाए। साथियों, मन की बात कार्यक्रम को जो लोग टीवी पर देख रहे हैं, मैं उनसे कहूंगा एक वीडियो जरूर देखिएगा। ये वीडियो पिछले दिनों बहुत चर्चा में रहा। इसमें कुछ लोग बहुत धैर्य से, बहुत सावधानी से एक गंगा डॉल्फिन को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। आपको ये जानकर आश्चर्य होगा, इस पूरे प्रयास में करीब 13 घंटे लगे और आखिरकार वो डॉल्फिन बच गई। साथियों, इसमें बहुत बड़ी भूमिका रही भारत की पहली गंगा डॉल्फिन रेस्क्यू एम्बुलेंस की। ये घटना उत्तर प्रदेश की है। वहां एक गंगा डॉल्फिन नहर में फंस गई थी। ऐसे समय में नमामि गंगे अभियान के तहत बनी ये एम्बुलेंस उसके लिए उम्मीद बनकर पहुंची। फिर बहुत सावधानी से उसे बाहर निकाला गया, उसकी जांच की गई, उसका इलाज किया गया और उसके बाद उसे सुरक्षित राप्ती नदी में छोड़ दिया गया। एक तरह से कहें तो एक जीवन फिर अपने घर लौट गया। साथियों, ये डॉल्फिन रेस्क्यू एम्बुलेंस बहुत खास है। इसे एक चलते फिरते अस्पताल की तरह तैयार किया गया है। इसमें डॉल्फिन को सुरक्षित रखने की व्यवस्था है, ऑक्सीजन की सुविधा है, विशेष स्ट्रेचर है, बचाव के उपकरण है। यानी अगर कोई डॉल्फिन घायल हो जाए, नहर में फंस जाए या नदी से कट जाए तो तुरंत उसकी मदद की जा सकती है। साथियों, जब हम गंगा डॉल्फिन को बचाते हैं तो हम सिर्फ एक प्रजाति को नहीं बचाते, हम गंगा की जैव विविधता को बचाते हैं, नदी के पूरे जीवन तंत्र को बचाते हैं और अपनी आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रकृति की एक अमूल्य धरोहर भी बचाते हैं। मेरे प्यारे देशवासियों, आप में से बहुत लोगों की नदी, तालाब या कुएं के पानी से जुड़ी यादें जरूर होगी। किसी को तालाब में तैरना याद होगा, किसी को दोस्तों के साथ तालाब किनारे खेलना, किसी को उस मिट्टी की खुशबू याद होगी। बचपन की ऐसी यादें जीवन भर मन में बसी रहती है। साथियों, ऐसी ही यादों को बचाने की एक प्रेरक गाथा उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले से सामने आई है। बस्ती के आकाश गुप्ता अपने गांव की मनोरमा नदी को देखकर बहुत दुखी होते थे, क्योंकि जिस नदी को उन्होंने बचपन में साफ और जीवन देखा था, समय के साथ उस नदी में प्लास्टिक जमा होने लगा था, गंदगी बढ़ती चली जा रही थी। श्रीमान आकाश ने तय किया कि शिकायत नहीं करेंगे, एक नई शुरुआत करेंगे। शिकायत नहीं, शुरुआत मंत्र बन गया। उन्होंने अपने दोस्तों को साथ लिया। सिर्फ जाल था, फावड़ा था, टोकरी थी और सबसे बड़ी ताकत थी कुछ बदलने का संकल्प। ये युवा नदी में उतरते थे, जलकुंभी निकालते थे, प्लास्टिक और कचरा बाहर लाते थे। कई बार एक दिन में 50-60 किलो तक कचरा नदी से निकाला गया। धीरे धीरे मनोरमा नदी का वह हिस्सा फिर से साफ दिखने लगा। आसपास के लोगों का ध्यान भी इस काम की तरफ गया। लोगों में स्वच्छता को लेकर जागरूकता बढ़ी। साथियों, ऐसी ही एक प्रेरक कहानी गोवा से भी सामने आई है। गोवा के बाल कृष्ण अय्या जी रिटायर्ड टीचर हैं, लेकिन समाज के लिए काम करने का उनका उत्साह आज भी वैसा ही है। उन्हें मड्डी तोलाब इलाके में पानी की समस्या बहुत परेशान करती थी। उन्होंने भी समाधान के लिए काम शुरू किया। बालकृष्ण जी ने पाइपलाइन बिछाने के काम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इससे कई घरों तक पानी पहुंचा। जिन परिवारों को पानी के लिए रोज संघर्ष करना पड़ता था, उनके लिए यह बहुत बड़ी राहत बनी। साथियों, पिछले महीने मुझे एक बहुत अच्छा अनुभव हुआ। इसका संबंध मन की बात से भी जुड़ा है, इसलिए आज मैं इसकी चर्चा आपसे करना चाहता हूँ। तमिलनाडु के नागरकोइल में मेरी मुलाकात एक टीचर से हुई। करीब 3 दशक पहले भी मैं उनसे मिला था। मैं बात कर रहा हूं गिरिजा अम्मा जी की। इस मुलाकात के दौरान कुछ युवा स्टूडेंट्स भी उनके साथ थे। साथियों, गिरिजा अम्मा जी करीब 15 स्कूल चलाती हैं। इनमें चेन्नई का जय गोपाल गरोड़िया हिंदू विद्यालय बहुत प्रमुख है। उनकी देशभक्ति की भावना हर भारतवासी को प्रेरित करने वाली है। उन्होंने मन की बात से प्रेरणा लेकर देश के अनेक सैनिकों के लिए योगदान का संकल्प लिया। इसके लिए उन्होंने अपने सभी स्कूलों के स्टूडेंट्स को प्रेरित किया। उन्होंने बच्चों से कहा कि वे वीर जवानों के लिए हर दिन 1 रुपया योगदान दे, यानी 1 साल में हर स्टूडेंट की ओर से 365 रुपये जमा हुए। इस छोटे छोटे योगदान से करीब 40 लाख रुपये इकट्ठा हुए। गिरिजा अम्मा जी ने इस पूरी राशि का चेक मुझे सौंपा। उनसे बातचीत के दौरान मैंने महसूस किया कि माँ भारती के प्रति उनका समर्पण कितना गहरा है। पिछले वर्ष ही चेन्नई के पहले हिंदू विद्यालय ने अपने 50 वर्ष पूरे किए हैं। देश की शिक्षा और सांस्कृतिक गौरव को आगे बढ़ाने में स्कूल नेटवर्क की भूमिका बहुत प्रशंसनीय है। मैं इससे जुड़े सभी लोगों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ और उन स्टूडेंट्स की भी विशेष सराहना करता हूँ जिन्होंने अपने वीर सैनिकों के लिए योगदान दिया। साथियों, भारत के हर गांव में, हर शहर में कुछ न कुछ ऐसा हो रहा है जो हमें प्रेरणा देता है। कई बार इन प्रयासों की ज्यादा चर्चा नहीं होती, लेकिन जब हम इन्हें जानते हैं तो ये विश्वास और मजबूत होता है कि देश अपने लोगों की शक्ति से आगे बढ़ रहा है। मेरा आपसे आग्रह है अपने आसपास के ऐसे प्रयासों को जरूर देखिए। जो लोग समाज के लिए अच्छा काम कर रहे हैं उन्हें पहचानिए, उनकी सराहना कीजिए, उनसे सीखिए और हो सके तो खुद भी किसी अच्छे काम से जुड़िए। अगले महीने मन की बात में कुछ और प्रेरक गाथाओं के साथ मैं फिर आपसे जुड़ूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।
1: मन की बात आकाशवाणी के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी अपने मन की बातें साझा कर रहे थे। हम आपको बता दें कि माननीय प्रधानमंत्री के इस प्रसारण के बाद मन की बात के क्षेत्रीय भाषा में अनुवाद का प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के संबद्ध प्रादेशिक केंद्रों से तथा संस्कृत भाषा में अनुवाद का प्रसारण आकाशवाणी दिल्ली के इंद्रप्रस्थ चैनल मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज और FM गोल्ड 100.1 मेगाहर्ट्ज पर अभी किया जाएगा। मन की बात के क्षेत्रीय भाषाओं का पुनः प्रसारण आज रात 8 बजे आकाशवाणी के संबद्ध प्रादेशिक केंद्रों से और अंग्रेजी अनुवाद का प्रसारण FM रेनबो 102.6 मेगाहर्ट्ज पर किया जाएगा। यह कार्यक्रम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित किया गया।
2: ये आकाशवाणी दिल्ली है। लीजिए सुनिए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के मन की बात का संस्कृत अनुवाद।
3: मम प्रियाः देशवासिनः नमस्कारः। मन की बात इत्येतस्मिन् कार्यक्रमे पुनरेकवारं भवद्भिः सह संयुज्य अहम् अत्यन्तम् आनन्दितः अस्मि। देशस्य विभिन्नेषु भागेषु अस्माकं देशवासिनः देशहिते समाजहिते च एतादृशानि अद्भुतानि कार्याणि कुर्वन्तः सन्ति। वयं च यदा तद्विहितानां कार्याणां विषये शृणुमः तदा वयं नूतनां प्रेरणां प्राप्नुमः। अद्य कार्यक्रमस्य आरम्भम् अहम् एथलेटिक्स् इत्येतस्मिन् क्रीडाक्षेत्रे देशस्य अनयैव उपलब्ध्या करिष्यामि। कतिपयेभ्यः दिनेभ्यः पूर्वमेव झारखण्ड राज्यस्य रांची नगरे नेशनल सीनियर एथलेटिक्स फेडरेशन इत्याख्या प्रतियोगिता समायोजिता। एतस्यां प्रतियोगितायां देशस्य विभिन्नेभ्यः भागेभ्यः आगताः प्रायः 800 क्रीडकाः सहभागितां कृतवन्तः। एतस्मिन् 90 भिन्नासु चतुर्षु स्पर्धासु 4 राष्ट्रिय मानाङ्कनानि भग्नानि जातानि। गुरिन्दर वीर सिंहः, विशाल टीके इत्यसौ, तेजस्विन शंकरः, देवमीणा, कुलदीप कुमारश्च एतैः मित्रैः विभिन्नेषु वर्गेषु नूतनानि कीर्तिमानानि रचितानि। सर्वप्रथमम् अहम् एतान् सर्वान् अपि भूरिशः वर्धापयामि। सखायः, एकस्याः स्पर्धायाः अधिदेशं बहु चर्चा जायमान अस्ति। सा च अस्ति शतमीटरमितधावनस्पर्धा इत्येषा, अर्थात् शतमीटरमितः धावनक्रमः। केवलं दिनद्वये पुरुषवर्गीये शतमीटरमिते धावनक्रमे राष्ट्रियमानाङ्कनं वारत्रयं भग्नं जातम्। याभ्यां क्रीडकाभ्याम् एतत् भद्रप्रदर्शनं कृतं तौस्तः गुरिन्दरवीरसिंहः अनिमेषकुजूरश्च। अहं चिन्तितवान् ऐषमः मन की बात इत्येतस्मिन् कार्यक्रमे एताभ्यां क्रीडकाभ्यां सह वार्तां कुर्याम्। प्रधानमन्त्री, अनिमेषवर्य नमस्कारः। गुरिन्दरवीरः भवतेऽपि नमस्कारः। सत्श्री अकाल च। अनिमेषगुरिन्दरवीरौ नमस्कारः श्रीमन्। नमस्कारः महोदय। प्रधानमन्त्री, साधु भ्रातः, भवता तु अतिविशिष्टा उपलब्धिः समधिगतास्ति। भवद्युगलमपि विशेष प्रदर्शनमकरोत्। वयं सङ्गीते तु युगलप्रदर्शनं दृष्टवन्तः, परं समाह्वानेऽपि अधुना युगलप्रदर्शनं भवति। तत्र प्रथमम् एकः समाह्वानं पुरस्करोति, द्वितीयश्च तत्समाह्वानं स्वीकरोति, तृतीयवारं पुनश्च समाह्वानं करोति। अत्यन्तं रुचिकरः विषयः अभवत् भवतोः। अहमिच्छामि मन की बात इत्यस्य श्रोतारः अपि एतस्मिन् विषये भवतोश्च विषये जानीयुः। भवद्भ्यां यः पराक्रमः कृतः तं विषयमभिजानीयुः। अनिमेषः, नमस्ते महोदय। मम नाम अनिमेषकुजूरः। अहं 200 मीटर 400 मीटर इत्यनयोः राष्ट्रीय कीर्तिमानाङ्कन धर्ता अस्मि। अथ च महोदय, अहं मूलतः छत्तीसगढतः अस्मि। अधुना च अहम् ओडिशा पक्षतः क्रीडामि। विगतवर्षे अहम् एशियन अथ वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स इत्येताभ्यां पदकानि समर्जितवान्। अथ अहम् एथलेटिक्स इत्येतां क्रीडाम् 21st-century वर्षे समारब्धवान्, यदा अहं विद्यालयीयम् अध्ययनं पूर्णं कृतवान्। अहम् अम्बिकापुरस्थितात् सैनिकविद्यालयात् उत्तीर्णः अभवम्। अथ पूर्वमहं पदकन्दुकं क्रीडामि स्म। कोविड् संक्रमणकाले मम पितरौ क्रीडितुं मह्यमवसरं कल्पितवन्तौ। बहिः गत्वा धाव, क्रीडवा इति तौ वदतः स्म। यदा च कोविड् संक्रमणकालः समाप्तिं गतः, तदा मम मित्राणि, यानि मया सह पदकन्दुकं क्रीडन्ति स्म, मामाहूय विज्ञापितवन्तः यत् राज्यस्तरीयं मेलनं जायमानमस्ति, त्वं गत्वा सहभागितां कुरु। अहं च तत्र सहभागितां कृतवान्। मया एतन्न ज्ञातमासीत् यत् तत्र राष्ट्रस्तरीयं चयनं जायेत। अहं ततः राष्ट्रियदले चितः जातः। अथ अधुना अहं भारतस्य प्रातिनिध्यम् अन्ताराष्ट्रियस्तरे कुर्वन्नस्मि। प्रधानमन्त्री, भवतु, गुरिन्दरवीर किं प्रवर्तते? गुरिन्दरवीरः, नमस्ते श्रीमन्। मम नाम गुरिन्दरवीरः। अहं भारतीय नौसेनायां पेटी आफिसर इत्येतस्मिन् पदे कार्यरतः अस्मि। अहं च भारतस्य सर्वतः तीव्रधावकः अस्मि। अनतिचिरमेव अहं 100 मीटर मितं धावनं 10.09 सेकेण्ड मिते काले समाप्य राष्ट्रियं कीर्तिमानाङ्कनं समर्जितवान्। अहं प्रथमः तादृशः भारतीयः अस्मि यः 10.1 सेकेण्ड इत्यवधेः अपि अल्पकाले एव धावनं पूर्णं कृतवान्। मम प्रयासः भवति अहं धावनपथे सैन्यवेशभूषायां चापि स्वस्य देशस्य सेवां कुर्याम्। मम पिता पितामहश्च उभावपि क्रीडकौ आस्ताम्। अस्माकं भारतीया संस्कृतिः एषा, यदा नाम किमपि पर्व भवति, यथा दीपावली, नूतनवर्षः वा, तदा वयं स्वगृहस्य स्वच्छतां कुर्मः। अहमपि तदा पितुः वैजयन्तीनां पदकानां च स्वच्छतां करोमि स्म। तत् कार्यं मह्यं बहु रोचते स्म। अहम् अतिप्रसन्नः भवामि स्म। तस्मिन् काले यदा अहं कामपि वैजयन्तीं स्वच्छां करोमि स्म, तदा अहं पृच्छामि स्म, एषा चल वैजयन्ती कुतः विजिता? एतत् पदकं कुत्र जितम्? एतत् चित्रं कदा आकृष्टम्? तदा तदा सः स्वकथाः मां श्रावयति स्म। सः विज्ञापयति स्म यत् अहं तत्र क्रीडितुं गतः, अहमेतत् राष्ट्रिय पदकं जितवान्, अहं स्वदलस्य एतस्मिन् सन्दर्भे विजयं कारितवान्। ततः अहमपि तं प्रति कथयामि स्म यत् अहम् अपि कामपि क्रीडां कर्तुमिच्छामि। सः प्रातः धावनार्थं गच्छति स्म, तदा अहमपि तेन सह गन्तुं प्रार्थयामि स्म, अनन्तरं सः मामपि नयति स्म। सः क्रीडावधौ यत् किमपि अधिगतवान् आसीत् तत्

नमस्कार श्रोताओं, आपके स्नेह और अपनत्व से भरे पत्रों और व्हाट्सएप संदेशों से सजे कार्यक्रम आपका पत्र मिला में मैं फरीना दिल से आपका स्वागत करती हूं। और कार्यक्रम में हमेशा की तरह आपके पत्र को, आपके मैसेज को हम शामिल करेंगे।

0: उससे पहले आपको बता दें कि कार्यक्रम में आपके पत्रों को पढ़ूंगी मैं और उसका जवाब देंगे हमारे साथी
1: सचिन शर्मा। सभी श्रोताओं को मेरा भी प्यार भरा नमस्कार।
0: तो सचिन जी, शुरू कर लेते हैं सिलसिला।
1: हाँ बिल्कुल।
0: कार्यक्रम का पहला मैसेज हमें भेजा है नगीना से अनिल विनोचा जी ने। उन्होंने लिखा है, आज के प्रोग्राम का पेश करने वाले ताबेदारों को हमारा सादर नमस्कार। आपको भी नमस्कार। आपने पूरे वीक प्रोग्राम किए, उसके प्रति हम भी अपनी ताबेदारी निभा रहे हैं और अपने मन की बात आपको सेंड कर रहे हैं। आगे लिखते हैं, तो आज फरीदा जी ने गोल्डन हिट्स में इतने भावात्मक सॉन्ग प्ले किए कि प्रोग्राम इतना अच्छा लगा, बस दिल दिमाग वहीं रुक गया। सूरज के साथ साथ भी बहुत अच्छा किया गया। उसके आगे ये लिखते हैं, उधर मंडे को ममता जी ने आपकी फरमाइश बहुत अच्छे सॉन्ग और शेर कहे, बहुत अच्छे लगे। मंगल में आई सुबह में तो मैडम की कड़क चाय ले आई, रेडियो ऑन किया तो ज्योति गौड़ जी की ऊर्जा से भरपूर वॉइस, सच बिना कोई विटामिन का कैप्सूल खाए ही ताजगी आ गई। प्रोग्राम तो सुपर से ऊपर लगा। चित्रपट प्रोग्राम रविकांत वर्मा जी ने बहुत अच्छे से पेश किया। वेंसडे को दिल ने फिर याद किया, मैं अलका जी ने नानी जी के घर की याद दिला दी। सच में मैं तो AIR नजीबाबाद का ही होकर रह गया। फ्राइडे को जागरूक श्रोता में तंबाकू विरोध दिवस पर राजवीर जी और रविकांत जी ने एक बहुत सार्थक प्रोग्राम कर दिल जीत लिया। उधर मनोज वर्मा जी कहाँ किसी से कम है, वो तो दिलों पर राज करते हैं। बड़े अच्छे सॉन्ग प्ले किए, दिल पे कब्जा कर बैठे। सैटरडे को सदफ जैदी जी ने जिंदगी लाइव में लू पर बहुत अच्छा ही और इम्पोर्टेंट प्रोग्राम प्रस्तुत किया, सच में मजा आ गया। बस यही हाले सूरत हैं बीते वीक की।
1: बहुत बढ़िया। और आपके एक एक दिन, आपने प्रतिदिन हर कार्यक्रम को सुना और उसकी प्रतिक्रिया यहाँ पर लिखी। और इतना ही नहीं कि जो कार्यक्रम यहाँ से प्रसारित किया गया है उसमें प्रस्तोता कौन थे, कौन उसे प्रस्तुत कर रहे थे, वो भी आपने नाम वार जिक्र किया है उन सभी लोगों का। और ये बहुत अच्छी बात है। और आपका पत्र हमें जब मिलता है तो हम भी बहुत खुश हो जाते हैं और इस तरह की खुशी से हमें और ऐसा लगता है कि हम आगे भी आपके लिए इसी तरह के कार्यक्रम प्रस्तुत करते रहें। अनिल विनोचा जी नगीना से हमें जो पत्र लिख रहे हैं, और साथ ही मैं आपको एक बात और कहना चाहता हूँ, केवल ये पत्र तारीफ से भरा है और इस कार्यक्रम का मकसद केवल तारीफ नहीं और कुछ आलोचना, कुछ समालोचना भी है। और यदि सम्यक रूप में दोनों ही काम हो तो बहुत अच्छा लगेगा और उससे हमें भी काफ़ी प्रेरणा मिलेगी, मदद मिलेगी कि हम इस कार्यक्रम में आपके पत्रों को सुने और जब उन पत्रों में हमारी थोड़ी समालोचना होगी, थोड़ा कुछ सुझाव होंगे, तो उन सुझावों के बल पर हम आगे और अच्छे कार्यक्रम अपने श्रोताओं की खिदमत में पेश कर सकें। तो अपने सभी श्रोताओं से हमारा निवेदन है कि आप भी हमें इस कार्यक्रम में अपने पत्र लिख सकते हैं। और पत्र लिखने के लिए हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9457078288। इस नंबर पर आप अपना जो भी पत्र है, जो भी कथन है, वो हमें व्हाट्सएप पे टाइप करके भेज दीजिए। आपका मैसेज सीधा हमारे स्क्रीन पर रिफ्लेक्ट होगा और हम आपका पत्र अपने कार्यक्रम में शामिल करेंगे और साथ ही तारीफ नहीं, कुछ सुझाव भी। पत्र लिखने के लिए अनिल विनोचा जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: और जैसा कि सचिन जी कह रहे हैं कि हम आपने बीते वीक की हाले सूरत भेजी है, तो बीते वीक की जो भी आपको हाले सूरत में कमी लगी हो तो उसे जरूर बताइएगा ताकि हम उसे में सुधार करें और अच्छा और बेहतर करने की कोशिश करें।
1: जी बिल्कुल। अगला पत्र लेंगे फरीना जी।
0: ये अगला पत्र हमें भेजा है, ये भेजने वाले हैं ग्राम चमरोआ जिला संभल उत्तर प्रदेश से ब्रजेश सिंह मिस्त्री, कविता वैष्णवी, दिव्यांश किशन भाई सोमपाल और उनके परिवार के सदस्य। ये लिखते हैं, आकाशवाणी नजीबाबाद हम सुन रहे हैं, पत्र लिख रहे हैं। आपसे एक शिकायत है कि हमारी ये शिकायत है कि हमारा पुराना पत्र पढ़ देते हैं।
1: हाँ।
0: और जो हम पत्र भेज रहे हैं उसी को
1: पढ़िएगा।
0: देखिए हम वही पत्र पढ़ रहे हैं। शुक्रवार वाले दिन रात के हम सफर कार्यक्रम हमने सुना। रात को 10:30 से हेलो फरमाइश में हमारा फोन रिसीव नहीं हुआ।
1: कॉल बराबर
0: जा रही थी। आप बताइए कि हमारी कॉल लगती है, फोन लगता है, तो फोन रिसीव क्यों नहीं करते, हमारी शिकायत है। आप जरूर हमें बताइए। आपके शुभचिंतक।

0: ब्रजेश सिंह, जिला संबल से, नियमित श्रोता 30 वर्षों से।
1: जी हाँ ब्रजेश भाई, हम आपको एक बात बता दें। पहले तो आपने पत्र लिखा और बहुत अच्छी इसमें बात लिखी कि आप कह रहे हैं कि आप हमारा पुराना पत्र पढ़ देते हैं, तो इस बार जो पढ़िएगा वो नया पत्र पढ़िएगा। तो आपको हाथ कंगन को आरसी क्या और पढ़े लिखे को फारसी क्या, ये बिल्कुल चरितार्थ हो गया कि हम तो आपका लेटेस्ट वाला पत्र ही पढ़ रहे हैं। साथ ही आपने बात लिखी कि हेलो फरमाइश, हेलो नजीबाबाद कार्यक्रम में आपका 2 बार कॉल लगा और दोनों ही बार रिसीव नहीं हुआ, कॉल बराबर जाती रही। तो उसके लिए हम अपने सभी श्रोताओं को एक बात बता देना चाहते हैं कि जब भी हमारा कोई श्रोता हम तक अपना कॉल या पत्र भेजता है तो उसको कार्यक्रम में शामिल करने का भरसक प्रयास किया जाता है। जहाँ तक बात है आपकी हेलो नजीबाबाद कार्यक्रम में कॉल के शामिल ना होने की, तो उस पर हम आपसे केवल इतना ही कहना चाहते हैं कि जब यहाँ से हम कोई कार्यक्रम प्रस्तुत कर रहे होते हैं जो सजीव रूप से प्रस्तुत हो रहा होता है, तो उसमें हमारे पास 2 फ़ोन नंबर्स हैं जिन पर हमारे श्रोता कॉल करते हैं। हमारे दोनों फ़ोन नंबर्स हमारे सभी श्रोताओं के पास हैं, हम एक बार फिर भी बता देते हैं, 01341230105 और 9457078288। आप इन दोनों नंबर पर हमसे जुड़ते हैं और अपने पत्र या अपनी कॉल हम तक पहुँचाते हैं। लेकिन आपने बोला कि आपकी कॉल 2 बार लगी कार्यक्रम में लेकिन रिसीव नहीं हुई। जिस समय आपकी कॉल लगी होगी दूसरी लाइन पर, उस समय हमारे पास पहली लाइन पर पहले से एक श्रोता कॉल पर मौजूद होगा और ये हमारी व्यवस्था है कि हम एक समय में एक ही श्रोता को ऑन एयर कर सकते हैं। किसी भी केंद्र की ये व्यवस्था है,

0: मौका दे देते हैं। और इसके पीछे कारण ये नहीं होता कि आपको मौका नहीं देना है, मौका ये होता है, बात ये होती है कि केवल एक समय में एक ही श्रोता को ऑन एयर किया जा सकता है। ये व्यवस्था है, ये तकनीकी व्यवस्था है, और एक ही श्रोता से बात की जा सकती है। तो इस बात को अन्यथा या अन्यत्र ना लें और सुनते रहें आपका कार्यक्रम और प्रयास करते रहें। जो भी है, आपका कॉल एक ना एक दिन ज़रूर लगेगा और हम आपसे बातें करेंगे लाइव उस कार्यक्रम में। पत्र लिखने के लिए ब्रजेश भाई धन्यवाद।
1: ये अगला पत्र हमें भेजा है सब्जी मंडी नजीबाबाद से। आप हैं विष्णु अग्रवाल, रानी अग्रवाल, दिव्यांशु यादव और पप्पू भाई।

0: कार्यक्रम में ऐड किए गए हैं, तो उस इन इसी वजह से, क्योंकि इतने सारे चंक्स युववाणी कार्यक्रम में हमने समाहित किए हैं, इसी कारण से हम और थोड़ा पत्रोत्तर कार्यक्रम वहाँ से थोड़ा सा शिफ्ट किया गया है। लेकिन आपका ये सुझाव हमने अपनी डायरी में नोट कर लिया है विष्णु अग्रवाल जी, और जैसे ही ये सुझाव हम अपने उच्चाधिकारी को प्रेषित करेंगे तो आशा करते हैं कि इस पर कोई ना कोई सार्थक कार्यवाही ज़रूर की जाएगी, है ना। तो तब तक के लिए आप अपनी इंतज़ार करते रहिए कि आपने जो सुझाव दिया है उस पर अमल हुआ है या नहीं, और आशा करते हैं कि ज़रूर इस पर अमल होगा। युववाणी कार्यक्रम में भी पत्रोत्तर जल्दी से जल्दी शामिल कर लिया जाएगा। ये संदेश आपका जो है हमारे उच्चाधिकारियों तक पहुँच चुका है और पहुँचने ही वाला है, है ना। तो पत्र लिखने के लिए विष्णु भाई आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
1: सचिन जी, श्रोताओं के प्यार भरे पत्र और व्हाट्सएप संदेश हमें लगातार मिलते रहते हैं और ये बताता है कि हमारे श्रोताओं का कार्यक्रम से कितना जुड़ाव है।
0: हाँ, बिल्कुल।
1: तो पढ़ लेते हैं ये अगला संदेश हमें किसने भेजा है। ये संदेश हमें भेजा है ग्राम जुजैला थाना शिवाला क्लब बिजनौर से राशिद अंसारी, परवीन जहां, निशात, आयशा, आलिया, सायना, महवेश, मोहम्मद अफान, अदीना नूर। आपका पत्र मिला कार्यक्रम प्रस्तुत कर रहे फरीना जी और सचिन जी को प्यार भरा आदाब। आपको भी आदाब। आज हम सुबह से ही कार्यक्रम सुन रहे हैं, सभी कार्यक्रम सुपरहिट जा रहे हैं। फरीना जी ने गीतों का चयन किया वो बेमिसाल है, शुक्रिया आपका। और अब फरीना जी और सचिन जी इस कार्यक्रम को बहुत अच्छे से प्रस्तुत कर रहे हैं। आज की गीतों का चयन अच्छा किया गया। अब सचिन शर्मा जी आपका पत्र मिला कार्यक्रम पेश कर रहे हैं, हमें सच में अच्छा लग रहा है। विश्वास द्विवेदी जी के कार्यक्रम हमें अच्छे लगते हैं। विवेक प्रताप जी ने आपका जो कार्यक्रम अभी फिलहाल प्रस्तुत किया था वो अच्छा लगा। 24 तारीख को कार्यक्रम गोल्डन हिट्स गीत तुम्हारे सुहाना सफ़र अच्छा लगा। शिवा शुक्ला और रविकांत वर्मा जी ने मिलकर पेश किया अच्छा लगा। किसी दिन का आपका पत्र मिला कार्यक्रम जो शिवा शुक्ला, अच्छा मतलब ये लिख रहे हैं कि पिछले हफ्ते के बारे में, कि आपका पत्र मिला कार्यक्रम में शिवा शुक्ला रविकांत वर्मा जी ने जो पेश किया इन्हें अच्छा लगा और उन्होंने प्रयास किया कि ज़्यादा से ज़्यादा पत्रों को शामिल किया जाए। उनके उत्तर हमें अच्छे लगे। इसके बाद 29 मई में सूरज के साथ साथ सुहाना सफ़र ज्योति जी ने पेश किया अच्छा लगा। रविकांत वर्मा जी का साथ भी अच्छा लगा। बीते शुक्रवार को जागरूक श्रोता कार्यक्रम में युवा जोड़ी राजवीर सिंह रविकांत जी ने प्रस्तुत किया वो भी अच्छा लगा। 29 मई को हेलो नजीबाबाद कार्यक्रम शिवा शुक्ला जी ने बड़ी मेहनत से प्रस्तुत किया, गीतों का चयन भी अच्छा लगा और हमारी पसंद का गीत सुनवाया गया, हमारी कॉल भी लग गई उनका हार्दिक धन्यवाद। हमारी एक गुजारिश है कि आपका पत्र मिला कार्यक्रम को भी लाइव कर दिया जाए ताकि हम आपसे रूबरू और आमने सामने बात कर सके, मतलब ये
0: फोन इन लाइव चाह रहे हैं।
1: कृपया हमारे पत्र को पूरा पढ़े और पत्र पढ़ने के लिए आपका धन्यवाद।
0: अरे देखिए राशिद भाई, ग्राम जुझेला थाना शिवाला कला से हमें पत्र लिख रहे हैं और इन्होंने लिखा है लास्ट में कि ये जो आपका पत्र मिला कार्यक्रम है इसको फोन इन लाइव कर दिया जाए जिससे आपसे और हमारी बात बिल्कुल रूबरू हो सके, बिल्कुल सीधे बात हो सके। लेकिन मैं आपको बता देना चाहता हूँ राशिद भाई, हर कार्यक्रम की थोड़ी थोड़ी कुछ लिमिटेशंस हो सकती हैं, तो हम उन लिमिटेशंस को क्रॉस नहीं कर सकते। आपका पत्र मिला कार्यक्रम, जैसे इसका टाइटल ही है कि आपका पत्र मिला, जैसे ही हमको आपका पत्र मिलता है हम तभी अपनी प्रतिक्रिया आपको देते हैं और आप अपनी प्रतिक्रियाएं अपने पत्र के माध्यम से हम तक पहुंचा देते हैं, क्योंकि आपने एक नए बिल्कुल कार्यक्रम के नए स्वरूप का बिल्कुल यहां पर जिक्र किया है। तो उस परिप्रेक्ष्य में मैं आपसे कहना चाहता हूं कि ये सुझाव हमने अपनी डायरी में नोट कर लिया है और इस कार्यक्रम के इस कलेवर को हम अपने उच्च अधिकारियों तक अग्रेषित करने का प्रयास करेंगे और यदि संभव हो पाया तो हमारे अधिकारी इस पर ज़रूर कोई ना कोई कार्यवाही करेंगे, है ना। तब तक के लिए सुनते रहिए आकाशवाणी नजीबाबाद। पत्र लिखने के लिए राशिद भाई आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
1: ये अगला पत्र हमें भेजा है जिला मुरादाबाद ग्राम धूलापुर उत्तर प्रदेश से मोहम्मद फरमान, मोहम्मद सलमान, मोहम्मद इरफान, मोहम्मद इसरार, नरगिस खातून। ये लिखते हैं आपको हमारा प्यार भरा नमस्कार। आप सभी कार्यक्रम हमें बेहद पसंद आते हैं, अच्छे लगते हैं, लेकिन एक बात अच्छी नहीं लगती है।
0: हाँ, क्या?
1: वो शिकायत कर रहे हैं कि आपका एक प्रोग्राम जिसका नाम है हेलो नजीबाबाद फोन इन कार्यक्रम है लेकिन हमारी कॉल लगती नहीं है।
0: हाँ,
1: और अगर लगती है तो आप रिसीव नहीं करते, आप क्यों करते हैं ऐसा? एक प्रोग्राम को बंद कर दीजिए या फिर
0: इतनी नाराज
1: बढ़ा दीजिए।
0: हाँ, ये बिल्कुल सही बात कह रहे हैं फरमान भाई, सलमान भाई, इरफान भाई, इसरार भाई और नरगिस।

0: खातून, जिला मुरादाबाद, ग्राम दुल्हापुर, उत्तर प्रदेश से, कि आपकी जो हमारा जो कार्यक्रम है हेलो नजीबाबाद, इसमें इनकी कॉल लगती नहीं, कॉल लग भी जाती है तो रिसीव नहीं होती। तो फरमान भाई और परिवार के सभी साथियों को मैं एक बात बता देना चाहता हूँ, अभी अभी सबसे कार्यक्रम का जो पहला पत्र था उसमें भी यही बात हुई कि हमारी कार्यक्रम में कॉल तो लग जाती है लेकिन रिसीव नहीं हो पाती है। तो उसका कारण मैं आपको बता देता हूँ कि आकाशवाणी नजीबाबाद के द्वारा जो ये संचालित कार्यक्रम है हेलो नजीबाबाद, इसमें दो दूरभाष संख्याएं अपने श्रोताओं को उनकी सुविधा के लिए दी गई हैं, 01341-230105 और 9457077828, कि अगर एक नंबर पर कॉल ले रखी है तो दूसरे नंबर पर कॉल ऑन एयर है, यदि एक नंबर पर कॉल तो दूसरे नंबर पर कॉल हम होल्ड करके रख लें और एकदम वो कॉल करते ही अपने दूसरे श्रोता को एकदम ऑन एयर कर दें, है ना। उसका कारण ये होता है, लेकिन हमारे सभी श्रोता इससे थोड़ा सा असंतुष्ट दिखाई देते हैं। मैंने अभी अभी बोला कि हम एक बार में केवल एक ही श्रोता को ऑन एयर रख सकते हैं, ये हमारे ही केंद्र की व्यवस्था नहीं है, ये दुनिया में जितने भी आकाशवाणी के केंद्र हैं सभी केंद्रों पर एक बार में केवल एक ही व्यक्ति को ऑन एयर किया जा सकता है और उससे बात की जा सकती है, ऐसा कुछ तकनीकी बाध्यताएं हैं, क्योंकि एक बार में आप भी फोन पर केवल एक आदमी से ही, एक व्यक्ति से ही पूरी बात कर सकते हैं और बहुत आराम से बात कर सकते हैं। दो आदमी अलग अलग नजरियों से बात करते हैं, उनकी बातों को ऑन एयर करना शायद सुसंगत नहीं होगा, इसी वजह से एक ही व्यक्ति के साथ हम एक बार में ऑन एयर होते हैं। और यदि कॉल नहीं लगती है तो उसके लिए बिल्कुल भी अपने मन में तनिक मात्र भी कोई ऐसा रंजिश ना रखें, ऐसी नाराजगी ना रखें कि जिसकी हमने आपकी कॉल रिसीव नहीं की। हमारी व्यवस्था है, हमारे सभी श्रोताओं को हम बता देना चाहते हैं एक बार फिर से, बार बार हम यही बात कहते हैं कि एक बार में केवल एक ही श्रोता ऑन एयर हो सकता है। तो फरमान भाई और आप सबके परिवार वाले, हम दुल्हापुर से हमें पत्र लिख रहे हैं, जिला मुरादाबाद, ग्राम दुल्हापुर, उत्तर प्रदेश से, हम आपको यही बताना चाहते हैं कि ऐसा हो जाता है, लेकिन आप प्रयास करते रहिए। लहरों से लड़कर नौका पार नहीं होती, लहरों से लड़कर नौका पार डर कर नौका पार नहीं होती, और क्या बोलते हैं उसे, हौसला हारने वालों की कभी हार नहीं होती, इस तरह का कुछ होता है। हाँ, तो आप हौसला बनाए रखिए, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, तो अपना हौसला बनाए रखिए, कोशिश करते रहिए और एक ना एक दिन आपकी कॉल जरूर लगेगी। ठीक है, पत्र लिखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
1: और ये पत्रों की परंपरा को बहुत खूबसूरती से निभाते हुए नरेंद्र कुमार जनपद मेरठ से हमें पत्र लिख रहे हैं। इन्होंने लिखा है कि हाल ही में नजीबाबाद केंद्र से यश चोपड़ा की फिल्म दाग के गीत सुनवाए गए, 17 मई को काला पत्थर फिल्म से गीत सुनवाए गए, और इन्होंने बहुत सारी फिल्मों के नाम लिखे हैं। 18 मई को नेहा शर्मा ने प्रथम प्रसारण सभा के दौरान विभिन्न कार्यक्रमों को खूबसूरती से पेश किया। फैजुर रहमान जी ने भी खूबसूरती से कार्यक्रमों में अपनी शिरकत पेश की। पर्यावरण संरक्षण के मुद्दे पर ज्योति पाल ने विशेषज्ञ सुबोध वर्मा से बेबाक बातचीत की। आगे लिखते हैं, मानशु रंजन ने कृषि जगत कार्यक्रम में बीजोपचार की महत्ता पर प्रकाश डाला। श्री तेवतिया ने किसानों को बीज अनुदान की सरकार द्वारा प्रदान की जा रही सहूलियत का भी जिक्र किया। हिमांशु रंजन ने किसान भाइयों को लोकगीत भी सुनवाया। और उसके आगे इन्होंने लिखा है, साप्ताहिक कार्यक्रम पब्लिक स्पीक कार्यक्रम में जनगणना का जिक्र करते हुए मकानों का सूचीकरण के बारे में बताया गया। समाचार सेवा प्रभाग की ओर से फरहत नाज ने इस कार्यक्रम का सफलतापूर्वक संचालन किया। 19 मई को नमित राज जी ने सभी कार्यक्रम बखूबी पेश किए और 20 मई को नजीबाबाद केंद्र से शिवा शुक्ला की प्रस्तुति भी अच्छी रही। जसवंत जी ने भी कार्यक्रम बहुत अच्छे से पेश किए। श्वेता भट्ट ने एक ही फिल्म से कार्यक्रम में दिल तो पागल है के गीत सुनवाए और एक लंबी सी लिस्ट इन्होंने दी है फिल्मी गीतों की। उसके आगे लिखते हैं कि कार्यक्रम मुझे याद है जरा जरा में शोभित शर्मा जी ने अवकाश प्राप्त उद्घोषक एस के नोटियाल साहब से अतरंग बातचीत कर आकाशवाणी नजीबाबाद के सुधी श्रोताओं को सुनवाई। यशोधर डबराल का कार्यक्रम के प्रति सहयोग बहुत अच्छा रहा। श्वेता भट्ट ने आपकी फरमाइश कार्यक्रम को भली भांति प्रस्तुत किया। 21 मई को चरणजीत सिंह ने वंदना कार्यक्रम से लेकर सुहाना सफर तक सभी कार्यक्रम बखूबी प्रस्तुत किए। 22 मई को नमित राज जी ने एक बार फिर कार्यक्रम को बहुत अच्छे से प्रस्तुत किया। निधि भारद्वाज ने हेलो नजीबाबाद कार्यक्रम बहुत अच्छे से प्रस्तुत किया। कानूनी सलाह कार्यक्रम के अंतर्गत एस के नौटियाल साहब ने भ्रष्टाचार निवारण के मुद्दे पर अधिवक्ता समरपाल सिंह से खास तौर पर उपयोगी बातचीत की। अलीना और सना ने युवाणी कार्यक्रम बढ़िया प्रस्तुत किया।

0: हिमानी न्यूरो थेरेपिस्ट का साक्षात्कार भी खास तौर पे पेश किया, जो अच्छा लगा।
1: तो नरेंद्र कुमार जी हमारे नियमित श्रोता हैं और ये दिनवार, और दिनवार भी क्या कहें, घंटेवार, हर घंटे में कौन सा कार्यक्रम आकाशवाणी नजीबाबाद में से प्रसारित होता है उस कार्यक्रम की ये पूरी पूरी समीक्षा लिखते हैं कि कौन कलाकार है, कौन प्रस्तुत करता है, कौन आमंत्रित यहाँ पर कलाकार है वो उस कार्यक्रम में है, किस फिल्म के गीत सुनवाए गए, किस तरह से कार्यक्रम प्रस्तुत किया गया, और इनका पत्र भी जो है A4 साइज लीगल साइज का जो इनका पेज है और उन्होंने 4 पेज लीगल साइज के यहाँ पर लिखे हैं, तो इतना सब कुछ लिख देते हैं कि अगर इनके पूरे पत्र को पढ़ा जाए तो शायद हमारे लिए वो पत्र पढ़ना पूरे कार्यक्रम में संभव नहीं हो पाएगा, तो इसलिए हमने इस पत्र के कुछ अंश ही लिए हैं। तो पत्र लिखने के लिए नरेंद्र कुमार जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और फरीना, हम देख रहे हैं कि घड़ी की सुइयां अब हमें और इजाजत नहीं देती कि कार्यक्रम को आगे बढ़ाया जाए। मुझे लगता है कार्यक्रम को अब यहीं पर समेटना चाहिए और कर लेते हैं अपने श्रोताओं को नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम आपका पत्र मिला। हम आकाशवाणी नजीबाबाद से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 954 किलो हर्ट्ज पर। दोपहर के 12:30 हुए हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम फिल्मी संडे।

0: فلمی سنڈے،
1: فلمی سنڈے،
0: فلمی سنڈے،
1: فلمی سنڈے۔
2: फिल्मी संडे कार्यक्रम के हमारे सभी श्रोताओं को हमारा प्यार भरा नमस्कार। श्रोताओं, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं सन 1991 में रिलीज हुई एक सुपरहिट फिल्म 100 डेज। ये फिल्म एक कल्ट क्लासिक मनोवैज्ञानिक थ्रिलर फिल्म जिसमें माधुरी दीक्षित, जैकी श्रॉफ, मुनमुन सेन और जावेद जाफरी मुख्य भूमिकाओं में। पार्थ घोष द्वारा निर्देशित ये फिल्म एक्स्ट्रा सेंसरी परसेप्शन यानी दिव्य दृष्टि पर आधारित है। यह मुख्य पात्र देवी यानी कि माधुरी दीक्षित को भविष्य की घटनाओं का पूर्वाभास होता है। अपनी शानदार सस्पेंस और अभिनय के लिए जानी जाने वाली ये फिल्म आज भी हिंदी सिनेमा की थ्रिलर फिल्मों में गिनी जाती है। पार्थ घोष ने अपने निर्देशन से इस फिल्म में 4 चांद लगा दिए हैं।

फिल्म की शुरुआत एक अजीब और थोड़ा डरावने माहौल से होती है। हमें जल्द ही पता चलता है माधुरी दीक्षित यानी कि देवी एक सामान्य लड़की नहीं है। उसे कभी कभी ऐसे विजन्स आते हैं जो भविष्य की झलक होते हैं और बाद में सच साबित होते हैं। टेनिस खेलते हुए देवी को विजन आता है कि उसकी बहन रमा को कोई मारना चाहता है। देवी टेनिस खेलते हुए ये सब विजन्स देखकर बेहोश हो जाती है। होश में आने के बाद हॉस्टल से देवी अपनी दीदी रमा से बात करने की जिद करने लगती है। फोन पर अपनी बहन से बात करके जब वो जान लेती है कि उसकी दीदी ठीक है तब वो तसल्ली कर लेती है। ठीक उसी समय सुनील यानी कि जावेद जाफरी जो कि देवी का दोस्त है देवी से मिलने आता है।

0: रमा किसी फार्म हाउस पर अकेली होती है, जहाँ पर माहौल काफी डरावना होता है। कोई अनजान शख्स रमा के कमरे में चुपके से दाखिल होता है और रमा को मार देता है और उसकी लाश को एक बंद पड़ी कोठी में दीवार में चिनकर छुपा देता है। कातिल जब रमा को मार रहा होता है, उस समय छिपकर एक अनजान महिला अपने कैमरे से इस वारदात की वीडियो बना रही होती है। रमा को गायब हुए अब 5 साल हो चुके हैं। कोई भी रमा के बारे में कुछ नहीं जानता कि रमा है भी या नहीं। देवी और उसके चाचा अपनी लाइफ को दोबारा शुरू करते हैं। अब कहानी में एंट्री होती है जैकी श्रॉफ यानी रामकुमार की। रामकुमार और उसका दोस्त बालन दत्ता साहब की बेटी की शादी के रिसेप्शन में जाने का प्रोग्राम बनाते हैं, लेकिन गलती से वो किसी दूसरे के यहाँ पार्टी में चले जाते हैं। वो पार्टी देवी के दोस्त की शादी की होती है। वहाँ पर रामकुमार और बालन को देवी पकड़ लेती है कि वो गलत जगह बिन बुलाए मेहमान की तरह पार्टी में आ गए हैं। इस पर देवी और रामकुमार के बीच तीखी नोकझोंक होती है।
1: उस खुदा की जिसने जहां बनाया।
2: बंदे को बालम कहते हैं, बंदे को कुमार राम कुमार कहते हैं।
3: यहाँ कैसे आए?
2: हम आए नहीं, हमें बुलाया गया। इतना बड़ा कार्ड भेजा था।
3: किसने भेजा?
1: दत्ता साहब ने।
2: हाँ दत्ता साहब। कहीं
3: दत्ता साहब? कौन दत्ता साहब?
1: जिसकी बेटी की शादी है।
3: शादी सुधा की है और सुधा दत्ता साहब की नहीं, माथुर साहब की बेटी है।
1: दूसरी जगह बुलाया ना?
2: हाँ 100% यही जगह है। मैंने अपने डायरी में लिखा है। डायरी बोला, आज तारीख क्या है?
3: 24। और अब ये कहिए कि तारीख में गलती हो गई।
2: हाँ सर, हमें 25 को आना था, हम 24 को आ गए। कल और आज में जरा गड़बड़ हो गई।
1: 50,000 रुपए का गिफ्ट दे दिया। सॉरी मैम, हम यहाँ गलती से आ गए।

0: इधर घर पर देवी के अंकल और सुनील देवी का इंतजार कर रहे हैं। देवी और रामकुमार को साथ आते देखकर सुनील मन ही मन चढ़ जाता है और वहाँ से चला जाता है। अंकल कुमार से देवी की शादी की बात करते हैं और रजामंदी के बाद शादी की तैयारी करने लगते हैं।
1: सुन सुन
2: जा जा
1: ए सुन सुन
2: अरे जा जा।

0: लेकिन साथ ही रमा को याद करके माहौल थोड़ा गमगीन हो जाता है। देवी और राम की शादी हो जाती है।
1: शी,
2: क्या हुआ? मुंह क्यों फेर लिया?
1: अरे मुंह नहीं फेरू तो और क्या करूं?
2: पर हुआ क्या?
1: ये अंग्रेज मेमो की तरह ड्रेसिंग करके क्यों आई हो?
2: क्यों? क्या खराबी है इस ड्रेस में?
1: क्या अच्छाई है इस ड्रेस में? अरे हमारे हिंदुस्तान की दुल्हन कैसी होती है?
2: कैसी होती है?
1: जो लचाती है, शर्माती है, घुंघटाने हुए आती है, और आती क्या है, धकेली जाती है। और तुम?
2: ओह, तो आपको वैसी बीवी चाहिए? दो मिनट रुकिए, मैं अभी उसे भेजती हूँ।

0: करते हैं दिलहन, मुझे ला जाते हैं, मैं नहीं जाऊंगी। देखो थका नहीं देना। अरे कहाँ जा रहे हो तुम लोग?
1: नहीं जिंदगी शुरू हुई।
0: पतिदेव जी आशीर्वाद दीजिए।
1: सदा सुहागन हो।

रामकुमार बिजनेस के सिलसिले में बाहर चला जाता है और देवी रामकुमार की कोठी को सजाने के लिए वहाँ चली जाती है और वहाँ उसे सपने में फिर से किसी की हत्या होती दिख जाती है। उधर एक लड़की किसी कैसेट को लेकर फोन पर किसी को धमका रही है। देवी और बालन कुमार की कोठी की साफ सफाई कर रहे होते हैं। साफ सफाई करते हुए देवी को जो चीजें दिखाई देती है वो बिल्कुल उसके सपनों से मेल खाती है। अब देवी परेशान है लेकिन सच की कड़ियां जोड़ने में अभी थोड़ा सा समय है। तभी उसे एक दीवार के पीछे एक कंकाल मिलता है। पुलिस कंकाल को अपने कब्जे में लेकर छानबीन शुरू करती है। उधर देवी की दोस्त सुधा उससे मिलने आती है और उसे एक रिस्ट बैंड गिफ्ट करती है। सुधा के पति को सिगरेट पीता देख देवी को अपने सपने के वही सीन फिर से याद आने लगते हैं। देवी सुनील से मदद मांगने लगती है और कहती है कि मेरे सपनों में जिस औरत का खून होने वाला है उसे बचाने में उसे सुनील की मदद चाहिए, लेकिन सुनील उसकी बात का यकीन नहीं करता। तभी एक डॉक्टर सुनील को ये बताता है कि देवी जो कह रही है वो सही है, उसे पूर्वाभास कहा जाता है। अब सुनील देवी पर यकीन करने लगता है। तभी देवी को भ्रम होता है कि उसकी मरी हुई बहन उसे बुला रही है।

देवी के चाचा देवी से रमा की मौत के बारे में बात करके परेशान हो जाते हैं। वो देवी से पूछ रहे होते हैं कि पुलिस को किस पर शक है। देवी छानबीन करते हुए सुनील के साथ बॉम्बे म्यूजियम पहुंचती है कि शायद उसे कोई सुराग मिले। म्यूजियम में एक लापता मूर्ति के सिलसिले में देवी जगमोहन और पार्वती से मिलने जाती है। ये सब कोई चुपके से देख रहा होता है और शायद कोई और ही जगमोहन बनके देवी से मिलता है। उसके बाद देवी पार्वती के घर पहुंचती है, लेकिन पार्वती भी बहाना बनाकर उनसे नहीं मिलती है। सुनील के पास एक फोन आता है जिस पर सामने से कोई बोलता है कि तुम्हें जो सबूत चाहिए वो मेरे पास है, और सुनील को मिलने के लिए बुला लेता है। सुनील सबूत लेने वहां चला जाता है, लेकिन उसे जगमोहन के गुंडे मारने लगते हैं। कुमार सुनील को बचाने के लिए वहां पर आ पहुंचता है और गुंडों को मारकर सुनील को बचा लेता है। लौटते वक्त जगमोहन अपनी कार से सुनील को टक्कर मार देता है। कुमार और देवी शाम को घूमने का प्लान बनाते हैं। उधर जगमोहन ठीक उसी गेटअप में आ जाता है जो देवी के सपने में पार्वती की हत्या करते हुए दिखता है। देवी सुनील को फोन करके पार्वती के घर आने को कहती है। उधर जगमोहन पार्वती के घर पहुंचकर उसे डरा रहा होता है और उसने रमा के मर्डर का सबूत यानी कि कैसेट को उसके हवाले करने के लिए पार्वती पर दबाव डालता है, लेकिन पार्वती जगमोहन को नकार देती है। ये सब चुपके से देवी सुन रही होती है। पार्वती जगमोहन को चकमा देकर भाग निकलती है और एक कैसेट की दुकान में चली जाती है। जगमोहन भी उसके पीछे आ जाता है और पार्वती को मार देता है। पार्वती मरने से पहले कैसेट पर 100 डेज का लेबल चिपका देती है। जगमोहन अब देवी को मारने की कोशिश करता है, लेकिन देवी 100 डेज वाली कैसेट लेकर भाग जाती है। जगमोहन को चकमा देकर वो घर आ जाती है और सुनील को कैसेट के बारे में बताती है और उस वीडियो को देखने लगती है। तभी राम आ जाता। वीडियो में दिखता है कि राम रमा को गोली मार रहा होता है। इस पर देवी राम से सवाल पूछती है कि तुमने रमा को क्यों मारा। राम कहता है उसने रमा को नहीं मारा, जगमोहन ने धोखे से रमा को मारा और पार्वती ने मुझे ब्लैकमेल किया। तभी जगमोहन देवी और राम को घात लगाकर हमला करने की कोशिश करता है और जान से मार रहा होता है। तभी सुनील वहां आकर राम और देवी की जान बचाता है। जगमोहन को पुलिस गिरफ्तार कर लेती है और कुमार सारी सच्चाई पुलिस को बता देता है और कहानी का एक सुखद अंत होता है।

0: 91 में रिलीज हुई फिल्म 100 डेज की कहानी और कुछ गीत। हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 954 किलो हर्ट्ज पर। दोपहर के 1 बजने को हैं। थोड़ी देर में आप समाचार सुनेंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुनीश शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि नीदरलैंड सरकार ने हाल ही में चोलकालीन ताम्र पट्टिकाएं भारत को लौटाई हैं, जिससे दुनिया भर के तमिल समुदाय में विशेष उत्साह है। आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में श्री मोदी ने कहा कि ये पट्टिकाएं चोल साम्राज्य की समुद्री ताकत और दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के साथ उनके संबंधों को दर्शाती हैं।
2: इन ताम्र पट्टिकाओं को लेकर लोगों में काफी जिज्ञासा भी है। इनमें 21 बड़ी और 3 छोटी ताम्र पट्टिकाएं हैं। ये मुख्य रूप से राजा राजेंद्र चोला प्रथम द्वारा अपने पिता राजा राज राजा चोला के एक वचन को पूरा करने से जुड़ी। चोला साम्राज्य के समृद्ध इतिहास और संस्कृति पर हम सभी को बहुत गर्व है। हमारी सरकार भारत की ऐसी अमूल्य धरोहरों के संरक्षण के लिए लगातार प्रयास कर रही है।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि ज्ञान भारतम अभियान के तहत छत्तीसगढ़ के मल्हार में 6वीं-7वीं शताब्दी के पांडु वंश के महर्षि बलार्जुन से जुड़ी दुर्लभ तांबे की 3 पट्टिकाएं भी मिली हैं। श्री मोदी ने देशवासियों से भीषण गर्मी के मौजूदा मौसम के दौरान अत्यधिक सावधानी बरतने और सरकारी दिशा निर्देशों का पालन करने की अपील की है।
2: इस समय देश के ज्यादातर हिस्सों में बहुत गर्मी पड़ रही है। तेज धूप, गर्म हवाएं, ऐसे मौसम में अपना ध्यान रखना बहुत जरूरी है। पानी पीते रहिए, धूप में अगर निकलना ही पड़े तो थोड़ा संभल कर निकले। इस दिशा में सरकार की भिन्न भिन्न डिपार्टमेंट्स ने जो गाइडलाइंस जारी की है वो भी भूलिएगा नहीं।
1: श्री मोदी ने कहा कि भारतीय आम ने वैश्विक बाजार तक अपनी पहुंच बनाई है और आम हमारी कृषि अर्थव्यवस्था के लिए बहुत महत्वपूर्ण है।
2: साथियों, आम की ये यात्रा अब गांव से ग्लोबल मार्केट तक भी पहुंच रही है। मन की बात के माध्यम से मैं आम की पैदावार से जुड़े अपने किसान भाई बहनों की प्रशंसा करूंगा। आप देश की कृषि अर्थव्यवस्था के लिए आम किसान नहीं, बहुत विशेष हैं। ऐसे ही छाए रहिए।
1: प्रधानमंत्री ने रांची में आयोजित राष्ट्रीय वरिष्ठ एथलेटिक्स महासंघ प्रतियोगिता में गुरिंदर वीर सिंह, विशाल टीके, तेजस्विन शंकर, देव मीना और कुलदीप कुमार को 4 राष्ट्रीय रिकॉर्ड तोड़ने पर बधाई दी है। श्री मोदी ने कहा कि खगोल विज्ञान ने देश की हर पीढ़ी में जिज्ञासा जगाई। उन्होंने कहा कि खगोल विज्ञान देश में तेजी से लोकप्रिय हो रहा है। श्री मोदी ने युवाओं से खगोल विज्ञान क्लब में शामिल होने और छुट्टियों के दौरान तारामंडल देखने की अपील भी की। प्रधानमंत्री ने उत्तर प्रदेश में एक नहर में गंगा डॉल्फिन को बचाने वाले एक वीडियो का भी उल्लेख किया। श्री मोदी ने कहा कि गंगा डॉल्फिन संरक्षण से नदी की जैव विविधता और अमूल्य प्राकृतिक धरोहर का संरक्षण होता है। उन्होंने बताया कि नमामि गंगे अभियान के तहत बनाई गई भारत की पहली गंगा डॉल्फिन बचाव एम्बुलेंस ने इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने कहा है कि भारत बांग्लादेश की खुली सीमा राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा है। उन्होंने पूर्वोत्तर को देश के शेष भाग से जोड़ने वाले चिकन नेक गलियारे को मजबूत करने पर बल दिया। सिलीगुड़ी में श्री बोस ने बताया कि पर्याप्त बाड़ न लगाए जाने के कारण भारत बांग्लादेश सीमा का एक संवेदनशील हिस्सा असुरक्षित बना हुआ है। एडमिरल कृष्णा स्वामीनाथन ने आज 27वें नौसेना प्रमुख का कार्यभार ग्रहण किया। उन्होंने एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी का स्थान लिया है। एडमिरल स्वामीनाथन ने बताया कि चुनौतीपूर्ण, जटिल और अनिश्चितताओं से भरे परिवेश को देखते हुए नौसेना सक्रिय रूप से तैनात है। उन्होंने कहा कि नौसेना का आधुनिकीकरण हो रहा है और इसे श्रेष्ठतम स्तर की युद्ध क्षमताओं से लैस किया जाएगा। दक्षिण दिल्ली के साकेत मेट्रो स्टेशन के पास कल शाम एक चार मंजिला व्यावसायिक

0: इलाकाई खबरें।
1: ये आकाशवाणी लखनऊ है, इलाकाई खबरें दीबा हाशमी से। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने मुल्क की आवाम को शदीद गर्मी के मौजूदा मौसम में बेहद एहतियात बरतने के साथ सरकारी गाइडलाइन पर अमल करने की अपील की है। आकाशवाणी से मन की बात प्रोग्राम के जरिए वज़ीर-ए-आज़म ने आवाम से ज्यादा मकदार में पानी पीने और धूप से बचाव के तरीके इस्तेमाल करके घर से बाहर निकलने का मशवरा दिया है। वज़ीर-ए-आज़म ने गर्मियों के साथ साथ आम का जिक्र करते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश का दशहरी और मेरी काशी के लंगड़ा के साथ हर इलाके के आम का जायका अनोखा और उसकी महक सौंधी होती है। उन्होंने कहा कि आम हमारी ज़रई मईशत के लिए भी बहुत खास है। वज़ीर-ए-आज़म ने उत्तर प्रदेश में एक नहर में गंगा डॉल्फिन को बचाने वाले वीडियो का भी हवाला दिया। उन्होंने बताया कि नमामि गंगे मुहिम के तहत बनाई गई हिंदुस्तान की पहली गंगा डॉल्फिन बचाओ एम्बुलेंस ने इसमें खुसूसी रोल अदा किया है।
2: डॉल्फिन रेस्क्यू एम्बुलेंस बहुत खास है। इसे एक चलते फिरते अस्पताल की तरह तैयार किया गया है। इसमें डॉल्फिन को सुरक्षित रखने की व्यवस्था है, ऑक्सीजन की सुविधा है, विशेष स्ट्रेचर है, बचाव के उपकरण है। यानी अगर कोई डॉल्फिन घायल हो जाए, नहर में फंस जाए या नदी से कट जाए तो तुरंत उसकी मदद की जा सके। जब हम गंगा डॉल्फिन को बचाते हैं तो हम सिर्फ एक प्रजाति को नहीं बचाते, हम गंगा की जैव विविधता को बचाते।
1: वज़ीर-ए-आज़म ने उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले के आकाश गुप्ता का भी जिक्र किया, जिन्होंने अपने दोस्तों के साथ मिलकर गांव की मनोरमा नदी को साफ किया।
2: उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले से सामने आई बस्ती के आकाश गुप्ता अपने गांव की मनोरमा नदी को देखकर बहुत दुखी हो, क्योंकि जिस नदी को उन्होंने बचपन में साफ और जीवन देखा था, समय के साथ उस नदी में प्लास्टिक जमा होने लगा था, गंदगी बढ़ती चली जा रही। श्रीमान आकाश ने तय किया कि शिकायत नहीं करेंगे, एक नई शुरुआत करेंगे। शिकायत नहीं, शुरुआत मंत्र बन गए।
1: वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि हिंदुस्तान के हर गांव में, हर शहर में कुछ न कुछ ऐसा हो रहा है जो हमें तरगीब देता है। उन्होंने आवाम से अपील की कि आप सभी अपने आसपास की जा रही ऐसी कोशिशों को जरूर देखें और जो लोग मुआशरे के लिए अच्छा काम कर रहे हैं उन्हें पहचानिए, उनकी सताइश कीजिए, उनसे सीखिए और हो सके तो खुद भी किसी अच्छे काम से जुड़िए। फर्टिलाइजर के तवाजुन और मुनासिब इस्तेमाल को फरोग देने के लिए एक महीने की खेत बचाओ मुहिम कल से शुरू होगी। मरकजी वजीर बराए ज़राअत शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि खेतों, किसानों और गांव को जोड़ते हुए इस मुहिम को कौमी मुहिम बनाया जाना चाहिए। नई दिल्ली में एक आला सतही मीटिंग में उन्होंने कहा कि मुहिम का खास मकसद फर्टिलाइजर का तवाजुन और मुनासिब इस्तेमाल, मौसम के चैलेंजेस के मद्देनजर किसानों को वक्त पर मशवरा, पंचायत सतह पर किसानों की शराकतदारी और गांव को बराए रास्त स्कीम के फायदे पर मरकूज होना चाहिए। इलेक्ट्रॉनिकी और इत्तला तो तकनीकी के वजीर अश्विनी वैष्णव ने कल उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा के सूरजपुर में स्टार्टअप लोहम का दौरा किया। जनाब वैष्णव ने कहा कि लोहम लिथियम आयन बैटरी और दीगर खसूसी मादनी और एडवांस्ड अशिया का प्रोडक्शन कर रहा है। पूरी रियासत में आज उत्तर प्रदेश मुश्तरका बीएड दाखिला इम्तिहान 2026 का इनेकाद किया जा रहा है। इस इम्तिहान में 72 इजला में कायम 1011 इम्तिहान मराकज पर कुल 4,44,958 उम्मीदवार हिस्सा ले रहे हैं। ये इम्तिहान दो मीटिंगों में मुनक़िद हो रहा है। निगरानी के लिए एक हाईटेक कमांड कंट्रोल रूम कायम किया गया है। इम्तिहान के मद्देनजर इंतजामिया ने हिफाजत के पुख्ता बंदोबस्त किए हैं। इम्तिहान मराकज की सीसीटीवी से निगरानी की जा रही है। उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड ने जून महीने में बिजली बिल पर 10% एडिशनल फ्यूल एंड पावर परचेज एडजस्टमेंट सरचार्ज नाफिस करने का फैसला किया है। अगले महीने सार्फीन को अपने बिजली बिल में 10% ज्यादा अदायगी करनी होगी। आज आलमी नो टोबैको डे मनाया जा रहा है। यह दिन तंबाकू के इस्तेमाल को पूरी तरह खत्म करने के मकसद से आलमी सेहत तंजीम के जरिए शुरू की गई खसूसी आलमी पहल का हिस्सा है। इस साल का मौजू है अपील का अनावरण, निकोटीन और तंबाकू की लत से निपटना। और रियासत के बेशतर अजला में तेज हवाएं चलने और बारिश होने से दर्जा हरारत में गिरावट दर्ज की गई है और आवाम को गर्मी से नजात मिली है। मुरादाबाद, फरुखाबाद और अमरोहा में कल रात आंधी के साथ गरज चमक और बारिश होने की खबर है। महकमा मौसमियात ने उत्तर प्रदेश के 56 अजला में आंधी और बारिश का अलर्ट जारी किया है। इन अजला में खसूसी तौर से लखनऊ, कानपुर, प्रयागराज, बनारस, गोरखपुर, मिर्जापुर, प्रतापगढ़, गोंडा, बलरामपुर, पीलीभीत, मुजफ्फरनगर, बरेली, हमीरपुर और महोबा शामिल हैं। इसी के साथ आकाशवाणी लखनऊ से इलाकाई खबरों का यह बुलेटिन खत्म हुआ। अगला बुलेटिन दोपहर 2 बजे FM पर नश्र किया जाएगा।
0: मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 954 किलो हर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। दोपहर के 1:15 हुए हैं। प्रस्तुत है बाल श्रोताओं का साप्ताहिक कार्यक्रम बाल वाटिका।

0: बाल वाटिका सुनने वाले सभी बच्चों को नीलम दीदी का जय हिंद। बच्चों, हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं आप सभी हमेशा स्वस्थ रहें, खुश रहें और हमेशा मुस्कुराते रहें। बच्चों, इन दिनों गर्मियों का मौसम है, आप लोगों की छुट्टियां भी होने वाली हैं, लेकिन बच्चों, तेज धूप, गर्म हवाएं और बदला तापमान हम सबको थोड़ा सा परेशान कर सकता है, लेकिन अगर हम थोड़ी सी सावधानी रखें तो इस मौसम का भी मज़ा अच्छे से ले सकते हैं। बच्चों, गर्मियों में सबसे ज़रूरी है अपने शरीर को पानी की कमी से बचाना, इसलिए दिन भर थोड़ा थोड़ा पानी पीते रहें। इसके साथ नींबू पानी, छाछ, नारियल पानी और ताज़े फल भी हमें तरोताज़ा रखते हैं। एक और ज़रूरी बात, जब हम बहुत तेज़ धूप हो, खासकर दोपहर के समय, तो बाहर खेलने से बचें। अगर बाहर जाना भी पड़े तो सिर पर टोपी या कोई कपड़ा ज़रूर रखें। हल्के रंग के सूती कपड़े पहनें ताकि शरीर को आराम मिले। और हाँ बच्चों, गर्मियों में खाने पीने की चीज़ों का भी ध्यान रखना चाहिए। हमेशा ताज़ा और साफ खाना खाइए और बाहर की खुली चीज़ों से दूरी रखिए। हाथ धोने की आदत भी बहुत ज़रूरी है। तो बच्चों, गर्मियों का मौसम आया है, आम छुट्टियां और ढेर सारी मस्ती भी लाया है। बस आप अपनी सेहत का ध्यान रखिए, खूब पानी पीजिए और मुस्कुराते रहिए। इसी प्यारी सी बात के साथ चलिए अब आगे बढ़ते हैं और सुनते हैं प्यारे प्यारे बच्चों की प्यारी प्यारी बातें कार्यक्रम बाल मुख से।
1: कार्यक्रम रिश्ता ये खास है में आपका बहुत बहुत स्वागत है श्रोताओं। आकाशवाणी के 90 वर्षों के उपलक्ष्य में आकाशवाणी नजीब आबाद से जुड़े श्रोताओं के अनुभव पर आधारित इस कार्यक्रम में आज हम आ पहुँचे हैं ग्राम नारायणपुर रतन। तो हमारे साथ हैं हमारे एक श्रोता जो हमें सुनते हैं और बहुत सराहना भी करते हैं। जी, अपना परिचय दीजिए।
2: मेरा नाम साजिद अली उस्मानी, मैं नारायणपुर रतन में रहता हूँ।
1: साजिद भाई, बहुत बहुत कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आप लोगों को, आपको इस समय बहुत लोग सुन रहे हैं और जैसे मैं जानना चाहूँगा कि आज भी मैं देख रहा हूँ कि आप रेडियो सेट के साथ बैठे हैं, तो ये रेडियो से इतना जुड़ाव कैसे रहा आपका?
2: दरअसल रेडियो से मेरा जुड़ाव विद्यार्थी जीवन से ही रहा है। मैं लगभग 1990 से रेडियो से आज तक जुड़ा हुआ हूँ और सारे प्रोग्राम बखूबी मैं सुबह से शाम तक सुनता हूँ और एक लगन के साथ सुनता हूँ।
1: जैसे आपने बात की साजिद भाई के, सन 1990 से आप आकाशवाणी नजीब आबाद के प्रसारण सुन रहे हैं, तो उस समय की कुछ यादें बताइए, जैसे कि आपको कौन से प्रोग्राम अच्छे लगते थे और जो अनाउंसर्स उस वक्त आया करते थे उनके बारे में थोड़ा बताइए।
0: बच्चों, आज हम एक बहुत ज़रूरी दिवस के बारे में जानेंगे, विश्व तंबाकू निषेध दिवस के बारे में। हर साल 31 मई को पूरी दुनिया में वर्ल्ड नो टोबैको डे यानी विश्व

तंबाकू निषेध दिवस मनाया जाता है। बच्चों बच्चों, तंबाकू एक ऐसी बुरी चीज़ है जो हमारे शरीर को नुकसान पहुंचाती है। इससे दांत, फेफड़े और शरीर के कई हिस्से बीमार हो जाते हैं, इसलिए हमें इससे हमेशा दूर रहना चाहिए। बच्चों, आपने कभी किसी डिब्बे या पोस्टर पर लिखा देखा होगा कि तंबाकू स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। ये बात बिल्कुल सच है बच्चों। तंबाकू न सिर्फ इस्तेमाल करने वालों को नुकसान पहुंचाता है, बल्कि उसके आसपास रहने वालों की सेहत पर भी असर डाल सकता है। प्यारे बच्चों, अच्छी सेहत हमारी सबसे बड़ी ताकत होती है, इसलिए हमें पौष्टिक खाना खाना चाहिए, खेलना कूदना चाहिए और अच्छी आदतें अपनाना चाहिए। सच में बच्चों, अगर हम अपने घर या आसपास किसी बड़े को तंबाकू से दूर रहने की सलाह प्यार से दें, तो यह भी बहुत अच्छी बात है। आपकी एक छोटी सी समझदारी किसी को अच्छी आदत अपनाने के लिए प्रेरित कर सकती है। तो प्यारे बच्चों, विश्व तंबाकू निषेध दिवस पर हम सब मिलकर संकल्प लें, अच्छी आदतें अपनाएंगे, स्वस्थ रहेंगे और तंबाकू जैसी बुरी चीजों से दूर रहेंगे। तो प्यारे बच्चों, आप सुन रहे हैं आपका अपना कार्यक्रम बाल वाटिका, और वैसे तो ये कार्यक्रम आप बच्चों के लिए है, लेकिन हम चाहते हैं कि आपके मम्मी पापा, दादी दादा, बुआ, नाना नानी सब सुने और हमें अपना सुझाव जरूर भेजें। तो इसके साथ ही अभी आपसे बहुत सारी बातें करनी है, लेकिन उससे पहले सुन लेते हैं ये जरूरी संदेश।

0: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।
1: नशे का शौक कहीं आपकी आदत तो नहीं बन गया?
2: याद रखिए, शौक, सोबत या फैशन के तौर पर अपनाया नशा आपकी आदत और स्वभाव का अंग बन जाएगा।
1: पार्टियों में नशा नहीं, खुशियाँ बांटिए।
2: नशा नहीं, जिंदगी अपनाइए।
1: आज अभी नशा छोड़ने का संकल्प दोहराइए।
2: ये सूचना मद्य निषेध विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।
3: बहू जी, मम्मी जी, इस घर के कुछ नियम हैं, जैसे कि यहाँ कैश की परंपरा नहीं है,
4: तो लेन देन
3: वो हम डिजिटल पेमेंट करते हैं।
4: ओ,
3: जैसे UPI से।
4: अच्छा।
3: हाँ, और सुनो, एक और नियम है।
4: वो क्या है मम्मी जी?
3: तुम्हारी मुँह दिखाई भी UPI से मिलेगी।
4: आम भी ना मम्मी जी।
5: भारत करता है डिजिटल भुगतान,
6: हर लेन देन अब है आसान।

बच्चों, आज हम आपके लिए ना बहुत सारी अच्छी अच्छी जानकारियां लाए हैं, और आज हम आपको एक अच्छी सी और बात करेंगे आपसे कि जीवन में अनुशासन का महत्व। सुनने में लगता है कि अरे, ये अनुशासन क्या होता है? बच्चों, अनुशासन का मतलब है हर काम सही समय पर और सही तरीके से करना। जैसे समय पर उठना, स्कूल जाना, अपना होमवर्क करना और बड़ों की बात मानना और अपनी चीजों को संभाल कर रखना। बच्चों, जरा सोचिए, अगर सुबह सूरज कभी समय पर ना निकले और तो कभी देर से निकले, चिड़िया कभी गाना गाए और कभी बिल्कुल चुप रहे, या आपकी स्कूल की घंटी कभी बजे और कभी ना बजे, तो सब कुछ कितना गड़बड़ हो जाएगा ना? बच्चों, प्रकृति हमें हर दिन सिखाती है कि अनुशासन कितना जरूरी है। बच्चों, अनुशासन हमें समय की कद्र करना सिखाता है। जो बच्चे समय पर अपना काम करते हैं, पढ़ाई भी अच्छे से करते हैं और साथ में खेलने का समय भी निकाल लेते हैं, ऐसे बच्चे सबके प्यारे बन जाते हैं। बच्चों, अनुशासन कोई मुश्किल बात नहीं है, ये तो एक अच्छी आदत है जो हमें आगे बढ़ने में मदद करती है। आप छोटे छोटे नियम अपनाइए और देखिए कैसे हर दिन आसान और सुंदर बन जाता है। तो चलिए, आज से हम सब मिलकर एक छोटी सी कोशिश करेंगे, समय का सम्मान करेंगे, अपना काम समय पर करेंगे और अनुशासन को अपना अच्छा दोस्त बनाएंगे। बच्चों, गर्मियों का मौसम है और आपको पता है ना कि इतनी गर्मी हो रही है और हर समय प्यास लगती रहती है, लेकिन गर्मियों में पानी पीना भी बहुत जरूरी होता है, और अगर ठंडा ठंडा पानी मिल जाए फिर तो बात ही क्या है। तो और साथ में घड़े का पानी हो तो फिर तो ठंडा ठंडा पानी बिल्कुल गले को सुकून पहुंचाता है। लेकिन बच्चों, क्या आपने कभी सोचा है कि गर्मियों में मिट्टी के घड़े का पानी इतना ठंडा और स्वादिष्ट क्यों लगता है? क्योंकि इसके पीछे एक बहुत मजेदार कारण है। मिट्टी के घड़े में बहुत छोटे छोटे छेद होते हैं जिन्हें हम देख नहीं सकते। इन छेदों से पानी की थोड़ी सी नमी बाहर आती रहती है। जब बाहर की गर्म हवा उस नमी को सुखाती है तो पानी का तापमान कम हो जाता है और घड़े के अंदर का पानी ठंडा हो जाता है। यही वजह है कि बिना फ्रिज के भी घड़े का पानी ठंडा रहता है। खास बात यह भी है कि मिट्टी के घड़े का पानी पीने में भी बहुत स्वादिष्ट लगता है और सेहत के लिए तो बहुत ही अच्छा माना जाता है, क्योंकि इसमें पानी प्राकृतिक तरीके से ठंडा होता है और शरीर को ताजगी देता है। इसलिए पहले के समय के लोग फ्रिज की जगह मिट्टी के घड़े का इस्तेमाल करते थे। बच्चों, मिट्टी का घड़ा हमें सिखाता है कि प्रकृति के पास भी कितने मजेदार और काम के उपाय होते हैं। तो आज से फ्रिज का नहीं, किसका पानी पियेंगे? घड़े का, जो ठंडा भी है और स्वादिष्ट भी है और हमारी सेहत के लिए भी बहुत अच्छा माना जाता है। तो प्यारे बच्चों, आप सुन रहे हैं आपका अपना कार्यक्रम बाल वाटिका, और देखिए हम इस कार्यक्रम के माध्यम से आपके लिए बहुत अच्छी अच्छी जानकारी लाते हैं, अच्छी अच्छी बातें बताते हैं। और तो अब चलिए कार्यक्रम को और आगे बढ़ाते हैं। और बच्चों, आज हम महान विभूति क्रम में बात करेंगे अहिल्या बाई होलकर की, जो भारत की महान और आदर्श महिला शासकों में से एक थी। अहिल्या जी का जन्म 31 मई 1725 को महाराष्ट्र के एक गांव में हुआ था। उनके पिता मानकोजी शिंदे गांव के पाटिल थे। बचपन से ही अहिल्या बाई बहुत बुद्धिमान, धार्मिक और दयालु स्वभाव की थी। बच्चों, मराठा साम्राज्य के प्रसिद्ध सेनापति मल्हार राव होलकर ने उनकी अच्छाई और संस्कारों से प्रभावित होकर उनका विवाह अपने पुत्र खांडेराव होलकर से कर दिया। विवाह के बाद वह इंदौर के होलकर राजघराने में आ गईं, और बच्चों, उन्होंने लगभग 1767 से और 1795 तक मालवा राज्य पर शासन किया। बच्चों, उनका शासन न्याय, जन कल्याण और धर्म कार्य के लिए प्रसिद्ध था। वे प्रतिदिन जनता की समस्याएं सुनती थीं और तुरंत न्याय देती थीं। उन्होंने काशी विश्वनाथ मंदिर, सोमनाथ मंदिर सहित अनेक मंदिरों, घाटों, धर्मशालाओं और कुएं और सड़कों का निर्माण कराया। बच्चों, अहिल्याबाई बहुत सरल जीवन जीती थीं, साथ में गरीबों और जरूरतमंदों की सहायता करती थीं। जनता उन्हें लोक माता कहकर सम्मान देती थी।
बच्चों उनके महान कार्यों और आदर्शों के कारण आज भी उन्हें श्रद्धा और सम्मान से याद किया जाता है। तो बच्चों ये थी जानकारी महान विभूति क्रम में अहिल्या बाई होलकर की। अभी आपके लिए बहुत रोचक सी चीजें हैं, लेकिन उससे पहले कुछ बातें हो जाएं आपसे। हमारी जो मम्मियां हैं, हमारे पास कुछ पत्र आते हैं जिसमें हमारी मम्मियों की शिकायत होती है कि उनके बच्चे उनकी बात नहीं मानते। तो ये तो बहुत गड़बड़ बात है बेटा कि बच्चे अपनी मम्मी पापा की बात नहीं मानते। बच्चे अगर मम्मी पापा की बात नहीं मानेंगे तो मम्मी को कितना दुख होगा, पापा को भी बहुत दुख होगा। इसलिए हमें अपनी मम्मी अब इतनी सारी बातें हो गई होंगी तो आप सोच रहे होंगे कि दीदी ने गाना तो सुना नहीं रही है, ऐसा कैसे हो सकता है कि आप बच्चों को प्यारा सा गीत ना सुनाया जाए। चलिए अब एक प्यारा सा गीत भी सुन लेते हैं।

0: तो बच्चों, आपने सुना ये गीत और आपको कैसा लगा, आप हमें पत्रों द्वारा जरूर बताइएगा। तो अब इसी के साथ चलिए सुन लेते हैं प्यारे प्यारे बच्चों की प्यारी प्यारी बातें, कार्यक्रम बाल मुख से। बच्चों, बाल मुख में आप सबका स्वागत है। आइए बात करते हैं अपने कुछ दोस्तों से। पहले जान लेते हैं उनसे उनका परिचय।
1: मेरा नाम अर्णव वर्मा है।
2: मेरा नाम दर शर्मा है।
3: मैं केशव।
4: मेरा नाम भवी है।
0: तो बच्चों, आज हमारे साथ हैं अर्णव, भवी, दर्श और केशव। अर्णव, आप बड़े उदास से नजर आ रहे हैं, क्या बात हो गई भाई?
1: दीदी, मुझे बहुत गर्मी लग रही है।
0: अर्णव भाई, गर्मी का मौसम है तो गर्मी ही लगेगी, आपको गर्मी अच्छी नहीं लगती है?
1: दीदी, मुझे गर्मी अच्छी नहीं लगती है।
0: गर्मी अच्छी नहीं लगती है? बच्चों, अर्णव को गर्मी अच्छी नहीं लगती है, तो चलिए पूछते हैं कि अर्णव को गर्मी क्यों नहीं अच्छी लगती है। तो आज हमें टॉपिक भी मिल गया बात करने का, तो क्यों ना आज मौसम के बारे में ही बात कर ली जाए। तो अर्णव से पूछते हैं कि अर्णव को गर्मी अच्छी क्यों नहीं लगती है।
1: गर्मी में ना बहुत ज्यादा गर्मी लगती है और धूप भी बहुत होती है, बाहर जाने तक का मन नहीं करता है। मुझे तो सर्दी बहुत अच्छी लगती है।
0: तो अर्णव, आपको सर्दी अच्छी क्यों लगती है?
1: अगर सर्दी में हमें सर्दी लगती है तो हम कई सारे कपड़े भी पहन सकते हैं, और गर्मी में तो जाने का मन तक नहीं करता बाहर, पर सर्दी में तो बहुत ज्यादा मन करता है। और खाने को भी कई सारे पकवान है, बहुत ज्यादा अच्छे अच्छे पकवान दिए जाते हैं।
0: तो अर्णव को सर्दी इसलिए अच्छी लगती है कि उन्हें बहुत सारी अच्छी अच्छी चीजें खाने को मिलती हैं। तो भाई, गर्मी में भी तो बहुत सारी चीजें होती हैं खाने की, क्यों भाई दर्श? तो चलिए दर्श से भी पूछते हैं कि दर्श को क्या अच्छा लगता है, गर्मी या सर्दी?
2: दीदी, मुझे गर्मी अच्छी लगती है।
0: तो दर्श, आपको गर्मी क्यों अच्छी लगती है?
2: उसमें आइसक्रीम खाने को मिलती है और जूस भी पीने को मिलता है। मैं खेलने भी जाता हूँ और पापा वहाँ पे मुझे आइसक्रीम भी खिलाते हैं, इसलिए मुझे गर्मी अच्छी लगती है। हाँ दीदी, गर्मी में आम भी तो आते हैं।
0: हाँ भाई, आम तो गर्मी में ही आते हैं। तो दर्श, आपको आम बहुत अच्छे लगते हैं?
2: जी दीदी।
0: तो केशव, आपको कौन सा मौसम अच्छा लगता है?
3: दीदी, मुझे भी सर्दी ही अच्छी लगती है।
0: क्यों, आपको सर्दी क्यों अच्छी लगती है?
3: क्योंकि मम्मी ना सर्दियों में बहुत अच्छी अच्छी चीज बनाती हैं।
0: तो केशव, क्या मम्मी गर्मी में अच्छी अच्छी चीजें नहीं बनाती है?
3: मम्मी कहती हैं कि बहुत गर्मी लग रही है, इसलिए इतनी जल्दी चीज बनाती नहीं है।
0: अच्छा, तो ये तो सही बात है भाई, मम्मी लोग को भी तो गर्मी लगती है। पर केशव, गर्मी में भी तो बहुत अच्छी अच्छी चीजें आती है। देखो, मैंगो आता है, लस्सी बना के लोग पीते हैं, जूस पीते हैं, तरबूज, खरबूज, सारी चीजें देखो गर्मी में ही आती हैं। तो आपको ये सब चीजें नहीं अच्छी लगती हैं?
3: अच्छी लगती हैं।
0: तभी आप कह रहे हैं कि आपको सर्दी अच्छी लगती है।
3: वैसे तो मुझे आम भी बहुत पसंद है।
0: तो आम तो गर्मी में ही आता है, तो इसलिए आपको गर्मी भी थोड़ी थोड़ी तो अच्छी लगती है।
3: हाँ, मुझे गर्मी भी अच्छी लगती है, बस पंखा और एसी चलना चाहिए।
0: ओहो, पंखा और एसी चलना चाहिए तो गर्मी अच्छी लगेगी केशव को। अच्छा अच्छा, आप भाभी से पूछते हैं कि भाभी को कौन सा मौसम अच्छा लगता है।
5: दीदी, मुझे तो दोनों अच्छे लगते हैं, सर्दी भी अच्छी लगती है, गर्मी भी अच्छी लगती है।
0: वेरी गुड। देखो, भाभी को तो गर्मी भी अच्छी लगती है और सर्दी भी अच्छी लगती है। जी हाँ बच्चों, सब मौसम की अपनी अपनी अहमियत है भाई। गर्मी में गर्मी की चीजें अच्छी लगती हैं, सर्दी में सर्दी की चीजें अच्छी लगती हैं।
5: दीदी, गर्मी में तो हम नानी के घर भी जाते हैं, बहुत सारे आइसक्रीम्स भी खाते हैं, मामा लोग शाम को घुमाने भी ले जाते हैं।
0: जी हाँ बच्चों, छुट्टियों में देखो, गर्मियों की छुट्टियां पड़ती हैं तो बच्चे नानी के घर जाते हैं, वहाँ से अच्छे वहाँ पर अच्छी अच्छी चीजें खाते हैं, मजा तो आता ही है।
1: दीदी, मुझे कहानी भी सुनानी है।
0: हाँ बिल्कुल सुनाओ अर्णव।
1: एक बार की बात है, हवा और सूरज में बहस हुई। हवा बोलता है मैं ज्यादा बलवान हूँ, और सूरज बोलता है मैं ज्यादा बलवान हूँ। तभी हवा को एक आदमी जाता हुआ दिखता है। हवा बोलती है कि जो भी इस इंसान के कंबल उतार देगा वो जीतेगा। तभी हवा की बारी आती है, हवा बहुत तेज हवा चलाती है, तभी उस इंसान को बहुत ज्यादा ठंड लगने लग जाती है और वो और भी कंबल ओढ़ लेता है, जिससे हवा हार जाती है। तभी सूरज की बारी आती है, सूरज बहुत ज्यादा गर्मी फैलाता है, जिससे उस आदमी को बहुत ज्यादा गर्मी लगने लग जाती है और वो अपने सारे कंबल उतार देता है। तब हवा कहती है कि सच में तुम ज्यादा ताकतवर हो। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें हमारी ताकत पे घमंड नहीं करना चाहिए।
0: बहुत अच्छी कहानी सुनाई अर्णव ने हमें कि वाकई बच्चों, हमें अपनी ताकत पर कभी घमंड नहीं करना चाहिए।
5: दीदी दीदी, मैं भी एक कहानी सुनाऊंगी।
0: ओ, अर्णव को देख के भवि को भी कहानी याद आ गई। तो चलिए बच्चों, अब भवि से भी कहानी सुनते हैं। तो भवि, आप कौन सी कहानी सुनाएंगी हमारे बच्चों को?
5: प्यासे कौए की। एक बार की बात है, एक प्यासा कौआ इधर उधर भटक रहा था जंगल में, उसे पानी का मटका दिखा, वो गया, उसने अपनी चोंच डाली बट पानी थोड़ा नीचे था, तो उसने बहुत सारे कंकड़ डाले, पानी ऊपर आ गया है, पानी ऊपर आया, वो कौआ पानी पीकर चला गया। इससे हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें कि मेहनत का फल मीठा होता है।
0: बिल्कुल सही कहा भाभी ने बच्चों कि मेहनत का फल हमेशा मीठा होता है। देखिए अगर आप लोग अपने एग्जाम की तैयारी बहुत अच्छे से करते हैं, बहुत अच्छे से पढ़ाई करते हैं, तो आपके नंबर भी बहुत अच्छे आते हैं। इसलिए हमें हमेशा मेहनत करनी चाहिए, तभी हम सफलता की ओर बढ़ते जाएंगे। तो दर्श भी हमें कुछ सुनाना चाहते हैं, तो दर्श आप क्या सुनाएंगे?
2: मैं एक इंग्लिश की पोएम सुनाऊंगा।

0: just left a man for me out. मैं एक और पोएम सुनाऊंगा. टिमटिम करते हैं आसमान में कितने सारे तारे हैं, इनको देखो तो लगता है दिन में सबसे न्यारे हैं. नीले पीले कुछ चमकीले कितने प्यारे ताने हैं, इनकी गिनती करूं मैं कैसे कितने सारे तारे हैं.
1: बहुत अच्छी पोएम सुनाई भाई दर्श ने. तो प्यारे बच्चों, ये थी आप सब बच्चों से बातचीत मौसम के बारे में. कुछ बच्चों को गर्मी अच्छी लगती है तो कुछ बच्चों को सर्दी अच्छी लगती है. कुछ बच्चों को गर्मी में आइसक्रीम, मैंगो और बहुत सारी चीज़ें खाना अच्छा लगता है, तो कुछ बच्चों को सर्दी में पकौड़े जलेबी खाना अच्छा लगता है. पर प्यारे बच्चों, मौसम सारे अच्छे होते हैं क्योंकि सभी मौसम का अपना अपना काम होता है और वो सभी मौसम अपने अपने काम को पूरे अच्छे तरीके से करते हैं. इसलिए हमें भी सभी मौसम का आनंद लेना चाहिए और गर्मी में गर्मी का मज़ा लेना चाहिए, सर्दी में सर्दी का मजा लेना चाहिए और बरसात में भी बरसात का मजा लेना चाहिए. तो बच्चों, इसी के साथ आपसे फिर मिलेंगे बालमुख में. तो बच्चों, कैसी लगी आपको हमारे बच्चों की बातें? और हाँ, अब बारी आ गई है कहानी की, जिसे हमारे बच्चों को बहुत इंतजार रहता है. तो चलिए सुनते हैं कहानी नन्ही चींटी की समझदारी. बच्चों, एक बड़े से बगीचे के कोने में चींटियों का एक छोटा सा घर था. वहाँ बहुत सारी चींटियाँ रहती थी. उन्हीं में से एक नन्ही चींटी थी जिसका नाम था चिंकी. चिंकी बहुत प्यारी थी, वो सबकी मदद करती थी, लेकिन एक बात थी, उसे हमेशा जल्दी रहती थी. हर काम को वो जल्दी करना चाहती थी. एक सुबह चिंकी खाना ढूंढने निकली. रास्ते में उसे ब्रेड का एक बड़ा सा टुकड़ा दिखा. चिंकी खुशी से बोली, वाह, आज तो बहुत सारा खाना मिल गया. और फिर उसने अकेले ही ब्रेड उठाने की कोशिश की. एक बार, दूसरी बार, फिर तीसरी बार, लेकिन ब्रेड का टुकड़ा बहुत भारी था. चिंकी कोशिश करती रही, जोर लगाकर बोली, मैं अकेले ही उठा लूंगी. तो पास में उसकी दोस्त मिनी खड़ी थी. मिनी बोली, चिंकी अकेले मत उठाओ, चलो सबको बुला लेते हैं. चिंकी बोली, नहीं नहीं मैं कर लूंगी. इतने में उसका पैर फिसला और वो ब्रेड के पास बैठ गई. तभी मिनी ने उसे उठाया और प्यार से बोली, कोई बात नहीं, मदद मांगना भी अच्छी आदत होती है. चिंकी बच्चों, उसे अपनी गलती समझ में आ गई. वो जल्दी से घर गई और अपनी जो बाकी दोस्त थे सबको बुला लाई. सब चींटियां मिलकर आईं और उन्होंने सबने मिलकर एक साथ ब्रेड को उठाया और आराम से घर की ओर चल दी. सभी बहुत खुश थी कि तभी अचानक आसमान में बादल छा गए. तेज हवा चलने लगी, चींटियों का छोटा रास्ता बंद हो गया. सब घबरा गए. तभी सबसे बुजुर्ग चींटी बोली, घबराओ मत, हम दूसरा रास्ता ढूंढ लेंगे. सबने ध्यान से देखा, थोड़ी दूर पर पेड़ की जड़ के पास एक सूखा रास्ता था. सारी चींटियां लाइन बनाकर चलने लगी. चिंकी सबसे आगे थी. वो धीरे धीरे समझदारी से चल रही थी. घर पहुंचकर सबने खुशी से ताली बजाई. चींटी रानी ने पिंकी को बुलाया और पूछा, आज तुमने क्या सीखा? चिंकी मुस्कुराकर बोली, मैंने सीखा कि हर काम जल्दी में नहीं करना चाहिए. मिलजुल कर काम करने से मुश्किल बहुत आसान हो जाती है. रानी ने कहा, बिल्कुल सही, समझदारी और साथ मिलकर काम करना सबसे बड़ी ताकत है. चिंकी बहुत खुश हुई और उसने उस दिन से हमेशा इस बात का ध्यान रखा कि वो दोस्तों की मदद लेती थी और खुद भी सबकी मदद करती थी. तो बच्चों, इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि किसी भी काम में जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए. मिलजुल कर काम करने से हर मुश्किल आसान हो जाती है. तो आज का कार्यक्रम आपको कैसा लगा, आप हमें पत्रों द्वारा जरूर बताइएगा. हमारा पता है, कार्यक्रम बालवाटिका, द्वारा केंद्र निदेशक, आकाशवाणी के नजीबाबाद, पिन कोड 2467633. तब तक के लिए जय हिंद.

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम बाल वाटिका। हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 954 किलोहर्ट्ज़ पर। दोपहर के 1:45 हुए हैं। लोकधारा कार्यक्रम में लीजिए सुनिए शारदा सिंह के गाए राजस्थानी लोकगीत।

लोकधारा कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे शारदा सिंह के गाए राजस्थानी लोकगीत। हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 314.47 मीटर,

0: अध्याय विद द मिड डे न्यूज। द हेडलाइंस। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी सेज गवर्नमेंट इज मेकिंग ऑल एफर्ट्स टू प्रिजर्व हेरिटेज साइट्स ऑफ द कंट्री। हाईलाइट्स रिटर्न ऑफ एंशियंट चोला ईरा कॉपर प्लेट्स टू इंडिया ड्यूरिंग हिज रीसेंट विजिट टू नेदरलैंड्स। In his Man Ki Baat program on Akashvani, Prime Minister urges people to stay safe during summer heat, promotes traditional Indian cooling drinks, and lauds farmers for taking indigenous mango varieties to global markets. Chief of Defence Staff Lieutenant General N.S. Raja Subramani says Indian Armed Forces remain committed to protecting country's sovereignty and territorial integrity. Admiral Krishna Swaminathan assumes charge as the new Chief of Naval Staff. U.S. President Donald Trump says United States is close to reaching a nuclear agreement with Iran, warns military action remains an option if negotiations fail. In badminton, Indian duo of Sattvik Sairaj Ranki Reddy and Chirag Shetty to take on Indonesia in the men's doubles final of Singapore Open today. And in IPL cricket final, Gujarat Titans and Royal Challengers Bengaluru all set for epic title clash in Ahmedabad this evening. Prime Minister Narendra Modi said that the government is continuously making efforts to preserve priceless heritage sites in India. Informed about an important discovery made in Malhar, Chhattisgarh under the Gyan Bharatam Abhiyan. Addressing the nation in his monthly radio program Man Ki Baat on Akashvani today, Mr. Modi said that three rare copper plates have been found there related to Maharishi Bal Arjun of the Pandu Vanshi dynasty of the 6th and 7th centuries.
1: ज्ञान भारतम अभियान के तहत छत्तीसगढ़ के मल्हार में भी एक महत्वपूर्ण खोज हुई है। यहाँ तीन दुर्लभ ताम्र पट्टिकाएं मिली हैं। विशेषज्ञ मानते हैं कि इंस्क्रिप्शंस छठी सातवीं सदी के हैं। ये ताम्र पट्टिकाएं प्राचीन ब्राह्मी लिपि और पाली भाषा में लिखी गई हैं। इनसे उस समय की शासन व्यवस्था, धर्म और संस्कृति के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है।
0: The Prime Minister also mentioned his recent visit to the Netherlands, where in a special ceremony, ancient copper plates from the Chola period were returned to India. Mr. Modi said people are sharing joy and expressing pride, and the Tamil community around the world is also particularly enthusiastic about this. Prime Minister Modi asserts the people of the country to take utmost care during the prevailing hot weather and follow the guidelines issued by various government departments in this regard.
1: इस समय देश के ज्यादातर हिस्सों में बहुत गर्मी पड़ रही है। तेज धूप, गर्म हवाएं, ऐसे मौसम में अपना ध्यान रखना बहुत जरूरी है। पानी पीते रहिए, धूप में अगर निकलना ही पड़े तो थोड़ा संभल कर निकले। इस दिशा में सरकार की भिन्न भिन्न डिपार्टमेंट्स ने जो गाइडलाइंस जारी की है वो भी भूलिएगा नहीं।
0: The Prime Minister suggested that people drink different summer drinks such as Aam Panna, buttermilk, lassi, sattu, sharbat, bel panna, which are traditionally made in different parts of the country to beat the heat.
1: हमारे यहाँ गर्मी से लड़ने का तरीका भारत के अलग अलग क्षेत्रों की परंपरा का हिस्सा है और इसमें एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना की झलक भी मिलती है। और एक बात जरूर ध्यान रखिएगा, इनमें से ज्यादातर चीजें हमारी अपनी रसोई से निकली है। आप भी गर्मी के दौरान देसी पेयजलों का खूब आनंद लीजिए।
0: Referring to mangoes, which are often talked about in summer, the Prime Minister said every region has its own mango, its own flavor and its own aroma. Mr. Modi also hailed the contribution of farmers involved in mango cultivation, saying that the journey of the mango is now reaching the global market from the village. The Prime Minister talked about the recently held National Senior Athletics Federation competition in Ranchi, Jharkhand, where nearly 800 athletes participated. He congratulated Gurinder Veer Singh, Vishal TK, Tejaswin Shankar, Dev Meena and Kuldeep Kumar for breaking four national records in different events. The Prime Minister also talked about a video showcasing as to how a Gangetic dolphin was saved after being trapped in a canal in Uttar Pradesh.
1: ये डॉल्फिन रेस्क्यू एम्बुलेंस बहुत खास है। इसे एक चलते फिरते अस्पताल की तरह तैयार किया गया है। इसमें डॉल्फिन को सुरक्षित रखने की व्यवस्था है, ऑक्सीजन की सुविधा है, विशेष स्ट्रेचर है, बचाव के उपकरण है। यानी अगर कोई डॉल्फिन घायल हो जाए, नहर में फंस जाए या नदी से कट जाए तो तुरंत उसकी मदद की जा सकती है।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं मुनीश शर्मा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, सरकार देश के धरोहर स्थलों के संरक्षण के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। नीदरलैंड्स की हालिया यात्रा के दौरान प्राचीन चोल काल की ताम्रपट्टिकाओं की स्वदेश वापसी का किया उल्लेख। आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने लोगों से गर्मी के मौसम में सुरक्षित रहने का आग्रह किया। उन्होंने पारंपरिक भारतीय शीतल पेय की प्रशंसा की और स्वदेशी आम की किस्मों को वैश्विक बाजारों तक पहुंचाने के लिए किसानों की सराहना की। प्रमुख रक्षा अध्यक्ष लेफ्टिनेंट जनरल एनएस राजा सुब्रमण्यन ने कहा, भारतीय सशस्त्र बल देश की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध। एडमिरल कृष्णा स्वामीनाथन ने नौसेना प्रमुख का कार्यभार संभाला। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, ईरान के साथ परमाणु समझौता करीब, चेतावनी दी कि यदि वार्ता विफल होती है तो सैन्य कार्रवाई का विकल्प बना रहेगा। सात्विक साईराज, रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी आज सिंगापुर ओपन के डबल्स फाइनल में इंडोनेशियाई जोड़ी से खेलेंगे और अहमदाबाद में आईपीएल क्रिकेट के खिताबी मुकाबले में आज शाम गुजरात टाइटंस और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु होंगे आमने सामने। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सरकार देश की अमूल्य धरोहरों के संरक्षण के लिए प्रयासरत है। आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में उन्होंने बताया कि ज्ञान भारतम अभियान के तहत छत्तीसगढ़ के मल्हार में छठी सातवीं शताब्दी के पांडु वंश के महर्षि बलार्जुन से जुड़ी दुर्लभ तांबे की 3 पट्टिकाएं भी मिली हैं।
1: ज्ञान भारतम अभियान के तहत छत्तीसगढ़ के मल्हार में भी एक महत्वपूर्ण खोज हुई है। यहाँ 3 दुर्लभ ताम्र पट्टिकाएं मिली हैं। विशेषज्ञ मानते हैं कि इंस्क्रिप्शंस 6वीं-7वीं सदी के हैं। ये ताम्र पट्टिकाएं प्राचीन ब्राह्मी लिपि और पाली भाषा में लिखी गई हैं। इनसे उस समय की शासन व्यवस्था, धर्म और संस्कृति के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि नीदरलैंड सरकार ने हाल ही में चोलकालीन ताम्र पट्टिकाएं भारत को लौटाई हैं, जिससे दुनिया भर के तमिल समुदाय में विशेष उत्साह है। श्री मोदी ने कहा कि ये पट्टिकाएं चोल साम्राज्य की समुद्री ताकत और दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के साथ उनके संबंधों को दर्शाती हैं।
1: इन ताम्र पट्टिकाओं को लेकर लोगों में काफी जिज्ञासा भी है। इनमें 21 बड़ी और 3 छोटी ताम्र पट्टिकाएं हैं। ये मुख्य रूप से राजा राजेंद्र चोला प्रथम द्वारा अपने पिता राजा राजराजा चोला के एक वचन को पूरा करने से जुड़ी। चोला साम्राज्य के समृद्ध इतिहास और संस्कृति पर हम सभी को बहुत गर्व है। हमारी सरकार भारत की ऐसी अमूल्य धरोहरों के संरक्षण के लिए लगातार प्रयास कर रही है।
0: श्री मोदी ने देशवासियों से भीषण गर्मी के मौजूदा मौसम के दौरान अत्यधिक सावधानी बरतने और सरकारी दिशा निर्देशों का पालन करने की अपील की है।
1: इस समय देश के ज्यादातर हिस्सों में बहुत गर्मी पड़ रही है। तेज धूप, गर्म हवाएं, ऐसे मौसम में अपना ध्यान रखना बहुत जरूरी है। पानी पीते रहिए, धूप में अगर निकलना ही पड़े तो थोड़ा संभल कर निकले। इस दिशा में सरकार की भिन्न भिन्न डिपार्टमेंट्स ने जो गाइडलाइंस जारी की है वो भी भूलिएगा नहीं।
0: प्रधानमंत्री ने लोगों से गर्मी से राहत के लिए आम पन्ना, छाछ, लस्सी, सत्तू शरबत, बेल पन्ना, पनाकम, नीरमोर सांभरम, कोकम शरबत और सोल कड़ी का सेवन करने की अपील की है।
1: हमारे यहाँ गर्मी से लड़ने का तरीका भारत के अलग अलग क्षेत्रों की परंपरा का हिस्सा है और इसमें एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना की झलक भी मिलती है। और एक बात जरूर ध्यान रखिएगा, इनमें से ज्यादातर चीजें हमारी अपनी रसोई से निकली है। आप भी गर्मी के दौरान देसी पेयजलों का खूब आनंद लीजिए।
0: प्रधानमंत्री ने काशी के लंगड़ा, महाराष्ट्र के अल्फांजो, गुजरात के केसर और पश्चिम बंगाल के हिमसागर आम की चर्चा करते हुए कहा कि हर क्षेत्र के आम का स्वाद अनूठा और उसकी महक अनोखी होती है।
1: महाराष्ट्र और कोंकण का हापुस, अल्फांसो, गुजरात का केसर, ये तो आमरस की जान है, उत्तर प्रदेश का दशहरी और मेरी काशी का लंगड़ा, बिहार का जरदालू, चौसा, मालदा, हर नाम के साथ लोगों की यादें जुड़ी हुई है। दक्षिण भारत जाइए तो बंगन पल्ली, तोतापुरी, नीलम, मलगोवा, बंगाल का हिमसागर, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश का सुवर्ण रेखा, यानी जगह बदलती है, आम का रूप रंग और उसका स्वाद भी बदल जाता है।
0: श्री मोदी ने कहा कि भारतीय आम ने वैश्विक बाजार तक पहुंच बनाई है और आम हमारी कृषि अर्थव्यवस्था के लिए बहुत महत्वपूर्ण है।
1: साथियों, आम की ये यात्रा अब गांव से ग्लोबल मार्केट तक भी पहुंच रही है। मन की बात के माध्यम से मैं आम की पैदावार से जुड़े अपने किसान भाई बहनों की प्रशंसा करूंगा। आप देश की कृषि अर्थव्यवस्था के लिए आम किसान नहीं, बहुत विशेष हैं। ऐसे ही छाए रहिए।
0: प्रधानमंत्री ने रांची में आयोजित राष्ट्रीय वरिष्ठ एथलेटिक्स महासंघ प्रतियोगिता में गुरिंदर वीर सिंह, विशाल टीके, तेजस्विन शंकर, देव मीना और कुलदीप कुमार को चार राष्ट्रीय रिकॉर्ड तोड़ने पर बधाई दी। श्री मोदी ने 100 मीटर दौड़ में रिकॉर्ड तोड़ने वाले गुरिंदर वीर सिंह और अनिमेश कुजूर से बात भी की।
2: नमस्ते सर, मेरा नाम अनिमेश कुजूर है, 200 मीटर और 4x100 मीटर का नेशनल रिकॉर्ड होल्डर हूँ। मैं छत्तीसगढ़ से बिलोंग करता हूँ सर, एंड अभी मैं उड़ीसा से खेलता हूँ। मैं लास्ट ईयर एशियन मेडल और वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स मेडल लेके आया। मैं एथलेटिक्स 2021 से चालू किया। फुटबॉल के जो फ्रेंड्स थे उन्होंने मुझे बोला कि स्टेट मीट होने वाला है, जाके तू पार्टिसिपेट कर, एंड मैं पार्टिसिपेट किया। मैं वहाँ से नेशनल का सिलेक्ट हुआ, इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ इंटरनेशनली।
1: और गुरिंदर वीर जी का क्या है?
3: नमस्ते सर, मेरा नाम गुरिंदर वीर है और मैं इंडियन नेवी में पैटी ऑफिसर हूँ। पहला इंडियन हूँ जो 10.1 के बैरियर के नीचे भागा है और मैं कोशिश कर रहा हूँ मैं ट्रैक और वर्दी में भी अपने देश की सेवा करूँ।
0: श्री मोदी ने कहा कि खगोल विज्ञान ने देश की हर पीढ़ी में जिज्ञासा जगाई है। उन्होंने कहा कि खगोल विज्ञान देश में तेजी से लोकप्रिय हो रहा है। श्री मोदी ने युवाओं से खगोल विज्ञान क्लब में शामिल होने और अपनी छुट्टियों के दौरान तारामंडल देखने की अपील की।
1: राजकोट के बिग बैंग एस्ट्रोनॉमी क्लब ने गिर के जंगलों से लेकर कच्छ के रण तक अनेक एस्ट्रोनॉमी इवेंट्स आयोजित किए। मैं आईसेक का भी जिक्र करना चाहूंगा। यह एक स्टूडेंट लेड नेशन वाइड नेटवर्क है जो एस्ट्रोनॉमी और एस्ट्रोफिजिक्स क्लब को आपस में जोड़ता है। साथियों, अपनी हॉबी के लिए समय निकालना और लगातार कुछ नया सीखते रहना बहुत जरूरी है।
0: प्रधानमंत्री ने उत्तर प्रदेश में एक नहर में गंगा डॉल्फिन को बचाने वाले वीडियो का भी उल्लेख किया।
1: ये डॉल्फिन रेस्क्यू एम्बुलेंस बहुत खास है। इसे एक चलते फिरते अस्पताल की तरह तैयार किया गया है। इसमें डॉल्फिन को सुरक्षित रखने की व्यवस्था है, ऑक्सीजन की सुविधा है, विशेष स्ट्रेचर है, बचाव के उपकरण है। यानी अगर कोई डॉल्फिन घायल हो जाए, नहर में फंस जाए या नदी से कट जाए तो तुरंत उसकी मदद की जा सकती है।
0: प्रधानमंत्री ने तमिलनाडु के नागरकोइल में 15 स्कूल चलाने वाली शिक्षिका गिरिजा अम्मा की भी बात की, जिन्होंने मन की बात से प्रेरित होकर देश के सैनिकों के लिए योगदान देने का संकल्प लिया है। गिरिजा अम्मा ने बहादुर सैनिकों के लिए रोज 1 रुपया दान करने की अपील बच्चों से की और इससे मिले लगभग 40 लाख रुपए प्रधानमंत्री को सौंपे।
1: साथियों, गिरिजा अम्मा जी करीब 15 स्कूल चलाती हैं। इनमें चेन्नई का जय गोपाल गरोड़िया हिंदू विद्यालय बहुत प्रमुख है। उनकी देशभक्ति की भावना हर भारतवासी को प्रेरित करने वाली है। उन्होंने मन की बात से प्रेरणा लेकर देश के अनेक सैनिकों के लिए योगदान का संकल्प लिया। पिछले वर्ष ही चेन्नई के पहले हिंदू विद्यालय ने अपने 50 वर्ष पूरे किए हैं। देश की शिक्षा और सांस्कृतिक गौरव को आगे बढ़ाने में स्कूल नेटवर्क की भूमिका बहुत प्रशंसनीय है।
0: श्री मोदी ने देशवासियों से अपील की कि वे अपने आसपास समाज की बेहतरी के लिए लगातार काम कर रहे लोगों को पहचानें और स्वयं भी अच्छे कार्यों से जुड़ें। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। नवनियुक्त प्रमुख रक्षा अध्यक्ष CDS लेफ्टिनेंट जनरल NS राजा सुब्रमणी ने कहा है कि नवाचार के समावेश से सैन्य क्षमताओं के विकास में और तेजी आएगी। नई दिल्ली में उन्होंने कहा कि सशस्त्र बलों, उद्योग, शिक्षा जगत, स्टार्टअप और अनुसंधान तंत्र के बीच तालमेल से आधुनिकीकरण को बल मिलेगा।
4: नेवी, एयरफोर्स,
5: नौसेना, वायुसेना, रक्षा मंत्रालय, रणनीतिक संस्थान और सभी हितधारक भारत की सुरक्षा को मजबूत करने के लिए राष्ट्रव्यापी दृष्टिकोण के तहत एकजुट हैं। हम अपने माननीय प्रधानमंत्री के दृष्टिकोण को साकार करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। जय एकजुटता, आत्मनिर्भरता और नवाचार।
4: आत्मनिर्भरता एंड इनोवेशन।
0: नव नियुक्त प्रमुख रक्षा अध्यक्ष लेफ्टिनेंट जनरल NS राजा सुब्रमणी को आज नई दिल्ली के साउथ ब्लॉक में गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। वे जनरल अनिल चौहान का स्थान लेंगे। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अमेरिका ईरान के साथ परमाणु समझौते के करीब है। हालांकि उन्होंने आगाह किया कि बातचीत विफल होने पर सैन्य कार्रवाई का विकल्प खुला होगा। श्री ट्रंप ने कहा कि ईरान को कभी परमाणु हथियार नहीं बनाने दिया जाएगा। उन्होंने दावा किया कि समझौता होते ही हॉर्मुज जलडमरू मध्य तुरंत खुल जाएगा। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान कल मध्य प्रदेश के रायसेन जिले से खेत बचाओ अभियान का शुभारंभ करेंगे। ये अभियान 30 जून तक जारी रहेगा। इसका मुख्य उद्देश्य उर्वरकों का संतुलित और विवेकपूर्ण उपयोग, मौसम संबंधी चुनौतियों को देखते हुए किसानों को समय पर सलाह देना, पंचायत स्तर पर सक्रिय भागीदारी और योजनाओं का लाभ सीधे गांवों तक पहुंचाना है। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी ने बताया कि 29 मई को देश में 15,000 छतों पर सौर पैनल लगाए गए। ये पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के अंतर्गत किसी एक दिन में सौर पैनल स्थापित करने का रिकॉर्ड है। सबसे अधिक पैनल महाराष्ट्र में लगाए गए। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल RN रवि ने कहा है कि भारत बांग्लादेश की खुली सीमा राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा है। उन्होंने पूर्वोत्तर को देश के शेष भाग से जोड़ने वाले चिकन नेक गलियारे को मजबूत बनाने पर बल दिया। पिछली तृणमूल कांग्रेस ने उच्च न्यायालय के आदेश के बावजूद केंद्र सरकार को बाड़ लगाने के लिए जमीन हस्तांतरित नहीं की थी। दक्षिण दिल्ली के साकेत मेट्रो स्टेशन के पास कल शाम एक 4 मंजिला व्यावसायिक इमारत के गिरने से 3 लोगों की मौत हो गई, 5 घायलों की हालत स्थिर है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा है कि अनधिकृत निर्माण के दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। सिंगापुर ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप के डबल्स फाइनल में आज सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी का मुकाबला इंडोनेशिया के मोहम्मद शोइबुल फिक्री और फजल अल्फयान से होगा। सात्विक साईराज और चिराग ने मई 2024 में थाईलैंड ओपन के बाद से कोई भी खिताब नहीं जीता है। गुजरात के अहमदाबाद में IPL क्रिकेट के फाइनल में आज रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का मुकाबला गुजरात टाइटन से होगा। ये मैच शाम 7:30 बजे शुरू होगा। मौसम विभाग ने कहा है कि अगले 4-5 दिन में दक्षिण पश्चिमी मॉनसून दक्षिण पूर्वी अरब सागर, लक्षद्वीप, केरल और तमिलनाडु के कुछ हिस्सों में आगे बढ़ सकता है। ओडिशा, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और लक्षद्वीप में तेज बारिश हो सकती है। अगले 2 दिन अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय और तटीय कर्नाटक में कुछ जगहों पर बिजली के साथ साथ गरज चमक की भी आशंका है। दिल्ली, हरियाणा और चंडीगढ़ में भी कल तक कुछ स्थानों पर बिजली और तेज हवाओं के साथ गरज चमक का अनुमान है। और अंत में लीजिए सुनिए इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा सरकार देश के धरोहर स्थलों के संरक्षण के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। नीदरलैंड्स की हालिया यात्रा के दौरान प्राचीन चोल काल की ताम्र पट्टिकाओं की स्वदेश वापसी का उल्लेख किया। आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने लोगों से गर्मी के मौसम में सुरक्षित रहने का आग्रह किया। उन्होंने पारंपरिक भारतीय शीतल पेय की प्रशंसा की और स्वदेशी आम की किस्मों को वैश्विक बाजारों तक पहुंचाने के लिए किसानों की सराहना की। प्रमुख रक्षा अध्यक्ष लेफ्टिनेंट जनरल NS राजा सुब्रमणी ने कहा भारतीय सशस्त्र बल देश की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध। और अहमदाबाद में IPL क्रिकेट के खिताबी मुकाबले में आज शाम गुजरात टाइटंस और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु होंगे आमने सामने। और इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
6: हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 954 किलो हर्ट्ज पर। दोपहर के 2:30 हुए हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम एक और अनेक। एक और अनेक कार्यक्रम में आज आप सुनेंगे अभिनेत्री नरगिस और उनके द्वारा करी गई विभिन्न फिल्मों में काम के विषय में, और उसी बीच हम आपको सुनवाएंगे उन फिल्मों के गीत जिनमें अभिनेत्री नरगिस ने काम किया है। नरगिस का जन्म 1 जून सन 1929 को फातिमा राशिद के रूप में कलकत्ता में ब्रिटिश भारत की बंगाल प्रेसिडेंसी, जो कि अब कोलकाता के नाम से जाना जाता है, वहां पर हुआ था। उनके पिता अब्दुल राशिद एक मोहयाल ब्राह्मण थे जो मूल रूप से पंजाब के रावलपिंडी के एक धनी उत्तराधिकारी थे। उनकी माता जद्दनबाई बनारस की थी और हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत की गायिका थी। वे भारतीय सिनेमा की शुरुआती अग्रदूतों में से एक थी। नरगिस की मां इलाहाबाद से कलकत्ता चली गईं और बाद में उन्होंने नरगिस को उस समय भारत में विकसित हो रही फिल्म संस्कृति से परिचित कराया। चर्चा तो जारी रहेगी, आइए सुनते हैं पहले ये गीत। आवाज है शमशाद बेगम की, फिल्म का नाम है आग, और इस फिल्म में नरगिस ने अपना अभिनय दिया था।

0: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।
1: शास्त्रीय संगीत का अमृत कलश रागम भारतीय शास्त्रीय संगीत को समर्पित आकाशवाणी का बेहतरीन चैनल रागम डीटीएच पर लाइव स्ट्रीमिंग के जरिए इंटरनेट और आपके मोबाइल ऐप पर भी। रागम आनंद की अटूट रसधार।
2: नशे का शौक कहीं आपकी आदत तो नहीं बन गया?
3: याद रखिए, शौक सोबत या फैशन के तौर पर अपनाया नशा आपकी आदत और स्वभाव का अंग बन जाएगा।
2: पार्टियों में नशा नहीं खुशियां बांटिए।
3: नशा नहीं जिंदगी अपनाइए।
2: आज अभी नशा छोड़ने का संकल्प दोहराइए।
3: ये सूचना मध्य निषेध विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।
4: अपने व्यापार को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाना चाहते हैं?
5: तो इंतजार किस बात का,
4: अभी बुक कराइए अपना विज्ञापन आकाशवाणी नजीबाबाद के संग।
5: विज्ञापन बुकिंग कराने के लिए आज ही संपर्क करें।
4: हमारा मोबाइल नंबर है 8865845809।
5: नंबर एक बार फिर सुन लीजिए 8865845809।
4: और हमारा ईमेल आईडी है
5: akashwaninajibabad@gmail.com।
4: तो देर किस बात की, उठाइए अपना फोन और बुक कराइए अपना विज्ञापन आकाशवाणी नजीबाबाद के संग।
6: श्रोताओं, एक और अनेक कार्यक्रम में आज हम बात कर रहे हैं अभिनेत्री नरगिस की। फातिमा यानी कि नरगिस ने 1935 में आई फिल्म तलाश हक में 6 साल की उम्र में अपना पहला फिल्मी अभिनय किया, जिसमें उन्हें बेबी नरगिस के नाम से श्रेय दिया गया। नरगिस एक फारसी शब्द है जिसका अर्थ है नर्सिसस यानी डेफोडिल का फूल। इसके बाद उनकी सभी फिल्में उन्हें नरगिस के नाम से ही श्रेय दिया गया और मिलने लगी। अपनी पहली फिल्म के बाद नरगिस ने कई फिल्मों में काम किया। 1943 में 14 वर्ष की आयु में उन्होंने महबूब खान की फिल्म तकदीर में मोतीलाल के साथ अभिनय किया। ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सफल रही और उनके अभिनय की खूब प्रशंसा हुई। फिल्म इंडिया ने इसे एक उत्कृष्ट पदार्पण बताया। तकदीर के बाद नरगिस ने 1944 में फिल्म अनबन में अभिनय किया। इसके बाद नरगिस ने 1945 में पीरियड ड्रामा हुमायूं में उस समय के प्रमुख अभिनेता अशोक कुमार के साथ और पौराणिक फिल्म रामायणी में अभिनय किया। 1946 में उन्होंने नरगिस में अभिनय किया। ये फिल्में औसत रूप से सफल रहीं। आइए सुनते हैं एक और गीत मोहम्मद रफ़ी और लता मंगेशकर की आवाज़ में, जिसे हमने लिया है मेला फिल्म से।

0: सोबत या फैशन के तौर पर अपनाया नशा आपकी आदत और स्वभाव का अंग बन जाएगा।
1: पार्टियों में नशा नहीं, खुशियाँ बांटिए।
0: नशा नहीं, जिंदगी अपनाइए।
1: आज अभी नशा छोड़ने का संकल्प दोहराइए।
0: ये सूचना मद्य निषेध विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।
2: 1948 में नरगिस ने राज कपूर के साथ अपनी पहली सहभागिता की नाटक फिल्म आग में, जिसमें उन्हें एक बेघर महिला का किरदार निभाया जो अभिनेत्री बन जाती है। फिल्म बहुत सफल नहीं रही और बॉक्स ऑफिस पर औसत कारोबार किया। हालांकि ये राज कपूर और नरगिस की एक दर्जन से अधिक फिल्मों में एक साथ दिखाई देने की शुरुआत थी। उन्होंने बेहद सफल त्रासदी फिल्म मेला में अभिनय किया। फिल्म इंडिया के संपादक बाबूराव पटेल ने उनके अभिनय की प्रशंसा की, लेकिन मां की भूमिका में उन्हें अविश्वसनीय और कृत्रिम पाया। IBOS के अनुसार फिल्म का 1948 में बॉक्स ऑफिस कलेक्शन 50 लाख रुपए था। 2015 तक समायोजित कलेक्शन 340.44 करोड़ अनुमानित था। उस वर्ष की उनकी आखिरी फिल्म अनोखा प्यार थी, जो सफल नहीं रही। आइए सुनते हैं इन्हीं की फिल्म से एक और गीत। फिल्म का नाम है श्री 420। आवाजें हैं लता मंगेशकर, मोहम्मद रफी और साथियों की।

सन 1949 में नरगिस ने महबूब खान के समीक्षकों द्वारा प्रशंसित नाटक अंदाज में अभिनय किया। इस फिल्म में उन्होंने नीना का किरदार निभाया, जिसके पति राजन यानी राज कपूर को शक होता है कि उसका अपने दोस्त दिलीप कुमार से अफेयर है। फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर धीमी शुरुआत की, लेकिन जैसे ही इसकी सकारात्मक चर्चा फैली, ये एक बड़ी व्यावसायिक सफलता बन गई और अब तक की सबसे अधिक कमाई करने वाली फिल्म बन गई। ये फिल्म कपूर के करियर की पहली हिट थी और नरगिस और कुमार के लिए एक बहुत बड़ी सफलता साबित हुई। आइए सुनते हैं एक और गीत घर संसार फिल्म से। मोहम्मद रफ़ी, आशा भोसले और साथियों की आवाज़ों में इस फिल्म में नरगिस ने अभिनय किया था।

सन 1950 में नरगिस ने मीना बाजार, रोमांटिक ड्रामा फिल्म जोगन, जन पहचान, संगीत में ड्रामा बाबुल और आधी रात जैसी फिल्मों में भूमिकाएं निभाईं। जोगन और बाबुल दोनों ही बॉक्स ऑफिस पर हिट रहीं और बाबुल में उनके अभिनय की विशेष रूप से सराहना की गई। इसके बाद उन्होंने ड्रामा फिल्में हलचल, दीदार, इन सब में अभिनय किया। अंदाज और बरसात की सफलता के कारण राज कपूर नरगिस के पर्दे पर आकर्षण और उपस्थिति से लोग खासा प्रभावित हुए। आइए सुनते हैं एक और गीत, रात और दिन फिल्म से, आवाज है लता मंगेशकर की।

श्रोताओं, इसी के साथ कार्यक्रम एक और अनेक अब समाप्त होता है। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम एक और अनेक। हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 954 किलो हर्ट्ज पर। दोपहर के 3 बजने को है। अब हमारी सभा के प्रसारण यहीं संपन्न होते हैं। अपनी अगली सभा में शाम 5 बजे आपसे पुनः भेंट होगी। तब तक के लिए अनुमति दीजिए।

मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 954 किलोहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। शाम के 5 बज रहे हैं। हमारी दूसरी सभा के प्रसारण अब आरंभ होते हैं। सभा के आरंभ में सुनते हैं आकाशवाणी के 90 वर्षों के उपलक्ष में आकाशवाणी नजीबाबाद से जुड़े श्रोताओं के अनुभव पर आधारित कार्यक्रम रिश्ता ये खास है। आकाशवाणी के 90 वर्ष भारत के संचार, संस्कृति और लोकतंत्र की समृद्ध यात्रा के प्रतीक हैं। आकाशवाणी ने केवल समाचार प्रसारित नहीं किए, बल्कि देश की विविध भाषाओं, लोक परंपराओं, संगीत और सांस्कृतिक विरासत को भी संरक्षित और लोकप्रिय बनाया है। स्वतंत्रता पूर्व काल से लेकर आज तक आकाशवाणी ने महत्वपूर्ण राष्ट्रीय घटनाओं को लोगों तक पहुंचाया। ग्रामीण भारत में कृषि, स्वास्थ्य, शिक्षा और जन कल्याण से जुड़ी जानकारी पहुंचाने में भी इसकी विशेष भूमिका रही है। शास्त्रीय संगीत, लोक संगीत, कवि सम्मेलन, नाटक और साहित्यिक कार्यक्रमों ने भारतीय संस्कृति को नई पहचान दी है। प्राकृतिक आपदाओं, युद्धों और राष्ट्रीय संकटों के समय आकाशवाणी विश्वसनीय सूचना का एक प्रमुख स्रोत रही है। भारत की

0: नमस्कार। रेडियो के 90 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में आज स्टूडियो में हमारे साथ है नजीबाबाद के व्यवसायी श्री ओम प्रकाश जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्टूडियो में। आज हम जानेंगे इनके रेडियो से जुड़े 75 वर्ष के इनके अनुभव के बारे में।
1: धन्यवाद मनीषा जी। हमने बचपन से ही रेडियो सुना है। उस समय मनोरंजन का साधन एकमात्र रेडियो ही था। रेडियो में मनोरंजन के साथ साथ समाचार भी सुनते थे, नई नई खबरें भी मिलती थी, देश विदेश की जानकारी भी मिलती थी। जब मैं मात्र 10 साल का था, मेरे पिताजी एक रेडियो लाए और उस रेडियो को जब हमने अपने यहाँ लगाया तो उसमें एक तार कनेक्शन से ऊपर छत के ऊपर भी जाता था, जिससे कि जिसे एरियल बोलते थे, तब वो रेडियो बजता था। और हमें बड़ी उत्सुकता होती थी कि ये रेडियो बजेगा कैसे। जब उस रेडियो का उन्होंने बटन खोला तो उसकी आवाज़ आनी सुनी हुई शुरू हुई, और तब वो जो है स्विच का घुमाते थे एक वॉल्यूम, तो उसमें जो है अलग अलग स्टेशनों के प्रोग्राम आते थे, और एक बटन उसमें आवाज़ कमती बढ़ती करने का भी था। उस समय रेडियो ही एकमात्र जो है मनोरंजन का साधन हुआ करता था, जो लगभग सभी घरों में होता था। जब हमें बड़ी उत्सुकता होती थी कि हम इसे बैठकर गाने सुनेंगे इसमें या समाचार सुनेंगे, समय समय पर अच्छे मनोरंजन के लिए बिना का गीत माला भी सुनते थे, और साथ ही प्रोग्राम आता था जिसमें नाटक के साथ साथ गाने भी बजते थे। उसका नाम था हवा महल, जिसमें मुझे आज भी याद है मुंशी प्रेमचंद के नाटक के आते थे, और छाया गीत का प्रोग्राम आता था जो बजता रहता था, और उस समय बहुत लोकप्रिय था, जिसमें मोहम्मद रफ़ी के गाने, लता मंगेशकर के गाने खूब सुनते थे। रविवार में विशेषकर फिल्मों की स्टोरी आती थी, उन्हें भी आदमी बहुत चाव से सुनता था। 15 अगस्त 26 जनवरी को सारा दिन देश प्रेम के गाने बजते रहते थे, जो बहुत अच्छे लगते थे, करण प्रिय होते थे। और मुझे आज भी याद है 1971 की जब लड़ाई हुई तो उसमें जो है हम सब रेडियो के साथ चिपके रहे थे समाचार सुनने के लिए कि भाई कहीं क्या हो रहा है, क्या मारधाड़ हो रही है, क्या कितनी हमारे भारत की सेनाएं जीती, कितने आदमी मरे, सब पता लगता था उसी के द्वारा। और समाचार सुनने के लिए रेडियो से चिपके रहते। सबसे अच्छा हमारे देश का साधन रेडियो ही था, जिसमें हम अपनी मर्जी के गानों की फरमाइश भी सुनते थे और कार्यक्रम भी सुनते थे। और एक आता था बिना का गीतमाला, जो बहुत प्रसिद्ध थी, उसे बड़े चाव से सुनते थे। आज के ज़माने का किसानों का कार्यक्रम भी उस समय चलता था, और किसानों का एकमात्र लोकप्रिय कार्यक्रम था जो शाम को सारे किसान एक साथ बैठ कर कृषि जगत का नाम से सुनते थे, और उसमें सब बताते थे भाई पशुओं के बारे में, खेती बाड़ी के बारे में, कैसे फसल को उगानी चाहिए, किस समय क्या खाद पानी देना चाहिए। और हमारे प्रधानमंत्री भी देश के लिए रेडियो से ही संदेश देते थे, उनके भाषण रेडियो पर भी हम सुनते थे। क्रिकेट का खेल जब होता था तो उनकी कमेंट्री भी रेडियो में सुनते थे, और खेल जगत के सारे कार्यक्रम, खेलों की जानकारी हमें एक साथ रेडियो से ही मिलती थी। लघु उद्योगों के बारे में भी, अपनी दुकानदारियों के सामान के बारे में अधिकतर जानकारी, भावों के बारे में सब उनसे मिलती थी। 80 के दशक तक रेडियो हर तरह के मनोरंजन और जानकारी का साधन था, जिसे जो है एक तरफ से मनुष्य की आदत सी भी बन गई थी। खाने खाते, घूमते, सोते जागते आदमी रेडियो ज़्यादा सुनता था, तो रेडियो घर की शान थी। जो कार्यक्रम स्वास्थ्य चर्चा का है जो अब चलता है, वह उस उम्र में भी हम सेहत के लिए जानकारी देते थे, दुख तकलीफ के बारे में भी सब बताते, डॉक्टर लोगों की भी सब पता चलता था, और खेलों में कितनी तरक्की हो गई इसकी जानकारी भी हमें लखनऊ से आने वाले खेल दर्पण से मिलती थी। रेडियो से जो है हमारे मन मस्तिष्क हर तरह खुलते थे, हम बड़े खुश होते थे कि भाई आज चलो अब समय बच गया तो रेडियो सुनेंगे। सोते हुए रात को रेडियो के गाने सुनते सुनते नींद आ जाती थी।
0: आपने हमें इतनी सारी जानकारी दी, अपने अनुभव के बारे में जानकारी दी, हम बहुत लाभान्वित हुए इसके

अभी आप सुन रहे थे आकाशवाणी के 90 वर्षों के उपलक्ष्य में आकाशवाणी नजीबाबाद से जुड़े श्रोताओं के अनुभव पर आधारित कार्यक्रम रिश्ता ये खास है। आकाशवाणी का ये नजीबाबाद केंद्र है। मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 954 किलोहर्ट्ज़ पर। शाम के 5:10 हो रहे हैं। आइए अब डालते हैं एक नजर आज और कल प्रसारित होने वाले मुख्य कार्यक्रम पर। आज रात्रि 9:30 पर कार्यक्रम अनुगूंज और रात्रि 10:00 अखिल भारतीय रविवासरीय संगीत सभा का प्रसारण हमारे दिल्ली केंद्र से रिले किया जाएगा। शाम 5:15 पर कार्यक्रम युववाणी में सुनवाएंगे कुछ खास है आज में तंबाकू निषेध दिवस पर चर्चा। शाम 6:05 पर कार्यक्रम कृषि जगत में सुनवाएंगे आदित्य कुमार गौतम से, जो कि सहायक विकास अधिकारी ब्लॉक कोतवाली हैं, अंकित कुमार की बातचीत। बातचीत का विषय रहेगा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का लाब कैसे लें। 6:45 पर कार्यक्रम विविधा में सुनवाएंगे सविता मिश्रा की कहानी, शीर्षक रहेगा संजीवनी बूटी। 7:32 पर पेश करेंगे कार्यक्रम सुगम संगीत, जिसमें आपको सुनवाएंगे हेमंत पाठक की आवाज में चंद गीत। 7:50 पर पेश करेंगे कार्यक्रम अदबी दुनिया, जिसमें सुनवाएंगे एजाज धामपुरी का कलाम ए शायर। ये थी जानकारी आज के शेष कार्यक्रम की। अब एक नजर कल प्रसारित होने वाले मुख्य कार्यक्रम पर। प्रातः 6:40 पर समय रहेगा चिंतन का। 7:05 पर स्वास्थ्य चर्चा कार्यक्रम में जानकारी का विषय रहेगा वाणी की स्वच्छता। 7:10 पर खेती की बातें कार्यक्रम में देंगे जानकारी, इस पखवाड़े किसान भाई क्या करे। सूरज के साथ साथ कार्यक्रम का समय रहेगा 7:31। 9:25 पर आपको सुनवाएंगे धरती गाती है कार्यक्रम में भीम सिंह की गाई रागनी। 9:50 पर समय रहेगा कार्यक्रम बात आस पास का। दिन में 10:00 समय रहेगा रेडियो प्रसारण के 90 साल के उपलक्ष्य में कार्यक्रम सुहाना सफर का। 11:30 पर सुनवाएंगे प्रायोजित कार्यक्रम उमंग। 12:05 पर शास्त्रीय संगीत में सुनवाएंगे हरिप्रसाद चौरसिया का बांसुरी वादन। 1:15 पर कार्यक्रम परिवार जगत में सुनवाएंगे विश्व दुग्ध दिवस पर चर्चा, साथ ही सुनवाएंगे डॉक्टर राजीव अरुणा से ज्योतिपाल की बातचीत। विषय रहेगा गलत खान पान और कैल्शियम की कमी का धातु पर क्या प्रभाव पड़ता है। 1:45 पर लोकधारा कार्यक्रम में सुनवाएंगे बालेश्वर और साथियों की आवाज में भोजपुरी लोकगीत। 2:30 पर समय रहेगा कार्यक्रम नई फिल्मों से का। शाम 5:00 आपको सुनवाएंगे आकाशवाणी के 90 वर्षों के उपलक्ष्य में आकाशवाणी नजीबाबाद से जुड़े श्रोताओं के अनुभव पर आधारित कार्यक्रम रिश्ता ये खास है। 5:15 पर युवा श्रोताओं को सुनवाएंगे कार्यक्रम युववाणी, जिसमें सुनवाएंगे कुछ खास है आज के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर माता पिता का वैश्विक दिवस पर चर्चा, ग्लोबल डे ऑफ पेरेंट्स। 6:05 पर कार्यक्रम कृषि जगत में किसान भाइयों को सुनवाएंगे जिला उद्यान अधिकारी बिजनौर श्री आर एन वर्मा से हिमांशु रंजन की बातचीत। विषय रहेगा किसानों की आय बढ़ाने में बागवानी की क्या भूमिका है, साथ ही गन्ने में लाने वाले कीट और प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना पर भी चर्चा करेंगे। 6:45 पर कार्यक्रम विविधा में सुनवाएंगे वीर सिंह की वार्ता। विषय रहेगा मानवीय हस्तक्षेप और इसका प्रकृति पर प्रभाव। 7:32 पर आपको सुनवाएंगे सिमरन सैनी की आवाज में भजन, कार्यक्रम रहेगा सुगम संगीत। ये थी जानकारी आज के शेष और कल प्रसारित होने वाले मुख्य कार्यक्रम की। आकाशवाणी का ये नजीबाबाद केंद्र है। मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 954 किलोहर्ट्ज़ पर।
शाम के 5:15 हो रहे हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम युववाणी।

0: विश यू अ वेरी गुड इवनिंग फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने फेवरेट प्रोग्राम युवाणी में। और आज प्रोग्राम में आपके साथ हूँ मैं आपकी अपनी दोस्त उज्मा,
1: और उज्मा के साथ हूँ मैं आपकी अपनी रेडियो पार्टनर अक्षी त्यागी। तो दोस्तों, आज है संडे और संडे को संडे होता है रिलैक्स डे।
0: बिल्कुल,
1: तो आप कि इस रिलैक्स डे को और रिलैक्स बनाने के लिए आज हम आपके लिए लेकर आए हैं बहुत कुछ खास।
0: हाँ अक्षी, वो तो हम लेकर आए हैं, लेकिन अक्षी पता है आज ना मैं बहुत परेशान हूँ।
1: अरे क्या हुआ, मोबाइल की बैटरी खत्म हो गई?
0: अरे नहीं,
1: तो फिर इंटरनेट बंद हो गया होगा।
0: वो भी नहीं,
1: तो क्या कैंटीन वाले भैया ने समोसे महंगे कर दिए क्या?
0: अरे नहीं यार, उससे भी गंभीर बात है।
1: देखो अब जल्दी बताओ, सस्पेंस ना मत बनाओ।
0: देखो आज है विश्व तंबाकू निषेध दिवस, और मैंने सोचा कि तंबाकू से बात करके पूछूं कि भाई तू लोगों के पीछे इतना क्यों पड़ा रहता है।
1: वाह वाह वाह, क्या बोला फिर तंबाकू भाई?
0: भाई वो बोला, मैं तो खुद नहीं जाता, लोग ही मुझे जेब में डालकर घूमते हैं।
1: क्या फनी बात कही तुमने, वैसे सही कहा उसने भी, लेकिन उसमें मजाक अपनी जगह है। तंबाकू की आयत कई लोगों की सेहत ना बहुत खराब कर देती है, मतलब सेहत पे बहुत बुरा असर डाल देती
0: बिल्कुल,
1: है।
0: बिल्कुल, मैं यही तो तुमसे कहना चाह रही हूँ, तभी तो परेशान हूँ। और पता है सबसे मजेदार बात क्या है?
1: क्या
0: पता है,

0: कुछ लोग कहते हैं बस आज आखिरी बार है,
1: और वो आखिरी बार ना अगले दिन फिर आ जाता है।
0: हाँ दोस्तों, अगर जिंदगी में कुछ पकड़ना ही है ना तो सपने पकड़ो, किताबें पकड़ो, सफलता पकड़ो, तंबाकू का क्या पकड़ना भाई।
1: सही कहा वैसे तुमने, क्योंकि तंबाकू ना कभी कभी दोस्तों हम लोगों को बहुत बुरा बना देता है।
0: बिल्कुल, वो दोस्त नहीं बनता हमारा।
1: हाँ वो हमारा दोस्त नहीं होता है, बस धीरे धीरे परेशानियां बढ़ा सकता है।
0: बिल्कुल, तंबाकू चाहे तंबाकू हो, सिगरेट हो, बीड़ी हो, गुटखा हो, खैनी हो, या फिर किसी भी रूप में हो, ये हमारे शरीर को नुकसान ही पहुंचाता है, फायदा तो कभी देता नहीं।
1: इससे फेफड़े, हृदय और मुंह में से जुड़ी हुई काफी सारी बीमारियां ना गंभीर हो जाती हैं।
0: बिल्कुल, और सबसे बड़ी बात, तंबाकू का धुआं केवल सेवन जो कर रहा है ना उसका सेवन, उसको नहीं होता, बल्कि उसके आसपास जो लोग मौजूद है ना उनको भी वो हद से ज्यादा प्रभावित कर देता है।
1: तो दोस्तों आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है हमारी कि अगर आपके आसपास कोई तंबाकू का सेवन करता है तो उसे प्यार और समझदारी से समझाइए कि इससे कितने नुकसान हो सकते हैं।
0: बिल्कुल, याद रखिए, अच्छी सेहत से बढ़कर कोई दौलत नहीं होती, एक छोटी सी शुरुआत भविष्य में बड़ा बदलाव ला सकती है। जैसे अब हम अपने प्रोग्राम में थोड़ा सा बदलाव लाने वाले हैं, आपको ले चलते हैं एक बहुत ही सस्पेंस वाली एक रहस्य सीरीज की तरफ, जिसका है आज आखिरी एपिसोड, यानी एपिसोड नंबर 6, और हमारी जो रहस्य सीरीज है उसका नाम है खामोश घाटी। तो चलिए देखते हैं कि आज इस आखिरी एपिसोड में क्या होने वाला है।
2: हाय, मेरा नाम आदिल है, आदिल सैफी, और आप सभी लिसनर्स का स्वागत है हमारे रहस्य सीरीज के सीजन 2 में। इस कहानी का नाम है खामोश घाटी और यह है रहस्य सीरीज की आखिरी कड़ी यानी एपिसोड नंबर 6।

0: और आइए अब जान लेते हैं अब तक की कहानी। कहानी शुरू होती है 5 अक्टूबर साल 1987 में। एडम और बाकी टीममेट्स ट्रैक पर जाते हैं यूएस के कोलोराडो स्टेट के डेनवर शहर से। वहां से वो बीवर क्रीक पर पहुंचते हैं और वहां से उनका ट्रैक शुरू होता है। उनकी डेस्टिनेशन थी साइलेंट वैली। काफी परेशानियों और एडवेंचर के बाद वो शाम तक वैली में पहुंच जाते हैं। अब थोड़ा समय वो वहां पर बिताते हैं, लेकिन 6 अक्टूबर साल 1987 की रात तकरीबन रात के 2 बजे के करीब डेनवर पुलिस हेडक्वार्टर्स में एक सिग्नल रिसीव होता है जो कि साइलेंट वैली से ही आ रहा था और जिसे एडम ने भेजा था। नेक्स्ट डे जब रेस्क्यू टीम वहां पहुंचती है तो उनको वहां कोई नहीं मिलता, बस खाली टेंट। सब हैरान हो जाते हैं। फिर 3 दिन बाद टेंट से तकरीबन 2-3 किलोमीटर दूर उनको 2 टीम के मेंबर्स की डेड बॉडीज मिलती हैं, जिसमें से एक था एडम और दूसरा था बेंजामिन। जब सर्चिंग टीम को उनकी बॉडीज मिलती हैं तो उन पर कोई भी कपड़े नहीं थे, सिर्फ अंडरगारमेंट्स पहन रखे थे। और अगले दिन फॉरेंसिक जांच होने के बाद ये और मालूम हुआ कि एडम की पसलियां और बेंजामिन की खोपड़ी की हड्डी टूटी हुई थी। साथ ही एडम के कपड़ों के टुकड़ों पर रेडिएशन पार्टिकल्स भी पाए गए थे। इस खबर के सामने आते ही हजारों सवाल खड़े हो चुके थे। सर्चिंग ऑपरेशन दोबारा से चालू किया गया और फोर्स बुलाई गई। सर्चिंग टीम को कैंप से थोड़ी ही दूरी पर डॉक्टर कैथरीन, जो कि टीम मेंबर ही थी, उनकी खुनिकोट एक डायरी मिलती है जिसमें बहुत दर्दनाक बातें लिखी थी। शुरुआत में लिखावट ठीक थी, लेकिन बाद में लिखाई में फर्क था। डायरी में बहुत चौंकाने वाली बातें थी।
1: एक आवाज, एक भिनभिनाहट जो कानों में नहीं सीधा दिमाग के अंदर बच रही है। हम सो नहीं पा रहे। बेंजामिन रो रहा है, वो कह रहा है कि उसके कान में खून भर गया है, लेकिन मुझे कोई खून दिखाई नहीं दे रहा।
0: डायरी का आखिरी पन्ना सबसे ज्यादा डरावना था। एडम ने जीपीएस डिवाइस
1: वहीं फेंक दिया है। हमें बाहर जाना होगा। बाहर वो लोग खड़े हैं जो कभी इंसान थे। वो हमें आवाज।
0: डायरी में जो लिखा था उसके मिलने के बाद मीडिया में हाहाकार मच गया। कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज जन्म लेने लगी। उनमें से सबसे पॉपुलर थ्योरीज ये थी जो साइलेंट वैली के सबसे करीब बस्ती में रहने वाले लोगों की मान्यता से जुड़ी हुई थी। अब आइए चलते हैं पास्ट में। बात है सन 1510 की, यानी यूरोपियंस के अमेरिका डिस्कवर

करने के बाद की बात। जब यूरोपियंस ने नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट इन्वेड किया, तब वहाँ लोकल ट्राइब्स या कह सकते हैं वहाँ के कबीले के लोग और यूरोपियंस के बीच घमासान युद्ध हुआ, जिसमें लाखों मासूम नेटिव अमेरिकन्स की जानें चली गई थी। साथ ही उस वक्त यूरोप में फैलने वाली बीमारी जैसे कि स्मॉल पॉक्स, वो भी पूरे कॉन्टिनेंट में फैल चुकी थी और उसी की वजह से लाखों जानों का नुकसान हुआ था। नेटिव अमेरिकन्स के कबीले और उनकी सभ्यता को नष्ट कर दिया गया। उन्हीं कबीले में से एक कबीले, चिरोके कबीले के लोग उस साइलेंट वैली में रहते थे, लेकिन सब खत्म हो गया। जंग में पूरी बस्ती तबाह हो गई। साइलेंट वैली के पास में रह रहे लोकल लोगों में अभी भी ये कहानी काफी मशहूर है। शायद एडम और उसकी टीम को उन आत्माओं ने मारा हो, पर सच क्या था? पुलिस के लिए ऐसी थ्योरीज को हजम करना बहुत ही मुश्किल था। थ्योरीज काफी थी, पर सवाल सिर्फ वही एक कि आखिर 6 अक्टूबर को क्या हुआ था। इन्हीं अफवाहों के बीच और डॉक्टर कैथरीन की डायरी मिलने के बाद पुलिस ने सडनली इस इन्वेस्टिगेशन बंद कर दी। केस क्लोज्ड। डॉक्टर कैथरीन की डायरी मिलने के बाद केस को सॉल्व करने की बजाय पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन बंद कर दी। जिस डॉक्टर ने ऑटोप्सी की थी उन्होंने अचानक रिजाइन कर दिया। जो ऑफिसर इस केस को लीड कर रहे थे उनका ट्रांसफर कर दिया गया। प्रेस रिलीज में रीजन बताया गया एक एवलांच, यानी बर्फ का तूफान। रातों रात उस पूरी साइलेंट वैली को सील करके रेस्ट्रिक्टेड जोन घोषित कर दिया गया। लेकिन अगर वो एवलांच था तो क्रू के टेंट्स अपनी जगह पर कैसे खड़े थे? पसलियां कैसे टूटी? रेडिएशन कहां से आया? और सबसे बड़ा सवाल यह था कि बाकी बॉडीज आखिर कहां थी? गवर्नमेंट ऐसी क्या बात छुपा रही थी? आइए इस कहानी के राज पर से पर्दा उठाते हैं। आपको याद होगा कि कहानी के शुरुआत में मैंने आपसे बताया था कि वो वक्त एक कोल्ड वॉर इरा था। यूएस और सोवियत यूनियन अपनी पीक पर थे। दोनों ही देश अपने वेपन इंक्रीज करने में लगे हुए थे। एक रेस लगी हुई थी, न्यू वेपन्स की टेस्टिंग चल रही थी। उन्हीं में से एक था वो परीक्षण, प्रोजेक्ट स्काईवेव, जो साल 1987 में यूएस मिलिट्री ने कंडक्ट किया था, जिसकी लोकेशन थी साइलेंट वैली। 6 अक्टूबर साल 1987 की रात, उस वक्त जब एडम और बाकी टीममेट साइलेंट वैली में कैंपिंग कर रहे थे, उस रात प्रोजेक्ट स्काईवेव को लॉन्च किया गया था, जहां एक खतरनाक एकोस्टिक माइक्रोवेव वेपन यानी कि ध्वनि हथियार टेस्ट किया गया। ये वेपन ऐसा था जिसमें 20 डेसिबल से कम की फ्रीक्वेंसी यानी ऐसी आवाजें थी जो कानों को सुनाई नहीं देती थी लेकिन शरीर महसूस कर सकता था। एडम की टीम गलती से टेस्टिंग जोन में पहुंच गई थी। उस रात हवा का दबाव भी कम था, जिसकी वजह से एक प्रोसेस हुआ जिसको कहते हैं पैरोट्रॉमा, और उसकी वजह से एडम और बेंजामिन की हड्डियां भी टूट गई थी। अब इस प्रोजेक्ट की वजह से वहां एक प्रोसेस और हुआ, एक छोटा सा अर्थक्वेक। जब मिलिट्री ने इस वेपन को फायर किया तो उन आवाज की तरंगों ने एक छोटा अर्थक्वेक भी पैदा किया, जिसने जमीन के अंदर भारी मात्रा में मौजूद कार्बन डाइऑक्साइड और रेडॉन गैस को सतह पर फैला दिया। ऑक्सीजन लेवल कम होने की वजह से उन्हें सांस लेने में भी दिक्कत महसूस हुई, जिसकी वजह से हेलुसिनेशंस हुए। डॉक्टर कैथरीन की डायरी में जो कुछ लिखा हुआ था वो सब हेलुसिनेशंस की वजह से ही उनको फील हो रहा था। उन्हें वो सब दिखाई दे रहा था जो वहां मौजूद ही नहीं था। वहीं दूसरी ओर एडम के कपड़े पर रेडिएशन जो मिला था उसकी वजह थी रेडॉन गैस, जो कि अर्थक्वेक की वजह से सतह पर फैल गई, और अंदर से बाहर की ओर टेंट खाड़ना वो सब हेलुसिनेशंस और दम घुटने की वजह से हुआ था। सरकार और सिस्टम के पास ताकत होती है कि वो किसी भी सच को एक खूबसूरत झूठ के नीचे दफना देते हैं। जब टीवी पर खबर आई साइलेंट वैली में एवलांच या कह सकते हैं बर्फीले तूफान की वजह से 5 लोगों की मौत, तो देश की जनता ने शुरुआत में उस पर यकीन कर लिया। सबने टीवी में न्यूज देखी और यकीन कर ली और तुरंत उसको सच मान लिया, क्योंकि गवर्नमेंट मीडिया के जरिए नैरेटिव सेट में कभी नहीं छुपती और मीडिया ही सबसे बड़ा हथियार माना जाता है। शायद इंसान की जिंदगी की कीमत इतनी ही है, लेकिन हम काम न करते हैं कि फिर कभी ऐसी घटना ना हो, क्योंकि एक यही चीज है जो हम सब इंसानों को आपस में जोड़े रखती है, वो है अच्छाई।
और इंसानियत। उम्मीद करते हैं रहस्य सीरीज के अंतर्गत आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी, बहुत कुछ सीखा होगा, काफी कुछ जाना होगा। अब हमारी मुलाकात होगी नेक्स्ट मंथ इसी तरह की एक नई कहानी के साथ। सो हमारे युवाणी प्रोग्राम को सुनना ना भूलें। स्टे हेल्दी, स्टे सेफ।

0: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।
1: नशे का शौक कहीं आपकी आदत तो नहीं बन गया?
2: याद रखिए, शौक, सोबत या फैशन के तौर पर अपना यह नशा आपकी आदत और स्वभाव का अंग बन जाएगा।
1: पार्टियों में नशा नहीं, खुशियां बांटिए।
2: नशा नहीं, जिंदगी अपनाइए।
1: आज अभी नशा छोड़ने का संकल्प दोहराइए।
2: ये सूचना मद्य निषेध विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।
3: प्लेटफॉर्म नंबर 2 से चलने वाली सुपर फास्ट एक्सप्रेस के यात्री
4: आई एम हियर। मोबाइल चार्ज करना,
5: दिमाग चार्ज कर अपना।
6: ऐसे पब्लिक पोर्ट से फोन चार्ज किया तो पर्सनल डेटा होगा पब्लिक।
5: देखा
4: पापा, रुको मैं पे करता हूँ। नो सिग्नल।
6: अब क्या करोगे?
4: फ्री वाईफाई है ना?
5: बुद्धू सुधर जा।
6: पेमेंट्स के लिए नो ओपन वाईफाई।
4: यानी फ्रॉड को करो बाय बाय।
6: RBI कहता है
7: करो सही शुरुआत, बनो फाइनेंशियली स्मार्ट।
8: नए जमाने की नई तस्वीर। अब छत पर लगे टीवी एंटेना को कहो गुड बाय सदा के लिए। समय के साथ बदलें, आगे बढ़ें। ले आएं आज ही दूरदर्शन का DD फ्री डिश। इसमें है आपके पसंदीदा 100 से ज्यादा टीवी चैनल्स। इसके अलावा 51 एजुकेशनल यानी पढ़ाई लिखाई वाले चैनल्स और 48 रेडियो चैनल्स। और तो और, सेट टॉप बॉक्स लगवाने के बाद कोई खर्चा नहीं, बिल्कुल नहीं। डिजिटल क्रांति की ओर एक कदम और आपका DD फ्री डिश।
1: नशे का शौक कहीं आपकी आदत तो नहीं बन गया?
2: याद रखिए, शौक, सोबत या फैशन के तौर पर अपना यह नशा आपकी आदत और स्वभाव का अंग बन जाएगा।
1: पार्टियों में नशा नहीं, खुशियां बांटिए।
2: नशा नहीं, जिंदगी अपनाइए।
1: आज अभी नशा छोड़ने का संकल्प दोहराइए।
2: ये सूचना मद्य निषेध विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।
9: हम हंसाएंगे, आप मुस्कुराएंगे,
10: हो जाओगे एहसास कर लोट कोट,
9: क्योंकि यह है लाफ्टर का सॉलिड डोज।
11: और डोज में क्या है?
10: डोज में है मजा।
9: जी हाँ, मजा आ गया।
12: हाँ भाई लड़के, तेरे सामने वो लड़की का पर्स चुरा के भागा वो चोर, और तू खड़ा हुआ देख रहा?
11: सर मैं उस लड़की को जानता हूँ, इसलिए मैंने उसकी मदद नहीं की।
12: अबे जब जानता है तो और मदद करनी चाहिए थी ना तुझे।
11: अरे सर जरा आप मेरी बात तो सुनिए, आपने उसके व्हाट्सएप स्टेटस नहीं देखे? मैंने देखे है, इसलिए नहीं मैंने उसकी मदद की।
12: व्हाट्सएप स्टेटस? अबे यो कौन सा वो है अब?
11: अरे सर पता है कल उसने क्या लगा रखा था व्हाट्सएप स्टेटस पे?
12: क्या
11: कल उसने लगा रखा था? आई कैन हैंडल माई प्रॉब्लम, माइंड योर ओन बिजनेस, डोंट अंडरस्टिमेट द पावर ऑफ वुमेन।
12: अबे अबे अबे अबे, फिर तो ठीक है भाई, फिर ठीक है, मरण दे इस लड़की को, मरण दे।
9: जी हाँ, मजा आ गया।
11: वेलकम वेलकम वेलकम दोस्तों, आज है संडे और इस संडे हम आपके लिए लेकर आए हैं बहुत ही प्यारा सा खूबसूरत सा सेगमेंट। अब अक्षय, हमारे दोस्तों को लग रहा होगा कि अरे भाई ये लोग तो हर बार ही कुछ स्पेशल लेके आते हैं, आखिर इस बार क्या स्पेशल लेके आ गए? तो मुझे लगता है ज्यादा सस्पेंस ना रखते हुए बता देते हैं कि हम अपने दोस्तों के लिए लेकर आए हैं इस संडे एक स्पेशल। स्पेशल तो होगी भाई, क्योंकि काफी दिन बाद जो आ रही है। दोस्तों हम आपके लिए लेकर आए हैं सेगमेंट क्विज, और ये क्विज स्पेशल इसलिए है क्योंकि हमारे साथ हमारे बहुत स्पेशल स्पेशल दोस्त जुड़े हुए हैं। तो अपने दोस्तों को रूबरू करा दें अपने और दोस्तों से।
13: तो फिर उजमा दे ना लगाते हुए, और हमारे जो लिसनर्स हैं वो भी एक्साइटेड होंगे कि आखिर कौन है आज हमारे साथ। तो हमारे साथ दोस्तों बहुत सारे युवा जुड़ चुके हैं और हमारे स्टूडियो में वो मौजूद हैं। तो आइए आपसे मिलवाते हैं उन सभी को। तो सबसे पहले पूछते हैं उनसे उनका नाम।
14: मेरा नाम अली अहमद।

0: है और मैं एक MBA ग्रेजुएट हूँ।
1: मेरा नाम प्राची है और मेरी पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट हो चुकी है।
2: मेरा नाम लक्ष्मी कश्यप है और मैंने BSc कर रखा है।
3: मेरा नाम दीपा है, मैं BSc ग्रेजुएट हूँ।
4: मेरा नाम पलक है, मैं BA फाइनल ईयर में हूँ।
5: हेलो फ्रेंड्स, मेरा नेम राधिका है एंड मैं BTech परस्यू कर रही हूँ।
6: हेलो, मेरा नाम आयुषी वर्मा है और मैंने अभी अभी अपना MSc बायोटेक्नोलॉजी पूरा किया है।
7: हेलो एवरीवन, माय नेम इज अपूर कोटनाला, आई एम करंटली पर्सुइंग माय BTech इन कंप्यूटर साइंस।
1: तो अक्षय, अब हमारे दोस्तों का जो इंट्रोडक्शन है हमारे और दोस्तों से हो चुका है, तो अब प्रोग्राम को आगे बढ़ाया जाए।
4: हाँ उज्मा, और बांटा जाए सबको एक एक टीम में।
1: बिल्कुल, और भाई अगर टीम नहीं होंगी तो फिर मजा कैसे आएगा।
4: और मजा लेने के लिए तो बनानी पड़ेगी भाई टीम, तो हमने बनाई है टीम ए और टीम बी। तो इंट्रोड्यूस कराते हैं सबसे पहले हमारी टीम ए से, और के बाद हम इंट्रोड्यूस कराएंगे अपनी टीम बी से। तो हमारी टीम ए में है अली, प्राची, दीपा और लक्ष्मी, और उसी के साथ हमारी टीम बी में है अपूर्व, पलक, आयुषी, राधिका।
1: तो टीम ए और टीम बी, क्या तैयार है आप?
8: हाँ जी बिल्कुल।
1: तो सबसे पहले हम अपने दोस्तों को अक्षय बता देते हैं कि हमारा जो क्विज है उसके रूल्स क्या हैं।
4: तो दोस्तों, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि हर बार हमारी जो रूल्स हैं वो एक से ही रहते हैं, और हमारे जो युवा साथी हैं वो भी हमारे रूल्स से वाकिफ होंगे, लेकिन फिर भी एक बार मैं सभी को रिकॉल करा देती हूँ हमारे रूल्स। और जैसे कि हमारी टीम है टीम ए और टीम बी, तो दोनों के लिए ही 3 राउंड होंगे। फर्स्ट राउंड में आप लोगों के लिए कोई ऑप्शन नहीं होगा, और सेकेंड राउंड में आप लोगों के लिए ऑप्शन होंगे, और थर्ड होगा रैपिड फायर, जिसमें आपको समय नहीं दिया जाएगा और आपको जल्द ही जवाब देना होगा। तो आप लोग एग्री हैं?
8: जी हाँ।
4: तो फिर जोरदार तालियां हो जाएं। सो उज़मा, आप देर ना करें, और आते हैं हमारी टीम ए से हमारे पहले राउंड का पहला सवाल। तो टीम ए रेडी?
0: जी बिल्कुल।
1: तो फिर ठीक है, ये रहा आपका क्वेश्चन।
4: भारत का पहला उपग्रह कौन सा था?
2: आर्यभट्ट।
4: आर यू श्योर?
2: यस।
4: सोच लीजिए।
2: यस।
4: क्या लॉक कर दिया जाए आपका जवाब?
2: यस।
4: पक्का?
2: पक्का।
1: अक्षय, अली मुझे बहुत शांत लग रहे हैं इस टीम में। अली, क्या आप इस आंसर से सेटिस्फाई नहीं है?
0: नहीं नहीं, बिल्कुल सेटिस्फाई हूँ।
1: तो मुझे लगता है मैं इनके इस आंसर को लॉक कर ही देना चाहिए।
4: या तो फिर जोरदार तालियां, और ये जवाब बिल्कुल सही है। तो टीम बी, आर यू रेडी?
8: यस।
4: ओके, तो टीम बी आपसे आपका पहला सवाल। भारत के संविधान के निर्माता किसे कहा जाता है?
8: B.R. अंबेडकर।
1: टीम बी, आपको लग रहा है वाकई आपका आंसर ठीक है?
8: यस।
4: मतलब अगर रॉन्ग हुआ उस बात
1: तो उसकी जिम्मेदारी यही लेंगे ना? अक्षी
4: देख लो, सोच लो एक बार।
8: नहीं, हमारा आंसर राइट है।
4: पक्का?
8: यस।
4: जी हाँ। तो टीम ए और टीम बी आप लोग तालियां बजा लीजिए, क्योंकि जवाब बिल्कुल सही है।
1: तो बढ़ते हैं आगे और वापस से लौट आते हैं अपनी टीम ए की तरफ। तो टीम ए, क्वेश्चन नंबर 2 के लिए क्या तैयार हैं आप?
8: यस
0: जी।
1: तो फिर देखते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 2 कैसा जाता है। तो आपके लिए क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास है, एशियन गेम कितने साल बाद आयोजित होते हैं?
2: 4 साल बाद।
1: दीपा, तो आपके इस आंसर को लॉक कर दिया जाए?
0: जी जी बिल्कुल।
1: अक्षय, तुम क्या कहती हो?
4: बिल्कुल लॉक कर दे और तालियां बजा दे।
1: तो टीम बी, टीम ए ने तो अपना आंसर हमें दे दिया है, आप तैयार हैं अगले क्वेश्चन के लिए?
8: जी हाँ।
1: तो टीम बी, ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। बताइए वॉकर कप किस खेल से संबंधित है?
2: शायद मुझे इसका आंसर लगता है गोल्फ।
4: शायद, मतलब अभी तुम श्योर नहीं हो। क्या आप लोग राधिका के जवाब से सहमत हैं या नहीं? हाँ या ना?
0: हाँ।
6: जी हाँ, हम सब राधिका के जवाब से सहमत हैं।
1: तो भाई तालियां हो जाए, आपका जो आंसर है वो बिल्कुल सही है।
4: तो टीम ए, आपके लिए तीसरा सवाल। कंप्यूटर में Ctrl+C का उपयोग किस लिए होता है?
8: कॉपी।
2: कॉपी करने के लिए।
4: क्या बात है, चारों ने एकदम से जवाब दिया।
1: तो अब तो अक्षय, मुझे लग रहा है ये कहने की जरूरत ही नहीं है कि आप लोग सहमत हैं या नहीं। तो तालियां हो जाए टीम ए के लिए, क्योंकि इनका आंसर बिल्कुल करेक्ट है।
4: टीम बी, आपके लिए तीसरा सवाल। कंप्यूटर में Ctrl+P का उपयोग किस लिए किया जाता है?
8: प्रिंट करने के लिए।
4: तो जोरदार तालियां टीम बी के लिए।
1: और जो हमारा फोर्थ क्वेश्चन है वो रहेगा हमारी टीम ए से। तो टीम ए, WTO का पूरा नाम क्या है?
9: वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन।
1: क्या आपको लगता है आपका आंसर बिल्कुल सही है?
8: जी
0: जी जी बिल्कुल।
4: तो जोरदार तालियां टीम ए के लिए।
1: टीम बी, फोर्थ क्वेश्चन आपसे। IMF हेडक्वार्टर कहाँ स्थित है?
7: वॉशिंगटन डीसी में।
1: तो टीम बी, क्या आपकी पूरी टीम सहमत है आपके इस जवाब से?
10: हाँ जी बिल्कुल।
4: तो जोरदार तालियां टीम बी के लिए। टीम ए और टीम बी, इस राउंड का ये आखिरी सवाल है आप दोनों टीम से। पहले टीम ए से हम का इस राउंड का आखिरी सवाल कर लेते हैं। आपसे हमारा सवाल है, पृथ्वी को ब्लू प्लैनेट क्यों कहा जाता है?

0: के लिए बिल्कुल सही जवाब। टीम बी, आपके लिए आखिरी सवाल, भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है?
1: वंदे मातरम।
0: तो जोरदार तालियां टीम बी के लिए और टीम ए दोनों के लिए ही।
2: अच्छा अक्षय, मुझे एक बात समझ नहीं आई, आपने क्लैपिंग दोनों के लिए क्यों कराई है?
0: मैंने क्लैपिंग दोनों के लिए इसलिए कराई है क्योंकि बिना अटके दोनों टीम ने जवाब बहुत अच्छे दिए हैं।
2: और दोस्तों इसलिए भी क्योंकि दोनों ही टीम ने बराबर स्कोर हासिल किए हैं, तो मुझे लगता है क्लैपिंग एक बार फिर से हो जानी चाहिए।
0: अब वक्त है राउंड टू का, जिसमें हम आपको ऑप्शंस देंगे, तो सोच समझ के आप लोग जवाब दीजिएगा। टीम ए, सबसे पहले आपसे सवाल।
2: तो टीम ए, इस बार फिर से क्वेश्चन की शुरुआत आपसे ही की जा रही है और आपके लिए पहला क्वेश्चन है, आधुनिक ओलंपिक खेलों की शुरुआत 1896 में किस शहर से हुई थी? आपको ऑप्शन दिए जा रहे हैं और आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए पेरिस, ऑप्शन बी एथेंस, ऑप्शन सी लंदन और ऑप्शन डी रोम।
3: इसका आंसर ऑप्शन बी है, एथेंस।
2: टीम ए, क्या वाकई आपको लगता है इसका ऑप्शन बी है?
1: जी yes.
3: जी जी बिल्कुल।
0: तो जोरदार तालियां टीम ए के लिए। और वैसे भी टीम ए राउंड वन की शुरुआत भी आपकी अच्छी थी और राउंड सेकंड की भी शुरुआत आपकी बहुत अच्छी हुई है।
2: और मुझे तो उम्मीद टीम बी से भी है कि अक्षय आप देखना कि हमारी टीम बी भी जो है वो ए से कम नहीं है। तो टीम बी, अब सवाल आपकी तरफ मुड़ रहा है और आपका सवाल है, एक ही ओलंपिक संस्करण में दो पदक जीतने वाली पहली भारतीय एथलीट कौन बनी? ऑप्शन ए पीवी सिंधु, ऑप्शन बी साइना नेहवाल, ऑप्शन सी मनु भाकर और ऑप्शन डी मीराबाई चानू।
1: शायद इसका आंसर पीवी सिंधु हो।
4: शायद। और आयुषी हमें लगता है आपका ये शायद, आई थिंक शायद ही रह जाएगा। क्यों?
5: मुझे भी ऐसा ही लगता है। तो इस शायद को
4: अब हम इधर ट्रांसफर करते हैं,
5: टीम ए की
4: ओर। टीम ए की साइड। तो टीम ए, क्वेश्चन आपसे भी वही है,
5: एक ही ओलंपिक संस्करण में दो पदक जीतने वाली पहली भारतीय एथलीट कौन बनी? ऑप्शन ए पीवी सिंधु, बी साइना नेहवाल, ऑप्शन सी मनु भाकर, ऑप्शन डी मीराबाई चानू।
3: इसका आंसर ऑप्शन सी है, मनु भाकर।
5: बिल्कुल सही जवाब। तो जोरदार तालियां टीम ए के लिए। और टीम ए को बोनस का एक अंक और मिल जाता है। तो टीम ए, आपसे अगला सवाल है, विश्व बैंक यानी वर्ल्ड बैंक की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन ए 1935, ऑप्शन बी 1945, ऑप्शन सी 1950, ऑप्शन डी 1965।
1: ऑप्शन बी 1945।
5: क्या बात है, बिल्कुल सही जवाब लक्ष्मी का ही हमारे आया है। बहुत अच्छा लगा लक्ष्मी कि आप जिस तरह से जवाब दे रहे हैं, एक बार लक्ष्मी के लिए जोरदार तालियां हो गए।
0: तो विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए न्यूयॉर्क, ऑप्शन बी जिनेवा, ऑप्शन सी वॉशिंगटन डीसी, ऑप्शन डी पेरिस।
1: वॉशिंगटन डीसी।
0: क्या राधिका आपका जवाब सही है?
1: मुझे तो ऐसे ही लगता है।
0: और बाकी सबको?
1: हाँ जी बिल्कुल सही है।
0: तो जोरदार तालियां टीम बी के लिए। टीम ए, आपसे आप लोगों से तीसरा सवाल है, कंप्यूटर में एचटीटीपी का पूरा नाम क्या होता है? ऑप्शन ए हाइपर ट्रांसफर टेक्स्ट प्रोटोकॉल, ऑप्शन बी हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ऑप्शन सी हाई टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ऑप्शन डी हाइपर टेक्स्ट ट्रांसमिशन प्रोग्राम।
1: ऑप्शन बी हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल।
0: वेरी गुड। तो टीम ए के लिए जोरदार तालियां। टीम बी, आपसे तीसरा सवाल, कौन सा सॉफ्टवेयर कंप्यूटर को चलाने में मदद करता है? ऑप्शन ए एमएस वर्ड, ऑप्शन बी ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑप्शन सी पेंट, ऑप्शन डी कैलकुलेटर।
1: सो हमारा जवाब है ऑपरेटिंग सिस्टम।
0: क्या आपका जवाब सही है?
1: हाँ जी बिल्कुल।
0: तो जोरदार तालियां टीम बी के लिए। तो टीम ए, आपसे चौथा सवाल, ड्यूरेंट कप किस खेल से संबंधित है? ऑप्शन ए क्रिकेट, ऑप्शन बी फुटबॉल, ऑप्शन सी कबड्डी और ऑप्शन डी हॉकी।
1: ऑप्शन बी फुटबॉल।
0: वेरी गुड दीपा, आपने तो बिल्कुल सही जवाब दिया है। तो जोरदार तालियां टीम ए के लिए। टीम बी, आपसे सवाल है, ग्रैंड स्लैम शब्द किस खेल से जुड़ा हुआ है? ऑप्शन ए हॉकी, ऑप्शन बी क्रिकेट, ऑप्शन सी टेनिस, ऑप्शन डी फुटबॉल।
6: टेनिस।

0: तो जोरदार तालियां टीम बी के लिए।
1: टीम ए और टीम बी, अब आप लोगों से ये आखिरी सवाल होगा इस राउंड का। तो सबसे पहले हम टीम ए से जानेंगे। राम श्याम का भाई है, श्याम मोहन का पिता है, तो राम का मोहन से क्या संबंध है? ऑप्शन ए पिता, ऑप्शन बी चाचा, ऑप्शन सी भाई, ऑप्शन डी दादा।
2: चाचा।
1: तो जोरदार तालियां टीम ए के लिए। टीम बी, आप लोगों के लिए ये आखिरी सवाल है। रीना सीमा की बहन है, सीमा अमित की माँ है, तो रीना का अमित से क्या संबंध है? ऑप्शन ए मौसी, ऑप्शन बी बुआ, ऑप्शन सी दादी, ऑप्शन डी बहन।
3: मौसी।
1: तो जोरदार तालियां टीम बी के लिए। ओके, फाइनली अब आप लोग आ चुके हैं अपने आखिरी पड़ाव की ओर,
4: यानी कि राउंड थ्री की ओर,
1: जिसमें आपको समय नहीं दिया जाएगा और आपको जल्दी जल्दी जवाब देने पड़ेंगे। तो क्या आप लोग तैयार हैं इसके लिए?
5: जी बिल्कुल।
1: तो फिर शुरू करते हैं। टीम में आपसे पहला सवाल, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है?
5: 5 जून।
1: टीम भी आपके लिए सवाल है, विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है?
4: नहीं पता ना।
1: टीम ए आपसे सवाल है, जो टीम बी का है ये सवाल आपको ट्रांसफर कर दिया जाता है कि विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है?
5: 22 अप्रैल।
1: वेरी गुड। टीम ए आपसे अभी का दूसरा सवाल, मानव शरीर में सबसे लंबी और मजबूत अस्थि कौन सी है?
5: फीमर।
1: मनुष्य के शरीर में सबसे लंबी हड्डी कहाँ की होती है?
5: थाइस।
6: जांघ की हड्डी।
1: थर्ड सवाल, लक्षद्वीप द्वीप समूह कौन से सागर में स्थित है?
5: अरब सागर।
1: नेक्स्ट सवाल टीम भी आपसे, हैदराबाद किस नदी पर स्थित है?
3: मूसी।
1: टीम में आपसे सवाल है, लाफिंग गैस का रासायनिक सूत्र क्या है?
5: नाइट्रस ऑक्साइड।
1: टीम भी आपसे सवाल है, ऑक्सीजन का रासायनिक सूत्र क्या है?
5: O2।
1: टीम ए आपसे ये आखिरी सवाल है, यूएनओ का मुख्यालय कहाँ स्थित है?
5: न्यूयॉर्क।
1: और टीम बी आपसे सवाल है, मोबाइल का आविष्कार किसने किया था? मोबाइल का आविष्कार किसने किया था?
3: मार्टिन कूपर।
1: तो उज्मा, दोनों ही टीम ने हमारे ये वाला राउंड भी कंप्लीट कर लिया है। तो जोरदार तालियां एक बार फिर से। सो अब वक्त है ये जानने का कि कौन सी टीम सबसे आगे गई है। क्या आप लोग तैयार हैं ये जानने के लिए?
5: हाँ जी
7: जी जी बिल्कुल।
1: तो हमारी टीम बी से शुरू करते हैं। हमारी टीम बी ने जो नंबर पाए हैं इस क्विज में वो है 22। तो तालियां। और टीम ए ने जो नंबर पाए हैं वो है 27, यानी विनर ऑफ द क्विज।
4: लेकिन मुझे लगता है ये दोनों ही टीमें अपने आप में माहिर हैं, और मुझे नहीं लगता कि इससे पहले हमारे पास इतने काबिल टीमें आई हैं। तो एक बार जोरदार तालियां खुद के लिए, दोनों टीम।
1: तो टीम ए और टीम बी, आप लोगों को कैसा लगा?
5: हमें बहुत अच्छा लगा आपके साथ जुड़ के, बहुत मजा आया। एक्सक्यूज में,
4: आप नेक्स्ट टाइम हमारे साथ जुड़ना पसंद?
5: हाँ जी बिल्कुल। हाँ जी, हाँ जी बिल्कुल।
4: और टीम ए,
7: बहुत अच्छा लगा आज यहाँ पे क्विज में, एक कॉम्पिटिशन सा फील हुआ यहाँ पे बैठ के।
1: दोस्तों, आप लोग हमारे जो टीम ए और टीम बी से मिले उसके लिए आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने बहुत ध्यान से हमारे प्रोग्राम को सुना होगा, और आप लोगों को भी कुछ ना कुछ नया मिला होगा जानने के लिए।
4: तो दोस्तों, इस क्विज में इतना ही। मिलते हैं आपसे अगली बार एक और ऐसे ही मजेदार इंटरेस्टिंग सी क्विज के साथ।

0: आकाशवाणी एट 90।
1: हम हंसाएंगे, आप मुस्कुराएंगे,
2: हो जाओगे हंस-हंस कर लोटपोट,
1: क्योंकि ये है लाफ्टर का सॉलिड डोज।
3: और डोज में क्या है?
2: डोज में है मजा। जी हाँ, मजा आ गया।
4: हाँ तो आपका सारा कुछ ठीक है? इंटरव्यू वगैरह आपका बहुत अच्छा हुआ। बस आप एक काम कीजिए, अपना चरित्र प्रमाण पत्र दिखा दीजिए। अब
3: सर चरित्र प्रमाण पत्र तो मैं लाना भूल गया।
4: अरे अरे कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। आप एक काम कीजिए, अपने मोबाइल की गैलरी खोलकर दिखा दो।
2: जी हाँ, मजा आ गया।
3: तो अक्षय, अब हमारे दोस्तों ने हमारी जो क्विज थी उसमें हमारे दोस्तों के साथ हमारी गपशप तो बहुत सारी सुनी, अब उन्हें ले चलते हैं एक म्यूजिकल ब्रेक की ओर।

0: जी हाँ दोस्तों, हमने तो चुरा लिया है आपको, क्योंकि आप हमारे जो लिसनर्स बने हैं। क्यों उज्मा?
1: बिल्कुल। तो दोस्तों, ये तो था हमारा आज का कार्यक्रम। हमें उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। हमारे प्रोग्राम्स आपको कैसे लग रहे हैं आप हमें खत के जरिए बता सकते हैं। और खत भेजने के लिए हमारा पता है, कार्यक्रम युववाणी अनुभाग द्वारा, केंद्र निदेशक, आकाशवाणी नजीबाबाद, पिन कोड 246763।
0: जी हाँ दोस्तों, और साथ ही साथ आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पे भी अपने मैसेजेस कर सकते हैं, और हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9457078288। आप हमें सोशल मीडिया पर भी फॉलो कर सकते हैं, और अपडेटेड रहने के लिए हमारा फेसबुक अकाउंट है आकाशवाणी नजीबाबाद, हमारी इंस्टाग्राम आईडी है @आकाशवाणी नजीबाबाद। साथ ही साथ हमारे पुराने प्ले, कहानियां, आने वाले प्रोग्राम्स हमारे यूट्यूब चैनल आकाशवाणी नजीबाबाद पर आप सुन सकते हैं। आप सभी हमारे चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट कर दीजिए, फॉलो कर लीजिए, और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए, जिससे हमारे सभी प्रोग्राम्स आप तक सबसे पहले पहुंचेंगे। लेकिन उसमें मुझे लगता है कि हमारे दोस्तों को चलते चलते एक और गीत सुनवा दिया जाए।
1: बिल्कुल।

0: अभी हमारे युवा श्रोता सुन रहे थे कार्यक्रम युववाणी। आकाशवाणी का ये नजीबाबाद केंद्र है। मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 954 किलोहर्ट्ज़ पर। शाम के 6 बजने को हैं। थोड़ी ही देर में दिल्ली से हिंदी में समाचार रिले किए जाएंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सरफिरोजी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सरकार देश की अमूल्य धरोहरों के संरक्षण के लिए प्रयासरत है। आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में उन्होंने बताया कि ज्ञान भारतम अभियान के तहत छत्तीसगढ़ के मल्हार में 6वीं-7वीं शताब्दी के पांडु वंश के महर्षि बलार्जुन से जुड़ी दुर्लभ तांबे की 3 पट्टिकाएं भी मिली हैं।
2: ज्ञान भारतम अभियान के तहत छत्तीसगढ़ के मल्हार में भी एक महत्वपूर्ण खोज हुई है। यहाँ 3 दुर्लभ ताम्र पट्टिकाएं मिली हैं। विशेषज्ञ मानते हैं कि इंस्क्रिप्शंस 6वीं-7वीं सदी के हैं। ये ताम्र पट्टिकाएं प्राचीन ब्राह्मी लिपि और पाली भाषा में लिखी गई हैं। इनसे उस समय की शासन व्यवस्था, धर्म और संस्कृति के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि नीदरलैंड सरकार ने हाल ही में चोलकालीन ताम्र पट्टिकाएं भारत को लौटाई हैं, जिससे दुनिया भर के तमिल समुदाय में विशेष उत्साह है। श्री मोदी ने कहा कि ये पट्टिकाएं चोल साम्राज्य की समुद्री ताकत और दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के साथ उनके संबंधों को दर्शाती हैं।
2: इन ताम्र पट्टिकाओं को लेकर लोगों में काफी जिज्ञासा भी है। इनमें 21 बड़ी और 3 छोटी ताम्र पट्टिकाएं हैं। ये मुख्य रूप से राजा राजेंद्र चोला प्रथम द्वारा अपने पिता राजा राजराजा चोला के एक वचन को पूरा करने से जुड़ी। चोला साम्राज्य के समृद्ध इतिहास और संस्कृति पर हम सभी को बहुत गर्व है। हमारी सरकार भारत की ऐसी अमूल्य धरोहरों के संरक्षण के लिए लगातार प्रयास कर रही है।
1: आवास और शहरी कार्य मंत्री मनोहर लाल ने कहा है कि प्रधानमंत्री रेहड़ी पटरी दुकानदार आत्मनिर्भर निधि पीएम

0: त्रिपुरा के मुख्यमंत्री डॉक्टर माणिक साहा और अन्य गणमान्य व्यक्ति भी मौजूद रहे। जल शक्ति मंत्रालय कल नई दिल्ली में जल अनुसंधान और विकास पर राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन करेगा। इसका उद्देश्य भारत के जल अनुसंधान और नवाचार पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करना है। मंत्रालय ने बताया कि इस कार्यक्रम का प्रमुख उद्देश्य जल संसाधन प्रबंधन, पेयजल और जलवायु परिवर्तन से निपटना है। दिल्ली के साकेत मेट्रो स्टेशन के पास एक 4 मंजिला कमर्शियल इमारत गिरने की घटना में मृतकों की संख्या 5 हो गई है। इस मामले में 2 इंजीनियरों को निलंबित कर दिया गया है। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान के अनुसार 13 पीड़ितों को इलाज के लिए जयप्रकाश नारायण एपेक्स ट्रॉमा सेंटर लाया गया। इनमें से 5 को अस्पताल पहुंचने पर ही मृत घोषित कर दिया गया, जबकि 5 की हालत गंभीर है। हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले में हुई सड़क दुर्घटना में 8 लोगों की मौत हो गई है। मरने वालों में छत्तीसगढ़ के 7 पर्यटक और वाहन चालक शामिल हैं। ये दुर्घटना 29 मई की रात को चुरा उपमंडल के बैरागढ़ सच दर्रा किलर सड़क पर उस समय हुई जब एक कार खाई में गिर गई। पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अमेरिका ईरान के साथ परमाणु समझौते के करीब है। हालांकि उन्होंने आगाह किया है कि बातचीत विफल होने पर सैन्य कार्रवाई का विकल्प खुला है। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ईरान को कभी परमाणु हथियार नहीं बनाने दिया जाएगा। सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी ने सिंगापुर ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट का खिताब जीत लिया है। फाइनल में आज भारत की पुरुष डबल्स जोड़ी ने इंडोनेशिया के फजर अल्फियन और मोहम्मद शोहिबुल फिक्री को हराया। गुजरात के अहमदाबाद में आईपीएल क्रिकेट के फाइनल में आज रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का सामना गुजरात टाइटन्स से होगा। ये मैच शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 954 किलोहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। शाम के 6:05 हो रहे हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम कृषि जगत।
2: एसटी एसटी

कार्यक्रम कृषि जगत सुनने वाले सभी किसान बहन भाइयों को आपके भैया अंकित कुमार की राम राम। और सुनाओ किसान भाइयों, कैसे हाल चाल है थारे? खैर देखो, हाल चाल तो भैया थारे बढ़िया ही होंगे, और भैया थारी खेती बाड़ी भी ठीक ठाक चल रही होगी। और भैया जो हमारे किसान भाइयों ने पशु पाल रखे हैं उनका भी भैया अच्छे से ध्यान रख रहे होंगे, भैया उन्हें समय से चारा पानी हमारे किसान भाई दे रहे होंगे, और भैया उनका अच्छे से ध्यान भी रख रहे होंगे। और देखो भैया, बात करो मौसम की, तो भैया मौसम ने करवट बदल ली हो, और भैया कहीं कहीं बारिश भी हो गई हो, और भैया थोड़ी सी गर्मी से जो राहत भी हमारे किसान भाई को मिली है। और आज का अगर मौसम देखो भैया, आज का ही मौसम थोड़ा सा ऐसे ही हो रहा है, कहीं धूप कभी बादल, तो ऐसे में हमारे किसान भैया अपना खेती बाड़ी का जो काम है भैया वो समय से निपटाते रहे। क्योंकि देखो भैया, अब कल से जो भैया जून का महीना शुरू होने वाला है, और बरसात का जो भैया समय है वो भी नज़दीक आने वाला है, तो भैया हम अपने किसान भाइयों से यही सलाह देंगे कि भैया अपना जो काम है वो समय से करते रहें। और देखो भैया, अगर समय की बात करें तो भैया समय भी ऐसा चल रहा है जिसमें भैया हमारे किसान भाइयों को भैया देखो अपनी जो धान की नर्सरी है उसकी खेत की तैयारी करनी है, और भैया उसमें जो धान की नर्सरी हमारे किसान भाई को लगानी है। और भैया खेत में जब हमारे किसान भाई नर्सरी लगाओ तो एक बात का ध्यान रखा, अगर हमारे किसान भाई समय से अगर नर्सरी तैयार करते हैं तो भैया जो हमारी फसल है उसकी गुणवत्ता और जो उत्पादन क्षमता वो भी बढ़ती है। और जब भी भैया खेत में नर्सरी तैयार करो तो भैया प्रमाणित बीजों का चयन करो और बीज उपचार जरूर करो। और देखो भैया, जब हमारे किसान भाई की गुणवत्ता अच्छी होगी और नर्सरी हमारी अच्छे से तैयार होगी तो हमारी जो फसल की रोपाई वो समय से पूरी हो जाएगी। देखो भैया, यो अगर हम बात करें तो मई के महीने का आज अंतिम दिन हो, और भैया कल से जो जून का प्रथम सप्ताह वो शुरू हो जाएगा। और भैया ये जो

0: सप्ताह जून का प्रथम सप्ताह जो खरीफ फसलों की तैयारी का महत्वपूर्ण समय होता है। इसमें हमारे किसान भाई को भैया खरीफ फसलों की बुआई करने से पहले अपने भैया अपने खेतों की अगर गहरी जुताई कर ले तो बहुत बढ़िया रहेगा। गहरी जुताई करने से भैया देखते हो मिट्टी हमारी भुरभुरी बनती है, और जो ये जो कीट हों, रोग हों और खरपतवार के अंडे हों भैया, लार्वा हो, वो नष्ट हो जाता है, और भैया हमारी जो नमी का संरक्षण भी उसमें होता है। और भैया साथ साथ एक बात का और ध्यान हमारे किसान भाई को रखना है, धान की जब नर्सरी तैयार करने में भैया उसमें के लिए हम एक चीज़ और ध्यान रखनी, एक तो उन्नत और प्रमाणित बीजों का चयन करना और बीज उपचारित तरीके ही बोना, जिससे भैया जो रोगों का जो प्रकोप है वो कम हो जाता है और उपज और गुणवत्ता दोनों अच्छी रहती है। और देखो भैया इस समय गन्ने की जो फसल में निराई गुड़ाई का भी समय चल रहा है, ये हमारे किसान भाई इस समय भैया अपनी जो खरपतवार है उसे हटा ले मो, और भैया अपनी जो गन्ने की फसल में मिट्टी चढ़ाने का काम भी हमारे किसान भाई समय से कर ले मो। और भैया देखो अगर हमारी फसल में लगता है कि हमें सिंचाई करनी चाहिए तो भैया आवश्यकता अनुसार हमारे किसान भाई जो सिंचाई करते रहें, और भैया साथ साथ हमारे किसान भाई कीट और रोग की नियमित निगरानी भी करते रहें। और देखो भैया कोई रोग हो या कीट हो वो हमारी गन्ने की फसल को भैया प्रभावित करता है, अगर कोई कीट या रोग हमारी फसल में लगता है तो हमारे किसान भाई भैया आज के समय में भैया कृषि वैज्ञानिक की सलाह लेकर उसका उपचार तुरंत से कर दें। और भैया देखो अगर हम सब्जियों की बात करें तो भैया हमारे किसान भाई भैया इस समय भिंडी, लोबिया, करेला, लौकी, तोरी, कद्दू, अन्य बेल वाली फसलें भैया इसकी बुआई भी कर सकते हैं, जो भैया इसका सही समय है। भैया सब्जी की पहले से जिन्होंने बुआई कर रखी है तो भैया उसकी निराई गुड़ाई हमारे किसान भाई को कर लेनी चाहिए, और भैया नमी के लिए भैया सिंचाई हमारे किसान भाई समय समय पर करते रहें। और भैया देखो जिन किसान भाई ने मधुमक्खी पालन कर रखा वो भैया तेज धूप से अपने छत्तों को बचा कर रखें, और भैया उनके पास पर्याप्त पानी की व्यवस्था रखें, और भैया शहद निकालने के बाद उनका नियमित देखभाल भी हमारे किसान भाई रखें। और देखो भैया आज हमारे किसान भाई बात तो भैया हम तुमसे बहुत सारी करेंगे, और देखो भैया हमारा थारा मनोरंजन भी करवाएंगे, पर भैया उससे पहले लेते हैं एक छोटा सा विराम और सुन लेते हैं कुछ जरूरी संदेश।
1: तुझे कॉलेज का टाइम याद है?
2: अरे कॉलेज की यादें छोड़िए, कितनी बातें भूल गया हूँ, सबका बैंक अकाउंट भी याद नहीं है।
1: बैंक अकाउंट पुराना हो तो पता चल सकता है?
2: कहाँ से पता चलेगा?
1: उद्गम से, RBI के उद्गम पोर्टल पे रजिस्टर करके लॉगिन करें और अपने डिटेल्स डालकर 10 साल या उससे पुराने निष्क्रिय खातों को सर्च करें। बैंक से संपर्क करके खाता सक्रिय बनाओ।
3: आज ही सर्च करूंगा।
1: तो आज की चाय तेरी तरफ से।
4: RBI कहता है
5: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
6: नशे का शौक कहीं आपकी आदत तो नहीं बन गया?
7: याद रखिए, शौक, सोबत या फैशन के तौर पर अपनाया नशा आपकी आदत और स्वभाव का अंग बन जाएगा।
6: पार्टियों में नशा नहीं, खुशियाँ बांटिए।
7: नशा नहीं, जिंदगी अपनाइए।
6: आज अभी नशा छोड़ने का संकल्प दोहराइए।
7: ये सूचना मद्य निषेध विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।

0: AIR at 90.
1: कम लागत समृद्ध किसान, यही आज का है अभियान।
2: पोषक तत्व बचाएं, मिट्टी को स्वस्थ बनाएं।
3: देश की धरती को ना उगले उगले हीरे मोती।
1: यूरिया और डीएपी का संतुलित उपयोग,
2: खुशहाली का नया प्रयोग।
4: किसान भाई अंधाधुंध उर्वरकों के प्रयोग से बचें और खेती की लागत कम करके प्राकृतिक संसाधनों को बचाएं। भारतीय कृषि प्रणाली अनुसंधान संस्थान मोतीपुरम मेरठ और आकाशवाणी नजीबाबाद द्वारा जनहित में जारी।
5: उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी।
6: आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से।
5: लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान।
6: अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग।
5: डायल कीजिए 8700014242।
6: नंबर एक बार फिर नोट करें 8700014242।
7: देखो संदेश तो हमारे किसान भाई ने भैया सुन लिए, और भैया देखो अब कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और बात करते हैं भैया आज के खास दिन की। देखो भैया आज का एक खास दिन है भैया, आज है 31 मई, और भैया आज हम विश्व धूम्रपान निषेध दिवस के रूप में मनाते हैं। भैया इस दिवस का जो उद्देश्य है वो यह लोगों को तंबाकू और धूम्रपान से होने वाले शारीरिक नुकसान, सामाजिक तथा आर्थिक दुष्प्रभावों के प्रति जागरूक करना है। भैया इसकी शुरुआत भैया WHO द्वारा 1987 में की गई थी, क्योंकि भैया देखो तंबाकू के सेवन से विश्व भर में भैया लाखों लोगों की भैया मृत्यु का कारण बनता है, और भैया इससे न भैया धूम्रपान करने से फेफड़े हो, हृदय हो और भैया श्वसन तंत्र में गंभीर बीमारियां पैदा होती हैं। और भैया जैसे सिगरेट है, बीड़ी हो, हुक्का है और भैया अन्य तंबाकू उत्पाद भैया ये स्वास्थ्य के लिए बहुत हानिकारक हैं। भैया देखो धूम्रपान केवल सेवन करने से भैया व्यक्ति जो सेवन करने वाला व्यक्ति है ना वो ही प्रभावित नहीं होता भैया, साथ में जो उसके आसपास के व्यक्ति है वो भी उससे प्रभावित होते हैं। तो भैया इससे बचने के लिए हमारे किसान भाइयों को इन बातों का ध्यान रखना है। और देखो भैया इससे हमारे किसान भाई को बच्चों को, गर्भवती महिलाएं हों भैया, बुजुर्ग हों भैया, इसके दुष्प्रभाव से भैया अधिक प्रभावित होते हैं। और भैया तंबाकू में जो हो भैया निकोटीन नामक नशीला पदार्थ होता है जो भैया लत पैदा करता है, और भैया एक बार भैया इसकी आदत लग जाने पर भैया इससे छोड़ना भी कठिन हो जाता है। और भैया धूम्रपान से कैंसर जैसी घातक बीमारियों का खतरा कई गुना बढ़ जाता है भैया, मुंह में, गले में भैया, फेफड़ों और भोजन नली का कैंसर भैया तंबाकू के सेवन से जुड़ा हुआ होता है। और भैया देखो धूम्रपान से रक्तचाप और हृदय गति बढ़ती है, और भैया इससे हृदयाघात और स्ट्रोक जैसी बीमारियाँ पैदा होती हैं, और ये भैया हमारे जो स्वास्थ्य को हानिकारक होता है। भैया किसान भाइयों को तंबाकू के सेवन से व्यक्ति भैया देखो व्यक्ति की जो कार्य क्षमता है और जीवन की जो गुणवत्ता है भैया दोनों प्रभावित होती हैं। और भैया इससे देखो आर्थिक नुकसान भी होता है और शारीरिक नुकसान भी इससे होता है, और भैया साथ साथ जो तंबाकू पर अनावश्यक जो खर्चा उससे वो बढ़ता है। देखो भैया विश्व धूम्रपान निषेध दिवस पर भैया विभिन्न जो हमारे देश है भैया उसमें विभिन्न जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं, जैसे विद्यालयों में, महाविद्यालयों में और सामाजिक संस्थाओं में रैली निकाली जाती हैं, लोगों को भैया तंबाकू को छोड़ने के लिए प्रेरित किया जाता है। और भैया देखो अगर सरकार की बात करूँ तो भैया सरकारें भी भैया तंबाकू नियंत्रण के लिए अनेक कानून और भैया अभियान चलाती हो। सार्वजनिक स्थान है भैया उस पर धूम्रपान प्रतिबंधित किया गया है, और भैया देखो तंबाकू के उत्पाद हैं उनके पैकेट पर स्वास्थ्य चेतावनी भी दी जाती है। और भैया हम तो यूँ सलाह कहेंगे या यूँ सलाह देंगे कि युवाओं को विशेष रूप से तंबाकू से दूर रहना चाहिए, क्योंकि भैया स्वस्थ जीवन के लिए धूम्रपान से दूरी बनाए रखना आवश्यक है। इससे भैया देखो नियमित इससे अगर बचना है तो हमारे किसान भाइयों को भैया या हमारे जो श्रोता हैं उन्हें एक काम करना है, उन्हें भैया नियमित व्यायाम करना है, संतुलित आहार लेना है और सकारात्मक जीवन शैली अपना को भैया तंबाकू की जो आदत हो उसे छोड़ सकते हैं या बदल सकते हैं। और भैया देखो इस सब परिवार और समाज का सहयोग भी होता है और इस दिशा में भैया महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाता है। भैया विश्व धूम्रपान निषेध दिवस हमें भैया अपने स्वास्थ्य की रक्षा करने का संदेश देता है, और भैया यह दिवस तंबाकू मुक्त समाज का निर्माण का संकल्प लेने का भी अवसर प्रदान करता है। हमें भैया स्वयं भी धूम्रपान से दूर रहना चाहिए और भैया दूसरों को भी इसके जो दुष्प्रभाव हो उसके बारे में जागरूक हम करना चाहिए। भैया स्वस्थ व्यक्ति, स्वस्थ परिवार और स्वस्थ राष्ट्र के निर्माण में तंबाकू मुक्त जीवन का महत्वपूर्ण योगदान है। तो भैया हम सब विश्व धूम्रपान निषेध दिवस पर तंबाकू त्यागने और स्वस्थ जीवन अपनाने का संकल्प लें और भैया अपने जीवन को खुशहाल बनाएं। और भैया जीवन खुशहाल होगा तो भैया हमारा मन करेगा भैया गीत संगीत का। तो भैया चलते हैं गीत संगीत की ओर और सुन लेते हैं प्यारा सा लोकगीत।

0: मेरे पाछे पाछे आवन का भला कौन सा मतवल तेरा से। अभी हमारे किसान भाइयों ने सुरेश वाडेकर की आवाज़ में प्यारा सा लोकगीत सुना। और देखो भैया, अब हमारे किसान भाइयों का मनोरंजन भी हो गया होगा। और भैया देखो, अब जब कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और बात करते हैं कुछ खेती किसानी की। देखो किसान भाइयों, अब जून का जो महीना है वो अब कल से शुरू होने वाला है, और बरसात का जो भैया समय है वो अब नज़दीक आ गया है। और भैया हमारे किसान भाइयों की जो फसल है वो खेत में खड़ी है, और जो भैया फसल है वो खुले आसमान में हो। तो भैया कभी कभी फसल हमारी किसी प्राकृतिक आपदा से ख़राब हो जाती है और आर्थिक नुकसान हमारे किसान भाइयों को होता है। तो भैया इस नुकसान से बचने के लिए आज हम एक जानकारी लेकर आए हैं, और जानकारी का विषय है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का लाभ कैसे लें। और जानकारी देने के लिए हमारे साथ उपस्थित हैं आदित्य कुमार गौतम, जो कि कार्यरत हैं सहायक विकास अधिकारी कृषि रक्षा ब्लॉक कोतवाली बिजनौर में। तो शुरू करते हैं उनसे बातचीत। किसान भाइयों, मई महीने का अंतिम सप्ताह चल रहा है और जून का महीना कल से शुरू होने वाला है, और हमारे किसान भाइयों ने अपनी फसलों की बुआई कर ली है, और अब आने वाले समय में हमारे किसान भाई धान की रोपाई करेंगे और खेती से लाभ लेंगे। मगर किसान भाइयों, आने वाला समय बरसात का है, और बरसात के समय में कभी कभी ज़्यादा बारिश होने से हमारी फसलें प्रभावित होती हैं, और हमारे किसान भाइयों को आर्थिक नुकसान भी उठाना पड़ता है। आर्थिक नुकसान से बचने के लिए हमारे किसान भाई सरकार की योजना का लाभ ले सकते हैं, तो आज इसी के संबंध में जानकारी लेकर आए हैं। और जानकारी का विषय है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का लाभ कैसे लें। और इस संबंध में जानकारी के लिए हम पहुंचे हैं आदित्य कुमार गौतम जी के पास, जो कि कार्यरत हैं सहायक विकास अधिकारी कृषि रक्षा विकास खंड कोतवाली जिला बिजनौर में। तो सर नमस्कार।
1: जी नमस्कार अंकित भैया।
0: सर स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। जैसा कि आप जानते हैं कि अब आने वाला समय बरसात का है और जुलाई अगस्त में बारिश होती है, और कभी कभी बरसात अधिक होने के कारण हमारी फसलों को काफी नुकसान होता है। तो नुकसान से बचने के लिए हमारे किसान भाई कौन सी योजना से जुड़ सकते हैं?
1: जैसा कि आपने बताया है कि अभी खरीफ का सीजन शुरू हो गया है, तो अभी किसान भाई जो है खरीफ में जो है वो धान उड़द और मूंगफली की तैयारी करेंगे। तो 2016 में केंद्र सरकार के द्वारा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना चलाई गई थी, जिसके द्वारा बहुत कम प्रीमियम देकर किसान भाई होने वाले नुकसान की भरपाई कर सकते हैं।
0: बहुत अच्छी बात आपने बताई कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से हमारे किसान भाई जुड़ सकते हैं, जिससे वो आर्थिक नुकसान की भरपाई कर सकते हैं। तो सर मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना क्या है और इसका मुख्य उद्देश्य क्या है?
1: जैसा कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना 2016 में चली, इसका जो मुख्य उद्देश्य है वो ये है कि यदि किसी प्राकृतिक आपदा से खड़ी फसल में या फसल की कटाई के बाद भी अगर नुकसान हो जाता है तो उसकी भरपाई के लिए और वित्तीय सहायता के लिए एक योजना है, जिसका मुख्य लक्ष्य है किसानों की आय को सुरक्षित या स्थिर रखना।
0: बिल्कुल, बहुत अच्छी बात आपने बताई कि जो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का उद्देश्य है कि जो किसान की आय है वो सुरक्षित रहे। सर मैं आपसे एक बात और जानना चाहता हूँ कि किसान के लिए फसल बीमा क्यों आवश्यक है?
1: किसान के लिए अगर फसल बीमा की अगर बात की जाए वो क्यों आवश्यक है, देखिए किसान बहुत ही मेहनत से और बहुत ही परिश्रम से और बहुत पूंजी जुटाकर खाद बीज दवाई लेता है, फिर उसके बाद बीज की बुआई करता है, और खुले आसमान में देखा जाए तो उसकी खेती चलती है। एक प्रकार से पुरानी कहावत है कि किसान जो है एक प्रकार से जुआ खेलता है। और अगर इसमें प्रधानमंत्री फसल बीमा के अंतर्गत वो थोड़ा प्रीमियम देकर अपनी फसल का जो है बीमा करा लेता है, तो यदि प्राकृतिक आपदा से कोई भी नुकसान होता है उसकी भरपाई करने के लिए इस योजना का लाभ ले सकता है।
0: बिल्कुल, बहुत अच्छी जानकारी आपने दी कि जो भी फसल हमने लगाई है अगर उसमें कोई प्राकृतिक आपदा आती है तो उससे नुकसान होता है, उससे बचने के लिए हमारे किसान भाई प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से जुड़ सकते हैं। सर एक सवाल और है मेरा आपसे कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में कौन कौन सी फसलें शामिल है?
1: अगर इसमें जो है फसलों की बात की जाए तो जैसे अभी खरीफ सीजन शुरू हो गया है, और मैं बिजनौर की अगर खास बात करूं, बिजनौर क्षेत्र में जो अधिसूचित फसलें हैं धान उड़द मूंगफली है। अगर रबी की बात करें तो रबी में जो है अनाज वाली जो फसलें हैं गेहूं है, दाल वाली जो फसलें हैं मटर है चना है, और जो तिलहन वाली फसलें हैं सरसों है, ये सभी अधिसूचित फसलें हैं बिजनौर क्षेत्र में।
0: बिल्कुल, बहुत अच्छी जानकारी आपने दी कि हमारे जो दलहनी फसलें हैं तिलहनी फसलें हैं उनका हमारे किसान भाई बीमा करा सकते हैं और उससे लाभ ले सकते हैं। सर एक बात और मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि जो हमारे किसान भाई इस योजना का लाभ लेना चाहते हैं तो उन्हें क्या प्रक्रिया अपनानी पड़ती है, कितना प्रीमियम हमें उन फसलों का देना पड़ता है, और कौन कौन से दस्तावेज भी फसल बीमा योजना के लिए जरूरी है?
1: यदि इस योजना में कोई किसान शामिल होना चाहता है और बीमा कराना चाह रहा है तो मैं उन्हें बताना चाहूंगा कि ये एक स्वैच्छिक प्रक्रिया है। अगर कोई किसान बीमा कराना चाह रहा है तो वो आसानी से करा सकता है। इसमें ऋणी और गैर ऋणी कृषक दोनों हैं। ऋणी कर्षक वो होते हैं जो बैंक से अपना केसीसी लेते हैं और जो अधिसूचित फसल पे वो केसीसी ले रहे हैं उनका वो वहीं से ही बीमा करा सकते हैं। और जो गैर ऋणी कर्षक हैं जिनके पास केसीसी नहीं है वो अपना जो है बैंक के माध्यम से भी बीमा करा सकते हैं, दूसरा सीएससी सेंटर पर पहुंचकर भी अब बीमा करा सकते हैं। हमारा जो प्रधानमंत्री फसल बीमा पोर्टल है उसके माध्यम से भी ऑनलाइन आवेदन स्वयं कर सकते हैं, या अधिकृत बीमा कार्यालय या जो मध्यस्थ कर्मचारी है बीमा कंपनी और सरकार के बीच में कार्य करता है उसके माध्यम से आप अपना बीमा करा सकते हैं। अगर इसमें दस्तावेज की बात किया जाए तो सबसे पहले किसान को अपनी पहचान के लिए आधार कार्ड, बैंक खाता पासबुक और जो भूमि का जरूरी दस्तावेज है खतौनी अभिलेख और बटाई प्रमाण पत्र, यदि कोई बटाईदार किसान है वो भी इस योजना का लाभ ले सकता है, तो बटाई प्रमाण पत्र और एक फसल बुआई प्रमाण पत्र देना होगा। फसल बुआई प्रमाण पत्र वो स्वयं प्रधान या पटवारी के माध्यम से जमा कर सकता है और एक मोबाइल नंबर की जरूरत पड़ेगी। और अगर प्रीमियम दर की इसमें बात करी जाए, जैसे धान है, धान में यहाँ पे जो है एक बीघे में जो प्रीमियम बीमा दर रखी गई है वो 2% खरीफ सीजन में रहती है जो 133 रुपये बैठती है। उड़द की जो प्रीमियम दर है 95 रुपये प्रति बीघा और मूंगफली की 136 रुपये प्रति बीघा के हिसाब से फसल बीमा धनराशि प्रीमियम दर किसान को जमा करनी पड़ती है और वो इस योजना का लाभ ले सकते हैं।
0: बिल्कुल, बहुत अच्छी जानकारी आपने दी। सर मैं एक बात और आपसे जानना चाहता हूँ, जैसे आज का जो समय है वो डिजिटल है, तो क्या हमारे किसान भाई मोबाइल के द्वारा या मोबाइल एप्स के या ऑनलाइन माध्यम से फसल बीमा योजना करा सकते हैं, उसका लाभ ले सकते हैं?
1: बिल्कुल, भारत सरकार का डिजिटलाइजेशन का वैसे भी कार्यक्रम चल रहा है, तो बीमा कराने के लिए किसान को बैंक जाने की जरूरत नहीं, किसी दफ्तर भी जाने की जरूरत नहीं, वो स्वयं प्रधानमंत्री फसल बीमा पोर्टल से अपना आवेदन कर सकता है। यदि गांव में सीएससी सेंटर है तो ये जो सभी दस्तावेज आपको बताए गए इन सभी को लेकर सीएससी सेंटर जाए और अपना आवेदन कर सकता है प्रीमियम बीमा राशि देकर।
0: बिल्कुल, बहुत अच्छी बात आपने बताई कि जिनके पास समय नहीं है तो वो मोबाइल एप्स के माध्यम से या ऑनलाइन सीएससी सेंटर जाकर भी फसल बीमा योजना का लाभ ले सकते हैं, उसमें पंजीकृत करा सकते हैं। सर एक बात और मैं आपसे जानना चाहता हूँ, जैसे फसल बीमा योजना है तो इसकी कोई अंतिम तिथि है, ये कैसे तय होती है, कैसे हमारे किसान भाई को पता चलेगा कि कब हमें फसल बीमा योजना में पंजीकरण कराना है?
1: बहुत सही सवाल पूछा है कि इस बीमा कराने की जो तारीख होती है वो क्या है। मैं आप सभी किसान भाइयों को बताना चाहूंगा कि जैसे खरीफ सीजन शुरू हो गया है तो खरीफ सीजन की बुआई हम ज्यादातर जुलाई में कंप्लीट कर लेते हैं, तो ये इसी से निर्धारित होती है। तो खरीफ सीजन में अगर किसान भाई से बीमा कराना चाह रहा है तो इसकी अंतिम तारीख 31 जुलाई 2026 है। खरीफ सीजन में उड़द, मूंग और मूंगफली की जो अधिसूचित फसलें हैं 31 जुलाई 2026 तक अपना बीमा करा सकता है।
0: और जो किसान भाई रबी की फसलों में बीमा कराना चाहते हैं तो उनकी क्या तिथि निर्धारित होगी?
1: रबी फसलों में अगर बात की जाए तो हमारी अक्टूबर नवंबर में बुआई होती है, तो उसकी 31 दिसंबर 2026 दिनांक जो है निर्धारित की गई है। 31 दिसंबर 2026 तक सभी किसान भाई बैंक, सीएससी सेंटर या पोर्टल से अपना आवेदन कर सकते हैं।
0: बिल्कुल, बहुत अच्छी जानकारी आज आपने हमारे किसान भाइयों को दी। सर एक बात और मैं आपसे जानना चाहता हूँ, जैसे प्राकृतिक आपदाओं से होने वाले कौन कौन से नुकसान जो है इसमें कवर होते हैं, कैसे हमारे किसान भाई को पता चलता है?
1: प्राकृतिक आपदा में अगर बात की जाए तो ये जैसे बेमौसमी बारिश की वजह से या सूखे की वजह से किसान भाई अपनी फसल की बुआई नहीं करा पा रहे हैं, या खड़ी फसल में जैसे सूखा, बाढ़, ओलावृष्टि, तूफान, बेमौसम बारिश, आकाशीय बिजली, कीट रोगों का प्रकोप अधिक हो जाए या किसी वजह से फसल में आग लग जाए, इनकी वजह नुकसान होता है, तो ये सब इसमें आते हैं और इन्हीं के आधार पर इनको लाभ दिया जाता है।
0: बिल्कुल, जो भी प्राकृतिक आपदा से अगर हमारी फसल खराब होती है तो उसका प्रीमियम देकर हमारे किसान भाई लाभ ले सकते हैं। सर एक बात और मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि यदि हमारे किसान भाई की फसल खराब हो जाए तो मुआवजा कैसे मिलता है, कौन कौन से दस्तावेज किसान भाई को देने पड़ते हैं?
1: यदि किसी किसान भाई ने इस प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में अपना आवेदन किया है और बीमा राशि जमा की है और यदि ईश्वर न करे कि उसकी फसल में किसी प्रकार का नुकसान हो जाए प्राकृतिक आपदा से, तो सबसे पहले जरूरी है कि क्षति के 72 घंटे के अंदर किसान को सूचना देनी पड़ेगी। सूचना जो है कृषि रक्षक पोर्टल हेल्पलाइन टोल फ्री नंबर है हमारा 14447 है और संबंधित बैंक शाखा, यदि बैंक शाखा से उसने आवेदन किया है तो वो वहाँ इसकी सूचना दे सकता है, कृषि विभाग या उद्यान विभाग कार्यालय में इसकी सूचना दे सकता है, या डिजिटल में जो है क्रॉप इंश्योरेंस ऐप या बीमा फसल कंपनी का जो मध्यस्थ या कर्मचारी रहता है उसको 72 घंटे के अंदर किसान को सूचना देनी होती है। और अगर इसमें दस्तावेज की बात करें तो इसमें जो है किसान को अपना जो बीमा कराया है उसका नंबर देना पड़ेगा।
0: बिल्कुल, बहुत अच्छी बात आपने बताई कि जो फसल हमारी खराब होती है तो उसका क्लेम लेने के लिए जो उसके जरूरी दस्तावेज है वो हमारे किसान भाइयों को जमा करने पड़ते हैं। सर एक बात और मैं आपसे जानना चाहता हूँ, जो
2: बीमा कंपनियां हैं तो फसल का नुकसान का आकलन कैसे करती हैं जिससे मुआवजे की धनराशि तय होती है?
1: यदि किसी की किसान भाई की फसल में नुकसान हो जाए और उसे आकलन करने के लिए सबसे जरूरी होता है कि ग्राम स्तरीय जो समिति है वो गठित की जाती है। ग्राम स्तरीय समिति में जो है लेखपाल या कृषि विभाग के प्रतिनिधि, प्राविधिक सहायक, एटीएम बीटीएम और बीमा कंपनी के प्रतिनिधि शामिल होते हैं। जैसे उनको सूचना मिलती है तो 24 घंटे के अंदर अपना क्षेत्र में आते हैं। क्षेत्र में आने के बाद वो क्रॉप कटिंग एक्सपेरिमेंट होता है जो एक रैंडमली बीमित क्षेत्र खेत के एक छोटे हिस्से में, जैसे मान लो 5x5 मीटर का एक क्रॉप कटिंग की जाती है और उसके आधार पे जो क्षेत्र में फसल उपज घटती है उसके आधार पर वो आकलन करते हैं और जिस हिसाब से फसल में गिरावट या पैदावार में गिरावट होती है उसी परसेंटेज के हिसाब से किसान भाई को बीमा योजना का लाभ दिया जाता है।
2: बिल्कुल, बहुत अच्छी जानकारी आपने दी कि जो हमारा नुकसान है उसी के आधार का आकलन करके बीमा राशि तय होती है। सर एक बात और मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि जो बीमा राशि है मिलने में कितना समय लगता है? अगर राशि मिलने में देरी होती है तो उसके क्या कारण हो सकते हैं?
1: अगर मैं इसमें समय की बात करूँ तो सबसे पहले जरूरी होता है कि किसान जो है 72 घंटे के अंदर सूचना दे, फिर ग्राम स्तरीय समिति जो है अपनी रिपोर्ट जारी करती है कि कितना परसेंट नुकसान हुआ है क्रॉप कटिंग के आधार पर। फिर उस पूरे क्षेत्र की जो है रिपोर्ट बन के जाती है, जैसे कंपनी में जाती है तो कंपनी का मेन उद्देश्य रहता है कि जल्द से जल्द ही जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई की जाए।
2: बिल्कुल, बहुत अच्छी बात आपने बताई। सर एक बात मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि किसान भाइयों को फसल बीमा योजना के बारे में जागरूक करने के लिए क्या प्रयास किए जा रहे हैं और इस योजना में सरकार की क्या भूमिका है?
1: प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के लिए जो है कृषि विभाग के जो कर्मचारी हैं, प्राविधिक सहायक, एटीएम बीटीएम, वो हमेशा किसानों के संपर्क में रहते हैं। वो व्यक्तिगत ग्राम स्तरीय पाठशाला या गोष्ठियों के माध्यम से बताते हैं, जिसमें हमारे प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के जो कर्मचारी हैं और जो ब्लॉक स्तरीय गोष्ठियां हैं वहां पे किसान आते हैं, स्टॉल लगते हैं तो वहां पर प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की स्टॉल लगाई जाती है और उपस्थित सभी किसानों को विस्तार रूप से बताया जाता है कि वो कैसे इस योजना का लाभ ले सकते हैं। और हमारी जो जिला स्तरीय, मंडल स्तरीय और राज्य स्तरीय उत्पादक गोष्ठी रहती है कृषि विभाग की तरफ से, उसमें भी प्रधानमंत्री फसल बीमा का व्यापक प्रचार प्रसार किया जाता है कि ऑनलाइन सुविधाओं का लाभ लिया जाए। इसी के साथ जैसे गोष्ठियां रहती है प्रधानमंत्री फसल बीमा के साथ साथ, कृषि विभाग की जो मुख्य योजनाएं चल रही है दलहन, अनाज और तिलहन वाली जो फसलें हैं, इन पे 50% की छूट में किसान हमारे यहाँ से बीज खरीद सकता है, जो किसान की पैदावार और आय बढ़ाने में बहुत बड़ा कार्य करता है। और इसके साथ साथ जो जैविक दवाइयां हमारे यहाँ पे हैं वो 75% के अनुदान पे मिलती हैं, जो कृषि रसायन है वो 50% के अनुदान पे किसान को दिए जाते हैं। इसके अलावा जो मिनी किट है सरसों की, दलहन की, मोटे अनाज की जो मिनी किट है वो मुफ्त किसानों को बांटी जाती है।
2: बिल्कुल, बहुत अच्छी बात आपने बताई। हमारे किसान भाई जो सरकार की योजनाएं चल रही है, चाहे वो धान के बीज को लेकर हो, चाहे वो मक्का हो, चाहे वो बाजरा हो, उसे प्राप्त कर सकते हैं और लाभ ले सकते हैं। सर एक बात और मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि भविष्य में फसल बीमा योजना से जुड़ने के लिए और लाभ लेने के लिए क्या क्या हमारे किसान भाई को करना चाहिए जिससे उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार हो?
1: किसान भाइयों को मैं पुनः आग्रह करना चाहूंगा कि अगर आप खेती का कार्य कर रहे हैं तो खेती के कार्य के साथ साथ अब आपको थोड़ा सा प्रधानमंत्री फसल बीमा की तरफ भी ध्यान देना चाहिए, जो क्षतिपूर्ति करने के लिए बहुत ही अच्छी योजना सरकार के द्वारा चलाई जा रही है। तो सभी किसान भाई जैसे बेमौसमी बारिश या प्राकृतिक आपदा से अगर बचना चाहते हैं और उसकी भरपाई के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा अवश्य ले, क्योंकि इसमें जो प्रीमियम रखा गया है सरकार के द्वारा वो बहुत ही कम है। मान लीजिए जैसे धान है, धान में 133 रुपए प्रति बीघा आपको देना है बिजनौर में, और अगर आपकी फसल नुकसान हो जाता है तो आपको 6,632 रुपए मिलेंगे। उड़द की अगर मैं बात करूँ तो 95 रुपए का प्रीमियम देना है मात्र, और आपको जो देय धनराशि है वो 4,768 रुपए है। मूंगफली की अगर बात करें तो 136 रुपए के प्रीमियम पर आप

को 6,832 रुपए का जो है लाभ सरकार देगी। तो आप सभी किसान भाइयों से मेरा अनुरोध है कि खरीफ सीजन चल रहा है और 31 जुलाई 2026 तक अपनी फसल बीमा का आवेदन अवश्य

0: हैं। और इसके साथ साथ मैं सभी किसान भाइयों को बताना चाहूंगा कि कृषि विभाग से भी जुड़ना चाहिए। कृषि विभाग में बहुत सारी योजनाएं ऐसी हैं जो किसानों के फायदे की हैं, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना और कृषि यंत्रीकरण योजना हमारे यहाँ से चलती है, जो 50 से 60% पर जो छोटे से बड़े यंत्र ट्रैक्टर और कम्बाइंड हार्वेस्टर तक उपलब्ध कराती है। इसके अलावा आप जो है प्रधानमंत्री मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना हमारे यहाँ से संचालित हो रही है, और सोलर पंप की जो महत्वपूर्ण योजना है कुसुम योजना है, उसमें भी सरकार जो है 60% का अनुदान देती है, 40% का ऐसा किसान को जमा करना पड़ता है। सिंचाई की योजना की अगर बात करें तो हमारे यहाँ से सिंचाई के लिए जो है लपेटा पाइप, काले वाला पाइप उपलब्ध रहता है। स्प्रिंकलर और ड्रिप इरीगेशन की अगर बात की जाए तो ये उद्यान विभाग से आपको, जो अनुसूचित जाति के किसान है उन्हें 80 से 90% छूट के अनुदान पे है, और जो सामान्य जाति के हैं तो उनको 80% के छूट पे उद्यान विभाग से स्प्रिंकलर और ड्रिप इरीगेशन का सिस्टम की छूट लाभ ले सकते हैं।
1: बिल्कुल सर, बहुत अच्छी जानकारी हमारे किसान भाइयों को दी। हमारे किसान भाई भी इस जानकारी को सुनकर लाभान्वित होंगे और लाभ लेंगे। तो सर, आज आपने हमारे इस कार्यक्रम के लिए अपना कीमती समय निकाला, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अभी हमारे किसान भाई ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का लाभ कैसे लें इस संबंध में ये जानकारी सुनी। और देखो भैया, हमारे किसान भाई जानकारी का लाभ उठावेंगे और भैया अपनी खेती बाड़ी में चार चांद लगावेंगे और भैया घर में खुशहाली लावेंगे। और भैया जब घर में खुशहाली होगी तो भैया मन करेगा गीत संगीत की ओर। भैया तो फिर भैया चलते हैं गीत संगीत की ओर और सुनते हैं प्यारी सी रागनी।

अभिमान सुख थोड़े दुख घने जगत में। अभी हमारे किसान भाई ने मैन पाल सिंह और साथी की आवाज़ में प्यारी सी रागनी सुनी, और देखो भैया हमारे किसान भाई का मनोरंजन भी हो गया होगा, वो ये दिन भर की जो थकान वो मिट गई होगी। और देखो भैया अब समय आ गया है मौसम की चिट्ठी का, और भैया ये जो मौसम की चिट्ठी हमें प्राप्त हुई है ग्रामीण कृषि मौसम सेवा भारत मौसम विज्ञान विभाग सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय मोदीपुरम मेरठ से। और भैया इस चिट्ठी के अनुसार अब आने वाले एक दो दिन में तेज हवा आंधी और भैया कहीं कहीं हल्के से मध्यम वर्षा होने की संभावना है। तो भैया हमारे किसान भाई मौसम को देखकर अपने कृषि कार्य करते रहे मैं। और देखो भैया अगर बात करो घड़ी की, तो भैया घड़ी भी बिल्कुल आपसे बातचीत करने की इजाज़त नहीं दे रही है। तो भैया चलते चलते हम अपने किसान भाई को अपना पता जरूर बता दें। हमारा पता है कार्यक्रम कृषि जगत द्वारा केंद्र निदेशक आकाशवाणी नजीबाबाद। हमारा पिन कोड है 246763 और हमारा व्हाट्सअप नंबर है 9457072888। किसान भाइयों तो इस पते पर हमें आपकी चिट्ठी पत्रिका रहेगा इंतजार। और अब कार्यक्रम संपन्न करने की अपने भैया अंकित कुमार को दीजिए अनुमति। किसान भाइयों राम राम।

0: अभी हमारे किसान भाई सुन रहे थे कार्यक्रम कृषि जगत। आकाशवाणी का ये नजीबाबाद केंद्र है। मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 954 किलोहर्ट्ज़ पर। शाम के 6:45 हो रहे हैं। आइए सुनते हैं कार्यक्रम विविधा में सविता मिश्रा की कहानी। शीर्षक है संजीवनी बूटी।
1: दीपावली के बाद मौसम ठंडा होने लगा था। सुबह शाम घूमते समय ठंडी हवाओं का एहसास भी होने लगा है। आज शाम के समय घूमते हुए सोचने लगा हूँ कि घर जाकर पहले गर्म कपड़े निकालूँगा। मफलर, जैकेट आदि पता नहीं कहाँ रखे होंगे। सोचते विचारते घर ही पहुँच गया। रोजाना की तरह उंगलियाँ दरवाजे पर लगी डोर बेल पर चली गईं। घंटी को तो बजना ही था, लेकिन दरवाज़ा खुलने वाला नहीं है। ये एक झटके के साथ मेरे मस्तिष्क में कौन गया। मेन गेट पर तो ताला लगा था और चाबी मेरी जेब में पड़ी थी। मैंने जेब से चाबी निकाली और घर के अंदर आ गया। अचानक सारी तंद्रा भंग हो गई। सामने दीवार पर लगी फोटो में से सरला मुझे देखकर मुस्कुरा जो रही थी। उसकी आरएसटी में रखी गई फ़ोटो को घर के कमरे में लाकर टांग दिया गया था। जब भी घर में प्रवेश करता सरला के मुस्कुराते चेहरे पर दृष्टि पड़ती ही थी। आज भी ऐसा ही हुआ। लगा जैसे कह रही हो सर्दियां शुरू हो गई हैं मिस्टर जी। जैकेट और मफलर निकाल दिए हैं, कल को पहनकर जाना। मैंने अलमारी खोली लेकिन ना मफलर दिखा ना ही जैकेट। भ्रम एकदम से वास्तविकता में बदल गया। गर्म कपड़े तो किसी संदूक या डबल बेड के बॉक्स में रखे होंगे और इस बार निकालने भी मुझे ही हैं। लेकिन आलस्य मन बोला अब नहीं यार, कल निकाल लेना। सोचकर मैं दूसरे कमरे में चला गया। कमरे में पहुंचते ही टीवी ऑन कर दिया। न्यूज चैनल पर राजनीतिक बहस चल रही थी। सरला इस समय कमरे में आती तो झल्लाती, बस खुल गया टीवी, जब देखो न्यूज ही न्यूज, हमें सीरियल भी देख लेने दिया करो। चाय ला रही हूँ, फिर मैं अपना सीरियल देखूँगी। ये आवाज़ भी लगभग रोजाना की ही थी। मुझे भी आदत सी पड़ गई थी। सरला आती तो टीवी का रिमोट उठाती और चैनल बदल लेती। हालांकि आज ऐसा नहीं होना था, सो नहीं हुआ। मैंने स्वयं ही रिमोट से न्यूज का चैनल बदलकर सीरियल लगा लिया जो उसे बहुत पसंद था। सीरियल खत्म होते ही ध्यान आया कि कुछ खाना भी तो है। भूख को मेरे सुख दुख से क्या लेना देना, उसे तो बस लगना ही है। सोचने लगा कि आज क्या खाया जाए। फ्रिज खोलकर देखा, दोपहर की बची सब्जी रखी थी। बड़ा सुकून मिला, चलो सब्जी तो यही चल जाएगी, बस दो

0: रोटियां बना लेता हूं, आज का काम हो जाएगा। फ्रिज बंद कर ही रहा था कि नजर वहां रखी ब्रेड पर भी पड़ गई। सोचा रोटी भी क्या बनाई जाए, ब्रेड पीस गरम करके सब्जी के साथ कैंडल लाइट डिनर किया जाए। नजर सरला के फोटो पर पड़ी तो लगा वह मेरे डिनर प्रोजेक्ट पर हंस रही है, जैसे कह रही हो अकेले अकेले डिनर करोगे, बल्ब जला लेना, नहीं तो घर में कैंडल भी ढूंढते फिरोगे, तुम्हें वो भी नहीं मिलेगी। अब तो बस सरला की बातों का अनुमान लगाकर यूं ही हंसी सी आ जाती है, तो कभी उदास भी हो जाता हूँ। आवाज़ें अब कानों के रास्ते नहीं बल्कि दिल और दिमाग के रास्ते यूं भी भ्रम पैदा करती रहती हैं। मतलब ये कि अब मैं भी एक भ्रम से भरी दुनिया में जीने लगा हूँ। जब तक सरला साथ रही, एक और एक 11 वाली बात सच लगती थी, लेकिन जब वो नहीं है तो एक एक भी नहीं, बस शून्य सा हो गया हूँ। शायद पति पत्नी के रिश्ते की ऐसी ही सच्चाई होती है। इस बार मेरी बात पर सरला हंसी नहीं, क्योंकि मैं दूसरे कमरे मतलब बेडरूम में जो आ गया था, बेडरूम में आकर बस लेटने का मन हुआ। एक तकिए पर दूसरा तकिया रखकर अधलेटा सा पसर गया। चाय बना रही हूँ, पहले पानी पीना है या चाय ही ले आऊँ, लगा जैसे सरला की आवाज़ रसोई से आई है। मैं बोल पड़ा, पानी नहीं, बस चाय ही पिला दो। फिर से भ्रम सत्य पर हावी हो गया था, एक ही झटके में वापस अपने में लौट आया। क्या करें, 40 वर्षों का साथ जो रहा है सरला का और मेरा, पति पत्नी की सामान्य सी परिभाषा में रहकर इतना लंबा समय कट गया पता ही नहीं चला। हाँ, लड़ते झगड़ते भी रहे, रोते गाते भी रहे, लेकिन एक दूसरे की आदत और ज़रूरत कब बन गए पता ही नहीं चला। हाँ, बन जरूर गए थे, ये अब सच्चाई थी। घर में प्रवेश करते ही बच्चे दिखाई देते, बेटा और बेटी दोनों हंसते बोलते, लेकिन इन आँखों को तलाश सिर्फ सरला की रहती। जब तक वह दिख नहीं जाती, बेचैनी शांत नहीं होती थी। समय के साथ बेटे की शादी हो गई, बेटा पढ़ लेकर अमेरिका चला गया और वहीं की नागरिकता ले ली। इधर बेटी भी अपनी ससुराल शादी के बाद चली गई। अब ऐसा लगता है जैसे हम दोनों शादी होने के बाद के समय की तरह फिर से दो अकेले रह गए हैं। बच्चों का सुख भोग कर एक बार फिर अकेले रहने का एहसास होने लगा है। इसी घर में गृहस्थ आश्रम की जिम्मेदारियां पूरी करने के बाद हम दोनों बच्चों की यादों और बातों के सहारे जीवन बिताने लगे थे। मोबाइल संस्कृति ने जीवन आसान बना दिया था, तो अमेरिका में बसे हुए बेटे और बहू के अलावा पौत्र पौत्री से भी लगभग रोजाना वीडियो कॉल हो ही जाती थी। लेकिन सरला के चले जाने के बाद ये वीडियो कॉल भी अब फ़ोन कॉल में बदल गई है, वो भी रोजाना नहीं। अब लगता है कि सरला ही इस घर की धुरी थी, फिर चाहे रिश्ता माँ का हो या पत्नी का। बिस्तर पर लेटा हुआ सोचने लगा, कहने को तो मैं डबल बेड पर लेटा हूँ, लेकिन अब ये डबल कहाँ रह गया है? लकड़ी के दो बेड जुड़ जाने से ये डबल बेड नहीं कहलाता, दो प्राणियों की उपस्थिति ही इसे डबल बेड बनाती है। उदास मन से दूसरे बेड पर नज़र पड़ी तो तमाम सिलवटें दिखाई दीं। कितनी बार कहा है मुझे बिस्तर पर सिलबटें अच्छी नहीं लगती, ठीक करके लेटा करो, सरला की आवाज़ से आई। मैं उठा और बिस्तर ठीक कर दिया। देखो अब तो ठीक है, अब मुस्कुराने की बारी मेरी थी। पता था सिलबटें ठीक ना भी करूँगा तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन इस दिल का क्या करें, अकेला जो हो गया हूँ बस ऐसे ही गूंगी बातें करता रहता हूँ। हाँ, अकेले में हंसा नहीं जाता, लेकिन उदासी की कोई सीमा नहीं रहती। सरला की आवाज़ फिर सुनाई दी, अरे खाने से पहले वाली दवाई खा लो, मैं खाना ला रही हूँ। लेकिन इस बार मैं फिर से भ्रम के जाल में नहीं फंसा, दवाई सामने रखी थी, मन नहीं हुआ नहीं खाई, अब कौन सा सरला का डर है मुझे, मोह भी करूं तो क्यों और किससे। मैं फिर से बिस्तर पर जा लेटा, मैंने पास के खाली बिस्तर को देखा तो एकदम साफ सुथरा, कोई सिलवट नहीं। देर तक देखता रहा, अच्छा नहीं लग रहा था। मैं उठा और सरला के बिस्तर पर फिर से तमाम सिलवटें बना दीं। मुझे अब अच्छा लग रहा था कि कम से कम सरला के बोलने और डांटने की आवाज़ आने का एहसास तो होगा। देर तक सिलवटों को देखता रहा और जागता रहा। जैसे सिलवटों पर लेटी सरला कह रही है, सो जाओ, अब आधी रात होने को है। अब याद आता है, रात को कोई भी समय हो, यदि मैं करवट भी लेता तो सरला को पता चल जाता और वो कितनी भी नींद में होती बोल पड़ती, क्या बात, नींद नहीं आ रही है क्या।
1: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम विविधा में कहानी संजीवनी बूटी। कहानीकार थी सविता मिश्रा। आकाशवाणी का ये नजीबाबाद केंद्र है। मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 954 किलोहर्ट्ज़ पर। शाम के 6:55 हो रहे हैं। पेश है कार्यक्रम छाया गीत। आइए सुनते हैं पेइंग गेस्ट फिल्म से ये गीत, किशोर कुमार और आशा भोसले की आवाज़ में। संगीत दिया है एसडी वर्मन ने, गीतकार हैं मजरूह सुल्तानपुरी। लीजिए सुनते हैं पेइंग गेस्ट फिल्म से ये गीत।

आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम छाया गीत। लीजिए सुनते हैं परदेसी फिल्म से ये गीत लता मंगेशकर की आवाज में। संगीत दिया है चित्र गुप्त ने। गीतकार हैं मजरून सुल्तानपुरी।

आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम छाया गीत। लीजिए सुनते हैं पत्थर के सनम फिल्म से ये गीत मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में। संगीत दिया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने, गीतकार हैं मजरूं सुल्तानपुरी।

इसी गीत के साथ कार्यक्रम छाया गीत यहीं पर संपन्न होता है। आकाशवाणी का ये नजीबाबाद केंद्र है, मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 954 किलोहर्ट्ज़ पर।

मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 954 किलोहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। आइए अब डालते हैं एक नज़र आज के शेष और कल प्रसारित होने वाले मुख्य कार्यक्रम पर। आज रात्रि 9:30 पर कार्यक्रम अनुगूंज और रात्रि 10 बजे अखिल भारतीय रविवासरीय संगीत सभा का प्रसारण हमारे दिल्ली केंद्र से रिले किया जाएगा। शाम 7:32 पर पेश करेंगे कार्यक्रम सुगम संगीत, जिसमें आपको सुनवाएंगे हेमंत पाठक की आवाज में गीत। 7:50 पर पेश करेंगे कार्यक्रम अदबी दुनिया, जिसमें आपको सुनवाएंगे एजाज धामपुरी का कलाम ए शायर। ये थी जानकारी आज के शेष कार्यक्रम की। अब एक नजर कल प्रसारित होने वाले मुख्य कार्यक्रम पर। कल रात्रि 9:30 पर कार्यक्रम पब्लिक स्पीक का प्रसारण हमारे दिल्ली केंद्र से रिले किया जाएगा। प्रातः 6:40 पर समय रहेगा चिंतन का। 7:05 पर कार्यक्रम स्वास्थ्य चर्चा में देंगे जानकारी वाणी की स्वच्छता पर। प्रातः 7:10 पर खेती की बातें कार्यक्रम में जानकारी का विषय रहेगा इस पखवाड़े किसान भाई क्या करें। सूरज के साथ साथ कार्यक्रम का समय रहेगा 7:31। 9:25 पर आपको सुनवाएंगे धरती गाती है कार्यक्रम में भीम सिंह की आवाज में रागनी। 9:50 पर समय रहेगा कार्यक्रम बात आस पास की का। और दिन में 10 बजे समय रहेगा रेडियो प्रसारण के 90 साल के उपलक्ष में कार्यक्रम सुहाना सफर का। 11:30 पर आपको सुनवाएंगे प्रायोजित कार्यक्रम उमंग। 12:05 पर शास्त्रीय संगीत में सुनवाएंगे हरि प्रसाद चौरसिया का बांसुरी वादन। 1:15 पर कार्यक्रम परिवार जगत में सुनवाएंगे विश्व दुग्ध दिवस पर चर्चा, साथ ही सुनवाएंगे डॉक्टर राजीव अरोड़ा से ज्योतिपाल की बातचीत। विषय रहेगा गलत खान पान और कैल्शियम की कमी का धातु पर प्रभाव। 1:45 पर कार्यक्रम लोकधारा में सुनवाएंगे बालेश्वर और साथियों की आवाज में भोजपुरी लोकगीत। 2:30 पर आपको सुनवाएंगे कार्यक्रम नई फिल्मों से। शाम 5 बजे आकाशवाणी के 90 वर्षों के उपलक्ष में आकाशवाणी नजीबाबाद से जुड़े श्रोताओं के अनुभव पर आधारित कार्यक्रम रिश्ता ये खास है। 5:15 पर समय रहेगा कार्यक्रम युववाणी का, जिसमें युवा श्रोताओं को सुनवाएंगे कुछ खास है आज में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर माता पिता का वैश्विक दिवस पर चर्चा। 6:05 पर किसान भाई सुनेंगे उनका दैनिक कार्यक्रम कृषि जगत, जिसमें सुनवाएंगे CRN वर्मा जो कि जिला उद्यान अधिकारी बिजनौर से हैं, हिमांशु रंजन की बातचीत। विषय रहेगा गन्ने में लाने वाले कीट और प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना। 6:45 पर कार्यक्रम व्यवधा में सुनवाएंगे वीर सिंह की वार्ता, मानवीय हस्तक्षेप और उसका प्रकृति पर क्या प्रभाव पड़ता है। 7:32 पर कार्यक्रम सुगम संगीत में सुनवाएंगे सिमरन सैनी की आवाज में भजन। ये थी जानकारी आज के शेष और कल प्रसारित होने वाले मुख्य कार्यक्रम की। आकाशवाणी का ये नजीबाबाद केंद्र है, मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 954 किलोहर्ट्ज़ पर।

0: बेटा मैं कल अपने भतीजे के घर होके आया, देखकर हैरान रह गया कि वो लोग दिन भर एसी चलाते हैं, रोज वॉशिंग मशीन चलाते हैं, घर में दो दो फ्रिज हैं, फिर भी उसका बिजली बिल पता है कितना आता है? जीरो। मैंने पूछा तो भतीजा बोला, चाचा जी सब ऊपर वाले की दया है। मतलब सोलर पैनल की। मैंने सोचा अब तो लगवाना ही पड़ेगा।
1: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
2: हर घर सूर्य घर।
3: हमारा डेजर्ट आ गया पर हमारी चैंपियन नहीं आई अब तक।
4: बिल भरने के पहले तो आएगी ना।
3: सुगंध क्या हो रहा है?
4: बिल हो रहा है।
3: चल अपना कार्ड दे, पिन दे।
5: आरबीआई कहता है अपना पिन, ओटीपी, सीवीवी या इंटरनेट बैंकिंग पासवर्ड किसी को ना दे। ऑनलाइन बैंकिंग सिर्फ अपने ही कंप्यूटर, मोबाइल और सिक्योर नेटवर्क से करें। हाँ ये खाने की चैंपियनशिप थी क्या? आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
6: आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ साझा किए अपने विचार। कहा देश के धरोहर स्थलों के संरक्षण के लिए हर संभव प्रयास कर रही है सरकार। प्रधानमंत्री ने प्रदेश के दशहरी और लंगड़ा आम की किस्मों समेत गंगा डॉल्फिन बचाओ अभियान का किया जिक्र। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जताया आभार। 1991 बैच के वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी राजीव कृष्ण को बनाया गया उत्तर प्रदेश का पुलिस महानिदेशक। वर्ष 2022 के बाद मिला पहला स्थायी डीजीपी। और राजधानी लखनऊ सहित प्रदेश के कई जिलों में आंधी बारिश के बाद लोगों को गर्मी से मिली राहत। मौसम विभाग ने कल प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में गरज चमक के साथ बौछारें पड़ने का जताया अनुमान। नमस्कार, प्रदेश के समाचारों के साथ मैं शैलेंद्र, और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम की 134वीं कड़ी में देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा किए। कार्यक्रम के दौरान श्री मोदी ने विभिन्न मुद्दों पर अपने विचार रखे। श्री मोदी ने कहा कि सरकार देश की अमूल्य धरोहरों के संरक्षण के लिए प्रयासरत है। श्री मोदी ने देशवासियों से भीषण गर्मी के मौजूदा मौसम के दौरान अत्यधिक सावधानी बरतने और सरकारी दिशा निर्देशों का पालन करने की अपील की है।
7: इस समय देश के ज्यादातर हिस्सों में बहुत गर्मी पड़ रही है। तेज धूप, गर्म हवाएं, ऐसे मौसम में अपना ध्यान रखना बहुत जरूरी है। पानी पीते रहिए, धूप में अगर निकलना ही पड़े तो थोड़ा संभल कर निकले। इस दिशा में सरकार की भिन्न भिन्न डिपार्टमेंट्स ने जो गाइडलाइंस जारी की है वो भी भूलिएगा नहीं।
6: प्रधानमंत्री ने लोगों से गर्मी से राहत के लिए आम पन्ना, छाछ, लस्सी, सत्तू, शरबत, बेलपन्ना, पनाकम, नीरमोर, सांभरम, कोकम शरबत और सोल कढ़ी का सेवन करने की भी अपील की है।
7: हमारे यहाँ गर्मी से लड़ने का तरीका भारत के अलग अलग क्षेत्रों की परंपरा का हिस्सा है और इसमें एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना की झलक भी मिलती है। और एक बात जरूर ध्यान रखिएगा, इनमें से ज्यादातर चीजें हमारी अपनी रसोई से निकली है। आप भी गर्मी के दौरान देसी पेयजलों का खूब आनंद लीजिए।
6: प्रधानमंत्री ने काशी के लंगड़ा, महाराष्ट्र के अल्फांजो, गुजरात के केसर और पश्चिम बंगाल के हिमसागर आम की चर्चा करते हुए कहा कि हर क्षेत्र के आम का स्वाद अनूठा और उसकी महक अनोखी होती है।
7: महाराष्ट्र और कोंकण का हापुस, अल्फांसो, गुजरात का केसर, यह तो आमरस की जान है। उत्तर प्रदेश का दशहरी और मेरी काशी का लंगड़ा, बिहार का जरदालू, चौसा, मालदा, हर

0: आम के साथ लोगों की यादें जुड़ी हुई है। दक्षिण भारत जाइए तो बंगन पल्ली, तोतापुरी, नीलम, मलगोवा, बंगाल का हिमसागर, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश का सुवर्ण रेखा, यानी जगह बदलती है, आम का रूप रंग और उसका स्वाद भी बदल जाता है।
1: श्री मोदी ने कहा कि भारतीय आम ने वैश्विक बाजार तक पहुंच बनाई है और आम हमारी कृषि अर्थव्यवस्था के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। प्रधानमंत्री ने उत्तर प्रदेश में एक नहर में गंगा डॉल्फिन को बचाने वाले वीडियो का भी उल्लेख किया। उन्होंने बताया कि नमामि गंगे अभियान के तहत बनाई गई भारत की पहली गंगा डॉल्फिन बचाओ एम्बुलेंस ने इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। श्री मोदी ने कहा कि गंगा डॉल्फिन संरक्षण से नदी की जैव विविधता और अमूल्य प्राकृतिक धरोहर का संरक्षण भी होता है।
0: डॉल्फिन रेस्क्यू एम्बुलेंस बहुत खास है। इसे एक चलते फिरते अस्पताल की तरह तैयार किया गया है। इसमें डॉल्फिन को सुरक्षित रखने की व्यवस्था है, ऑक्सीजन की सुविधा है, विशेष स्ट्रेचर बचाव के उपकरण है, यानी अगर कोई डॉल्फिन घायल हो जाए, नहर में फंस जाए या नदी से कट जाए तो तुरंत उसकी मदद की जा सकती।
1: प्रधानमंत्री ने उत्तर प्रदेश के बस्ती के आकाश गुप्ता का जिक्र किया, जिन्होंने अपने दोस्तों के साथ मिलकर गांव की मनोरमा नदी को साफ किया। श्री मोदी ने देशवासियों से अपील की है कि वे अपने आसपास समाज की बेहतरी के लिए लगातार काम कर रहे लोगों को पहचानें और स्वयं भी अच्छे कार्यों से जुड़ें। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मन की बात कार्यक्रम में गंगा डॉल्फिन बचाओ और बस्ती के आकाश गुप्ता का उल्लेख किए जाने पर प्रधानमंत्री को धन्यवाद दिया है। एक सोशल मीडिया पोस्ट के माध्यम से श्री योगी ने कहा कि पर्यावरण और जीव संरक्षण के प्रति जन जागरूकता बढ़ाती इस प्रेरक पहल को राष्ट्रीय मंच पर स्थान देने पर प्रधानमंत्री का आभार। मन की बात में काशी के लंगड़ा आम का जिक्र किए जाने का काशीवासियों ने स्वागत किया है। वाराणसी क्षेत्र के MLC धर्मेंद्र सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री द्वारा लंगड़ा आम का उल्लेख किए जाने से वाराणसी की कृषि और स्थानीय उत्पादों को राष्ट्रीय स्तर पर नई पहचान मिलेगी।
2: कि बनारस का लंगड़ा दौड़ता है विश्व भर में, तो बनारस के लंगड़े की प्रशंसा उन्होंने की। आज बहुत बड़े क्षेत्र में अभी भी हमारे किसान लंगड़ा आम की खेती करते हैं। बनारस धन्य है, बनारस के लंगड़ा आम का स्वाद ही कुछ और होता है।
1: बस्ती के रहने वाले आकाश गुप्ता ने कहा कि प्रधानमंत्री द्वारा मन की बात में नाम लिए जाने से और बेहतर कार्य करने की प्रेरणा मिलती है।
3: आसपास के जितने भी गांव के लोग हैं, नदी के पास जितने भी गांव हैं, हम चाहेंगे सब युवा हमसे जुड़े और इस काम को एक अभियान बनाए, जिससे कि नदी पूरा साफ हो, क्योंकि हम 5 से 6 लोग 7 लोग नदी को पूरा साफ नहीं कर सकते जब तक सब लोग एक साथ ना।
1: ये समाचार आप आकाशवाणी लखनऊ से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। इसके साथ ही आप प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन हमारे YouTube चैनल newsonair लखनऊ पर भी सुन सकते हैं। 1991 बैच के वरिष्ठ IPS अधिकारी राजीव कृष्ण को राज्य का पुलिस महानिदेशक बना दिया गया है। श्री राजीव कृष्ण अभी तक कार्यवाहक DGP के तौर पर कार्य कर रहे थे। वर्ष 2022 के बाद प्रदेश को स्थायी DGP मिल गया है। संघ लोक सेवा आयोग से मंजूरी मिलने के बाद गृह विभाग ने श्री कृष्ण की नियुक्ति का आदेश जारी कर दिया है। श्री राजीव कृष्ण जून 2029 तक इस पद पर बने रहेंगे। उत्तर प्रदेश शासन ने तात्कालिक प्रभाव से 21 जिलों में नए मुख्य चिकित्सा अधिकारी की तैनाती की है। आज जारी तबादला सूची के अनुसार प्रादेशिक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा संवर्ग के संयुक्त निदेशक ग्रेड एवं विभिन्न अस्पतालों में तैनात चिकित्सा अधिकारियों की नियुक्ति CMO के पद पर की गई है। शासन की ओर से जारी सूची के अनुसार डॉक्टर हरिनंदन प्रसाद जालौन, डॉक्टर रमेश मिश्रा सोनभद्र, डॉक्टर रंजन गौतम बाराबंकी और डॉक्टर अजय कुमार शर्मा को उन्नाव का CMO बनाया गया है। इसी प्रकार डॉक्टर पंकज कुमार मऊ, डॉक्टर मुकेश कुमार वाराणसी का CMO बनाया गया है। अपर निदेशक लखनऊ डॉक्टर GP गुप्ता को सिविल अस्पताल का निदेशक नियुक्त किया गया है। केंद्रीय राज्य मंत्री प्रोफेसर SP सिंह बघेल ने आज आगरा में ताजगंज क्षेत्र के पुरानी मंडी चौराहा स्थित लोकमाता अहिल्याबाई होलकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर हवन पूजन किया। इस दौरान श्री बघेल ने एक बाइक यात्रा को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस मौके पर केंद्रीय राज्य मंत्री

0: ने कहा कि बिना विरासत का सम्मान किए प्रगति संभव नहीं है।
1: जो जात वर्ग क्षेत्र धर्म पुरखों का सम्मान नहीं करता वो आगे नहीं बढ़ता। और हमारे पुरखे ऐसे हैं जिन्होंने 12,776 टूटे हुए मंदिरों का जीर्णोद्धार कराया, तमाम सड़कें प्याऊ और धर्मशाला बनाई, लोक कल्याणकारी काम किए हैं। इसलिए ऐसी जयंतियों से जागृति आती है, जागृति से सोच बदलती है, सोच से संघर्ष करने की क्षमता, संघर्ष से सत्ता, सत्ताओं से इतिहास बनता है।
0: वाराणसी में भी लोक माता अहिल्याबाई होलकर की 301वीं जयंती उल्लासपूर्ण माहौल में मनाई गई। प्रदेश भर में आज उत्तर प्रदेश संयुक्त बीएड प्रवेश परीक्षा 2026 शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हो गई। बुंदेलखंड विश्वविद्यालय झांसी को परीक्षा की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। परीक्षा के लिए 72 जनपदों में 1011 परीक्षा केंद्र बनाए गए थे। परीक्षा की निगरानी के लिए एक हाईटेक कमांड कंट्रोल रूम बनाया गया था। परीक्षा 2 पालियों में संपन्न हो गई। आईपीएल 2026 का फाइनल मुकाबला आज अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और गुजरात टाइटन के बीच खेला जा रहा है। आरसीबी ने टॉस जीतकर पहले बॉलिंग करने का फैसला किया है। राजधानी लखनऊ सहित प्रदेश के कई जिलों में आंधी और बारिश से लोगों को गर्मी से राहत मिली है। मौसम विभाग ने कल प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में गरज चमक के साथ बौछारें पड़ने का अनुमान जताया है। इस दौरान कुछ जगहों पर तेज हवाओं के साथ बिजली कड़कने की भी चेतावनी दी गई है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ साझा की अपने विचार। कहा, देश के धरोहर स्थलों के संरक्षण के लिए हर संभव प्रयास कर रही है सरकार। प्रधानमंत्री ने प्रदेश के दशहरी और लंगड़ा आम की किस्मों समेत गंगा डॉल्फिन बचाओ अभियान का किया जिक्र। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जताया आभार। 1991 बैच के वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी राजीव कृष्ण को बनाया गया उत्तर प्रदेश का पुलिस महानिदेशक। वर्ष 2022 के बाद मिला पहला स्थायी डीजीपी। और राजधानी लखनऊ सहित प्रदेश के कई जिलों में आंधी बारिश के बाद लोगों को गर्मी से मिली राहत। मौसम विभाग ने कल प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में गरज चमक के साथ बौछारें पड़ने का जताया अनुमान। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला बुलेटिन रात 8 बजे FM पर प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
2: बड़ी बहू,
3: ये तुम्हारी ना।
2: इतनी भी क्या जल्दी थी?
3: अरे और छोटी, ये तुम्हारे ना।
2: और ये मेरी गुड़िया के
4: नाम। दादी, आपके नाम?
5: सब कुछ, मैंने बैंक, लॉकर, फिक्स डिपॉजिट सब में इन्हें ही तो नॉमिनी बनाया है। कल जब मैं ना रहूं तब पैसे मिलने में इन्हें आसानी हो।
3: शुभ शुभ बोलो।
4: क्या
5: RBI कहता है?
6: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
7: मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 954 किलोहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। पेश है कार्यक्रम सुगम संगीत और आज के कलाकार हैं हेमंत पाठक। तो लीजिए सुनते हैं इनकी आवाज में ये गीत।

0: इसी के साथ कार्यक्रम सुगम संगीत यहीं पर संपन्न होता है। आकाशवाणी का ये नजीबाबाद केंद्र है। मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 954 किलोहर्ट्ज पर। शाम के 7:50 हो रहे हैं। आइए सुनते हैं अदबी दुनिया में एजाज धामपुरी का कलामे शायर।
1: चंद कतात समात फरमाए, पेश करता हूं। पहला कता है कि गीत लिखो सिर्फ इखलासो वफा के नाम पर, गीत लिखो सिर्फ इखलासो वफा के नाम पर, शेर लिखो मुल्क में अमनो अमा के वास्ते, नफरतों के दौर में लाजिम है के एजाज अब, नफरतों के दौर में लाजिम है के एजाज अब, तुम कलम को वक्फ कर दो एकता के नाम पर, तुम कलम को वक्फ कर दो एकता के नाम पर। और दूसरा कता समात फरमाइएगा कि नापाक इरादों को उभरने नहीं देंगे, नापाक इरादों को उभरने नहीं देंगे, हम मुल्क का शिराजा बिखरने नहीं देंगे, और जिसको मेरे अजदाद ने, जिसको मेरे अजदाद ने खून अपना दिया है, खारों से गुलिस्तान ये भरने नहीं देंगे, खारों से गुलिस्तान ये भरने नहीं देंगे। और तीसरा कता समाज फरमाए, चार मिसरे और हैं, कि मुझको देना है मोहब्बत का एक नया पैगाम, मुझको देना है मोहब्बत का एक नया पैगाम, और हो जाए हसी आज की सुनहरी शाम, और हो जाए हसी आज की सुनहरी शाम, और जान को अपनी गंवा कर हमें आजाद किया, जान को अपनी गंवा कर हमें आजाद किया, ऐसे जाबाज शहीदों को अकीदत का सलाम, ऐसे जाबाज शहीदों को अकीदत का सलाम, ऐसे जाबाज शहीदों को अकीदत का सलाम। और गजल का एक मतलब कुछ शेर समात फरमाएं, पेश करता हूं। मैं तेरी चाह में

0: और चार मिसरे पेश कर रहा हूं। समातुरमय कि जलाओ प्यार के दीपक, पयाम है मेरा। जलाओ प्यार के दीपक, पयाम है मेरा। खुशी में आज की सबको सलाम है मेरा। और महकते फूल हो एजाज सबके दामन में, महकते फूल हो एजाज सबके दामन में। बसद खुलूस खुदा से कलाम है मेरा, बसद खुलूस खुदा से कलाम है मेरा। जलाओ प्यार के दीपक, पयाम है मेरा। खुशी में आज की सबको सलाम है मेरा।
1: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम अदबी दुनिया में, एजाज धामपुरी का कलाम शायर। आकाशवाणी का ये नजीबाबाद केंद्र है। मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 954 किलोहर्ट्ज पर रात्रि के 8 बज रहे हैं। पेश है कार्यक्रम गीत संध्या। आइए सुनते हैं दाग द फायर फिल्म से ये गीत, उदित नारायण और अनुराधा पौडवाल की आवाज में। संगीत दिया है राजेश रोशन ने, गीतकार हैं समीर।

0: कॉलेज की यादें छोड़िए, कितनी बातें भूल गया हूँ। तब का बैंक अकाउंट भी याद नहीं है।
1: बैंक अकाउंट पुराना हो तो पता चल सकता है।
0: कहाँ से पता चलेगा?
1: उद्गम से, RBI के उद्गम पोर्टल पे रजिस्टर करके लॉगिन करें और अपने डिटेल्स डालकर 10 साल या उससे पुराने निष्क्रिय खातों को सर्च करें। बैंक से संपर्क करके खाता सक्रिय बनाओ।
2: आज ही सर्च करूंगा।
1: तो आज की चाय तेरी तरफ से।
3: RBI कहता है,
4: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
5: अपने व्यापार को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाना चाहते हैं?
6: तो इंतजार किस बात का?
5: अभी बुक कराइए अपना विज्ञापन आकाशवाणी नजीबाबाद के संग।
6: विज्ञापन बुकिंग कराने के लिए आज ही संपर्क करें।
5: हमारा मोबाइल नंबर है 8865845809।
6: नंबर एक बार फिर सुन लीजिए, 8865845809।
5: और हमारा ईमेल आईडी है

0: akashvaninajibabad@gmail.com।
1: तो देर किस बात की, उठाइए अपना फोन और बुक कराइए अपना विज्ञापन
0: आकाशवाणी नजीबाबाद के संग।
2: आकाशवाणी के नजीबाबाद से केंद्र से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम गीत संध्या। लीजिए सुनते हैं बेटा फिल्म से ये गीत अनुराधा पौडवाल और उदित नारायण की आवाज में। गीतकार हैं समीर, संगीत दिया है आनंद मिलन ने।

आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम गीत संध्या। लीजिए सुनते हैं राजा हिंदुस्तानी फिल्म से ये गीत उदित नारायण और अलका याग्निक की आवाज में। गीतकार हैं समीर और संगीत दिया है नदीम श्रवण ने।

आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम गीत संध्या। लीजिए सुनते हैं हर दिल जो प्यार करेगा फिल्म से ये गीत उदित नारायण और अलका याग्निक की आवाज़ में। संगीत दिया है अनु मलिक ने, गीतकार हैं समीर।

हर दिल जो प्यार करेगा फिल्म के इस गीत के साथ, कार्यक्रम गीत संध्या यहीं पर संपन्न होता है। आकाशवाणी का ये नजीबाबाद केंद्र है। मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 954 किलोहर्ट्ज पर। रात्रि के 8:30 हो रहे हैं। पेश है कार्यक्रम एक ही फिल्म से, और आज की फिल्म है परदेश। परदेश 1997 में बनी एक भारतीय हिंदी भाषा की संगीतमय रोमांटिक ड्रामा फिल्म है, जिसका निर्देशन, निर्माण और सह लेखन सुभाष घई ने किया। इसमें शाहरुख खान और महिमा चौधरी, अपूर्व अग्निहोत्री, आलोक नाथ, अमरीश पुरी और हिमानी शिवपुरी ने सहायक भूमिका निभाई। फिल्म की शूटिंग संयुक्त राज्य अमेरिका यानी कि लॉस एंजल्स और लास वेगास में की गई। कनाडा में कोलंबिया, जिसमें बेंगलुरु भी शामिल है, और भारत के उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, आगरा में भी शामिल है। 43वें फिल्मफेयर पुरस्कार में प्रदेश को सर्वश्रेष्ठ फिल्म, सर्वश्रेष्ठ निर्देशक सुभाष घई और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री चौधरी यानी कि महिमा चौधरी को 12 नामांकन के साथ 3 पुरस्कार मिले, जिसमें से सर्वश्रेष्ठ महिला डेब्यू में महिला महिमा चौधरी को और सर्वश्रेष्ठ महिला पार्श्व गायिका में अलका याग्निक को पुरस्कार मिला। ये फिल्म तेलुगु में पेली कानुका के रूप की रीमेक थी। तो लीजिए सुनते हैं शंकर महादेवन की आवाज में ये गीत।

0: प्लेटफॉर्म नंबर 2 से चलने वाली सुपरफास्ट एक्सप्रेस के यात्रियों
1: दीप तुम्हें इसे मोबाइल चार्ज करना,
2: दिमाग चार्ज कर अपना।
3: ऐसे पब्लिक पोर्ट से फोन चार्ज किया तो पर्सनल डेटा होगा पब्लिक।
2: देखा
1: पापा, रुको मैं पे करता हूँ। नो सिग्नल।
3: अब क्या करोगे?
1: फ्री वाईफाई है ना?
2: बुद्धू सुधर जा।
3: पेमेंट्स के लिए नो ओपन वाईफाई,
1: यानी फ्रॉड को करो बाय बाय।
3: RBI कहता है
4: करो सही शुरुआत, बनो फाइनेंशियली स्मार्ट।
5: सूचना ज्ञान एवं मनोरंजन से भरपूर प्रसारण के 90 वर्षों से हम हैं आपके साथ, क्योंकि हम हैं आकाशवाणी।

आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से आप सुन रहे कार्यक्रम एक ही फिल्म से, और आज की फिल्म है परदेश। फिल्म का संगीत दिया था नदीम श्रवण ने। तो लीजिए सुनते हैं अलका याग्निक और उदित नारायण की आवाज।

0: इसी गीत के साथ कार्यक्रम एक ही फिल्म से यहीं पर संपन्न होता है। आकाशवाणी का ये नजीबाबाद केंद्र है, मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 954 किलोहर्ट्ज पर। 8:45 होने को है, थोड़ी ही देर में दिल्ली से हिंदी में समाचार रिले किए जाएंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं सर फिरोजी। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में प्रकृति संरक्षण, स्थानीय समस्याओं के समाधान और अन्य सामाजिक कार्यों में लोगों के प्रयासों की सराहना की। प्रधानमंत्री ने राष्ट्रीय खेल आयोजनों में उभरते खिलाड़ियों के अच्छे प्रदर्शन की भी प्रशंसा की। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने 12वीं कक्षा की उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन के लिए ऑन मार्क पोर्टल की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए साइबर सुरक्षा विशेषज्ञों की टीम तैनात की। हिमाचल प्रदेश नगर निकाय चुनाव में भाजपा ने 4 में से 3 नगर निगमों में जीत हासिल की। म्यांमा में एक इमारत में हुए विस्फोट में 45 से अधिक लोगों की मौत। भारत के सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी ने सिंगापुर ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट का पुरुष युगल खिताब जीता। और आईपीएल क्रिकेट में गुजरात टाइटंस और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के बीच फाइनल मुकाबला जारी। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सामाजिक कार्यों में असाधारण योगदान करने के लिए आज अनेक नागरिकों की सराहना की और उनके प्रेरणादायक कार्यों और उपलब्धियों का उल्लेख किया। श्री मोदी ने आकाशवाणी पर अपने मासिक रेडियो कार्यक्रम मन की बात में राष्ट्र को संबोधित करते हुए सामाजिक कार्यों के लिए जमीनी स्तर पर काम कर रहे लोगों की प्रशंसा की। प्रधानमंत्री ने केरलम के साजी वलाशेरिल के बारे में बात की। ये निशुल्क तैराकी क्लब चलाते हैं जिसमें 15,000 से ज्यादा लोगों को तैराकी सीखने में सहायता की गई है।
2: केरलम के आलुवा में साजी वलाशेरिल जी एक स्विमिंग क्लब चला रहे हैं। अब तक 15,000 से ज्यादा लोग यहाँ तैरना सीख चुके हैं। साजी जी ने दिव्यांग बच्चों को भी स्विमिंग सिखाई है। साजी वलाशेरिल जी का जीवन हमें एक बहुत बड़ी सीख देता है। सेवा करने के लिए बहुत बड़े साधन जरूरी नहीं होते, जरूरी होता है एक अच्छा इरादा और लगातार किया गया प्रयास। इन्हीं के दम पर हजारों लोगों के जीवन में बदलाव लाया जा सकता है।
1: प्रधानमंत्री ने उत्तर प्रदेश में बस्ती के आकाश गुप्ता के प्रयासों का भी उल्लेख किया, जिन्होंने अपने मित्रों के साथ मनोरमा नदी को साफ करने का अभियान चलाया।
2: बस्ती के आकाश गुप्ता अपने गांव की मनोरमा नदी को देखकर बहुत दुखी होते थे। श्रीमान आकाश ने तय किया कि शिकायत नहीं करेंगे, एक नई शुरुआत करेंगे। उन्होंने अपने दोस्तों को साथ लिया। सिर्फ जाल था, फावड़ा था, टोकरी थी और सबसे बड़ी ताकत थी कुछ बदलने का संकल्प। ये युवा नदी में उतरते थे, जलकुंभी निकालते थे। धीरे धीरे मनोरमा नदी का वह हिस्सा फिर से साफ दिखने लगा। आसपास के लोगों का ध्यान भी इस काम की तरफ गया। लोगों में स्वच्छता को लेकर जागरूकता बढ़ी।
1: प्रधानमंत्री ने तमिलनाडु की शिक्षिका गिरिजा अम्मा की भी बात की, जिन्होंने मन की बात से प्रेरित होकर देश के सैनिकों के लिए रोज 1 रुपया दान करने की अपील बच्चों से की और इससे मिले लगभग 40 लाख रुपए प्रधानमंत्री को सौंपे।
2: तमिलनाडु के नागरकोइल में मेरी मुलाकात एक टीचर से हुई। करीब 3 दशक पहले भी मैं उनसे मिला था। मैं बात कर रहा हूँ गिरिजा अम्मा जी की। इस मुलाकात के दौरान कुछ युवा स्टूडेंट्स भी उनके साथ थे। गिरिजा अम्मा जी करीब 15 स्कूल चलाती हैं। इनमें चेन्नई का जय गोपाल गरोड़िया हिंदू विद्यालय बहुत प्रमुख है। उनकी देशभक्ति की भावना हर भारतवासी को प्रेरित करने वाली है।
1: देश की खेल उपलब्धियों का उल्लेख करते हुए श्री मोदी ने खिलाड़ी गुरिंदर वीर सिंह, विशाल टीके, तेजस्विन शंकर, देव मीणा और कुलदीप कुमार को झारखंड के रांची में आयोजित नेशनल सीनियर एथलेटिक्स फेडरेशन प्रतिस्पर्धा में नए राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाने के लिए बधाई दी।
2: कुछ दिन पहले ही झारखंड के रांची में नेशनल सीनियर एथलेटिक फेडरेशन कंपटीशन हुआ। इसमें करीब 800 एथलीट्स ने हिस्सा लिया। इस दौरान 4 अलग अलग इवेंट में 4 नेशनल रिकॉर्ड टूटे। गुरिंदर वीर सिंह, विशाल टीके, तेजस्विनी शंकर, देव मीणा और कुलदीप कुमार, इन साथियों ने अलग अलग कैटेगरी में नए रिकॉर्ड बनाए। मैं इन सभी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ।
1: श्री मोदी ने देश की अमूल्य सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करने के सरकार के प्रयासों पर भी बात की। प्रधानमंत्री ने नीदरलैंड की हाल ही की अपनी यात्रा का उल्लेख किया, जहां एक विशेष समारोह में चोल काल के प्राचीन ताम्रपत्र भारत को वापस किए गए। प्रधानमंत्री ने नमामि गंगे पहल के अंतर्गत संरक्षण के प्रयासों की भी सराहना की। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश की एक नहर में फंसी गंगा डॉल्फिन को भारत की पहली गंगा डॉल्फिन बचाव एम्बुलेंस की मदद से सफलतापूर्वक बचाया गया है। देश में भीषण गर्मी पर चिंता व्यक्त करते हुए प्रधानमंत्री ने इस संबंध में लोगों से सरकारी सलाहों पर अमल करने का अनुरोध किया और सुरक्षित रहने के लिए एहतियातन कदम उठाने को कहा। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने 12वीं कक्षा की उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन के लिए ऑनमार्क पोर्टल की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए साइबर सुरक्षा विशेषज्ञों की एक टीम तैनात की है। बोर्ड ने कहा कि वो अपने सेवा प्रदाता के ऑनमार्क पोर्टल में पाई गई खामियों पर कड़ी निगरानी रख रहा है, जिन्हें हाल ही में सार्वजनिक रूप से उजागर किया गया था। सोशल मीडिया पोस्ट में बोर्ड ने कहा कि विभिन्न सरकारी एजेंसियों और भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों के साइबर सुरक्षा विशेषज्ञों का एक दल पिछले कुछ दिनों से इन प्रणालियों को मजबूत करने और पोर्टल को अधिक सुरक्षित बनाने के लिए काम कर रहा है। बोर्ड ने बताया कि पहचानी गई खामियों को दूर कर लिया गया है। भारतीय जनता पार्टी ने हिमाचल प्रदेश के 4 नगर निगमों में से 3 में स्पष्ट बहुमत हासिल कर लिया है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि 17 मई को हुए नगर निगम चुनावों के लिए मतगणना आज पूरी हो गई।
3: हिमाचल प्रदेश के नगर निगम चुनावों में भारतीय जनता पार्टी ने बड़ी जीत दर्ज करते हुए धर्मशाला, सोलन और मंडी नगर निगमों में कब्जा जमाया है। वहीं पालमपुर नगर निगम में कांग्रेस पार्टी ने जीत हासिल की है। धर्मशाला में भाजपा ने 17 में से 11 वार्ड जीते हैं, जबकि कांग्रेस को 5 वार्डों में सफलता मिली है। सोलन में भाजपा ने 10 और कांग्रेस ने 6 वार्ड जीते। मंडी में भाजपा ने 14 में से 12 वार्डों में जीत दर्ज कर दबदबा बनाया, जबकि कांग्रेस को 1 वार्ड मिला। पालमपुर में कांग्रेस ने 15 में से 11 वार्ड जीतकर स्पष्ट बहुमत हासिल किया, जबकि भाजपा को 4 वार्ड मिले। इस बीच जिला परिषद और पंचायत समिति सदस्यों के चुनावों की मतगणना भी पूरी हो गई है। ये चुनाव पार्टी चिन्हों पर नहीं लड़े गए थे, फिर भी भाजपा और कांग्रेस दोनों ने अपने समर्थित उम्मीदवारों की जीत का दावा किया है। रितेश कपूर, आकाशवाणी समाचार, शिमला।
1: मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण के तीसरे चरण के अंतर्गत ओडिशा, मिजोरम, सिक्किम और मणिपुर में कल से मतदाताओं की पहचान शुरू हो गई है। निर्वाचन आयोग ने बताया है कि जिन पात्र मतदाताओं के मतगणना प्रपत्र 28 जून तक मतदाता पंजीकरण अधिकारी को प्राप्त हो जाएंगे, उन्हें मसौदा मतदाता सूची में शामिल किया जाएगा। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: के टेलीलॉ न्याय बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेलीलॉ के टोल फ्री नंबर 1-4-4-5-4 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। म्यांमार के उत्तर पूर्वी हिस्से में एक भवन में हुए विस्फोट में 45 से अधिक लोगों की मौत हो गई और 70 लोग घायल हुए हैं। खबरों के अनुसार इस भवन में खनन के लिए विस्फोटक रखे गए थे। चीन की सीमा से लगभग 3 किलोमीटर दक्षिण में स्थित ये क्षेत्र सशस्त्र गुट तांग नेशनल लिबरेशन आर्मी के नियंत्रण में है। ये गुट म्यांमार की केंद्रीय सरकार के खिलाफ संघर्ष में है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल नई दिल्ली में म्यांमार के राष्ट्रपति ऊ मिन आउलाइन के साथ वार्ता करेंगे। इस बातचीत से दोनों देशों के बीच ऐतिहासिक और सभ्यतागत संबंधों को और मजबूती मिलेगी। बातचीत के दौरान सुरक्षा और संपर्कता समेत भारत और म्यांमार के समग्र संबंधों पर विचार विमर्श होगा। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोवाल ने आज नई दिल्ली में म्यांमार के राष्ट्रपति से मुलाकात की। म्यांमार के राष्ट्रपति कल 5 दिन की भारत यात्रा पर बिहार के गया पहुंचे थे। उनके साथ एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधि मंडल भी है जिसमें कैबिनेट मंत्री, वरिष्ठ अधिकारी और उद्योगपति शामिल हैं। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा है कि पिछले 12 वर्ष के तकनीकी बदलाव के दौरान भारत प्रौद्योगिकी लेने वाले की बजाय प्रौद्योगिकी का नेतृत्व करने वाला बनकर उभरा है। उन्होंने दूरदर्शन न्यूज के साथ एक पॉडकास्ट में आज ये बात कही।
2: विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा कि भारत तेजी से वैश्विक स्तर पर प्रौद्योगिकी के विकास में भागीदारी कर रहा है और नवाचार की दिशा में भविष्य तय कर रहा है। उन्होंने कहा कि देश ने अंतरिक्ष, परमाणु ऊर्जा, क्वांटम तकनीक और जैव प्रौद्योगिकी जैसे क्षेत्रों में विशेष प्रगति हासिल की है। उन्होंने कहा कि ये क्षेत्र वर्ष 2047 तक विकसित भारत बनाने के लिए सामूहिक रूप से आवश्यक वैज्ञानिकी और तकनीकी आधार बना रहे हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की चर्चा करते हुए केंद्रीय मंत्री ने कहा कि एआई तकनीक स्वास्थ्य देखभाल, कृषि, संचार और जन सेवा के क्षेत्र में एक परिवर्तनकारी शक्ति बनकर उभर रही है। उन्होंने कहा कि भारत कुशलता में सुधार करने के लिए एआई युक्त प्रणाली और मानव विशेषज्ञता के बीच समन्वित तरीका अपनाकर चल रहा है। आनंद की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं आकर्षिता सिंह।
1: आवासन और शहरी कार्य तथा विद्युत मंत्री मनोहर लाल ने त्रिपुरा में शहरी स्वच्छता और विद्युत अवसंरचना को मजबूत करने के लिए कई पहलों की घोषणा की है। अगरतला में त्रिपुरा के विद्युत मंत्री रतन लाल नाथ के साथ संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में श्री मनोहर लाल ने कहा कि राज्य में अपशिष्ट प्रबंधन प्रणालियों को उन्नत करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने कहा है कि राजनीतिक नेतृत्व सार्वजनिक जीवन का महत्वपूर्ण क्षेत्र है और रचनात्मक आलोचना निष्पक्ष और संतुलित होनी चाहिए। उन्होंने ये बात केरलम के कोट्टयम में मलयालम दैनिक दीपिका के 140वें स्थापना दिवस समारोह के उद्घाटन के दौरान कही। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं।
3: हर उड़ान से पहले एक फैसला होता है, हर फैसले से पहले एक सवाल, क्या मैं तैयार हूँ? अगर जवाब है हाँ, तो भारतीय वायुसेना आपका इंतजार कर रही है। AFCAT 1 of 2026 के आवेदन 10 नवंबर से 9 दिसंबर तक खुले हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें careerairforce.gov.in या afcat.edcil.go.in पर।
1: ये आकाशवाणी है। हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले में सड़क दुर्घटना में 8 लोगों की मौत हो गई है। मरने वालों में छत्तीसगढ़ के 7 पर्यटक और वाहन चालक शामिल हैं। ये दुर्घटना 29 मई की रात को चुरा उपमंडल के बैरागढ़ सच दर्रा केलर सड़क पर उस समय हुई जब एक कार खाई में गिर गई। पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। जम्मू कश्मीर में सेना ने पुंछ जिले में नियंत्रण रेखा पर स्थिति द्वारों पर आधार के जरिए प्रवेश और निकास प्रणाली की शुरुआत की है। इससे सीमा के पास रहने वाले निवासियों की आवाजाही सुगम होगी। सात्विक साईराज रंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी ने सिंगापुर ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट का खिताब जीत लिया है। फाइनल में आज भारत की पुरुष डबल्स जोड़ी ने इंडोनेशिया के फजर अल्फियन और मोहम्मद शोहिबुल फिक्री को हराया। खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने और केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने इस जीत पर खिलाड़ियों को बधाई दी है। अहमदाबाद में आईपीएल क्रिकेट के फाइनल में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और गुजरात टाइटंस का मुकाबला जारी है। ताजा समाचार मिलने तक गुजरात टाइटंस ने 17वें ओवर में 6 विकेट के नुकसान पर 115 रन बना लिए हैं। फ्रांस में चैंपियंस लीग में पेरिस सेंट जर्मेन की आर्सेनल पर जीत का जश्न मना रहे फुटबॉल प्रशंसकों और पुलिस के बीच हुई झड़पों में कुल 219 लोग घायल हो गए हैं। मौसम विभाग ने कल गुजरात, केरलम, माहे, लक्षद्वीप, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, ओडिशा, दक्षिण भीतरी कर्नाटक, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कारैक्काल और पश्चिमी मध्य प्रदेश में तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। विभाग के अनुसार मध्य महाराष्ट्र, ओडिशा और पश्चिमी मध्य प्रदेश में तूफान की संभावना है। अगले दो दिनों में दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश, बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और पश्चिमी राजस्थान में भी तूफान का अनुमान है। मंगलवार तक तेलंगाना, कोंकण, गोवा, सौराष्ट्र में भी इसी तरह की स्थिति रहेगी। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में प्रकृति संरक्षण, स्थानीय समस्याओं के समाधान और अन्य सामाजिक कार्यों में लोगों के प्रयासों की सराहना की। प्रधानमंत्री ने राष्ट्रीय खेल आयोजनों में उभरते खिलाड़ियों के अच्छे प्रदर्शन की भी प्रशंसा की। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने 12वीं कक्षा की उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन के लिए ऑनमार्क पोर्टल की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए साइबर सुरक्षा विशेषज्ञों की टीम तैनात की। और आईपीएल क्रिकेट में गुजरात टाइटंस और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के बीच फाइनल मुकाबला जारी। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
4: गुड इवनिंग, दिस इज आकाशवाणी एंड आई एम नरेश मागो विद द न्यूज एट 9। The headlines. Prime Minister Narendra Modi lauds efforts of individuals towards nature conservation, solving local problems and other social causes. Also compliments record-breaking performances by emerging athletes in national sports events in Mann Ki Baat program on Akashvani. CBSE deploys team of cyber security experts to secure OnMark portal for evaluation of class 12 answer sheets. BJP wins 3 out of 4 municipal corporations in Himachal Pradesh civic body polls. Over 45 killed in a blast at a building storing explosives in Namkham town of Myanmar. India's Sattvik Sairaj Ranki Reddy and Chirag Shetty clinches men's doubles title of Singapore Open badminton tournament. And in IPL cricket, high voltage summit clash between Gujarat Titans and defending champions Royal Challengers Bengaluru underway in Ahmedabad. Prime Minister Narendra Modi today lauded several citizens for their outstanding contributions towards nature conservation, solving local problems and other social causes, highlighting their inspiring initiatives and achievements. Addressing the nation in his monthly program, Mann Ki Baat on Akashvani, Mr. Modi spoke about Saji Valasheril of Keralam, who runs a free swimming club that has helped more than 15,000 people learn swimming.
5: केरलम के आलुवा में साजी वलाशेरिल जी एक स्विमिंग क्लब चला रहे हैं। अब तक 15,000 से ज्यादा लोग यहाँ तैरना सीख चुके हैं। साजी जी ने दिव्यांग बच्चों को भी स्विमिंग सिखाई है। साजी वलाशेरिल जी का जीवन हमें एक बहुत बड़ी सीख देता है। सेवा करने के लिए बहुत बड़े साधन जरूरी नहीं होते, जरूरी होता है एक अच्छा इरादा और लगातार किया गया प्रयास। इन्हीं के दम पर हजारों लोगों के जीवन में बदलाव लाया जा सकता है।
4: The Prime Minister also highlighted the efforts of Akash Gupta from Basti in Uttar Pradesh, who along with his friends launched a campaign to clean the Manorama River, helping restore its cleanliness and promoting environmental awareness in the community. Mr. Modi further shared the story of Balakrishna Aiyar, a retired teacher from Goa who worked to address water scarcity by contributing to the lair of water pipelines. He also praised educator Girija Amma of Tamil Nadu for her contribution to the welfare of soldiers.
5: गिरिजा अम्मा जी करीब 15 स्कूल चलाती हैं। उन्होंने मन की बात से प्रेरणा लेकर देश के अनेक सैनिकों के लिए योगदान का संकल्प लिया। इसके लिए उन्होंने अपने सभी स्कूलों के स्टूडेंट्स को प्रेरित किया। उन्होंने बच्चों से कहा कि वे वीर जवानों के लिए हर दिन 1 रुपया योगदान दे। इस छोटे छोटे योगदान से करीब 40 लाख रुपए इकट्ठा हुए। गिरिजा अम्मा जी ने इस पूरी राशि का चेक मुझे सौंपा। उनसे बातचीत के दौरान मैंने महसूस किया कि माँ भारती के प्रति उनका समर्पण कितना गहरा है।
4: Highlighting India's sporting achievements, Mr. Modi applauded record-breaking performances by emerging athletes at the National Senior Athletics Federation competition

0: performances by emerging athletes in national sports events in Mann Ki Baat program on Akashvani. CBSE deploys team of cybersecurity experts to secure OnMark portal for evaluation of class 12-ounce sheets. BJP wins 3 out of 4 municipal corporations in Himachal Pradesh civic body polls. Over 45 people killed in a blast at a building storing explosives in Namkham town of Myanmar. India's Sattvik Sairaj, Ranki Reddy and Chirag Shetty clinch men's doubles title of Singapore Open badminton tournament. That is all in the news at 9. Good night.
1: आदाब, ये आकाशवाणी है। खबरों के साथ मैं अब्दुल वाहिद। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने फितरत के तहफ़्फ़ुज़, मकामी मुश्किलात को हल करने और दिगर समाजी मकासिद के तहत अफराद की कोशिशों को सराहा। उन्होंने आकाशवाणी पर मन की बात प्रोग्राम में खेल कूद के कौमी मुकाबलों में उभरते हुए एथलीट की रिकॉर्ड तोड़ कारकर्दगी की भी तारीफ की। सीबीएसई ने 12वीं क्लास के तलबा के जवाबी पर्चों को दोबारा जांचने के ऑन मार्क पोर्टल की हिफाजत के लिए साइबर सिक्योरिटी माहिरीन की एक टीम तैनात की है। बीजेपी ने हिमाचल प्रदेश बल्दियाती इदारों के इंतखाबात में 4 में से 3 बल्दियाती इदारों पर जीत हासिल की है। म्यांमार के नामखम कस्बे में धमाका खेज मादे के जखीरे वाली एक इमारत में धमाके से 45 से ज्यादा लोग हलाक हो गए। भारत के सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी ने सिंगापुर ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट का मर्दों का डबल्स का खिताब जीत लिया है और आईपीएल क्रिकेट में अहमदाबाद में गुजरात टाइटंस और दिफाई चैंपियन रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के दरमियान दिलचस्प मुकाबला जारी है। अब खबरें तफसील से। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने आज बहुत से शहरियों की समाजी मकासद के तहत उनके गैर मामूली तआवुन पर तारीफ की है। उन्होंने इन शहरियों के तहरीक देने वाले इकदाम और हसूलियाबियों को उजागर किया। आकाशवाणी पर अपने महाना रेडियो प्रोग्राम मन की बात में मुल्क से खिताब करते हुए जनाब मोदी ने केरलम के साजी वालशेरिल के बारे में इजहार ख्याल किया, जो एक मुफ्त स्विमिंग क्लब चलाते हैं जिससे 15,000 से ज्यादा लोगों को तैराकी सीखने में मदद मिली है। वज़ीर आज़म ने उत्तर प्रदेश के जिला बस्ती के आकाश गुप्ता की कोशिशों का भी जिक्र किया, जिन्होंने अपने दोस्तों के साथ मनोरमा दरिया की सफाई की मुहिम शुरू की थी, जिससे इस दरिया को दोबारा साफ सुथरा बनाने और समाज में माहौलियाती बेदारी को फरोग देने में मदद मिली। जनाब मोदी ने बाल कृष्णैया की दास्तान भी बयान की, जो गोवा के एक रिटायर टीचर हैं, जिन्होंने पानी की पाइपलाइन डालने में मदद देकर पानी की किल्लत को दूर करने के लिए काम किया। उन्होंने तमिलनाडु की एक टीचर गिरिजा अम्मा की सिपाहियों की बहबूद के तहत उनके तआवुन को भी सराहा।
2: गिरिजा अम्मा जी करीब 15 स्कूल चलाती है। उन्होंने मन की बात से प्रेरणा लेकर देश के अनेक सैनिकों के लिए योगदान का संकल्प लिया। इसके लिए उन्होंने अपने सभी स्कूलों के स्टूडेंट्स को प्रेरित किया। उन्होंने बच्चों से कहा कि वे वीर जवानों के लिए हर दिन 1 रुपया योगदान दें। इस छोटे छोटे योगदान से करीब 40 लाख रुपए इकट्ठा हुए। गिरिजा अम्मा जी ने इस पूरी राशि का चेक मुझे सौंपा। उनसे बातचीत के दौरान मैंने महसूस किया कि माँ भारती के प्रति उनका समर्पण कितना गहरा है।
1: खेल कूद के मैदान में भारत की हसूलियाबियों का जिक्र करते हुए जनाब मोदी ने एथलीट्स गुरिंदर वीर सिंह, विशाल टीके, तेजस्विन शंकर, देव मीना और कुलदीप कुमार को झारखंड के शहर रांची में सीनियर एथलेटिक्स की फेडरेशन के कौमी मुकाबलों में नए कौमी रिकॉर्ड्स बनाने पर मुबारकबाद दी। उन्होंने एथलीट गुरिंदर वीर सिंह और उन्मेष गजुर के 100 मीटर दौड़ के रिकॉर्ड तोड़ने के बारे में उनसे बातचीत भी की। जनाब मोदी ने मुल्क के बेशबहा सकाफती विरसे के तहफ्फुज़ की हुकूमत की लगातार कोशिशों के बारे में भी इजहार ख्याल किया। उन्होंने ज्ञान भारतम अभियान के तहत छत्तीसगढ़ में मल्हार के मकाम पर औनबंशी संतलत के मक्के महारिषि बलार्जुन से मुतल्लिक 6वीं और 7वीं सदी की 3 नायाब तांबा प्लेटों की हालिया दरियाफ्त का भी जिक्र किया।
2: ज्ञान भारतम अभियान के तहत छत्तीसगढ़ के मल्हार में भी एक महत्वपूर्ण खोज हुई है। यहाँ 3 दुर्लभ ताम्र पट्टिकाएं मिली हैं। विशेषज्ञ मानते हैं कि इंस्क्रिप्शंस 6वीं-7वीं सदी के हैं। ये ताम्र पट्टिकाएं प्राचीन ब्राह्मी लिपि और पाली भाषा में लिखी गई हैं।

0: इनसे उस समय की शासन व्यवस्था, धर्म और संस्कृति के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है।
1: वज़ीर-ए-आज़म ने नीदरलैंड्स के अपने हालिया दौरे का भी जिक्र किया, जिसके दौरान चोल अहद की कदीम तांबा प्लेटों को वापस भारत के सुपुर्द करने की एक खसूसी तकरीब मुनक़िद की गई। उन्होंने कहा कि इन बेशबहा फनपारों को वापस किए जाने से लोगों में, खासतौर पर दुनिया भर में, तमिल बिरादरी को फख्र महसूस हुआ है और उनमें जोश व जज्बा पैदा हुआ है। जनाब मोदी ने कहा कि इन तांबा प्लेटों से चोल सल्तनत की हुसूलियाबियों और समंदरी ताकत के बारे में काबिले कदर गहरी मालूमात फराहम होती हैं। वज़ीर-ए-आज़म ने नमामि गंगे पहल के तहत तहफुजाती कोशिशों को भी सराहा। उन्होंने उत्तर प्रदेश में एक नहर में फंसी हुई गंगा की डॉल्फिन को कामयाबी के साथ बचाए जाने का जिक्र किया, जिसमें गंगा डॉल्फिन को बचाने वाली भारत की पहली एम्बुलेंस की मदद हासिल की गई।
0: ये डॉल्फिन रेस्क्यू एम्बुलेंस बहुत खास है। इसे एक चलते फिरते अस्पताल की तरह तैयार किया गया है। इसमें डॉल्फिन को सुरक्षित रखने की व्यवस्था है, ऑक्सीजन की सुविधा है, विशेष स्ट्रेचर है, बचाव के उपकरण है। यानी अगर कोई डॉल्फिन घायल हो जाए, नहर में फंस जाए या नदी से कट जाए तो तुरंत उसकी मदद की जा सकती है।
1: चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ CDS लेफ्टिनेंट जनरल NS राजा सुब्रमणि ने आज कहा है कि ख्याल और कार्रवाई में इख्तिरा से फौजी सलाहियतों को फरोग हासिल होगा। मुल्क के नए CDS की जिम्मेदारी संभालने के बाद मीडिया से खिताब करते हुए जनरल सुब्रमणि ने मुसल्लह फौजों, सनात, तालीमी इदारों, स्टार्टअप्स और तहकीक के इको निज़ाम के माबैन मजीद इश्तराक की जरूरत पर जोर दिया, जो जदीदकारी के लिए बुनियादी हैसियत का हामिल हैं। साबिका फौजियों और वीर नारियों के बहबूद के तई मुसल्लह फौजों के पाबंद रहने की बात दोहराते हुए उन्होंने शहरियों को यकीन दिलाया कि मुसल्लह फौजें खुद को वक्फ करते हुए हिम्मत, इज्जत और पेशेवराना महारत के साथ मुल्क की खिदमात अंजाम देती रहेंगी। आज सुबह सवेरे लेफ्टिनेंट जनरल सुब्रमणि को नई दिल्ली में साउथ ब्लॉक के सब्जार में गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। उन्होंने नेशनल वार मेमोरियल पर गुलदायरा भी नजर किया। DRDO की टर्मिनल बैलिस्टिक रिसर्च लेबोरेटरी ने आज हरियाणा के जिले पंचकुला में वाकई रामगढ़ में अपनी तनसीब पर एक ताकतवर बम का कामयाब तजुर्बा किया है। ये जामे हिफाजती इंतजाम के दौरान भारतीय फजाइया के सीनियर अफसरान की निगरानी में अंजाम दिया गया। साइंस और टेक्नोलॉजी के वजीर डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने आज कहा कि गुज़िश्ता 12 वर्षों में भारत टेक्नोलॉजी फॉलोअर से एक टेक्नोलॉजी लीडर बन गया है। दूरदर्शन न्यूज के साथ एक पॉडकास्ट में बात करते हुए डॉक्टर सिंह ने कहा कि मुल्क जदीद तकनीकों की तरक्की में मुसलसल अहम रोल अदा कर रहा है और आलमी सतह पर इख्तिराआत को नई जहत देने में मदद कर रहा है। सानवी तालीम के मरकजी बोर्ड CBSE ने कहा है कि मुख्तलिफ सरकारी एजेंसियों और टेक्नोलॉजी के भारतीय इदारों की साइबर सिक्योरिटी के माहिरीन की एक टीम को ऑनमार्क पोर्टल की हिफाजत के लिए तैनात किया गया है, जिसे 12वीं जमात के तलबा की आंसर शीट्स को दोबारा जांचने के लिए इसके ऑन स्क्रीन मार्किंग OSM निजाम के लिए इस्तेमाल किया जाता है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में बोर्ड ने कहा कि इस निजाम की खामियों की निशानदेही कर ली गई है और इनका किस तरह कोई गलत इस्तेमाल न हो इसके लिए मुकम्मल जायजा लिया जा रहा है। हिमाचल प्रदेश में BJP ने बल्दियाती इदारों के इंतखाबात में 4 में से 3 इदारों पर जीत हासिल की है। इन इंतखाबात में डाले गए वोटों की गिनती आज की गई वोटिंग 17 मई को कराई गई थी। पेश है एक रिपोर्ट।
2: भारतीय जनता पार्टी ने हिमाचल प्रदेश म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के इंतखाबात में शानदार जीत हासिल की है। उसने धर्मशाला, सोलन और मंडी सीट जीत ली है, जबकि कांग्रेस पार्टी ने सिर्फ पालमपुर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन सीट जीती है। धर्मशाला में BJP ने 17 में से 11 वार्ड जीते हैं, जबकि कांग्रेस ने 5 वार्ड में जीत हासिल की है। सोलन में BJP ने 10 और कांग्रेस ने 6 वार्ड हासिल किए हैं। मंडी में BJP ने 14 में से 12 जबकि कांग्रेस ने 1 वार्ड में जीत हासिल की है। पालमपुर में कांग्रेस ने 15 वार्ड में से 11 वार्ड में वाज़ेह अक्सरियत हासिल की है, जबकि BJP ने 4 वार्ड जीते हैं। जिला परिषद और पंचायत समिति इंतखाबात के लिए वोटों की गिनती भी मुकम्मल हो चुकी है, अगरचे ये इंतखाबात पार्टी निशान के बगैर मुनक़द हुए थे। ताहम BJP और कांग्रेस दोनों ने अपनी हामी उम्मीदवारों की कामयाबियों का जिक्र किया है। शिमला से रितेश कपूर की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए मैं असलम बेग।

0: नमस्कार श्रोताओ, मैं रजनीश कुमार शर्मा
1: और मैं तपस्या
0: आपका स्वागत करते हैं अनुगूंज कार्यक्रम की इस नूतन कड़ी में। आज के कार्यक्रम में हम लेकर आए हैं कला, संगीत और साहित्य जगत की स्वरांजलि, जिसे सुनकर आप रोमांचित हो उठेंगे। सबसे पहले आइए सुनते हैं इस प्रसिद्ध अभिनेत्री को, जो अपना परिचय स्वयं दे रही हैं।
1: जैसा कि आप जानते हैं, मेरा नाम नरगिस है, लेकिन मेरा एक और नाम भी है जो कि मेरी माँ ने मुझे दिया था। वो नाम है कनीज फातिमा। और एक और नाम भी है जो मुझे अपने पिताजी की तरफ से मिला है, और वो है तेजेश्वरी। इसलिए कि मेरे पिताजी पंजाब के एक हिंदू थे और मेरी माँ उत्तर प्रदेश की एक मुसलमान औरत, और मैं बंगाल में पैदा हुई, लेकिन अपने घर बार और बाल बच्चों के साथ महाराष्ट्र में रहती हूँ।
2: सन 1940 से लेकर 1960 के दशक तक नरगिस ने कई सफल फिल्मों में काम किया। बरसात, अंदाज, आवारा, दीदार, श्री 420 और चोरी चोरी इनकी बहुचर्चित फिल्में रहीं।
0: महबूब खान द्वारा निर्मित 1957 की फिल्म मदर इंडिया में नरगिस जी के अभिनय की बहुत प्रशंसा हुई। इस फिल्म के लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का फिल्म फेयर पुरस्कार मिला। ये फिल्म ऑस्कर के लिए भी नामित हुई। आइए सुनते हैं मदर इंडिया फिल्म से नरगिस का एक संवाद।
3: देवी यहाँ से नहीं जाएगी।
4: खबरदार राधा, हाथ नहीं लगाना, हाथ नहीं लगाना राधा।
3: देवी ने तुम्हें धन दिया और मुझे निर्धन बनाकर तुम्हारे सामने लाई है। मैं देवी को बताऊंगी कि रास्ता दिखाना सहल है, पर रास्ते पर चलना बहुत कठिन। स्थान पर बैठकर तमाशा देखना आसान, पर खुद तमाशा बनकर जीवन बिताना बहुत मुश्किल है। मैं देवी को बताऊंगी कि एक मजबूर अपने बच्चों के लिए क्या कर सकती, कहां तक गिर सकती, कहां तक गिर सकती। देवी शक्ति नहीं दे सकती, देवी तो लाज ले लो, लाज ले लो देवी। मैं अपने बच्चों का बलिदान नहीं कर सकती, मैं अपने बच्चों का बलिदान नहीं कर सकती देवी।
2: श्रोताओं, नरगिस पहली अभिनेत्री थीं जिन्हें सन 1958 में भारत सरकार द्वारा पद्मश्री से सम्मानित किया गया। आइए सुनते हैं नरगिस से उनके फिल्मी जीवन के आरंभ के बारे में।
1: मैंने अपनी फिल्मी जिंदगी में हमेशा ये कोशिश की है कि मेरा हर रोल बनावटी न मालूम होकर असली मालूम हो। इसकी एक वजह ये भी थी कि मेरी तालीम और तरबियत ऐसे माहौल में हुई जहाँ जिंदगी को जिंदगी की नजर से देखा जाता था। रहा फिल्मी दुनिया से मेरे रिश्ते का सवाल, तो बस यूं समझ लीजिए कि फिल्मों से मेरा रिश्ता पैदाइशी है। यानी उस वक्त से काम कर रही हूं जब मुझे ठीक से बोलना भी नहीं आता था। लेकिन हीरोइन की हैसियत से मेरी पहली फिल्म थी तकदीर, जो मैं

0: साहब ने बनाई थी। सच तो ये है कि महबूब साहब ने मेरी फिल्मी जिंदगी को शुरू किया और आखिर में मदर इंडिया बनाकर मुझे एक बहुत ही बुलंद मुकाम पर पहुंचा दिया कि अगर मैं अपनी उस बुलंदी पर नाज करूं तो बेजा ना होगा। मैं महबूब साहब की जितनी भी तारीफ करूं कम होगी। मेरी शोहरत में महबूब साहब की ट्रेनिंग का बहुत बड़ा हिस्सा है।
1: फिल्म तकदीर में नरगिस ने पहली बार मुख्य अभिनेत्री का चरित्र निभाया। इस फिल्म के सह कलाकारों को याद करते हुए नरगिस कहती हैं,
0: जैसा कि आप सब जानते हैं मोतीलाल जी इस फिल्म के हीरो थे। वो हर लिहाज से मुझसे बड़े थे और मैं उन्हें हमेशा मोती भैया कहा करती थी। एक दिन एक रोमांटिक सीन की शूटिंग हो रही थी और मैं हर रिहर्सल के बाद कहती थी, क्यों मोती भैया कैसा हुआ? और वो बिगड़ कर कहते थे, हद तेरा सत्यानाश, सारे रोमांटिक मूड का बेड़ा गर्क कर दिया। खैर फिल्म की शूटिंग पर इसका कोई असर नहीं हुआ क्योंकि मोतीलाल जी बड़े ऊंचे पाए के कलाकार थे, ऐसी बातों का असर उन पर नहीं होता था। हाँ याद आया, इसी फिल्म में मशहूर आर्टिस्ट नूर मोहम्मद चार्ली ने मेरे बाप का रोल किया था। उनके साथ एक सीन ऐसा था कि वो जेल में बंद हैं और मैं यानी उनकी बेटी उनसे मिलने जाती। ये सीन जरा गमगीन था मगर चार्ली साहब हवालात में कुछ इस अंदाज से टहलते थे कि मुझे बहुत हंसी आ जाती थी। ऐसा कई बार हुआ और तब महबूब साहब झिल्ला गए और एकदम जोर जोर से चिल्लाकर मुझे डांटने लगे, यहां तक कि मुझे रोना आ गया। और उसी रोने के दरमियान ही महबूब साहब ने जल्दी जल्दी वो सीन मुझसे मुकम्मल करवा लिया।
2: पुरानी फिल्मों की तुलना नई फिल्मों से करते हुए नरगिस ने क्या कहा, आइए सुनते हैं।
0: फिल्मों से मेरा संबंध काफी पुराना है, इसीलिए पुरानी फिल्मों में और आज की फिल्मों में काफी फर्क मुझे नजर आता है। खास तौर पर टेक्निकली हम लोगों ने बहुत तरक्की की है लेकिन स्टोरी और डायलॉग के मामले में हम लोग तरक्की करने के बजाय कुछ पीछे ही खिसक आए हैं। इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि लोग अब ऊपरी सजावट की तरफ ज्यादा ध्यान देते हैं। आजकल फिल्मों में कश्मीर, कुल्लू और मनाली की हसीन वादियां तो देखने में आती ही हैं, लेकिन पत्थर को मोम कर देने वाले डायलॉग सुनने में नहीं आते। बहरहाल ऐसा भी नहीं कि आजकल हर फिल्म ऐसी ही होती है, बल्कि कुछ अच्छी फिल्में भी बनती हैं।
1: श्रोताओ, पुरानी फिल्मों के कलाकार अपने अभिनय को प्रभावशाली बनाने के लिए कड़ी मेहनत किया करते थे। अभिनेत्री नरगिस भी ऐसी ही कलाकार थी।
0: फिल्म एक्टिंग के बारे में आप लोग आम तौर पर तरह तरह के ख्यालात रखते हैं और अलग अलग बातें सुनते रहते हैं, लेकिन मेरे ख्याल से डायरेक्टर्स जैसा कहते हैं या चाहते हैं वैसा तो हर कलाकार करता है या करने की कोशिश करता है, मगर खुद फनकार को भी चाहिए कि वो अपने फन को निखारने के लिए, उसमें जान पैदा करने के लिए जिंदगी की बहुत करीब से नाप तोल करे और खास तौर पर जो टिपिकल कैरेक्टर्स हमारे सामने आते हैं उन्हें गौर से समझे। इस सिलसिले में मैं आपको अपनी ही मिसाल देती हूँ। फिल्म अनहोनी में मेरा डबल रोल था। जो खास और मुश्किल रोल था वो एक तवायफ का कैरेक्टर था। उसे सही ढंग से अदा करने के लिए मैं अपने भाई के साथ मर्दाना भेस बदल कर एक कोठे पर गई। वहां आए हुए लोगों के बीच बैठकर मुजरा सुना और उस नर्तकी की चाल ढाल, बातचीत, नाच गाना, पान पेश करने की अदा वगैरह वगैरह मैंने बहुत अच्छी तरह से देखा ताकि मैं अपनी एक्टिंग से उस किरदार के साथ पूरा पूरा इंसाफ कर सकूं। इसलिए मेरा तो यही कहना है कि कलाकार को खुद भी काफी मेहनत करनी चाहिए।
2: सन 1968 की फिल्म रात और दिन उनकी अंतिम फिल्म थी। इस फिल्म के लिए उन्हें राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया। कैंसर रोग से पीड़ित होने के कारण 3 मई 1981 को नरगिस का निधन हो गया। सन 1982 में इस महान अभिनेत्री की याद में नरगिस दत्त मेमोरियल कैंसर फाउंडेशन की स्थापना की गई।
1: श्रोताओ, कार्यक्रम में आगे हम सुनवाएंगे हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के विख्यात गायक पंडित डीवी पलुस्कर का गायन। तो अनुगूंज के इस सफर में बने रहिए हमारे साथ। मिलते हैं इस विराम के बाद।

भारत की संस्कृति का दर्पण प्रसार भारती है कराता, भारत के हर रूप का दर्शन। कभी भारत की बदलती तस्वीर है, कभी भारत की बदलती आवाज, कभी भारत की बदलती सोच है।

0: राज प्रसार भारती भारत का आने वाला कल है, है प्रसार भारती भारत का बदलता आज।
1: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी,

0: होता था, बस आवाज सुन भारत हंसता था रोता था। फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।

0: श्रोताओं, हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के उच्च कोटि के गायक पंडित डीवी पलुस्कर का जन्म 28 मई 1921 को महाराष्ट्र के नासिक जिले में हुआ था। उन्हें एक विलक्षण बालक के तौर पर जाना जाता था। पलुस्कर ने अपना पहला कार्यक्रम मात्र 14 वर्ष की आयु में हरिवल्लभ संगीत सम्मेलन में दिया।
1: श्रोताओं, भारतीय संगीत में गायन की कई शैलियां हैं, जैसे ख्याल, ध्रुपद, धमा, त्रिवट, चतुरंग आदि। चतुरंग शैली लुप्त होती जा रही है। आइए सुनते हैं पलुस्कर जी के स्वर में, राग सिंधुरा में, चतुरंग।

बैजू बावरा में उस्ताद अमीर खान के साथ एक अविस्मरणीय जुगलबंदी के लिए भी पलुस्कर को जाना जाता है। आइए सुनते हैं उस जुगलबंदी का एक अंश।

पंडित डीवी पलुस्कर शुद्ध शास्त्रीय संगीत गायक के अतिरिक्त एक महान भजन गायक भी थे। आइए सुनते हैं पंडित जी का गाया लोकप्रिय भजन।

0: श्रोताओं, कार्यक्रम में आगे सुनेंगे संस्कृत के प्रकांड विद्वान और हिंदी के लोकप्रिय कवि जानकी वल्लभ शास्त्री की कुछ रचनाएं इस अल्प विराम के बाद।
1: मन की बात है जन जन की बात, सभी की कुछ अपनी सी कहानी, कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात, प्रधानमंत्री के साथ। आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों पर आप भी माननीय प्रधानमंत्री के मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली पर भेज सकते हैं, नमो ऐप या MyGov के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं। तो याद रखें, मन की बात।

को बिहार के गया जिले में हुआ था। वे छायावादोत्तर काल के सुविख्यात कवि होने के साथ साथ हिंदी और संस्कृत के कवि, लेखक एवं आलोचक भी थे। प्रारंभ में उन्होंने संस्कृत में कविताएं लिखी, बाद में महाकवि निराला से प्रेरणा पाकर हिंदी में सृजन किया। शास्त्री जी गीतकार भी रहे हैं और उनकी सृजनात्मक प्रतिभा उनके गीतों और गजलों में सुंदर रूप से प्रकट होती है। आइए सुनते हैं उनका प्रतिनिधि गीत, किसने बांसुरी बजाई।

सन 40 के दशक में आचार्य जानकी वल्लभ शास्त्री ने कई छंदबद्ध काव्य कथाएं लिखी जो गाथा नामक संग्रह में संकलित हैं। इसके अलावा उन्होंने कई काव्य नाटकों की रचना की और राधा जैसा श्रेष्ठ महाकाव्य रचा। आचार्य जानकी वल्लभ शास्त्री को उत्तर प्रदेश सरकार ने भारत भारती पुरस्कार से सम्मानित किया।

0: श्रोताओं, हमारी आज की प्रस्तुति आपको कैसी लगी हमें अवश्य बताइएगा। आप अपनी प्रतिक्रियाएं हमें इस ईमेल आईडी पर भेज सकते हैं, anugoonj@gmail.com।
1: जी हाँ, anugoonj@gmail.com। तो अब हमें यानी रजनीश कुमार शर्मा को
0: और तपस्या को
1: दीजिए विदा।
0: नमस्कार।

0: कार्यक्रम अनुगूंज की आज की कड़ी के शोधकर्ता थे रंजन गुप्ता, राकेश बिहारी और डॉक्टर श्याम शर्मा। गीत रचना थी राजेश राज की और गायन स्वर था जितेंद्र सिंह का। आलेख और निर्माण था आशुतोष कुमार का और निर्देशक थे डॉक्टर संतोष नाहर।
1: अभी आप आकाशवाणी संग्रहालय द्वारा निर्मित कार्यक्रम अनुगूंज सुन रहे थे।
2: You were listening to the program Anugunj, based on the archival inputs of All India Radio. This broadcast came to you from the Delhi station of All India Radio.

0: ये आकाशवाणी है। आज की रविवासरीय अखिल भारतीय संगीत सभा में हम प्रस्तुत कर रहे हैं श्री असनापुरम येरैया एवं मंडली का सैक्सोफोन वादन। श्री असनापुरम येरैया आंध्र प्रदेश के प्रसिद्ध सैक्सोफोन वादक हैं। प्रारंभिक प्रशिक्षण श्री जी वेंकट रमणा से प्राप्त करने के बाद उन्होंने श्री कल्लूरी मलैया से उच्च प्रशिक्षण लिया और आकाशवाणी कड़प्पा के ए ग्रेड कलाकार के रूप में मान्यता प्राप्त की। आपने भारत के विभिन्न सांस्कृतिक सभाओं और मंदिरों में व्यापक रूप से कार्यक्रम प्रस्तुत किए हैं। आपको कंची काम कोटी अस्थाना विद्वान की प्रतिष्ठित उपाधि से सम्मानित किया गया है।
1: दिस इज आकाशवाणी इंटरनेट रविवासरीय अखिल भारतीय संगीत सभा। वी ब्रिंग यू ए सैक्सोफोन रिसाइटल बाय श्री असनापुरपु येरैया एंड पार्टी, एकम्पनीड ऑन स्पेशल डोलू बाय श्री वी एन बालचंदर। श्री असनापुरपु येरैया is a renowned saxophone artist from Andhra Pradesh. He received his initial training under Sri G. Venkataramana. He later underwent advanced training under Sri Kalluri Mallayya and earned recognition as an A-grade artist of Akashavani Kadapa. He has performed extensively across India at various cultural sabhas and temples and has been honored with prestigious position of कंची कामकोटी आस्थान विद्वान।
0: आज के कार्यक्रम में श्री असनापुरम येरैया एवं मंडली के साथ डोलू पर श्री वी एन बालचंदर संगति देंगे। श्री वी एन बालचंदर आंध्र प्रदेश के प्रसिद्ध डोलू वादक हैं। उन्होंने श्री एन लक्ष्मी नारायण तथा तिरुच्चरई टी जी मुथु कुमार स्वामी पिल्लई जैसे प्रतिष्ठित गुरुओं से प्रशिक्षण प्राप्त किया। वे आकाशवाणी के टॉप ग्रेड कलाकार हैं।
1: इन टुनाइट्स कंसर्ट Sri Asanapurapu Yerraya and Party is accompanied on special dolu by Sri V.N. Balachandar. Sri V.N. Balachandar is a renowned dolu artist from Andhra Pradesh. He received training under distinguished gurus including Sri N. Lakshmi Narayana and Tiruchirai T.Z. Muthukumaraswamy Pillai. He is a top grade artist of Akashwani.
0: Sri Yerraya apne saxophone vadan ki shuruaat kar rahe hain Ninnu Kori Yunannura se. ये रचना टी सिंगाराचारी की है जो राग वसंत और आदि ताल में निबद्ध है।
1: श्री येरैया बिगिंस हिज सैक्सोफोन रिसाइटल विद निन्नु कोरी युन्नानुरा, ए कॉम्पोजिशन ऑफ टी सिंगाराचारी इन राग वसंता सेट टू आदि ताल।

0: अभी आप सुन रहे थे राग वसंत में एक रचना जिसके बोल थे निन्नु कोरी युनन्नुरा। अब श्री येरैया एवं मंडली प्रस्तुत कर रहे हैं नाद लोलुड़ई। ये रचना संत त्यागराज की है जो राग कल्याण वसंत में और रूपक ताल में निबद्ध है।
1: श्री येरैया कंटिन्यूज हिज रिसाइटल विद नाद लोलुड़ई, ए कॉम्पोजिशन ऑफ त्यागराजा इन राग कल्याण वसंता सेट टू रूपक ताल।

0: अभी आप सुन रहे हैं श्री अतनापुरम येरैया एवं पार्टी का सैक्सोफोन वादन। आपके साथ डोलू पर संगति कर रहे हैं श्री वीएन बालचंदर। अब प्रस्तुत है निन्नु जेप्पा कारणमेनी। ये रचना पटनम सुब्रमण्यम अय्यर की है, राग है मंदारी और ये रचना आदिताल में निबद्ध है।
1: नाउ यू विल बी लिसनिंग टू निन्नु जेप्पा कारणमेनी, ए कॉम्पोजिशन ऑफ पटनम सुब्रमण्यम।

0: अगली प्रस्तुति है सामगान प्रियकरम। ये रचना गुरु सूरजानंद की है।
1: राग कीरवाणी में ये रचना
0: मिश्र चापू ताल में निबद्ध है।
2: यू आर नाउ लिसनिंग टू द सैक्सोफोन रिसाइटल बाय श्री अस्नापुरपु एर्रय्या इन द रविवासरीय अखिल भारतीय संगीत सभा। श्री एर्रय्या नेक्स्ट प्रेजेंट्स सामगान प्रियकरम, ए कॉम्पोजिशन ऑफ गुरु सूरजानंद इन राग कीरवाणी सेट टू मिश्र चापू ताल।

0: श्री यदैया एवं मंडली अपनी प्रस्तुति का समापन कर रहे हैं तिरुमला तिरुपति वेंकट रमणा से। ये रचना अन्नामाचार्य की है। राग है वृंदावन सारंग जो आदि ताल में निबद्ध है।
1: श्री यदैया कंक्लूड्स हिज रिसाइटल विद तिरुमला तिरुपति वेंकट रमणा, ए कॉम्पोजिशन ऑफ अन्नामाचार्य इन राग वृंदावन सारंगा सेट टू आदिताल।

0: अभी आप सुन रहे थे श्री असनापुरम येरैया एवं मंडली का सैक्सोफोन वादन। डोलू पर संगति दी श्री वीएन बालचंदर ने। ये कार्यक्रम आकाशवाणी कड़पा के स्टूडियो में रिकॉर्ड किया गया और इसका प्रसारण आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से किया गया।
1: यू हैव बीन लिसनिंग टू द सैक्सोफोन रिसाइटल बाय श्री असनापुरम येरैया एंड पार्टी इन द रविवासरीय अखिल भारतीय संगीत सभा। ही वॉज एकम्पनीड ऑन स्पेशल डोलू बाय श्री वीएन बालचंदर। दिस प्रोग्राम was recorded in the studios of Akashwani Kadapa and this broadcast came to you from the studios of Akashwani Delhi.

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मोहम्मद जुबैर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सामाजिक कार्यों में असाधारण योगदान करने के लिए आज अनेक नागरिकों की सराहना की। श्री मोदी ने आकाशवाणी पर अपने मासिक रेडियो कार्यक्रम मन की बात में राष्ट्र को संबोधित करते हुए सामाजिक कार्यों के लिए जमीनी स्तर पर काम कर रहे लोगों की सराहना की। प्रधानमंत्री ने केरल के शाजी वलाशेरिल के बारे में बात की। ये निःशुल्क तैराकी क्लब चलाते हैं जिसमें 15,000 से ज्यादा लोगों को तैराकी सीखने में सहायता की गई है।
1: केरलम के आलुवा में शाजी वलाशेरिल जी एक स्विमिंग क्लब चला रहे हैं। अब तक 15,000 से ज्यादा लोग यहाँ तैरना सीख चुके हैं। शाजी जी ने दिव्यांग बच्चों को भी स्विमिंग सिखाई है। शाजी वलाशेरिल जी का जीवन हमें एक बहुत बड़ी सीख देता है। सेवा करने के लिए बहुत बड़े साधन जरूरी नहीं होते, जरूरी होता है एक अच्छा इरादा और लगातार किया गया प्रयास। इन्हीं के दम पर हजारों लोगों के जीवन में बदलाव लाया जा सकता है।
0: देश की खेल उपलब्धियों का उल्लेख करते हुए श्री मोदी ने खिलाड़ी गुरविंदर वीर सिंह, विशाल टीके, तेजस्वी शंकर, देव मीणा और कुलदीप कुमार को झारखंड के रांची में आयोजित नेशनल सीनियर एथलेटिक्स फेडरेशन स्पर्धा में नए राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाने के लिए बधाई दी।
1: कुछ दिन पहले ही झारखंड के रांची में नेशनल सीनियर एथलेटिक फेडरेशन कंपटीशन हुआ। इसमें करीब 800 एथलीट ने हिस्सा लिया। इस दौरान चार अलग अलग इवेंट में चार नेशनल रिकॉर्ड टूटे। गुरिंदर वीर सिंह, विशाल टीके, तेजस्विनी शंकर, देव मीणा और कुलदीप कुमार, इन साथियों ने अलग अलग कैटेगरी में नए रिकॉर्ड बनाए। मैं इन सभी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ।
0: देश में भीषण गर्मी पर चिंता व्यक्त करते हुए प्रधानमंत्री ने इस संबंध में लोगों से सरकारी सलाहों पर अमल करने का अनुरोध किया और सुरक्षित रहने के लिए एहतियातन कदम उठाने को कहा। मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण यानी SIR के तीसरे चरण के अंतर्गत ओडिशा, मिजोरम, सिक्किम और मणिपुर में कल से मतदाताओं की पहचान शुरू हो गई है। निर्वाचन आयोग ने बताया है कि जिन पात्र मतदाताओं के मतगणना प्रपत्र 28 जून तक मतदाता पंजीकरण अधिकारी को प्राप्त हो जाएंगे, उन्हें मसौदा मतदाता सूची में शामिल किया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी ने हिमाचल प्रदेश के चार नगर निगमों में से तीन में स्पष्ट बहुमत हासिल कर लिया है। 17 मई को हुए नगर निगम चुनावों के लिए मतगणना आज पूरी हो गई। भारतीय जनता पार्टी ने धर्मशाला, सूरन और मंडी नगर निगमों में जीत हासिल की है। वहीं कांग्रेस ने पालमपुर नगर निगम में जीत दर्ज की है। महाराष्ट्र में सत्ताधारी महायुति गठबंधन ने आगामी विधान परिषद चुनावों के लिए 17 सीटों के बंटवारे को अंतिम रूप दे दिया है। समझौते के अनुसार भारतीय जनता पार्टी 11 सीट पर, शिवसेना 4 और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी NCP 2 सीट पर चुनाव लड़ेंगी। विपक्षी महाविकास अघाड़ी ने पहले ही 17 में से 15 सीटों के लिए अपने बंटवारे की घोषणा कर दी थी, जिसमें कांग्रेस 8 सीट पर, शिवसेना UBT 4 और शरद पवार के नेतृत्व वाली NCP 3 सीट पर चुनाव लड़ेगी। शेष नासिक और नांदेड़ सीटों पर अभी विचार विमर्श जारी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल नई दिल्ली में म्यांमार के राष्ट्रपति ऊ मिन आउन लाइन के साथ वार्ता करेंगे। इस बातचीत से दोनों देशों के बीच ऐतिहासिक और सभ्यतागत संबंधों को और मजबूती मिलेगी। बातचीत के दौरान सुरक्षा और संपर्कता समेत भारत और म्यांमार के समग्र संबंधों पर विचार विमर्श होगा। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार NSA अजीत डोभाल ने आज नई दिल्ली में म्यांमार के राष्ट्रपति से मुलाकात की। म्यांमार के उत्तर पूर्वी हिस्से में एक भवन में हुए विस्फोट में 45 से अधिक लोगों की मौत हो गई और 70 लोग घायल हुए हैं। खबरों के अनुसार इस भवन में खनन के लिए विस्फोटक रखे गए थे। अहमदाबाद में IPL क्रिकेट के फाइनल में गुजरात टाइटंस ने रॉयल चैलेंजर्स बंगलुरु को 156 रन का लक्ष्य दिया है। जवाब में ताजा समाचार मिलने तक रॉयल चैलेंजर्स बंगलुरु ने 14 ओवर में 5 विकेट पर 132 रन बना लिए हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।